माना है और हर कोई अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। ऐसे में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहाँ जा रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं गई हैं, घूमने गई हैं, तो वहाँ से आने के बाद आपको जो भी अपडेट करना है वो करें, लेकिन वहाँ होते हुए आप अपडेट करने से बचें। बाहर वालों को अपडेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन घर वालों को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किनके साथ हैं। ये आपके सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके लिए आप अपने फोन की लोकेशन भी हमेशा ऑन रखें, जिससे कि आपके परिवार को आपके लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। और खास तौर से अगर आप किसी नई जगह जा रही हैं तो ये जरूर करें, किसी करीबी के साथ अपने लोकेशन साझा कर दें और किसी एक करीबी को ये जरूर बता दें कि आप कहाँ और कब जा रही हैं। अपने पास कुछ इमरजेंसी नंबर लिखकर जरूर रखें। आजकल हमारे पास सब कुछ फोन में होता है, लेकिन कई बार हमारा फोन गुम हो जाता है। ऐसे में आप अपने कुछ करीबियों का नंबर याद करके रखें या फिर नोट करके रखें, और कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर्स भी रखें जो आपको तुरंत सहायता पहुंचाती है। जैसे हमारे बिहार में 112 है। अगर आप किसी परेशानी में फंसती हैं तो 112 पर कॉल करने से आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आपको अपने साथ पर्स में कुछ सेफ्टी टूल्स भी रखने चाहिए, जैसे कि आप पेपर स्प्रे रखें, फोल्डिंग चाकू रखें। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने साथ जरूर रखें, यह आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ये आपकी परेशानी में आपका सबसे बड़ा साथी साबित होता है। अगर आप रात को कैब से ट्रैवल कर रही हैं तो अपने किसी करीबी को अपना लोकेशन जरूर शेयर करें, और साथ ही कैब की जानकारी अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर करके रखें। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि कैब वाला आपको किस रास्ते से लेकर जा रहा है, ये कोई अनजान या सुनसान रास्ता तो नहीं है। और अगर सुनसान रास्ता है और यही एक रास्ता है आपके मंजिल तक पहुंचने का, तो आप उस दौरान अपने किसी परिचित से हो सके तो बात करते रहें, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि देर रात आप घर लौट रही हैं या कहीं जा रही हैं तो कोई अनजान रास्ता चुनने से जितना हो सके बचें। और मोबाइल फोन को पर्स में रखने की जगह अपने हाथ में रखें, ताकि कोई परेशानी हो तो फटाक से आप किसी को फोन कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने फोन में आप वुमेन सेफ्टी ऐप भी इंस्टॉल करके रखें। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो बाहर आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो लेडीज फर्स्ट में आज इतना ही। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ।

0: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के संग हरियाली से खुशहाली तक।

0: उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे गेंदे फूल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। आज ये बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हम लेकर आएंगे कि कैसे आप प्रवर्धन करेंगे, गेंदे लगाने की विधि क्या है और समय नर्सरी स्थापित करने का समय क्या है। ये सारी चीज़ें रोग से लेकर कीट व्याधि तक इसके निवारण की सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर स्वप्निल भारती, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: मैडम। सबसे पहले तो हम बात करते हैं खेती की, तो गेंदे की खेती किस प्रकार लाभदायक हो सकती है किसान भाइयों के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: जी बिल्कुल अनु, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसी भी फसल को करने से पहले किसान भाई ये ज़रूर देखेंगे कि वो फसल उन्हें कितना लाभ पहुंचा रहा है। और जब हम बात करते हैं फूलों की, तो फूलों वाली फसलों में अगर देखा जाए तो गेंदा एक मुख्य फसल है, क्योंकि इसके फूलों का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। गेंदे के फूलों का प्रयोग हम खास करके खुले फूलों के रूप में किया जाता है, जैसे कि माला बनाने के लिए, पूजा करने के लिए या फिर रंग निकालने के लिए। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त हम गेंदे के फूलों को क्यारियों में या गमलों में सजावट हेतु भी उगा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में पूरे वर्ष कोई ना कोई त्यौहार, धार्मिक प्रतिष्ठाएं, शादी महोत्सव आदि होते रहते हैं। तो इसी वजह से इस फूल की मांग पूरे साल बरकरार रहती है। तो हमारे किसान भाई, अगर आप देखें तो गेंदे के फूलों की खेती आप साल भर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फूलों का उपयोग हम मुर्गी के भोजन के रूप में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि इसके प्रयोग से मुर्गी के अंडों की जो जर्दी होती है, जिसे हम ये एग योक के नाम से जानते हैं, उसका रंग पीला हो जाता है। और इसकी वजह से ना कि अंडे की सिर्फ गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि साथ ही साथ उसका आकर्षण भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी किसान भाई कि अगर आप गेंदे की खेती पूरे वर्ष भी करते हैं तो आपको इससे अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है।
0: जी, और अब हम आगे बढ़ते हैं, जानना चाहेंगे आपसे कि गेंदे की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की ज़रूरत होती है और खेत की तैयारी कैसे करें किसान भाई।
1: जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है किसान भाइयों, कि गेंदे को हम पूरे

0: उगा सकते हैं या पूरे वर्ष इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस फसल के लिए 18 से 20 डिग्री का जो तापमान है वो काफ़ी अनुकूल पाया गया है। ये अधिकांश मौसम में जीवित रह सकता है, किंतु जब जलवायु हमारी 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो जाती है तो इस ये पाले के प्रति थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बीज अंकुरण की, तो बीज अंकुरण के लिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान काफ़ी उपयुक्त पाया गया है। अब हम बात करेंगे अगर किस प्रकार से हम खेत और मिट्टी कैसे इसको चाहिए होती हैं, तो गेंदे की खेती के लिए दोमट, मटियार दोमट एवं बलुआर दोमट भूमि सर्वोत्तम होती हैं, जिसमें कि उचित जल निकास की व्यवस्था हो। खेत को हम दो से तीन बार हम खेत की अच्छे से जुताई कर लेते हैं, उसके बाद उसमें हम पाटा चलाकर उसे समतल बना लें। खेत की अंतिम जुताई से पहले आप उसमें 200 क्विंटल कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देनी चाहिए। उसके पश्चात 120 से 160 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 से 80 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से करते हैं। नाइट्रोजन जो कि हम यूरिया के तौर पे देते हैं खेतों में, उसकी आधी मात्रा एवं पोटाश यानी MOP और DAP के माध्यम से जो हम फास्फोरस और पोटाश पौधों को देते हैं, उसकी पूरी मात्रा हम खेत के अंतिम जुताई के समय ही खेत में मिट्टी में मिलाकर उसकी जुताई करते हैं, तथा नाइट्रोजन की जो आधी शेष मात्रा है उसे आप पौधा रोपण से 30 से 40 दिनों के अंदर प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी, अब हम थोड़ा विधि की ओर बढ़ेंगे, तो गेंदे लगाने की विधि क्या कैसे है, कैसे करें किसान भाई सही तरीका?
0: हाँ जी अनु, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। इसके लिए हम देखा जाए तो गेंदा जो है उसे हम दो प्रकार से उसका प्रवर्धन कर सकते हैं। पहला है बीज द्वारा और दूसरा होता है कटिंग द्वारा। बीज द्वारा प्रवर्धन करने के भी दो तकनीक है, एक पौधशाला के द्वारा है, जिसमें हम पौधशाला के दो माध्यम होते हैं। पौधशाला को हम दो प्रकार से स्थापित कर सकते हैं, यानी नर्सरी। तो पहली नर्सरी स्थापित करना होता है जिसे हम ज़मीन पर स्थापित करते हैं। इसके लिए हम खेत की अच्छी से जुताई करके उसमें 25 से 30 किलोग्राम कंपोस्ट प्रति वर्ग मीटर के दर पर हम कंपोस्ट या फिर सरी हुई गोबर की खाद हम मिट्टी में मिला देते हैं। इसके पश्चात हम खेत को समतल बना लेते हैं। उसके बाद हम खेत उस जो खेत है उसको हम छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। इसके पश्चात आप क्या करेंगे कि क्यारियों की लंबाई जो है वो आप आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं, और उसकी चौड़ाई 1 मीटर और जो ऊंचाई उसकी रहेगी ज़मीन से वो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगा। क्यारियों से क्यारियों के बीच की दूरी आपको 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी है। फिर खेत तैयार होने के बाद, क्यारियाँ तैयार होने के बाद आप बीज की बुआई, कोशिश करें कि बीज की बुआई आप लाइन में करें। दो लाइन के बीच की दूरी आप 5 से 6 सेंटीमीटर रखें और बीज की गहराई जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। बीज बोने के तुरंत बाद आप उसे पुआल या सूखे हुए पत्तों से ढक दें, इससे नमी बरकरार रहेगी। हल्की सी सिंचाई कर दें। पहली सिंचाई में आप कार्बेंडाजम नामक फफूंद नाशक से करें, ताकि वो आपको जो ज़मीन से जनित जो रोग हैं उससे आपके पौधों को, आपके बीजों को बचा सकें। 3 से 4 दिनों के अंतराल पर ही आप देखेंगे कि आपके बीजों में अंकुरण होने लगा है। इससे क्या होगा, फिर आपको पुआल हटा देना है। आप 20 से 25 दिनों के बाद आप पौधे को स्थानांतरण कर सकते हैं। इस 20 से 25 दिनों के अंतराल में ही आपको अपने खेत की भी तैयारी कर लेनी है। हमेशा पौधा रोपण आप शाम को करें या तो सुबह सुबह करें। पौधा रोपण के तुरंत बाद आपको इसमें सिंचाई अवश्य करना है। जो दूसरी विधि है नर्सरी स्थापित करने की, वो है हमारी पोट ट्रे, यानी कि प्लग ट्रे में। हमारा प्लग ट्री आता है 90 होल्स का, 30-40 होल्स के भी आते हैं। उसमें आप मिट्टी के बदले कोकोपीट या वर्मिक्यूलाइट नामक मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या हो, इससे पौधों को बस इतना फ़ायदा मिलता है कि इसमें मिट्टी जनित रोग से आपके पौधों की बच जाता है। हम बात करते हैं बीज दर की, तो 300 से 400 ग्राम बीज आपका 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफ़ी होता है, जिसे आप 500 वर्ग मीटर स्क्वायर के नर्सरी में स्थापित कर सकते हैं। हमारी जो दूसरी विधि है वो है कटिंग द्वारा। कटिंग लेते समय में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कटिंग जो ले वो स्वस्थ पौधों से ही आप प्राप्त करें, जिसमें सिर्फ एक से दो फूल आए हों। कटिंग लेने के बाद आप उसे भी नर्सरी में लगा देंगे। 20 से 22 दिनों के बाद आप कटिंग को सुबह या शाम के वक्त उसे खेत में, मुख्य खेत में आप लगा सकते हैं
1: जी। अब हम बात करते हैं पौधे को लगाने के समय और नर्सरी स्थापित करने के समय की, ये कब होना चाहिए?
0: हमारे गेंदे की खेती मैंने आपको बताई थी कि आप साल भर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उसे गर्मियों में भी ले सकते हैं, बरसात में भी ले सकते हैं और सर्दियों में भी ले सकते हैं। गर्मी की फसल प्राप्त करने के लिए आपको नर्सरी फरवरी से मार्च महीने में लगा देना चाहिए और उससे 20 से 25 दिनों के बाद आप उसे मुख्य खेत में पौधों का स्थानांतरण कर सकते हैं। बरसात की फसलों के लिए आपको नर्सरी जून से जुलाई माह में स्थापित करनी है और ठंड की फसल के लिए बहुत ही उचित समय है, सितंबर से अक्टूबर माह के अंदर माह में आपको नर्सरी स्थापित कर देनी है। इस नर्सरी स्थापित करते जब आप मुख्य खेत में पौधों को स्थानांतरित करेंगे तो आपको जो हमारा डिस्टेंस होता है पौधा से पौधा और रो से रो की जो दूरी होती है उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। जो हमारी जायद की फसलें होंगी यानी कि जो गर्मी वाले फसल होंगे उसमें जो मुख्य खेत के पौधे होंगे उनकी दूरी 45 से 30 सेंटीमीटर के बीच होगी। जो हमारे बरसात वाली होंगी उसमें हमारे पौधों और दूरी होगी 60 × 45 सेंटीमीटर की, और जो हमारी ठंडे की फसल होगी उसमें हमारी दूरी होगी 45 × 50 सेंटीमीटर की
1: जी। और फसल की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए इस समय?
0: फसल की देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको ये बताती है कि आपको पैदावार कितना मिलना है। तो इसके लिए आपको पहला है कि पहले 30 दिनों में, मतलब पहले स्थानांतरित करने के बाद मुख्य खेत में 30 दिनों तक हमारे खेत में खरपतवार ना आए, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, जिसके लिए आप एक से दो बार निराई गुड़ाई अवश्य करवाएं। इसके बाद आप निराई गुड़ाई कराते समय में पौधों पर मिट्टी भी चढ़ा दें ताकि पौधों को झुकने से बचाया जा सके। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो आपको गेंदे की खेती में ध्यान देनी है वो है पिंचिंग की तकनीक। पिंचिंग के लिए आपने क्या करना है कि रोपाई से 30 से 40 दिनों के अंदर आपको पौधे की जो मुख्य शाखाएं होती हैं उनके कलियों को और उनकी शाखाओं को तोड़ देना है। इससे आपको भले ही फूल आने में समय लगेगा लेकिन उपज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको किसान भाई अगर ज़्यादा पैदावार लेनी है तो इस तकनीक को ज़रूर से ज़रूर अपनाएं
1: जी। हम बात करते हैं अब रोग की, तो कौन कौन से रोग और कीट लग सकते हैं, उनका निवारण कैसे करेंगे किसान भाई?
0: किसान भाई आप जान लें कि गेंदा एक बहुत ही आराम से होने वाला फसल है। आप इसकी खेती बेझिझक कर सकते हैं क्योंकि इसमें ना कीट बहुत ज़्यादा लगेगा ना रोग बहुत ज़्यादा लगता है, इससे आपको बहुत परेशानियाँ नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एक दो बीमारियाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे कि इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है एक रेड स्पाइडर माइट करके रहता है, मक्खी के जैसा जाला बनाता है वो पौधों में, तो पौधों में जाले जैसा बनाने लगेगा, आपको वो दिखाई देने लगेगा। तो अगर वो ज़्यादा दिनों तक आप छोड़ देंगे, अगर इसका प्रकोप ज़्यादा रहेगा तो इसमें पत्तियाँ जो होती है वो धुलधरी दिखाई देने लगती है। इसीलिए किसान भाई आप ऐसा करें कि इसकी रोकथाम के लिए जब आपको जैसे ही जाला दिखाई देने लगे उसी दौरान आप मेलाथियन या रोगेट नामक कीटनाशक का 2 से 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर दें। 1 से 2 छिड़काव के भीतर ही आप नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा जो अभी का समय है हमारा सितंबर से अक्टूबर का महीना, इस महीने में आपको सफ़ेद मक्खी नामक कीट दिखाई देगी। यह पत्तियों का रस चूसती है जिससे पत्तियों में ऐंठन सी हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए भी आपको मेलाथियन या रोगर नामक कीटनाशक 2 से 3 ml पानी में मिलाकर छिड़काव कर दीजिए। बात करते हैं रोग की, तो रोग में हमें एक झुलसा रोग जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेरिया यानी झुलसा रोग, ये ज़्यादातर गेंदे की फसल में पाया जाता है। इसमें पत्तियाँ काली पड़ जाती हैं लेकिन अगर आप इसका समय पर इलाज नहीं करेंगे तो पूरे पौधे जो है वो काले पड़ जाते हैं। इसके रोकथाम के लिए डायंथम 45 करके एक आपको दवा मिलेगा जिसे आप 2 से 3 ग्राम ये आपको पाउडर के फॉर्म में मिलता है, तो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके पौधों पे छिड़काव कर सकते हैं।
1: अब अंत में जो हम जो फूल हमारा आ गया है, तो अब इसकी तुड़ाई कब करेंगे, कैसे करेंगे और उपज कितनी मिल?
0: हाँ जी किसान भाई, आपको जब आपके फूल आपको 30 से 45 दिनों में, क्योंकि आपने इसमें पिंचिंग नामक विधि अपनाई है, इस वजह से आपको थोड़ा फूल आने में टाइम समय लगेगा, 50 दिनों के भीतर आपको फूल मिलने लगेंगे इसमें। तो फूलों की जब तुड़ाई करते हैं, आप अपने मार्केट बाज़ार के अनुसार आप फूलों की तुड़ाई कर सकते हैं, बाज़ार में जैसी भी उपलब्धता आपको दिखाई दे, बड़े फूल छोटे फूल, उस हिसाब से आप फूलों की तुड़ाई कर सकते हैं। आपको फूलों की तुड़ाई के समय में ये ध्यान देना है कि इसकी तुड़ाई आप सुबह में करें या तो शाम में करें। अगर तुड़ाई आप सुबह कर रहे हैं तो आप इसे आराम से मंडी ले जा सकते हैं, अगर आप शाम में तुड़ाई कर रहे हैं तो आपको इसे मंडी ले जाने के लिए कुछ समय रखना पड़ेगा। तुड़ाई के उपरांत फूलों को ताज़ा बनाए रखने के लिए उन्हें गठरी में कभी भी ना रखें, बांध कर ना रखें, उन्हें हमेशा आप टोकरियों में ही रखें और किसी भी ठंडी जगह पर रख दें, इससे फूलों की ताजगी आपकी बरकरार रहेगी और आपको अच्छा भाव मार्केट में बाज़ार में प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं उपज की, तो आप गेंदे की खेती जब कर रहे हैं, अगर आप इस प्रकार से सारी वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हुए अगर आप खेती कर रहे हैं, तो आपको 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसमें लाभ कमा सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, अगर आप गेंदे की खेती कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े स्तर पर, तो खेती के लिए आपको यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आपकी खेती में ज़रूर लाभदायक होंगे आपके लिए, और जो भी बातें यहाँ पर कही गई हैं आप उन्हें ज़रूर अपनाएं और गेंदे की खेती आप अच्छे तरीके से करें। आज के लिए इतना ही, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
2: 90.8 क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत
1: कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। किसान भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रमुख दलहनी फसल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं राजमा के बारे में। राजमा की खेती कैसे की जाती है, इसकी विधि क्या है, सब कुछ जानेंगे हम। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए हैं डॉक्टर दिव्या महतो। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: थैंक यू उमा।
1: मैम, सबसे पहला सवाल और बहुत ही बेसिक सा सवाल कि राजमा क्या है और इसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल क्यों माना जाता है?
12: जी, राजमा देखिए एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जिसकी उपज क्षमता चना और मटर से अधिक होती है। यह पोषण और समृद्ध स्रोत होता है और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर यह विशेष रूप से लोकप्रिय दलहनी फसल है। इसके सूखे दाने दाल के रूप में तथा हरी फलियां सब्जियों के रूप में बहुत उपयोगी होती हैं और आजकल तो मतलब ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है।
1: तो मैम, राजमा के कुछ पोषण मूल्य भी हैं और इनकी उपयोगिता के बारे में भी बता दीजिए।
12: राजमा केवल स्वादिष्ट भोजन ही नहीं बल्कि पोषण से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक फसल है। इसमें लगभग 23% प्रोटीन और 60% कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन का स्रोत होता है। और अगर बात करें इसके 100 ग्राम दानों की तो इसके 100 ग्राम दानों में लगभग आपको 260 मिलीग्राम कैल्शियम, 410 मिलीग्राम फॉस्फोरस और लगभग 6 मिलीग्राम आयरन भी प्राप्त होता है जो शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में बड़ा उपयोगी है। और स्वास्थ्य की दृष्टि में जैसे राजमा हृदय रोग, कब्ज, ब्लड शुगर, एनीमिया जैसी समस्याओं में बहुत लाभकारी है। और भारतीय खान पान में तो खासकर उत्तर भारत में राजमा चावल बड़ा लोकप्रिय व्यंजन माना जाता है और साथ ही साथ इसे दालों, सब्जियों और अन्य जो है अनाजों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है।
1: मैम, राजमा के कृषि और आर्थिक महत्व के बारे में भी कुछ बता दीजिए।
12: जी, अब कृषि की महत्ता की बात करें तो राजमा कम लागत में अच्छी कीमत देने वाला एक लाभकारी फसल है। इसे फसल चक्र में शामिल करने में भूमि की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इसे पहाड़ी, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इसे मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसे मक्का के साथ जो है अंतर फसल के रूप में लगाया जाता है जिसमें कि एक पंक्ति मक्का और दो पंक्ति राजमा की तरह बुआई की जाती है जबकि मैदानी क्षेत्रों में इसे आलू और सरसों की कटाई के बाद वसंत ऋतु में बोया जाता है। और अगर आर्थिक महत्ता की बात करें तो राजमा किसानों को कम निवेश में अधिक लाभ देती है और पोषण, कृषि तथा सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा भी है राजमा। और अगेती आलू के साथ इसे 2:2 या 2:3 के रूप में अंतर फसल के रूप में ये लगाया जाता है।
1: तो अब ये भी हम जानना चाहेंगे कि राजमा की खेती कैसे होती है और उसके लिए कौन कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, कौन कौन सी मृदा उपयुक्त होती है?
12: जी, राजमा ठंडे और शुष्क मौसम में अच्छी तरह उगती है। इसके लिए आदर्श जो तापमान होना चाहिए वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जबकि इसके अंकुरण के लिए जो तापमान होना चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये इसके लिए जो है फसल पाला या जल जमाव या अत्यधिक गर्मी में जो ये फसल है बहुत संवेदनशील है तो इसका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी की बात करें तो राजमा बलुई, दोमट से लेकर के चिकनी मिट्टी में उगाई जा सकती है लेकिन अच्छी जल निकासी वाली अगर दोमट मिट्टी है तो इसका जो है बहुत अच्छी इसकी खेती होती है उस तरह की मिट्टी में।
1: मैम, हमने जलवायु के बारे में जान लिया, मिट्टी के बारे में जान लिया, अब ये जानना चाहेंगे कि बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है और इसके लिए बीज दर कितना रखना चाहिए?
12: देखिए राजमा को जैसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि राजमा को मोस्टली इसको पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसे खरीफ के मौसम में लगाते हैं और उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे रबी के मौसम में लगाया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई जो करते हैं वो जून के अंत से जुलाई के पहले सप्ताह तक होती है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी जो बुआई का समय है वो है अक्टूबर के अंत से नवंबर के पहले सप्ताह तक, इसका जो सही समय है। और बुआई के लिए आदर्श जो तापमान है वो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो बीज दर है वो लगभग 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। और बुआई से पहले जैसे हम जानते हैं बीजोपचार ज़रूर करें और बीजोपचार के लिए हम कार्बेंडाजिम थेरम जैसे फफूंदनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अंकुरण बहुत बेहतर होता है और बीज की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता भी है वो बढ़ जाती है। और बीज को मतलब राजमा के बीज को हल्की नमी देकर ही बोने से उपज बहुत अच्छी मिलती है, तो हल्की नमी होनी चाहिए बीज में।
13: तो मैम राजमा की बुआई किस विधि से की जाती है?
12: जी राजमा के बीज देखिए कठोर होते हैं, इसलिए खेत की जो है अच्छी जो तैयारी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और खरीफ की फसल की कटाई के बाद खेत की जुताई 2 से 3 बार कर पाटा चलाकर भूमि को समतल करें। और रबी में जो है इसमें जो पंक्ति से पंक्ति दूरी होती है वो होना चाहिए 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रबी मौसम में वो होना चाहिए 10 सेंटीमीटर उत्तरी पूर्वी राज्यों में। जैसे मैंने पहले ही कहा इसकी जो खेती है हमारे यहाँ रबी में होती है या उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसकी खेती रबी में होती है, तो वहाँ पर आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। और बीज की जो गहराई होनी चाहिए वो 6 से 8 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं।
13: मैम अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजमा में उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जाता है?
12: राजमा एक दलहनी फसल है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं उमा कि दलहनी फसल में एक प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, लेकिन राजमा उस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें उसमें उर्वरक देने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो प्रति हेक्टेयर उसके लिए हम 15 से 20 टन सड़ी गोबर की खाद डालें जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता बढ़ती है। और इसके साथ साथ 100 से 125 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश दें। और नाइट्रोजन को जो है वो आधी मात्रा उसको बुआई के समय दें और बाकी जो है उसकी मात्रा सिंचाई के बाद देनी चाहिए। और अगर मिट्टी में जो है जिंक की कमी है तो फिर जिंक या सल्फर की कमी है तो बुआई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम सल्फर डालना बहुत लाभकारी होता है।
13: मैम अब सिंचाई की बात करते हैं, तो मैम राजमा में सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाता है?
12: जी राजमा अर्ध शुष्क फसल है, इसलिए अधिक पानी की ज़रूरत तो नहीं होती है इसमें। अच्छी उपज के लिए 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त है और पहली सिंचाई बुआई से पहले करें ताकि कठोर जो बीज है वो अंकुरण उनका अच्छा हो सके। और इसके बाद इसकी जो सिंचाई है यानी बुआई से 25वें दिन पे करें, फिर दूसरी जो इसकी सिंचाई है वो बुआई के 50वें दिन पे और आखिर में बुआई के 60वें दिन पर इसकी सिंचाई करें। और ये ध्यान ज़रूर रखें कि अधिक सिंचाई से जड़ सड़ भी सकती है, तो उसके लिए जो पानी का जमाव है वो ना होने दें, खेत जो है समतल रखें और पानी का जमाव जो है ना होने दें।
13: मैम राजमा में निकाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है?
12: जी राजमा में जो है खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, इसमें जो प्रमुखतः जो खरपतवार जो होते हैं वो होते हैं मोथा, बथुआ, दूब घास और कनकवा होता है मोस्टली। और इसके लिए जो है रासायनिक प्रबंधन हम रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए जो है बुआई के बाद और अंकुरण से पहले आप पेंडीमेथिलिन का छिड़काव कर सकते हैं और कम से कम दो बार निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली जो निराई गुड़ाई होती है वो होती है 25 से 30 दिन पर और दूसरी जो निराई गुड़ाई होती है वो 45 से 50वें दिन पे होती है। और इसमें जो है जो पौधा है उसको जो है हल्की मिट्टी से चढ़ा दे ताकि फलियों का जो फलियों को सहारा मिल सके।
13: मैम अब एक और ज़रूरी बात जो किसान भाई बहनों के मन में आ रही होगी कि राजमा की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं?
12: जी राजमा की जो उन्नत किस्में जो भारत में जो प्रचलित हैं वो हैं PDR-14 जिसे हम उदय के नाम से भी जानते हैं, मालवीय 137 या VL-63 या VL राजमा 125, अंबर, उत्कर्ष, वरुण, मालवीय 15 और स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल आदि के नाम से। लेकिन राजमा में जो प्रचलित किस्में हैं वो जैसे हैं अंबर जिसकी जो बुआई है वो 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होती है और इसकी जो पकने की अवधि होती है वो 120 से 125 दिन तक। और औसत जो इसमें उपज मिलती है अंबर में वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसके जो दाने होते हैं वो लाल चित्तीदार होते हैं। और इसके बाद जो प्रभेद आता है वो है प्रचलित प्रभेद आता है वो है उत्कर्ष, उसकी जो बुआई का समय है वो है 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक और पकने की जो इसकी अवधि होती है वो है 130 से 135 दिन तक और इसकी जो उपज क्षमता है वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और दाने इसके गहरे चित्तीदार होते हैं। और इसी क्रम में जो है तीसरी जो प्रभेद आता है वो है PDR-14 उदय के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो बुआई का सही समय है वो 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक और पकने की अवधि इसकी 115 से 125 दिन और तक होती है और इसकी जो उपज क्षमता है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इसके भी दाने जो है लाल चित्तीदार होते हैं। और आखिर में जो सबसे प्रचलित किस्म है वो है मालवीय 15 जिसकी बुआई का समय 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होता है और इसकी पकने की अवधि 110 से 115 दिन तक होती है और उपज जो क्षमता है वो इसकी 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इसके जो दाने होते हैं वो उजले रंग के होते हैं।
13: मैम अब रोगों के बारे में बात कर लेते हैं, राजमा में प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं और कीट कौन कौन से लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
12: राजमा में कई रोग और कीट लगते हैं जिसमें समय पर प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट जो कॉमन जो रोग लगते हैं वो हैं जैसे एंथ्रोक्नोज और पत्ती धब्बा रोग। इसके लिए सबसे पहले तो रोग मुक्त बीज बोएं और बीज उपचार ज़रूर करें और इस रोग के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। और दूसरा जो आता है वो है जड़ सड़न की दिक्कत आती है, उसके लिए खेत में पानी का जमाव कभी ना होने दें, बीजोपचार ज़रूर करें और फसल चक्र का जो है इस्तेमाल उस फसल चक्र को अपनाएं। और फिर आता है पीली मोज़ेक रोग, ये सफ़ेद मक्खी से ही जो है फैलता है तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना बड़ा ज़रूरी है इसमें। और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं और अगर पौधा रोगग्रस्त हो चुका है तो उसको तुरंत जो है नष्ट करें उस पौधे को। और जो प्रमुख कीट इसमें लगते हैं वो हैं फली छेदक इल्ली और इसके लिए जो हम प्रबंधन कर सकते हैं वो हम स्पाइनोसेड से इसका जो है छिड़काव करें। ये स्पाइनोसेड एक जैविक कीटनाशी है और इसका जो है छिड़काव हम इमीमा टिन बेंजोएट से भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे जो दूसरे कीट जैसे माहू भी लगते हैं, उसके लिए आप नीम का तेल या इमिडा क्लोप्रिड से जो है इसका प्रयोग करके जो है नियंत्रण कर सकते हैं। और सफ़ेद मक्खी के लिए भी जैसा हमने पहले बताया, इमिडा क्लोप्रिड का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है।
13: मैम अब एक और सवाल कि राजमा की कटाई कैसे करें, कटाई कब करनी चाहिए और भंडारण कैसे किया जाता है?
12: जी, राजमा की फसल देखिए लगभग 120 से 130 दिन में तैयार होती है। जब फलियां पीली होकर सूख जाएं और बीज जो है खड़खड़ाने लगे तभी कटाई करें, और जो है पौधों को जड़ से काटकर 3 से 4 दिन धूप में सुखाएं, पर अधिक देर तक धूप में ना रखें ताकि फलियां ना फटे। बीज की जो नमी होनी चाहिए वो लगभग 9 से 10% होनी चाहिए, और तभी उसको हाथ या मशीन से अलग करें। और ध्यान रखें कि दाने टूटने ना पाए, और यदि नमी अधिक हो तो दानों को फिर से सुखा सकते हैं और सुखाकर उसे ठंडी और नमी रहित जगह पर बंद बोरियों में सुरक्षित रखें।
13: मैम एक और बहुत ज़रूरी सवाल कि राजमा की खेती से किसानों को कितनी आय प्राप्त हो सकती है?
12: राजमा की खेती से किसानों को अच्छी आय मिलती है। समतल क्षेत्रों में सिंचित अवस्था में इसकी जो उपज है वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें मिल सकती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती में इसकी जो उपज है वो 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे मिल सकती है। और इसके साथ साथ पशुओं को भी जो है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भूसा प्राप्त होता है। सही प्रबंधन अगर किसान करें तो लगभग इसमें 1 से 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक शुद्ध लाभ मिल सकता है।
13: तो मैम जिस तरीके से राजमा की खेती से किसान भाई बहनों को आय मिल सकती है, तो उम्मीद है कि बिहार में भी और बड़े पैमाने पर राजमा की खेती होगी। आपने बहुत उपयोगी बातें बताई मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
12: धन्यवाद उमा।
13: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात कि अपना और अपनी फसल का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि
4: के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
14: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
14: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
14: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
4: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
14: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
14: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
15: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
14: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार। मां महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
1: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
1: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
2: जी,
1: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
2: जी।
1: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
1: जी।
2: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
1: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
1: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: जी, तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
2: जी,
1: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओं, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
1: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
2: जी, तो अजीत जी अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय क्रेडिट विक्रम रामजी खानुलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
1: जी हाँ श्रोताओं, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
2: जी,
1: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
2: जी,
1: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
2: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
1: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
2: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
1: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो या भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
2: और इसे प्रदान कौन करता है?
1: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
2: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन।
1: जय हिंद। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो आप सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
3: किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
4: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
3: भालू ने कहा,
5: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
3: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
5: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
3: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया, जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
5: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
3: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: क्या करेगी इनका तू? हा?
2: क्या करूंगी? गमकुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है?
1: ओह,
2: तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।

0: उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटे तो बर्बाद हो।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, बेटी तू बसंती, उदास मत हो, उदास ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को

0: जब भी बड़े सवाल सालते वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: बड़ा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों, क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ?
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ?
1: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाक के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाक के जंगल से?
2: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी और आज अब तक में उसके प्राण है। बेटा तू कौन है, कहां से आई है?
1: अब आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
0: चलो चलो
3: चलो। हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
4: इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
1: अर्शद,
2: चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
7: कौन सी कहानी टीकी?
6: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
8: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
6: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
7: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
6: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
10: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
11: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
10: और लाइट बिल के,
11: अब 0 रुपए कैसे दूं?
10: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
12: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
14: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
15: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
14: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
16: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
14: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
17: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
14: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
18: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
14: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

उन भरे कुछ पल बिताएं 90.8 एफएम गेन के संग। हरिया कुछ पल बिताएं 90.8 एफएम गेन के संग। हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो

0: हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान न देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा बैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 65 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आघात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इसमें हम मिट्टी की बात करते हैं, स्वस्थ मिट्टी की बात करते हैं। और मिट्टी को स्वस्थ बनाने में बहुत जरूरी होता है कि हम मिट्टी के मानचित्र को समझें। तो मिट्टी का मानचित्र क्या है, यानी कि मृदा मानचित्रण क्या है, आइए इस बारे में जानते हैं एक विशेष वार्ता में। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण का की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन पीएच, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है, तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस तकनीक इत्यादि का यूज करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी ये चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के ज़माने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जमीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात

0: कराओ नहीं डायरेक्ट टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: ഉന്നത് കൃഷി. नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 एफएम ग्रीन पर. जी हाँ, आज फिर से एक बार मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें होंगी कुछ उन्नत बातें खेती से जुड़ी. तो आज भी बहुत ही खास विषय हम लेकर आ चुके हैं और आज का हमारा विषय है खेसारी की उन्नत खेती. और हमारे साथ हैं यहाँ पर हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सी के पांडा जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. तो सबसे पहले आइए जानते हैं खेसारी की फसल के बारे में. तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये बहुत ही कठोर फसल है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे कि अत्यधिक नमी हो, जल जमाव हो, सुखाड़ हो, इसमें सहने की क्षमता होती है. तो आज इसकी खेती के बारे में जानेंगे हम, और डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवाल भी करेंगे और उसके जवाब भी जानेंगे. तो सबसे पहले अगर खेती की बात आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बताएं कि हमें खेत की तैयारी, यानी खेसारी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए.
1: नमस्कार किसान बंधु, और मैडम नमस्कार आपको भी. तो इसके बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा इस फसल के बारे में आपके साथ बात कर लेता हूँ.
0: जी जी.
1: देखिए, आप जैसे बताया ना, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, तो सूखाड़ में, बाढ़ में एक फसल है जो सरवाइव कर जाता है.
0: जी.
1: और ये जो फसल है ना, ये बहुत दिन से हमारा देश नहीं, सिर्फ इंडिया, मतलब भारतवर्ष, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस प्रदेश, ये सब देश में भी इसका आबादी होता है. ये छोड़ के भी साउथ अफ्रीका का कुछ देश में और भी देश में इस फसल की आबादी होता है. ये फसल का एक हम फलीदार फसल भी बोलते हैं, इसको लिगुमिनस फसल भी हम लोग बोलते हैं.
0: जी.
1: ये लिगुमिनस फसल होने के कारण ये मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक होता है. कैसे?
0: जी.
1: ना, मिट्टी में इस फसल के आबादी के कारण हर हेक्टर में, प्रति हेक्टर में 37 kg से 40 kg के आसपास नाइट्रोजन जुड़ जाता है.
0: अच्छा.
1: तो जब सबसे बड़ा अभी के ज़माने में मिट्टी के स्वास्थ्य बचाने के लिए इस फसल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है.
0: जी जी.
1: और इसका जो डाल है, इस डाल में 31% के आसपास प्रोटीन रहता है, 41% के आसपास कार्बोहाइड्रेट रहता है, 17% के आसपास डाइटरी फाइबर रहता है.
0: अच्छा.
1: तो आप देख रहे हैं इसमें प्रोटीन काफ़ी है, 31% मतलब काफ़ी है. और इसको पोर मैन पाल्स भी बोला जाता है. क्यों? ये ऐसा एक फसल है, कोई भी जगह पर आप इसको बुआई कर दीजिए, क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल रह जाएगा तो मिट्टी के साथ इसका जुड़ जाएगा, तो इसका बस जर्मिनेट कर जाएगा तो ये क्रॉप स्टैंड कर जाएगा.

0: जाता है। और पहले आप जो बताया है, जो क्वेश्चन पूछे थे, जो इस फसल की आबादी करने के लिए लैंड प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, देखिए खेती कैसे करना चाहिए। देखिए, इस फसल को दो तरह से आबादी किया जाता है। एक है पैरा व यूटेरा क्रॉपिंग कहते हैं,
1: अच्छा।
0: दूसरा होता है डायरेक्ट।
1: अच्छा,
0: मेनली इस क्रॉप को पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग में कल्टीवेशन किया जाता है। पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग मतलब हुआ क्या, एक्चुअली ये जो धान का जो जमीन में इस फसल को खेसारी का जो बीज है उसको बुआई दिया जाता है। कैसे ना, धान का फसल कटने की 10 से 15 दिन पहले खेसारी का जो सीड है व बीज जो हम कहते हैं उसको छिटका दिया जाता है। तो छिटकाने से पहले क्या देखा जाता है, नमी व मॉइस्चर लेवल मिट्टी में ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक ठाक होना चाहिए मतलब जो उसका मतलब इतना मॉइस्चर रहना चाहिए जो बीज जर्मिनेट किया जाए
1: जी।
0: तो इसी को कहते हैं यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और ज्यादा से ज्यादा यही फॉलो किया जाता है। क्यों, देखिए इस फसल जहां पर यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग में आबादी किया जाता है, धान के बाद दूसरा कुछ फसल नहीं लिया जाता है। तो एक फसल ऐसा एक फसल है, ज्यादा दिन का भी नहीं है, 115-120 दिन के अंदर भी उसका मैच्योरिटी भी हो जाता है, आ जाता है। एक का बात है, शुरू किया जाता है इसका आबादी दिवाली के बाद, मतलब सोइंग का टाइम शुरू होता है दिवाली के बाद और होली से पहले इसका बाद होली के आसपास इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है।
1: अच्छा।
0: और बाकी रह गया डायरेक्ट सोइंग के बाद। तो डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है, तो डायरेक्ट सोइंग के लिए आपको जमीन को तैयारी करना पड़ता है। इसका मतलब मान लिया पहले आपका फसल धान था, तो धान हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके बाद मिट्टी का नमी के आधार पर एक से दो बार उसको जमीन को प्लाइंग करना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: तो उसके बाद बीज को मॉइस्चर व नमी जैसे रहेगा उसके आधार पर उसको सोइंग किया जाता है। सोइंग करने के बाद वो जर्मिनेट कर जाता है, बस यही है। तो मैडम उसके बारे में थोड़ा सोइंग टाइम के बारे में और एक बार रिपीट कर देता हूँ। मतलब आप टाइम के आधार पर बताए थे अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके नवंबर का सेकेंड वीक तक इसका सोइंग किया जाता है।
1: अच्छा।
0: बीज को सोइंग किया जाता है, बोई किया जाता है।
1: अच्छा।
0: और इसका फसल हार्वेस्टिंग का टाइम होता है आप मान लिए मार्च का एंड के आसपास,
1: मतलब होली के आसपास।
0: हाँ, होली के आसपास उसका हार्वेस्टिंग किया जाता
1: किया
0: है,
1: जा सकता है यानि।
0: और इसके बाद आप पूछ रहे इसका उन्नत प्रभेद के बारे में, यही बात है ना। देखिए इसका उन्नत प्रभेद बहुत इम्पोर्टेंट इशू होता है, लेकिन दूसरे क्रॉप से थोड़ा इसका इशू कुछ अलग है। क्यों, आप सब लोगों को पता है एक समय इस क्रॉप को बैन किया गया था
1: जी।
0: तो उसका कारण भी था, इस क्रॉप में एक केमिकल रहता है जो न्यूरोटॉक्सिन के केमिकल है जिसको बीटा ऑक्साइल डाई एमाइनो प्रोपाइनिंग एसिड कहते हैं। तो साइंटिफिक आधार पर नहीं जा सकते हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं। तो एक केमिकल रहता है जिसके कारण लेथाइरिज्म होता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन किए थे और रिसर्च भी चल रहा था, रिसर्च के आधार पर कुछ वैरायटी व प्रभेद निकल के आया है। जैसे आपका इनिशियल फेज में आया था निर्मल करके एक वैरायटी व प्रभेद, इसके बाद आया है प्रतीक, प्रतीक है, रतन है, महातेवड़ा है, इस प्रभेद है। इस प्रभेद सबका खूबियत व स्पेशलिटी यही हुआ, इसमें जो केमिकल बारे में अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया उसका अमाउंट बहुत कम रहता है, 0.1 से नीचे रहता है। और ये रिकमेंडेशन है लेथाइरस का कोई भी प्रभेद जिसमें ओडा व कोई कोई बुआ भी इसको कहते हैं उसका परसेंटेज 0.1 से कम होना चाहिए। और मैं जो चार प्रभेद के बारे में आप लोगों को अभी अभी बताया इस सब में 0.1 से कम है, तो इसके आप आराम से इसको कल्टीवेशन कर सकते हैं।
1: तो सर यहाँ पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीज दर की, और उसके बारे में बताएं, और जो दूरी है बोने की दूरी क्या होनी चाहिए, बीज दर क्या होनी चाहिए वो बताएं।
0: अच्छा, देखिए इसका हम पहले ही बताया हूँ इसको दो तरह से स्विंग कल्टीवेशन किया जाता है, एक पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग, दूसरा है डायरेक्ट स्विंग किया जाता है।
1: अच्छा।
0: तो पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग में हम लोग उसको ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, मतलब छिटका देते हैं। तो छिटका के कारण थोड़ा ज्यादा सीड का जरूरत होता है। इसमें 70 से 80 केजी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 70 से 80 केजी पर हेक्टर सीड को यूटेरा क्रॉपिंग बा पैरा क्रॉपिंग आप ब्रॉडकास्टिंग भी बोल सकते हैं इसमें कर सकते हैं आप लोग। और लाइन सोइंग के आधार पर आएंगे तो अर्थात अब ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में करना चाहेंगे तो तब उसका सीड रेट होता है 40-60 केजी पर हेक्टर। और इसमें लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर के आसपास और प्लान टू प्लान 10 सेंटीमीटर के आसपास इस डिस्टेंस को इसमें मेंटेन किया जाता है।
1: जी, फिर जो है बीज उपचार की बात करते हैं, जब बीजों को कुछ रोगों से बचाना हो तो फिर क्या करना है?
0: हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज उपचार बहुत जरूरी है, जिसको बीज को टीकाकरण भी हम लोग कहते हैं। तो क्योंकि बीज उपचार कर लेंगे तो इन फ्यूचर में बहुत रोग से हम फसल को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए, बीज उपचार के लिए मोनली किसान भाई सबको पता ही है कार्बेंडाजिन वो लोग यूज करते हैं 2.0 ग्राम पर केजी। तो वो सीड सोइंग के एक दिन पहले कर लेना चाहिए। और इसमें बायोफर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन किया जाता है। बायोफर्टिलाइजर को एप्लीकेशन इसीलिए किया जाता है, देखिए जो राइजोबियम जो कल्चर होता है, राइजोबियम कल्चर को सीड के साथ मिक्सिंग करने से क्या फायदा होता है ना, ये नोड्यूल जो फॉर्मेशन जो गांठ होता है खेसारी का सिकड़ जड़ सिकड़ में रूट में जो जड़ होता है उसमें क्या होता है ना, वो कुछ नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उस नोड्यूल में राइजोबियम रहता है और राइजोबियम कल्चर आप देंगे तो नेचुरली उसका नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा, और नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा। तो इसलिए घुमा के हम बोल सकते हैं फसल के अपने लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है और फ्यूचर जो क्रॉप है उसके लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है।
1: अच्छा, तो ये बात हो गई बीजोपचार की। और उर्वरक और खाद की बात करते हैं, जब खेती होता है तो उस समय उर्वरक और खाद बहुत ज़रूरी होते हैं डॉक्टर साहब, उसके बारे में बताएं कि कौन से उर्वरक और कौन से खाद देनी चाहिए इन्हें।
0: देखिए, ऐसे जो ऐसे एक फसल है जब पैराक्रॉपिंग बा यूटेराक्रॉपिंग में इस फसल को आबादी किया जाता है तब तो किसान लोग उसको डायरेक्टली फर्टिलाइजर देने के बाद उर्वरक देने के लिए स्कोप नहीं रहता है। क्यों, मैंने पहले ही बताया जो धान का हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले उसको सीड को सोइंग किया जाता है तो उसमें तो आपका उर्वरक देने का कोई जगह ही नहीं रही है। तो मतलब धान में जो उर्वरक दिया गया था, फर्टिलाइजर व मैन्योर जो दिया गया था उसी का रेसिडुअल जो है उसी को यूज किया जाता है। और डायरेक्ट सोइंग में हुआ तो उसके आधार पर 100 केजी डीएपी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 100 केजी डीएपी पर हेक्टर इसको दिया जाता है। तो इसमें फसल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल जाता है, इसी में काफ़ी काम हो जाता है। और एक इशू होता है इसके, जैसे मान लिया फर्टिलाइजर को स्प्रे भी करते हैं।
1: अच्छा।
0: फर्टिलाइजर स्प्रे करने का क्या जरूरत पड़ जाता है, मान लिया आपका पॉट फ्लावरिंग हो गया, पॉट फॉर्मेशन का आसपास टाइम आ रहा है, उस समय यूरिया का स्प्रेइंग भी करते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा पॉट का भी साइज बढ़ भी जाता है और आपका जो यील्ड फलन जो है वो भी बढ़ जाता है।
1: अच्छा, तो फिर इसमें सिंचाई की भी जरूरत होती है या नहीं?
0: देखिए, इस फसल में हम पहले ही बताया ये ज़्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट व क्रॉप है व क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का जरूरत मोरलेस नहीं होता है। तो नमी बहुत कम हो गया तो वो आप थोड़ा सा नमी के नमी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केस में हम लोग देखे हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग देखे हैं जो इसमें सिंचाई देने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसा नमी बहुत घट गया तो आपका पानी देने का बंदोबस्त है तो पानी दीजिए, नहीं तो आपका ये फसल हो जाता है।
1: हाँ, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि क्लाइमेट रेजिलेंट है ये, तो इसलिए ये आराम से बिना सिंचाई के भी हो सकता है।
0: हाँ।
1: तो इसके बाद खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानना चाहेंगे।
0: देखिए, इसको हम लोग खेसारी को और भी एक बात बोलते हैं, ग्रासपी भी बोलते हैं, घास की तरह होता है। ये ऐसा होता है ना, ये खुद ही एक अपने में इतना ग्रोथ होता है इसका ना, उसके आसपास जितना भी वीड वगैरह जो भी रहता है उस खुद को ये कंट्रोल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीड मैनेजमेंट के लिए इतना कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, क्रॉप खुद ही अपने से जो उसके आसपास जो वीड गए उसके ऊपर स्मूदरिंग इफेक्ट हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, उसको कर देते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ किसान का कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है।
1: तो इसके बाद पौधा संरक्षण उपचार के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: देखिए, एक क्रॉप जैसे क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप भी है और उसके साथ ये भी है, इस क्रॉप में कीड़ा बोलिए डिजीज़ का इन्फेस्टेशन बहुत कम होता है। फिर भी हम लोग कुछ कुछ जगह पर देखे हैं इसमें एफिड होता है, एफिड का थोड़ा बहुत अटैक होता है। तो लेकिन एफिड का अटैक होता है तो तब आप उसको औसत दवा देने का जरूरत होता है। तो उसके आधार पर आप डाइमिथोएट 30 से एट द रेट ऑफ 1.7 ml पर लीटर उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक रास्ट होता है, तो उसके आधार पर देखिए एक रास्ट जब दिखाई जाएगा तो तब तो आपको कुछ मेडिसिन देने का जरूरत पड़ता है, लेकिन उससे पहले आप सीड ट्रीटमेंट ठीक से करके रख देंगे तो रास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा मैं बोल सकता हूँ। क्यों, कार्बन डाइजिन देके आप उसको ट्रीटमेंट करके रखे हैं तो सी ट्रीटमेंट किए तो उसमें राष्ट्र का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो किसी कारण पर आ गया तो मैंगो जेब 75W पे एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर पानी के आधार पर अब दीजिए, इसे कंट्रोल हो जाएगा।
1: अच्छा, अब बात आती है अंत में कटाई की, तो हमारे किसान भाइयों को कब समझ जाना चाहिए कि अब इसकी कटाई कर देनी चाहिए और उसका भंडारण कैसे करना चाहिए?
0: अच्छा देखिए, एक भंडारण का कटाई करने के लिए आप क्रॉप फील्ड में मतलब फसल के जमीन में आप लोग रेगुलर विजिट भी करते हैं। पहली बात है पत्ती का जो कालार है, कालार ये हो जाता है ग्रीनिश, जो डीप ग्रीन से धीरे धीरे उसको लाइट होते होते वो जो क्या बोलते हैं ना मैच्योरिटी का जो कालार होता है वो आ ही जाता है। और आप देख पाएंगे पॉट जो होता है उसका पॉट भी सूखा शुरू हो जाता है, मोर और लेस आप देखेंगे पौधा ड्राई हो गया। तब आपने वहां से उसको हार्वेस्टिंग करके लेके आइए और हार्वेस्टर अवेलेबल है। अच्छा। तो हार्वेस्टर में जैसे आप लोग चना का हार्वेस्टर है, उसी हार्वेस्टर लेके आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए, उसका जो क्या बोलते हैं पुआल वगैरह जो भी हो सेपरेट हो जाए, सीड भी अलग हो जाएगा। सबसे बड़ा खूबी क्या है, उसका जो स्ट्रॉ जो बोलते हैं हम लोग पुआल जो बोलते हैं उसका, वो भी फोडर के आधार पर और तत्व गाही जो है बेस के लिए एक खाने का अच्छा एक सोर्स हो सकता है एवं गांव में प्रैक्टिस भी होता है और इसमें मिल्क का परिमाण दूध का परिमाण भी बढ़ जाता है।
1: अच्छा, तो इस तरीके से किसान भाइयों आपने जाना कि खेसारी की फसल की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक सभी बातें यहाँ पर आप सभी को बताई गई, आप सभी को निर्देश दिए गए हैं, तो आशा करती हूँ कि आप इन निर्देशों को अपनाएंगे और खेसारी की फसल जी हाँ ज़रूर करेंगे और उन्नत खेती करके आप एक सफल किसान बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन आरजी अनु के साथ उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके एक कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई ओल्ड फैशन टाइप चीज़ें होंगी, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, उस काम को बीच में छोड़कर या उस काम को ख़त्म करके तो वो वापस खेती की ओर मुड़ रहे हैं और पूरा परिवार मिलकर खेती कर रहा है। कोई तो इसका फ़ायदा होगा या फिर कुछ तो इसमें बात होगी। तो पारिवारिक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। सर आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद उमा जी।
11: सर आपसे पहला सवाल ये है कि पारिवारिक खेती क्या होती है?
12: पारिवारिक खेती एक बहुत पुरानी पद्धति है खेती का, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ आता है खेती करने के लिए। मान लीजिए कि हर जो आप एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 500 सदस्य के पास कुछ ना कुछ होगा जो कि अलग होगा। मान लीजिए कोई युवा है, उसमें वो बहुत अच्छा मार्केट तक पहुंचा सकते हैं सामान को। मान लीजिए सोइंग करना है या फिर उसको लगाना है, उसमें महिलाएं बहुत आगे रहती हैं उसमें। तो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब इंगेज रहते हैं ऐसी खेती में, और ऐसी खेती का बहुत महत्व है क्योंकि पुराने ज़माने में भी हम देखते आए हैं कि ऐसी खेती जब होती थी तो बहुत अच्छा जो हमारा पोषक तत्व जो है हमारे पास, वो हमारे पास कभी हमें बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था। इसका महत्व को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया था पारिवारिक खेती को। तो पूरी दुनिया में अभी देखा जा रहा है कि पारिवारिक खेती एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि अच्छा कृषि का उत्पादन तो हो ही सकता है, इसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी बन सकता है जिसमें कि हम पुरानी प्रजातियाँ या फिर हमारी जो पौष्टिक आहार है वो सब हम ले सकें, एक साथ ले सकें। इसीलिए इसका महत्व आज के ज़माना में तो और भी ज़्यादा है।
11: तो सर बिहार में पारिवारिक खेती की वर्तमान स्थिति कैसे है?
12: बिहार में पारिवारिक खेती का ये अभी इस मोड़ पे है कि अभी बिहार में आप देख जानते होंगे कि बहुत हमारा जो है जितना भी हमारा क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है। अभी सारा जो जितना भी ज़मीन है बहुत कम, एक किसान के पास बहुत कम ज़मीन है बचा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है पारिवारिक खेती करना। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत सारा माइग्रेशन है, जितने भी मेल मेंबर हैं पुरुष हैं परिवार के वो सब चले जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। तो ये सब अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं। एक पहल ये भी है कि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे FPO हैं जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अभी बहुत सारे कृषि उत्पाद में ये सब FPO बने हुए हैं। तो ये FPO में क्या होता है कि मान लीजिए कोई परिवार है जिसके पास बहुत छोटा जोत का खेत है, वो लोग भी FPO के साथ जुड़ के अपना अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, अपने सामान को अच्छे तरह से बेच सकता है, कम लागत में जो भी लागत लगता है कृषि में उसको कम लागत में ले सकता है, क्योंकि FPO के पास एक बार्गेनिंग पावर होता है, उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कम दाम में आपको सामान उपलब्ध करवा पाए। तो बिहार में इसकी अपार संभावनाएँ हैं क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत लोग छोड़ देते हैं खेती और चले जाते हैं दूसरे राज्य, लेकिन वहाँ पर भी मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, उनको अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये अगर पारिवारिक खेती करेंगे तो वो बहुत अच्छा पोषण भी अपने परिवार को दे पाएंगे, इसके साथ साथ वो अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे।
11: सर जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में ये भी सवाल होता है कि पारिवारिक खेती का महत्व क्या है, हम क्यों करें पारिवारिक खेती। हालांकि आपने कुछ महत्व बताए लेकिन और भी क्या महत्व होता है?
12: बिल्कुल, तो पारिवारिक खेती का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है या फिर किसी भी परिवार का लक्ष्य है, तो जो आप अपने परिवार को छोड़ के इतना दूर जा रहे हैं आप वही आमदनी जो है यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर आप, लेकिन इसमें क्या है कि आपको समूह में जुड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कृषक को आप देखेंगे जो कि अकेले खेती कर रहे हैं, वो उनके पास कोई सहायता नहीं है और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, लेकिन अगर वो समूह में जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है, आप अगर महाराष्ट्र राज्य लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे FPO हैं जिसमें कि 5,000-6,000 किसान परिवार जुड़ा हुआ है उससे, और वो लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं। वहाँ के किसान का आप देखेंगे तो सालाना जो आय है वो 5,00,000-8,00,000-6,00,000 पहुंच गया है। तो अगर 5,00,000 किसी को घर पे मिल रहा है, उसके जगह पे मिल रहा है, तो उसमें एक अच्छा इनकम का स्रोत है, उसको बाहर जाने का और सिर्फ छठ या दिवाली में बिहार आने का ये मौका नहीं आना चाहिए।
1: सर, जैसे आप बता रहे थे कि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है पारिवारिक खेती, तो कैसे ये किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद करती है?
12: ये किसान का आय बढ़ाने में इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि आजकल देखते होंगे आप कि लेबर का बहुत शॉर्टेज है, मतलब बहुत कम आपको मिलेंगे लेबर काम करने के लिए खेत पे। तो पारिवारिक खेती अगर आप करते हैं तो सारे आपके परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, सब इसमें एंगेज रहते हैं, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, आप सब कुछ अपने ही परिवार में सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, कोई महिला है, तो जो महिला है वो मान लीजिए उनके पास अच्छा बीज है, वो बीज लगा सकती हैं, वो नर्सरी बेड लगा सकती हैं, वो सोइंग कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं। उसके बाद जो भी मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजर डालना है या फिर कोई भी उर्वरक डालना है, वो कोई जो मेल मेंबर है वो कर सकता है। उसके बाद जो आपकी इरिगेशन है वो कोई संभाल सकता है, मार्केट तक ले जाना कोई और कर सकता है। तो पूरा परिवार जो इसमें इंगेज रहेगा तो अपने को तो अच्छा वो पोषण दे ही पाएगा, और साथ ही साथ जो भी है वो बेचेगा भी सामान, वो भी एक अच्छा गुणवत्ता का होगा, क्योंकि उसको खुद भी खाना है और बेचना भी है। और समूह से अगर वो मिल जाता है तो आप जानते होंगे समूह उसको बहुत फ़ायदा करवा सकता है। अभी बिहार में भी बहुत सारे समूह हैं, आपने सुना होगा बांका जिला हमारा है, वहाँ पे मशरूम के बहुत सारे समूह हैं, उसमें भी बहुत सारे परिवार हैं। या मुंगेर में आप देखेंगे कि मुंगेर में बहुत सारे परिवार हैं जो पारिवारिक खेती के तहत मशरूम का उत्पादन करते हैं, और उससे भी बहुत उनको मुनाफा होता है। तो इस तरह कुछ आप सोच सकते हैं जिसमें कि आपको समूह भी हेल्प करेगा और आपको FPO भी हेल्प करेगा, आपका परिवार का सदस्य भी हेल्प करेगा, तो फिर आप बहुत अच्छी अच्छा आय भी आमदनी भी कर सकते हैं। और जो हमारा अभी जो पर्यावरण का इतना चेंज, इतना सारा मतलब अंतर आ रहा है, उसको भी आप मिटा सकते हैं ऐसा करके।
1: सर, आप लगातार FPO के बारे में बात कर रहे हैं, ये FPO क्या है और ये कैसे मदद करते हैं?
12: हाँ, तो FPO जो है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक समूह है किसानों का। तो FPO जो है आप देखेंगे कि हर जिले में बहुत सारे आजकल FPO आ गए हैं, सरकार का लक्ष्य भी था कि 10,000 FPO खुल जाए और वो हो भी गया है। तो FPO का कोई भी आदमी FPO बना सकता है, FPO एक तरह से कंपनी ही है, उस कंपनी में लेकिन 300 सदस्य होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है FPO बनाने में, किसी को भी किसान को बनाना चाहते हैं FPO, तो वो 300 उनको किसान जुटाना पड़ेगा जो कि खेती करते हैं, सिर्फ कृषक होने चाहिए वो। और अभी नाबार्ड जो है वो मदद भी करती है FPO खोलने के लिए, क्योंकि FPO एक कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ये सब एक खर्चीला प्रक्रिया है, लेकिन नाबार्ड उसमें बहुत अच्छा मदद करती है। इवन उसका जो आपका FPO का जो मालिक होते हैं जिसको CEO बोलते हैं हम, उसकी सैलरी भी नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए, और उसके बाद उससे आप उससे जुड़ के हम अच्छा खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी पा सकते हैं, क्योंकि FPO के पास एक क्षमता होती है जिससे कि वो कम दाम में ले सके सामान, क्योंकि जानते होंगे आप कि FPO के पास 300 सदस्य रहते हैं, 300 सदस्य का अगर जरूरत, अगर उसको लेना है मान लीजिए उर्वरक 300 किसान के लिए, तो उसको सस्ते दाम पे मिल सकता है। मान लीजिए उसको किसी मार्केट में बेचना है, किसी मॉल में बेचना है, तो मॉल ऐसे लोगों से अनुबंध करना चाहेगा जिसके पास ज़्यादा मेंबर है, ताकि उनको हमेशा वो सप्लाई मिल सके। इसीलिए मशरूम में आप देखेंगे तो हमारे भागलपुर ज़िले में इधर बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब में मशरूम का FPO बहुत सारा खुला है, क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा है। अभी होटल में आप जाते हैं तो आपको सालों भर मशरूम का कोई सब्जी या कुछ खाने को मिलता है, एक समय नहीं था ऐसा सुविधा। तो इसीलिए FPO का बहुत सारा संभावनाएं हैं और किसान को अच्छा आय मिल रहा है इससे।
1: सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि FPO के लोग होते हैं उनको सैलरी कुछ महीनों तक,
12: हाँ FPO के लोगों को नहीं, जो FPO के CEO होते हैं, मतलब जो FPO के मालिक होते हैं, CEO मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो उसको संभालते हैं, उसकी सैलरी जो है नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उनको ये चलाने के लिए वो मदद मिल पाए, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मेरे अगर लॉस हो गया तो थोड़ा सा लॉस नाबार्ड की तरफ से कवर कर लिया जाता है, और उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जो है वो भी नाबार्ड ही बियर करती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर कोई FPO खोलना चाहे तो वो भी ये सोच सकते हैं FPO खोलने का।
1: तो सर, सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पारिवारिक खेती को प्रोत्साहित करती है?
12: बिल्कुल, हाँ सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सब्सिडी भी मिलता है सरकार के द्वारा। तो FPO तो एक अच्छी योजना है जिसके तहत आप कंपनी ही खोल सकते हैं, अगर जिस जो मान लीजिए छोटे जोत के किसान हैं, तो उसके लिए मशरूम के ऊपर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार 50% से लेकर 90% तक अनुदान देती है। तो ये सब योजना का भी किसान फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मशरूम यूनिट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, मान लीजिए 1,00,000 रुपया अगर उसका यूनिट का खर्च है, तो अगर 50% सरकार दे देती है तो 50,000 ही आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आप एक शुरू करके देख सकते हैं कि सही में इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सरकार की और भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं सरकार की जो कि मान लीजिए आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी छत पर भी सरकार की योजनाएँ हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को शुरू करना चाहिए कुछ, अगर वो शुरू करेंगे तो उनको लगे एक दिशा दिखेगी और फिर वो वृहद स्केल पे बड़े पैमाने पे उसको कर सकते हैं।
1: सर, पारिवारिक खेती के बारे में इतनी सारी बातें हुई, सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या आती है?
12: इसमें प्रमुख चुनौतियां यही हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अगर कोई नौकरी लग जाती है या फिर उनको लगता है कि कृषि बहुत मेहनत वाला कार्य है तो वो छोड़ देते हैं बीच में, और इस केस में क्या होता है कि वो पूरा जो आपका जितना भी माध्यम है सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए किसान को ये चाहिए कि वो कम से कम 3 साल तक वो देखे कि ये सच में काम करता है या नहीं। अगर वो 3 साल तक करके देखेंगे तो सच में उनको मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, और फिर वो एक कदम ले सकते हैं कि वो इसमें पूरे परिवार को एंगेज कर पाए। और एक चुनौती इसमें ये भी आती है पारिवारिक खेती में कि लोगों को लगता है कि हम बाहर से भी सब कुछ करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, तो अपने परिवार को क्यों एंगेज करें। तो इसका ये हो सकता है कि देखिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारे गांव में लेबर नहीं मिलने लगा है, वहाँ पे अगर छोटे जोत के आप किसान हैं तो आप मशीन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका परिवार आपके साथ रहेगा तो अभी जो युवा हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी बहुत सारी नई नई तकनीक हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिहार जैसे राज्य में। तो आपके जो युवा हैं वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा बहुत अच्छे स्केल पर इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए एक परिवार को साथ आना बहुत ज़रूरी है।
1: मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव भी एक समस्या है।
12: बिल्कुल बिल्कुल, आप अब देखेंगे कि हर परिवार में आजकल जब से कोविड हुआ है उसमें तब उसके बाद से एक चीज़ हुआ है कि हर परिवार में एक स्मार्टफोन तो आ गया है। पहले सबके पास एक फीचर फ़ोन हुआ करता था जो नोकिया का जो पैड वाला कीपैड वाला फ़ोन होता है, अब सबके पास एक परिवार के पास एक स्मार्टफोन तो है लेकिन वो स्मार्टफोन का प्रयोग सही रूप में नहीं हो पा रहा है। जनरली लोग उसको गाना सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कृषि में बहुत संभावनाएं हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं अभी जिसका आप यूज़ करके देख सकते हैं कि सही में आपको खेती में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें आपको जो युवा हैं आपके परिवार में वो जरूर मदद कर सकते हैं। इसलिए एक एक एक चेष्टा करनी चाहिए कि परिवार को एक साथ आके एक बार वो खेती करना शुरू करें तो इसमें ज़रूर मुनाफा होगा।
1: सर, पारिवारिक खेती को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए?
12: पारिवारिक खेती को अगर मजबूत करना है तो फिर आपके पास बहुत सारे इसमें स्रोत हैं। सबसे पहले तो है कि गवर्नमेंट का जो भी सरकार की योजनाएँ होते हैं कम से कम किसी योजना के साथ जुड़िए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आप एक समूह में काम कीजिए, कभी अकेले काम मत कीजिए। आपके किसी और भी किसान होंगे जो मान लीजिए किसी FPO से जुड़े हैं, आप उनके पास जाइए और आप भी जुड़िए। अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो फिर नहीं अच्छा हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि पारिवारिक खेती में आप हमेशा तकनीक से अपना जो दिमाग है हमेशा खुला रखिए कि हम कोई ना कोई तकनीक यूज़ करें। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के पास कितनी सारी नई तकनीकें हैं, हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो ये सब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तकनीक को अपनाइए। जब तक आप नई उन्नत तकनीक नहीं अपनाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है इस कृषि में जो गुजारा कर पाना आजकल 21वीं शताब्दी में। और एक और अच्छी बात है कि अभी किसान के पास उनके पास ये बहुत सारा ज्ञान का भंडार है और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान भी जो है आप पारिवारिक खेती अगर करते हैं तो आप भी एक तरह से साइंटिस्ट हैं, और फिर वो सब अगर आप यूज़ करेंगे, ऐसी कोई पद्धति यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा कृषि बिना फर्टिलाइज़र वाला बिना किसी केमिकल वाला एक अच्छा कृषि कर सकते हैं जो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आगे तक लाभकारी होगा। तो ये सब कुछ बिंदुए हैं।
1: तो सर, अगर आधुनिक तकनीक को भी अपना लिया जाए तो फिर पारिवारिक खेती का भविष्य कैसा हो सकता है?
12: तो पारिवारिक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी बहुत सारे देश आप देखेंगे जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो कि अब वो देख रहे हैं कि कितना जो केमिकल वाले जो भी कृषि हो रहे हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितने सारे बीमारी हैं जो कि केमिकल रसायन यूज़ करने से हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूरा एक परिवार साथ आ रहे हैं और वो लोग इवन वो लोग जिसके पास ज़मीन नहीं भी है वो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और वो एक तरह से कर रहे हैं। तो हमारे भी किसान को ये जागरूक होना है कि हम लोग बाजार पे निर्भर ना रहें, अपना भी ऐसा खेती करें जिसमें कि हम अच्छा उपज ले सकें, जो कि हम खुद भी खाएं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जानते होंगे कितना, अभी 100 साल पहले आप ले लीजिए, जब उतना रसायन का ऐसा नहीं चलन था, उसमें बहुत अच्छी आयु भी अच्छी होती थी, ऐसी कोई बीमारी, इतनी जटिल बीमारी नहीं हुआ करती थी। और उस समय जो वैरायटी था, वो सब वैरायटी भी बहुत अच्छा था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था वो सब वैरायटी, और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन था। तो ये सब अभी अपनाने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेन, पूरे दुनिया में बहुत सारा अराजकता है। अगर परिवार पूरा खेती करेगा तो फिर एक अच्छा आय के साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएगा, जिससे कि परिवार भी समृद्ध हो पाएगा और जो जिसको भी बेच रहा है वो लोग भी उससे जुड़ के अच्छा कर पाएंगे।
1: यानी कि पारिवारिक खेती के बहुत फायदे हैं, और खास तौर से तो ये कि पलायन भी रुक सकता है।
12: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो पारिवारिक खेती अपनाना चाहिए, और खास तौर से आप के घर पे अगर युवा हैं तो उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आपके पारिवारिक खेती में आपका सहयोग दे। बहुत फायदे उनको भी होंगे, इससे आपका भी फायदा होगा और समाज का भी फायदा होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई।
12: धन्यवाद आपको मुझे इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
8: खुद भी बचे देश भी बचाए।
9: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
13: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
12: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन, आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
14: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
12: चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
15: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
12: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
16: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
12: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
17: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
18: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
17: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
18: आपकी सेहत की बातें,
17: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
18: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
17: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
18: वो कहाँ पर?
17: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
18: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
17: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पर गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
0: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं 7004-528-93। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004-528-93। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 65 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
2: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के संग हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आदाब। आज हम आपको आपकी 8वीं जमात की दर्सी किताब अपनी जबान का पहला सबक, जो एक नज्म है, उसको पढ़ाएंगे और उस पर बात करेंगे। बच्चों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर चमन नारा, NCERT नई दिल्ली से। तो ये नज्म जो है माँ का ख्वाब के उन्मान से है। माँ का ख्वाब नज्म जो है ये अल्लामा इकबाल की बहुत सी नज़में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। बहुत बड़े उर्दू के शायर, जिनका तराना हिंदी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये आपने पढ़ी होगी पहले जमात में। इसी तरह लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी। इसी तरह से और नज़में जो उन्होंने पहाड़ और गिलहरी के नाम से लिखी है, मुकालमाती नज़में। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में जो हैं वो लिखी हैं। एक मकड़ा और मक्खी लिखी है, पहाड़ और गिलहरी लिखी है। इसी तरह से और दूसरी नज़में जो हैं वो बच्चों के लिए लिखी हैं। तो आज की जो नज़्म है उसका उनवान है माँ का ख्वाब। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अब इसमें आप ये किस तरह से मैं पढ़ रही हूँ उस पर गौर कीजिएगा, और उसी तरह से आप उसी मौजूनियत के साथ और उसी मुनासिब लबो लहजे के साथ आप इसको पढ़िएगा। माँ का ख्वाब। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इस्तराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी, जमरों से पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवा, खुदा जाने जाना था उनको कहां, इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नजर, वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था, कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहां, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज अशकों के हार, न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी, ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया उसे। अल्लामा इकबाल। देखिए बच्चों, आपने ये नज़्म सुनी, इसमें कुछ लफ्ज़ हैं जो कि मुश्किल लफ्ज़ हैं। पहले हम उसके माने जो हैं वो जान लेते हैं, फिर नज़्म की हम तशरीह करेंगे और उसके मरकज़ी ख्याल को बताएंगे। तो मानी है शब के माने होते हैं रात, इस्तराब के मायने बेचैनी, लरजना कांपना, राह के माने होते हैं रास्ता, स्याही कालापन अंधेरा, दहशत खौफ डर, मुहाल मुश्किल, हौसला हिम्मत, जमरुद सब्ज रंग के कीमती पत्थर का नाम, रवा चलते हुए, जमरुद सी पोशाक हरा लिबास, पिसर बेटा, जमात गिरोह, पेचोताप खाना ये मुहावरा है, दिले दिल में गुस्से से घुटना बेकरार होना। तो बच्चों देखिए, इसमें इस नज़्म में एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है, जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को ऐसी जमात के साथ देखती है जिनके हाथों में जलते हुए धुएं हैं। यानी ख्वाब में वो देखती है कि बहुत सारे बच्चे हैं और वो उनके हाथ में दिए जल रहे हैं, मगर उसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और दूसरे लड़कों के पीछे वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये देख कर बेटे की जुदाई में रोती हुई, क्योंकि उसका बेटा मर चुका है और बेटी की जुदाई में रो रही है, तो बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुँचता है। वो अपने बच्चे से शिकायत करती है कि उसे छोड़कर क्यों चला आया और उसका दिया क्यों बुझा हुआ है। तो वो बच्चा क्या जवाब देता है उसके बारे में हम इस नज़्म में पढ़ते हैं। तो अब इसको हम शुरू से फिर पढ़ते जाते हैं, एक एक शेर और उसके बारे में बताते जाते हैं। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा उससे बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। मैंने मैं एक रात सोई हुई थी कि मैंने ख्वाब देखा, क्योंकि उस माँ का बच्चा मर चुका है, वो रो रही है बच्चे की जुदाई में, गम में वो रोते रोते सो गई है। तो कहती है मैं एक रात सोई, शब के मायने होते राख, तो मैंने ख्वाब देखा और उससे मेरा इज़्तिराब, मेरी बेचैनी और बढ़ गई। ख्वाब को देख के बेचैनी बढ़ गई। ख्वाब में देखिए जो चीज़ें नज़र आती हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, वही चीज़ें हमें ख्वाब में जो है वो नज़र आती हैं। क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत याद कर रही थी, तो उसको अपना बच्चा जो है वो ख्वाब में नज़र आया और उस देख कर उसका जो है ना बेचैनी और बढ़ गई। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, उसने ख्वाब में क्या देखा, ख्वाब बयान कर रही है कि मैं कहीं जा रही हूँ, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, चारों तरफ अंधेरा है, कहीं राह नहीं मिल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, मैं डर के मारे कांप रही थी और अंधेरा था, राह मिल नहीं रही थी, ऐसी सूरत हाल थी। आप भी देखिए बच्चों, जब कभी इस तरह की सूरत हाल होती है, इंसान बहुत डर जाता है, तो एकदम रुआ रुआ जो है ना वो कांपने लगता है, बाल बाल जो है वो कांपने लगता है। कदम का था दहशत से उठना मवाल, मतलब खौफ जदा होके उसका कदम जो था वो दहशत से, खौफ से, डर से जो है वो उसका कदम उठाना मुहाल हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी, उसने कहा फिर मैं कुछ हौसला अपना बरकरार रखा कुछ मैं, और फिर मैं आगे बढ़ी तो देखा कतार, कतार कहते हैं लाइन को, तो एक कतार लड़कों की थी, बहुत सारे लड़के थे लाइन में, उनकी कतार थी। अब वो बता रही है कि जो लड़के थे तो वो क्या पहने हुए थे, तो जमरूद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। जमरूद की पोशाक यानी हरे रंग की पोशाक जो है वो पहने हुए थे, और दिए सबके हाथों में, दिया जो था सबके हाथों में जल रहा था। वो चुपचाप थे, आगे पीछे रवा, आगे पीछे वो चल रहे थे, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ, हाथों में दिए थे और वो चल रहे थे, हरे रंग का लिबास पहन रखा था उन्होंने। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नजर। मैं अभी यही सोच रही थी कि एकदम मुझे मेरा बेटा नजर आया, पिसर के मायने होते हैं बेटे के, मुझे उस जमात में यानी उस ग्रोह में जो बच्चे हैं उसमें उनको अपना बेटा नजर आया। वो पीछे था और तेज चलता ना था, वो पीछे चल रहा था लेकिन तेज तेज नहीं चल रहा था, पीछे था, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। दिया उसके हाथों में जलता ना था, और दिया भी उसके हाथ में जला हुआ दिया नहीं था, बुझा हुआ था उसका। कहा मैंने पहचान कर मेरी जहां, वो पहचान कर उसकी माँ कहती है कि मेरी जान, मेरे बेटे, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ पर आ गए, मैं कितनी गमजदा हूँ तुम्हारी याद में, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हर रोज अशकों के हार। यानी मैं तुम्हारी जुदाई में बहुत बेकरार हूँ, बहुत रोती हूँ। और आप ये समझ सकते हैं कैफियत को, इस एहसास को कि एक माँ उसका बेटा मर चुका है तो वो किस तरह, आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान को सब्र आता है, लेकिन उसकी जुदाई में वो माँ बेकरार है और किस तरह से वो बेकरार रहती है, रोती है हर रोज अशकों के आर, यानी वो बहुत रोती है अपने बच्चे की जुदाई के गम में। ना परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, क्योंकि तुमने तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं की और ये तुमने अच्छी वफा की, यानी मेरे साथ जो है ये अच्छा किया तुमने। और वफा किसे कहते हैं कि हमेशा साथ रहना, लेकिन यहाँ तुमने मेरे साथ वफा अच्छी नहीं की है, बल्कि मुझे छोड़कर तुम यहाँ से, इस दुनिया से चले गए और मैं तुम्हारी याद में तड़प रही हूँ। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताव, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। बच्चे ने जब देखा कि उसकी माँ कितनी जो है वो बोल रही है, कह रही है, अपनी कैफियत का इजहार कर रही है, तो पेचोताव जब देखा, उसने दिल में लाना देखा, तो उसने मुँह फेर कर जवाब दिया, उसकी माँ की तरफ से मुंह फेर लिया और जवाब दिया। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी, कहती कि तुझे मेरी जुदाई रुलाती है, मैं तुझसे जुदा हो गया लेकिन इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है, मैं भलाई क्या नहीं है, यानी ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, फिर उसने अपना दिया दिखाया और कहा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे, यानी ये जो मेरा दिया बुझा हुआ है ये तेरे आंसुओं की वजह से बुझा हुआ है, अगर तू इतना नहीं रोती तो दिया जो है वो मेरा बुझता नहीं। तो इसमें जो मरकजी ख्याल है बच्चों वो यही है कि जो माँ बाप हैं उनको, ठीक है कि भाई बच्चे जब मर गया, वो बच्चा या बच्चा उसका दुनिया में नहीं है, रो रही है और उसके ख्वाब में देखती है, लेकिन वो खुद भी गमगीन है। बच्चा जो माँ के रोने धोने से खुद भी गमगीन हो गया है, माँ जो रो रही है वो माँ से कहता है कि मेरे दिए को इसी आंसुओं ने बुझाया है। यानी इस सबक में ये बात पोशीदा है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला जो है वो पस्त हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। अब बच्चे कहीं जाना चाहते हैं, कहीं कुछ करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि उससे रुकावट भी महसूस होती है। एक दूसरा जो मैसेज है वो ये है, एक तो ये है कि भाई जो दुनिया में आया वो जाएगा ज़रूर, लेकिन उसके जाने का गम तो होता है, बहुत गम होता है, लेकिन उस उतना गम नहीं करना चाहिए जितना कि वो औरत या वो माँ जो है अपने बच्चे के गम में जो है पेचोताप खाती है और किस तरह से वो रोती है, बच्चे से शिकायत करती है, फिर बच्चा उसको कहता है कि जो है ये दिया तुम्हारे आंसुओं की वजह से ही बुझाया, अगर तुम इतने आंसू नहीं बुझाती तो मेरा दिया जिस तरह और बच्चों का दिया बुझा हुआ है इसी तरह से ये दिया जो है जलता रहता। तो इसमें जो मुश्किल रास्ते वो तो मैंने आपको बता ही दिए थे, जिसमें पेचोताप खाना एक मुहावरा है, दिल ही दिल में गम गुस्से से घुटना है, बेकरार होना है। अब इसमें सवाल जो है वो ये है कि ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा, किस हाल में देखा कि वो जा रही है बहुत दूर, कहीं अंधेरा है, उसको राह नहीं मिल रही है। वो माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा, उसने देखा कि बच्चों की एक जमात है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हरे रंग का लिबास पहना हुआ है, हाथों में उनके जो है वो दिए हैं और सबके दिए जलना है, और उसके बेटे के हाथ में दिया जो है वो बुझा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा है। माँ की बेकरारी का सबब क्या है, माँ की बेकरारी का सबब यही है कि उसके सब बच्चों के दिए जल रहे हैं लेकिन उसके बच्चे का दिया नहीं जल रहा है। लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था, लड़के

एक पैराग्राफ के तौर पर कि नज्म जो है क्या है, किसकी लिखी हुई है। तो जब आप खुलासा लिखेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि ये नज्म अल्लामा इकबाल ने लिखी है। अल्लामा इकबाल ने और भी बहुत सी नज़में लिखी हैं जो हमारी इस कोर्स की किताब में शामिल हैं, जिसमें जो है पहाड़ और गिलहरी है, मकड़ा और मक्खी है, बच्चे की दुआ है और तराना हिंदी और बहुत सी नज़में जो हैं वो इसमें शामिल है। तो नज़म को नज़म की तरह से पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर उसके बारे में लिखिए और उसमें उसके मरकज़ी ख्याल को भी उसके अंदर लिखिए। अब इसमें आपने जो इस नज़म थी, इस नज़म का खुलासा एक पैराग्राफ में आप लोग लिखेंगे। नज़म को खूब अच्छी तरह पढ़िए, समझिए और समझने के बाद उसको लिखिए। ऐसे अब ये कि मुसरे मुकम्मल करने हैं, जैसे कि पिछली नज़म में हमने किए थे, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और मेरा इस्तराब जिससे मेरा इस्तराब, समझती है कि तू क्या क्या हुआ इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। तो इसको अगर आप ज़बानी याद कर लेते हैं नज़म को तो ठीक है, लेकिन जब पढ़ें तो इस तरह से पढ़िए कि नज़म को, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि नज़म को मौज़ूनियत के साथ, मुनासिब लब व लहजे और उतार चढ़ाव के साथ और एक लहमे, और क्या नज़म में क्या बात किस तरीके से कही जा रही है या क्या उसका मौजू है, उस रंग को देखते हुए आपको नज़म को पढ़ना है। अगर खुशी का है तो खुशी के इजहार की तरह से उस नज़म को पढ़ना उसी आंग में। अगर जैसे गमजदा है, जैसे ये माँ है गमजदा है, तो इसको हमें ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है और उसको समझना है। फिर है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आप इसमें कुछ लफ्ज़ हैं, इस्तराब है, मुहाल है, अजल है, पेचोताब है, तो इनको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये भी एक एक्टिविटी है, इसको आप जुमलों में इस्तेमाल करके लिखिए। फिर है लफ्ज़ों के मुतादाद है, जैसे जवाब है, जवाब का उल्टा यानी इसका मुतादाद सवाल हो जाएगा, बेकरार का करार हो जाएगा, दूर का नज़दीक हो जाएगा या पास हो जाएगा, और इसी तरह से वफा का जफा हो जाएगा। इस तरह के बहुत से लफ्ज़ हैं, आप इस किताब में से देखकर उनको उनके मुतादाद जो हैं वो लिख सकते हैं। फिर नज़म का खुलासा, जैसे मैंने कहा अपने अल्फाज में लिखिए, जब आप लिखें तो उसमें बहुत ज़्यादा तफसील ना लिखें बल्कि एक पैराग्राफ में ही उस नज़म को लिख दीजिए। इस नज़म को आप इसको अपने घर में या स्कूल के स्टेज पर ड्रामे की सूरत में पेश कर सकते हैं। इसमें यही है कि एक स्टेज पर जब आप इस ड्रामे को पेश करेंगे या घर में भी आप इसको जब स्टेज करेंगे इस नज़म को, तो उसमें बच्चों की कतार दिखाई जाएगी जिसमें वो सब लिबास पहने होंगे, इनके हाथ में दिया होगा, सबके दिए जल रहे होंगे, लेकिन पीछे एक बच्चा जो है उसका हाथ का दिया बुझा हुआ होगा। और फिर इस नज़म को जो है बहुत ही गा कर चखता है तो लज़ है, बहुत अच्छे ढंग से इसको पेश किया जा सकता है। तो याद आप अपने घर में अपने घर वालों के साथ, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं, तो घर में भी आप इसको पहले लिख लीजिए, रिहर्सल कर लीजिए इसकी, फिर स्कूल में भी स्टेज करके वहां पे भी पेश करिएगा जब कभी स्कूल खुलेंगे। अभी तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं, अभी सिर्फ जो है वो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो ऑनलाइन के तहत मैं आपको सिर्फ यही एक्टिविटीज़ आपको मैं दूंगी कि आपके खुलासा नज़म को पढ़ना और दूसरे ये कि स्कूल को जो ड्रामे की शक्ल में पेश करना। बहुत आराम से इसको पेश किया जा सकता है, इसका स्टेज करके जब आप करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में नज़म आ जाएगी। अब इसमें कुछ है पढ़िए समझिए और लिखिए। तो इसमें मानने वाला, बनाने वाला, देखने वाला, ये अल्फाज किसी काम के करने को जाहिर करते हैं, इन्हें इसमें फाइल कहा जाता है। पांच इसमें फाइल वाला के साथ बनाइए, देखने वाला, रोने वाला, हंसने वाला, इस तरह से करके आप पांच इसमें फाइल जो है वो बना सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। अच्छा, अल्लामा इकबाल की और भी बहुत सी नज़में हैं, उनको भी आप इंटरनेट पर देखकर सर्च करके या पिछली किताबों में आप अगर आपको मिल जाएं या नेट पर अगर आप पढ़ें तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन नज़म को, बल्कि नज़म के आपको जो है वो तरन्नुम से भी कुछ नज़में बहुत से बच्चों ने गाई हैं, वो भी आपको इस पे मिल जाएंगी। और हमारे एनसीईआरटी ऑफिशियल पे भी, इस एनसीईआरटी ऑफिशियल पर हमारी ऑडियो बुक भी इस किताब की बन चुकी है, वहाँ पे भी आप उसको देखकर उस नज़म को उसी तरह से अदायगी कर सकते हैं और ये सब काम कर सकते हैं।
तो इसमें गौर करने वाली बात यही है कि इस नज़्म में माँ के ख्वाब को बयान किया गया, जैसे कि पहले

0: मैंने बताया वो अपने बेटे को ख्वाब में देखती है अपने बेटे को कि वो जमात के साथ में है और सबके दिए जलते हुए हैं लेकिन उसका दिया बुझा हुआ है। वो दूसरे लड़कों के पीछे पीछे आहिस्ता चल रहा है तो माँ को देख कर बड़ा दुख होता है कि उसके बेटे का दिया क्यों बुझा हुआ है सबके दिए चल रहा है। तो फिर जब बच्चा रोने धोने से भी खुद भी गमगीन हो जाता है तो वो माँ से कहता है कि ये जो तुम रोती धोती हो तो इसकी वजह से मेरा ये दिया जो है वो बुझा हुआ है और इसी आंसुओं ने इस दिए को बुझा दिया है। तो इसमें जो बात एक दूसरी बात निकल कर आती है वो यही होती है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला जो है वो बुलंद नहीं होता बल्कि पस्त हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, काफ़ी रुकावट महसूस होती है। तो बच्चों आज हमने ये नज़्म पढ़ी जिसका नाम था माँ का ख्वाब। तो आपको माँ का ख्वाब नज़्म कैसी लगी, या आपने अगर कोई ख्वाब देखा हो तो उस ख्वाब को भी आप जो है वो लिख सकते हैं। तो माँ का ख्वाब आपको नज़्म कैसी लगी, तो क्या अच्छी लगी तो उसकी वजूहत, और इस नज़्म में आपको क्या जो है मरकज़ी ख्याल या उसका आपको क्या सबक मिलता है, क्या करना चाहिए, क्या ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए अगर कोई किसी से जुदा हो जाता है। वो ठीक है जुदाई का गम तो रहता ही है लेकिन इतना ज़्यादा जुदाई का गम नहीं करना चाहिए जैसे कि इस नज़्म में एक माँ का ख्वाब अपने बच्चों को देखती है वो जो महसूस करती है। तो माँ के महसूसात को भी आप लिख सकते हैं, फिर आप जो है अपनी माँ पर भी एक मज़मून लिख सकते हैं वो कैसी है ज़ाहरी शक्ल सूरत के अलावा वो आपके साथ कैसी मोहब्बत और उसका बर्ताव करती है, इन सब चीज़ों को आप एक मज़मून की शक्ल में मेरी माँ के अनवान से लिख सकते हैं। और माँ का ख्वाब नज़्म का मरकज़ी ख्याल अपने घर में डिस्कस करके उसको भी लिख सकते हैं। बच्चों जैसा कि मैंने आपको सबक के शुरू में बताया था कि ये नज़्म अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है और उनका पूरा नाम था शेख मोहम्मद इकबाल। तो थोड़ा सा आज हम उनके बारे में भी जान लेते हैं कि शेख मोहम्मद इकबाल जो थे 1877 में सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जो है मदरसे में हासिल की, उन्होंने अंग्रेज़ी मिशन स्कूल से इंट्रेंस के इम्तहान को पास किया, लाहौर से बीए किया, बीए की डिग्री हासिल की, फिर ओरिएंटल कॉलेज और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हुए, कैम्ब्रिज से बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया, जर्मनी से फलसफे में डॉक्टरेट के लिए, इसलिए इनको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहा जाता है, इन्होंने फलसफे में पीएचडी किया था। इकबाल को बचपन से ही शायरी से खास लगाव था, उन्होंने शेर कहने शुरू किए तो इब्तिदा में जो सलाह ली वो दाग दहलवी से ली, और दाग दहलवी का नाम भी आपने सुना होगा कि दिल्ली के रहने वाले थे, बहुत बड़े शायर थे, लेकिन और उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में इन्होंने शायरी की इकबाल ने। इनकी जो मजमूए हैं उन्होंने नज़में भी लिखी, गज़लें भी लिखी। 1938 में इनका इंतकाल हुआ। इनके जो मजमूए हैं जो इनके शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा है, ज़रबे कलीम है, बाले जबरील है, रुमान हिजाज, इनके उर्दू कलाम के मजमूए हैं। तो देखा आपने कि शेख मोहम्मद इकबाल ने जो अपनी शायरी जो इन्होंने शायरी की वो इनकी ज़्यादातर प्यामी शायरी है, एक प्यामी शायर के रूप में ये हमको नज़र आते हैं। और बहुत सारी नज़में जो हैं हमारी टेक्स्ट बुक जो उर्दू की दर्सी किताबें हैं उनमें शामिल हैं। तो देखा किस तरह से उन्होंने तालीम अरबी उसमें फ़ारसी में उर्दू दोनों में शेर कहे और नज़में लिखी। तो उसमें ये नज़म थी माँ का ख्वाब जो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में उस नज़म को लिखा है। बहुत सी मुकालमाती नज़में भी लिखी हैं जैसे पहाड़ और गिलहरी है, पहाड़ और गिलहरी में पहाड़ गिलहरी से मुकाबला करता है, गिलहरी को कहता है कि तो बहुत छोटी चीज़ है और मैं बहुत बड़ा हूँ। तो उसमें उसको बहुत अच्छे अंदाज में मुकालमाती अंदाज में उन्होंने उसको बयान किया है। ऐसे एक मकड़ा और मक्खी नज़म है, तो मकड़ा और मक्खी नज़म में भी वो मकड़ा जो है उसको मक्खी को जो है अपने जाल में फंसा लेता है, उसकी तारीफ़ करके, खुद की खुशामद करके। तो उसमें ज़्यादातर हमने ये देखा कि कुछ सारी चीज़ें ऐसी दी हैं कि तो कि इंसान जो है वो कभी कभी खुशामद का शिकार नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ये मकड़ा और मक्खी नज़म है जो हमारी इसी किताब में 8वीं क्लास की किताब में आगे चलकर हम पढ़ेंगे, तो उसमें मकड़ा जो है वो उसकी मक्खी की बहुत तारीफ करता है, झूठी तारीफें करता है और वो जो है उसके दाम में आ जाती है और मकड़ा जो उस मच्छी को खा जाता है। ऐसी ही जो नज्म है पहाड़ और गिलहरी, तो पहाड़ और गिलहरी में भी यही चीज़ दिखाई है कि वो पहाड़ को अपने ऊपर बहुत गुरूर है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। गिलहरी से कहता है कि तुम तो बहुत छोटी हो, तो उस पर वो जो है ना एक कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। नज्म की शुरुआत इस तरह से की है। तो पहाड़ गिलहरी से क्या कहता है, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे, जरा सी चीज है उस पर गुरूर क्या कहना, तो और नाची जरा सी चीज है उस पर गुरूर क्या कहना। तो फिर उस पर वो कहती है कि अगर तू इतना अपने आप को बड़ा समझ रहा है तो ये छालियां ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। तो इस तरह से वो ये कहती है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हर चीज की अपनी अहमियत है, बड़ी से बड़ी चीज की अपनी अहमियत है। जहां पर पहाड़ की अपनी हैसियत है, ऐसी गिलहरी की भी है। तो इसलिए किसी को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए, ना किसी से किसी का मुकाबला करना चाहिए बच्चों, बल्कि ये है कि हर इंसान में जितनी सलाहियत होती है उसके हिसाब से काम करता है। अब पहाड़ है वो एक जगह खड़ा हुआ है, विशाल है, बहुत ऊंचा है, सब कुछ है, लेकिन गिलहरी जो है वो छोटी है। लेकिन छोटी होने के साथ साथ वो अपने दरख्तों पर इधर उधर दौड़ती फिरती है। तो उसको यही कहती है ना, जवाब देती है कि उसको पता नहीं क्या क्या बोलता है कि तू इतनी छोटी सी चीज़ है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, लेकिन तू कुछ भी नहीं है, मैं तो तेरे आगे बहुत विशाल हूँ, बहुत ऊंचा हूँ। तो इस पर गिलहरी जो है उसको ये कहती है कि अगर इतना ही तू है तो छालियाँ तोड़ के दिखा। इसकी मिसाल इस तरह से बच्चों के जैसे जहाँ पर सुई का काम है वह सुई काम करेगी, ठीक है ना। वहाँ पर हम भाले से काम नहीं ले सकते। भाले से क्या करते हैं, ज़मीन खोदते हैं, और सुई से किसी चीज़ को सिया जाता है। तो हर चीज की इस दुनिया में एक अहमियत है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे गिलहरी हो, चाहे चींटी हो, चाहे कोई भी और जानदार हो। तो इसलिए किसी को किसी से मुकाबला करना या किसी को कमतर बताना बहुत ही गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, बल्कि सब इंसानों की तरह से हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। इसी तरह से किस में कुछ खामी है, किस में कुछ खूबी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें खूबियों को देखना है, खामियों को नज़रअंदाज करना है। तो इस तरह से आपने अल्लाह मुबाल की जो नज़में हैं, अब जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, तो ये नज़म जो है बच्चे की दुआ है। लब कहते हैं नहीं, मेरे होठों पे ये दुआ आती है कि मेरी जो जिंदगी है वो शमा की मानें दो। जिस तरह से शमा यानी मोमबत्ती रोशनी खुद जलती है और दूसरों को रोशनी देती है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, यानी मैं ऐसे से काम करूं कि दुनिया में जो अंधेरा फैला हुआ है वो खत्म हो जाए और हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मैं दुनिया में इतने अच्छे अच्छे काम करूँ, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको। फिर अल्लाह से दुआ कर रहा है बच्चा कि मुझे नेक राह पर चला और मुझे हर बुराई से बचा। तो ये जितनी भी नज़में हैं बड़ी सबक आमोज नज़में हैं, उसमें एक ना एक कोई ना कोई पैगाम दिया गया है। जैसे ये नज़म है माँ का ख्वाब, इसमें भी जो पैगाम दिया गया है वो यही दिया गया है कि बच्चों के माँ बाप के रोने धोने से बच्चों के हौसले जो हैं वो पस्त होते हैं। तो बच्चों का हौसला पस्त नहीं होने देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने की तरफ रागिब करना चाहिए। ऐसे पहाड़ और गिलहरी में ये कहा गया है कि मगरूरियत अच्छी चीज़ नहीं है, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। इसी तरह से और दूसरी नज़में हैं जैसे मकड़ा और मक्खी, तो किसी की खुशामद में नहीं आना चाहिए। तो ये सब क्या है, एक प्याम दे रहा है कि बच्चों को एक वैल्यूज, एक अखलाकी, एक अखलाकी अकदार है जिसको इकबाल ने अपनी नज़मों के ज़रिए पेश किया है। और जो माँ का ख्वाब नज़म है उसमें भी यही बताने की कोशिश की है कि हमेशा जो है बच्चों को जो है आगे बढ़ने के लिए रागिब करना चाहिए और माँ बाप को ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए, उससे बच्चों के हौसले पस्त होते हैं। तो मैं समझती हूँ बच्चों आपको ये नज़्म बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। मैंने अल्लामा इकबाल का तारुफ भी आपसे बाद में करा दिया है ताकि आप इनकी जो दो नज़में मैंने बताई हैं उनको भी पढ़ें, और इसके अलावा और नज़में भी आपको मिल जाएंगी जो इनके मजमुए में, जिन मजमुओं के मैंने नाम लिए हैं, बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील और मुगाने हिजाज। तो इन मजीद नज़मों को भी पढ़ सकते हैं, गज़लें भी लिखी हैं, अगर गज़लें चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने आज इस नज़म को जो है सही तरीके से पढ़ना, मौजूनियत से पढ़ना, सही लाबोलॉजी के साथ पढ़ना, इस नज़म की तफहीम, उसके मरकज़ी ख्याल और उसके खुलासे को लिखना सीखा। तो मैं समझती हूँ आज की ये नज़्म आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM

0: नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ हाँ हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फास्फोरस के महत्व के बारे में. दोस्तों आज हम जानेंगे कि फास्फोरस कितना महत्वपूर्ण है खासतौर से सस्य फसलों के लिए और बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है. इस बारे में समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा. मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा.
0: मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है.
1: उमा अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है. तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान गेहूं मक्का जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है और हमारी जो बिहार की किसान है उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है. तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू है. तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है. और जो हमारे पोषक तत्व हैं जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में ज़रूरत होता है इस सस्य फसलों में. तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों की बात करें और सस्य फसल जैसे धान गेहूं मक्का जौ इत्यादि.
0: तो मैम फास्फोरस क्या है अब ये बताइए.
1: जी फास्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है जैसे मैंने पहले भी बताया है. और अगर हम लोग कोशिकाओं के अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें तो उसमें ऐसे नाम है अगर आप सुने होंगे ATP ADP न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स तो फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का. यानी जितने भी जीवंत प्राणी हैं जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य हैं पौधा है आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी कोशिकाओं के लिए फास्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए. तो फास्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है इसके बहुत सारे बिंदुआं हैं या प्रक्रियां हैं जिसमें फास्फोरस जरूरी होती है जैसे कि कोशिका विभाजन प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ऊर्जा संचरण जड़ विकास आपकी फ्लावरिंग पुष्पन और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली.
0: तो मैम सस्य फसलों में अगर हम फास्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है.
1: जी हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों ज़रूरी है. ये हमारी जड़ जो होती है जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारी पौधा वो होती है हमारी जड़. तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फास्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट या जरूरी होती है. यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फास्फोरस अत्यंत जरूरी है. अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी. तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में. और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फास्फोरस की ज़रूरत होती है जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में उसमें भी आपको फास्फोरस की कुछ मात्राओं की ज़रूरत होती है. और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थिति परिस्थितियां होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फॉस्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फॉस्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
0: मैम, जब फास्फोरस इतना इम्पॉर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की क्या स्थिति है?
1: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा की, गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है, जिसको आप लोग, हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉयल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फास्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फास्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है, यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फास्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फास्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फास्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फास्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 to 13.6 मिलीग्राम पर केजी फास्फोरस होता है, जो मध्यम वर्ग होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फास्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 से 20 या 30 प्रतिशत तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत यानी 15 से 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉयल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फास्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है, ताकि जितना हम फास्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नटसेल, अगर हम बोले कि बिहार की सॉयल में फास्फोरस की क्या स्थिति है, तो आप ये सोच सकते हैं 50 से 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
0: तो मैम, ऐसे में फास्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फास्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
1: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फास्फोरस पे वो तो हमारा ज़्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसकी, इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है, उस के आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉइल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर है जैसे कि DAP, SSP और हम लोग यहाँ पे NPK के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फास्फोरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फास्फोरस के केस में है जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फास्फोरस ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फॉस्फरस जो दे रहे हैं उसको वो ले ले, अब्जॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूअर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्यूअर जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्यूअर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फॉस्फोरस सॉल्युबल होकर जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फॉस्फोरस की वो फॉस्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप PSB को लेकर भी चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक फिर क्या होता है, हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फॉस्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो, तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी। यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे हम लोग बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहाँ पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है, यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है। विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे ये 20-30% फॉस्फोरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: मैम, अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
1: जी जरूर। फॉस्फोरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फॉस्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
0: थैंक यू मैम, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
1: थैंक यू वेरी मच उमा।
0: दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,
3: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
10: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है, उन्हें बता दें भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक

अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

ഉന്നത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. किसान भाई बहनों, उन्नत कृषि में आज

0: हम एक ऐसे सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मांग सालों भर रहती है। ना केवल उसका इस्तेमाल सब्जियों में होता है बल्कि उसका इस्तेमाल हम सलाद में करते हैं, सूप में करते हैं, चटनियों में करते हैं, इसलिए इसकी डिमांड तो सालों भर रहती है, जिसकी वजह से किसान भाई बहनों को इससे मुनाफा भी अच्छा होता है। लेकिन कई गलतियां किसान भाई बहन करते हैं जिसकी वजह से उनकी उपज में कमी आती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टमाटर के वैज्ञानिक खेती के बारे में। आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर के साथ। मैम, आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: मैम। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि कैसी जलवायु और मिट्टी उपयुक्त होती है टमाटर की खेती के लिए।
1: टमाटर की खेती के लिए हल्की ठंड और हल्की धूप बेहतरीन होती है, और जैसे हम देखते हैं कि 21 डिग्री सेल्सियस जब औसत तापमान रहता है तो ये बहुत अच्छा रहता है टमाटर खेती के लिए। और अधिक अगर पाला होता है जनवरी के टाइम पे जब जैसे देखते हैं तो वो इसके लिए थोड़ा घातक हो सकता है। पौधे की अधिकतम वृद्धि जो है वो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और फल जब लगता है उस समय अगर रात का तापमान 15 से 20 डिग्री के बीच में सेल्सियस के बीच में रहता है तो एकदम वो आदर्श रहता है, और अगर 13 डिग्री के नीचे गिरता है तापमान रात की पर्टिकुलरली तो उसमें थोड़ा सा फल लगने में दिक्कत होती है। और ऐसे मौसम में टमाटर सही तरीके से पककर गहरे लाल भी होते हैं जब 21 से 24 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। ज़्यादा गहरा, ज़्यादा गर्मी अगर होती तो फलों का रंग और स्वाद जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और टमाटर के लिए जो मिट्टी है तो वो अगर बलुई दोमट मिट्टी होती है तो वो सबसे सही होती है। दूसरी मिट्टी में भी वो पैदावार हो सकती है, और मिट्टी का पीएच जो वो 6 से 7 के बीच में होना ज़रूरी है।
0: जी मैम। मैम, टमाटर के प्रमुख किस्म कौन कौन से हैं?
1: टमाटर की देसी किस्म को अगर हम देखते हैं तो उसमें पूसा रूबी है, पूसा 120 है, पूसा शीतल है, पूसा गौरव है, पूसा रोहिणी, अर्का सौरभ, अर्का आलोक, काशी विशेष, स्वर्ण नवीन, स्वर्ण लालिमा, ये सारा है, काशी चैन भी है। और संकर किस्म अगर देखते हैं तो पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अविलाश, साहू, रश्मि, ये सब है।
0: जी मैम। मैम, बुआई की विधि क्या होनी चाहिए?
1: टमाटर को पहले हम लोग पौधशाला में बुआई करते हैं, उसके बाद में मूल खेत में ले जाते हैं। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर हम फसल लगाना चाहते हैं तो उसके नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग 250 से 300 ग्राम की बीज पर्याप्त होता है। और अगर यही संकर किस्म होता है तो उसके लिए जो है 125 से 175 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और बुआई करने के लिए जो है हम लोग नर्सरी बनाते हैं, नर्सरी बेड जो है वो 3 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई के साइज़ का होना चाहिए, क्यारिया ऐसे बनना चाहिए। और ये क्यारिया जो है ज़मीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर उभरी हुई होनी चाहिए। और बीज की बुआई जो है उसको करने से पहले बीज को उपचार कर लेना चाहिए, उसके लिए हम लोग थायरम या फिर कैप्टन जो कवकनाशी होता है उसका 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से, या फिर कार्बेंडाजिम का भी उपयोग कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से, हम लोग उसको बीज उपचारण करके उसके बाद में ही जो है बुआई करेंगे। और बुआई जो है कतार में करनी चाहिए, 2 कतारों के बीच में जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। और बुआई करने के बाद में बीज के ऊपर जो है बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और मिट्टी का जो मिश्रण है उसकी उससे उसको ढक दिया जाता है।
0: मैम, टमाटर के लिए रोपाई की सही विधि क्या होती है?
1: रोपाई करना जो है, एक चीज़ और हमको ऐड ये भी करना था कि बुआई का समय जो है ये शरतकालीन फसल जो है रबी फसल टमाटर का ही मेन क्रॉप होता है, तो इसके लिए हम लोग लगभग सितंबर के शेष से अक्टूबर के बीचों बीच तक में जो है इसकी बुआई करते हैं। और इसका रोपाई जो है 1 महीने बाद, लगभग 25 दिन से 1 महीने बाद, यानी कि अक्टूबर के शेष भाग से नवंबर के बीचों बीच तक में अगर करते हैं तो फसल बहुत अच्छा होता है। और गर्मा फसल के लिए हम लोग जो है इसका बीज डालते हैं दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी के शुरू में और फरवरी में इसका रुपाई करते हैं। तो रुपाई करने के लिए पहले खेत की तैयारी बहुत आवश्यक है और भूमि को अच्छे से 3 से 4 बार अच्छे से पाटा, ये ट्रैक्टर चला के उसका जुताई कर लेना चाहिए, उसके बाद में पाटा चला के मिट्टी को भुरभुरा करके समतल कर लेना होता है, और आखिरी जब जुताई होती है उस समय पे लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर के दर से अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद प्रयोग करना चाहिए। और हमको ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा खेत है उसके आसपास में जो है जल निकासी का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। और रुपाई हम जब करते हैं, पौधा 25 से 30 दिन का हो जाता है, लगभग 3 से 4 पत्तियां अच्छे से निकल जाती है, और खेत में रुपाई हम शाम के वक्त करते हैं। सुबह के वक्त करेंगे तो कड़ी धूप में पौधा कहीं ना कहीं से जो है वो मुरझा जाती है, तो शाम के टाइम पे हम लोग दोपहर के बाद में हम लोग इसका रुपाई करते हैं। और रुपाई करने के समय पर दो कतारों के बीच में जो है वो दूरी हम लोग लगभग 60 सेंटीमीटर का रखते हैं, और दो पौधे के बीच की दूरी जो है वो 45 सेंटीमीटर रखते हैं। ये सीमित बढ़वार वाले जो प्रजातियां हैं उनके लिए, और जो असीमित बढ़वार वाली प्रजातियां होती है उसमें जो है हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा दूरी रखते हैं, उसमें जो है लगभग 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं दो कतारों के बीच में, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर का ही रखते हैं। संकर के लिए भी यही एक ही दूरी हम रखते हैं।
0: मैम, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात कि हमारे किसान भाई बहन टमाटर की फसल में उर्वरक किस प्रकार से और कब प्रयोग करें?
1: खाद और उर्वरक प्रयोग करने से पहले जो निकटतम जो सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशाला होता है वहाँ पे मिट्टी जांच करा लेना आवश्यक है। मिट्टी के जांच के अनुसार ही जो है उर्वरक की प्रयोग करना चाहिए। बुआई के पूर्व में जो है हम जो बुआई नहीं सॉरी रुपाई के पूर्व में जो है हम अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर के दर से हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं, और ये देखना होगा कि गोबर कच्ची ना रहे। और उसके बाद में जो है खेत तैयार करने के शेष में हम रासायनिक खाद डालते हैं बेसल डोज के तहत में, जो है 80 किलो फास्फोरस, 80 किलो पोटाश और 60 किलो नाइट्रोजन देते हैं, और 60 किलो नाइट्रोजन और भी जो है वो टॉप ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि रोपाई के बाद में 30 दिन के बाद में जो है 30 किलो नाइट्रोजन, और 60 दिन के बाद में जो है बाकी 30 किलो नाइट्रोजन उसमें देते हैं। और टमाटर में जो है बोरोन की भी कमी दिखी जाती है, उससे फल फटने की समस्या आ सकती है, तो उसके लिए जो है हम लोग बोरैक्स की छिड़काव कर सकते हैं, बोरिक एसिड का, बोरोन का जो है 0.3% का छिड़काव करने से जो है फल भी अधिक लगेगा और फल फटने की जो समस्या है वो भी नहीं आएगी।
0: और सिंचाई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: टमाटर के फसल में अधिक उपज लेने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है, क्योंकि रबी सीजन का फसल जो है इसका मेन फसल है, तो इसमें जो है सर्दियों के समय पे इस फसल को लिया जाता है, तो उस समय पे 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करना होगा। और अगर हम लोग गर्मियों की फसल लेते हैं तो उसमें 6 से 7 दिन के अंतराल पे, कभी कभार जो है देखते मौसम को देखते हुए 4 से 5 दिन के अंतराल पे भी हल्का सिंचाई देना ज़रूरी है। और हल्का सिंचाई इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर बहुत लंबा ड्राई स्पेल हो जाता है उसके बाद में अचानक से हमने अगर पानी दे दिया तो फल फटने की भी संभावना आ सकती है।
0: जी मैम। मैम, अब जो हमारे किसान भाई बहनों के मन में सवाल आ रहा होगा कि उपज कितनी होगी, तुड़ाई कब करनी चाहिए?
1: तो टमाटर लगभग जो है फसल रोपाई करने से फल आने में 65 से 75 दिन में पहले फल की जो है तुड़ाई शुरू हो जाती है, और ये तुड़ाई चलता रहता है उसके बाद में और भी लगभग 1.5 से 2 महीने तक। तो फल लगने के बाद में जो है हम लोग तुड़ाई करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, हम लोग विपणन भी तुड़ाई से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, हमको अगर तुरंत खाना है या आसपास के मार्केट में ले जाना है तो उसको हम लोग जो है राइप स्टेज में जब लाल रंग के होते हैं उस समय पे तोड़ते हैं, और अगर हम थोड़ा दूर मार्केट पे ले जाना चाहते हैं तो ट्रक से जैसे भेजते हैं काफ़ी दूर के मार्केट में, तो उस समय हम लोग टमाटर की जो फल है उसको मैच्योर ग्रीन स्टेज पे तोड़ते हैं, यानी कि पूरा पूरा उसका साइज आ गया, वो मैच्योर हो गया लेकिन हरा रंग पे रहता है, उस समय पे तोड़ते हैं, या फिर टर्निंग स्टेज पे, यानी कि हल्का सा उसके जो कंधे हैं उस पे थोड़ा थोड़ा सा जो उसमें लाल रंग आने लगता है, हल्का सा जो है, लाल भी नहीं होता है, जैसे पिंकिश टाइप का गुलाबी जैसे जो रंग आने लगते हैं उसी स्टेज पे हम लोग उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में उसके अच्छे से ग्रेडिंग करते हैं, साइज के अनुसार जो है, जो बड़ा साइज होता है ए ग्रेड होता है, मध्यम साइज का बी ग्रेड होता है, छोटा साइज का सी ग्रेड होता है, तो ये ग्रेड के अनुसार उसको ग्रेडिंग करके फिर क्रेट में भर के उसको विपणन किया जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं कि जो जनरल जो ओपी वराइटीज़ है उन वराइटीज़ का जो है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज पाते हैं हम लोग, और यही अगर संकर किस्म हो जाता है तो संकर किस्म में उपज 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की भी आ सकती है।
0: जी मैम, तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: टमाटर जो क्रॉप है, तो टमाटर की फसल जो है बहुत ही एक लाभदायक फसल है। इसमें से ना तो सिर्फ आप सलाद के तौर से खा सकते हैं बल्कि इसको चटनी भी बनाते हैं और इसको प्रोसेसिंग करके इसका सॉस भी बनता है। तो अगर, और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, हम अगर ऑफ सीज़न में इसको लगाते हैं तो टमाटर का जो है मुनाफा भी बहुत ज़्यादा पाते हैं हम। पिछले साल में हम याद होगा कि टमाटर 200 रुपए किलो भी चला गया था, तो हम लोगों को टमाटर अगर हम सही समय पे उसको बाजार तक ले जा सकते हैं, जिसको कि हम लोग अच्छा कल्टीवेशन प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं और थोड़ा सा लगाने का आगे पीछे करके, तो उसको हम लोग अच्छा मुनाफा भी इससे हम पा सकते हैं। ये ऐसी ही फसल है।
0: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो यकीनन आज की चर्चा के बाद आपको बहुत सी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
2: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
7: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुंदर ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: उन्नत कृषि।
14: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz हर रोज की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमारे बीच एक खास एक्सपर्ट, जी हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी बातें होती हैं इस कार्यक्रम में, और आज हम बात करेंगे सब्जियों की। और सब्जियों में अगर गोभी वर्गीय फसलों की बात करें और इसके खेती के बारे में बात करें, तो आज हमारे बीच आए हैं डॉक्टर RK शर्मा सर। मैं आप सभी को बता दूँ गोभी वर्गीय सब्जियों की सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
15: धन्यवाद
14: डॉक्टर साहब। अगर गोभी वर्गीय फसल की बात करें तो क्या इसमें ये

0: पत्ता गोभी और फूल गोभी आते हैं या इसके अलावे भी कोई और सब्जियां आती हैं?
1: आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोभी वर्गीय सब्जियों में मुख्यतः फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली या हरी गोभी, तब ब्रुसेल्स स्प्राउट आती हैं। ये मुख्य रूप से हमारे इलाके में फूल गोभी, पत्ता गोभी या बंद गोभी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांठ गोभी, ब्रोकली, हरी गोभी, ब्रुसेल्स स्प्राउट जो है पहाड़ी इलाके में, हिमाचल प्रदेश के इलाके में, कश्मीर के इलाके में बहुत आयत रूप में होती है, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में भी धीरे धीरे इन फसलों की मांग बढ़ती जा रही है।
0: डॉक्टर साहब, अगर जलवायु की बात करें तो इन सब्जियों के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और मिट्टी भी बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए इसकी खेती के लिए?
1: जैसा कि आपने आरंभ में कहा कि ये ठंडे मौसम की फसल है और ठंड के मौसम में ही हम लोग इस गोभी वर्गीय फसलों को मतलब लगाते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि दिन अपेक्षाकृत छोटे हों तो फूल की बढ़ोतरी अधिक होती है। फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल पत्तेदार और पीले रंग के हो जाते हैं। अगेती जातियों के लिए अधिक तापमान और बड़े दिनों की आवश्यकता होती है। जिस भूमि 5.5 से 7.5 के मध्य हो वह भूमि गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए उपयुक्त मानी गई है। लवणीय भूमि में फफूंदी व जीवाणु से फैलने वाले रोग ज़्यादा होते हैं। अगेती फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी तथा पछेती के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। साधारणतया गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। भूमि जिसमें पर्याप्त अच्छी होती है, हल्की संरचना वाली भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर भी इसकी खेती की जा सकती है।
0: जी, ये बात तो हो गई जलवायु और मिट्टी की कैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो खेत की तैयारी है इसके लिए, गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए खेत की तैयारी और साथ ही पौधशाला की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए किसान भाइयों को?
1: किसान भाइयों, हम जैसा जानते हैं कि बहुत सी हमारी जो सब्जी वाली जो फसल होती है उनके बीज काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें हम डायरेक्ट जो है खेत में नींव लगा करके पहले उनकी पौधशाला तैयार करते हैं। और पौधशाला में जब 4 से 6 सप्ताह के जो पौधे हो जाते हैं तब उन्हें हम अपने मुख्य खेत में स्थानांतरित करते हैं या प्रतिरोपण उनका करते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए भूमि की जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें, इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए पौधशाला में इनका बीज डालकर पौध तैयार कर लेना चाहिए। 2 से 3 ग्राम कैप्टान या ब्रेसिकोल प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को शोधित कर लेना चाहिए। 160 से 175 मिलीग्राम कैप्टान या ब्रेसिकोल को 2.5 में मिलाकर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नर्सरी वाली भूमि का शोधन करना चाहिए। स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए भूमि तैयार होने पर 0.75 मीटर चौड़ी, 5 से 6 मीटर लंबी, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लेनी चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली पानी देने तथा अन्य सस्य क्रियाओं को करने के लिए रखनी चाहिए। पौध डालने से पहले 8 से 10 ग्राम यूरिया टॉप पोटास व 5 ग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्यारियों में मिला देना चाहिए। बीज 5 सेंटीमीटर दूरी की कतारों में डालना चाहिए। क्यारियों में बीज बुआई के बाद सड़ी गोबर की खाद से बीज को ढक देना चाहिए। इसके 1 से 2 दिन बाद यदि नर्सरी में नमी की कमी हो तो हजारे या झरने से पानी क्यारियों में देना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जब किसान भाई पौधशाला से मुख्य खेत में पौधे को लगाते हैं तो उस समय कुछ सावधानियों की जरूरत होती है, वो क्या है? क्या
1: तैयार करते हैं तो पौध को जो है उसके बाद जब हम उनको प्रतिरोपित करते मुख्य खेत में तो इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि 4 से 6 सप्ताह पुरानी पौध ही मुख्य खेत में रोपित करें। रोपनी के लिए पौधे निकालने के 3 से 4 दिन पहले से सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और पौधों को निकालने से 2-3 घंटे पहले अच्छी तरह से सिंचाई करें जिससे जड़ों को नुकसान न हो। यथासंभव रोपाई शाम को करनी चाहिए। रोपाई से पूर्व जड़ों को बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर या थाइरम 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बने घोल में डुबाना चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए।
0: जी तो यहाँ पर बातें हो गई सावधानी की तैयारी हम कैसे करें, वो भी बातें हो गई। अब जो खास बात वो होता है कि उर्वरक मात्रा में देना चाहिए, डॉक्टर साहब क्या कुछ मात्रा होनी चाहिए उर्वरकों की?
1: हाँ, किसान भाइयों, गोभी बरगद सब्जियों की खेती के लिए खेत में 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद रोपाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। इसके अलावा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन फास्फोरस वो 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर की एक तिहाई मात्रा वो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई या रोपण से पूर्व खेत में अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर खड़ी फसल में 30 वो 45 दिन बाद।
0: अब बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण, ये भी बहुत जरूरी होता है और साथ ही पौधों की देखभाल।
1: और ये बता दूं आपको कि सब्जी वाली फसल में अगर खरपतवार का नियंत्रण हम सही रूप से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि खरपतवार ही विशेष रूप से सब्जी वाली फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों में पौध रोपण से लेकर फूल तैयार होने तक 2 या 3 निकाई गुड़ाई से खरपतवार की रोकथाम हो जाती है। क्योंकि गोभी वर्गीय सब्जियां उथली जड़ वाली फसल हैं, इसलिए उनकी निकाई गुड़ाई ज्यादा गहरी न करें और खरपतवार को उखाड़ कर नष्ट कर दें। खरपतवार नाशी स्टाम्प 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव रोपाई से पूर्व काफ़ी लाभप्रद होता है। पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाने से पौधे सुरक्षित रहते हैं। पौध रोपण के 4 से 6 सप्ताह पश्चात पौधों में मिट्टी चढ़ा दें, जिससे फूलों के भार से पौधे टेढ़े न हो जाएं।
0: जी, और अब यहाँ पर बात आती है कि सिंचाई कितने दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए।
1: किसान भाइयों, पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। सितंबर के बाद 10 या 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में 5 से 7 दिन के अंतर पर सिंचाई करें, रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। अगेती फसल में बाद में 1 सप्ताह के अंतर से, देर वाली फसल में 10 से 15 दिन के अंतर से सिंचाई करें। यह ध्यान रहे कि फूल निर्माण के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगेती किस्मों की अपेक्षा पिछेती किस्मों को अधिक जल की आवश्यकता होती है, सिंचाई प्रातः काल करनी चाहिए।
0: जी, अब डॉक्टर साहब उन्नत प्रजातियों के बारे में बता दें, फूल गोभी की कौन कौन सी उन्नत प्रजाति है।
1: किसान भाइयों, फूल गोभी की अगेती प्रजातियों में पूसा दीपाली, अरली, हाजीपुर अगात आदि हैं। मध्यम प्रकार की प्रजातियों में अगहनी, पूसी, पटना मेन, पंत सुब्रा, नरेंद्र गोभी 1, अर्ली स्नोबॉल, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा अगहनी एवं पटना मध्यम है। पचेती प्रजातियों में पूसा स्नोबॉल 16, पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, पूसा विश्व भारती, ज्वाइंट स्नोबॉल आदि हैं।
0: जी, फूल गोभी की अगेती मध्यम और पछेती किस्मों के बीजों को अगर पौधशाला में गिराते हैं तो क्या उपयुक्त समय है और मुख्य खेत में कब और कितनी दूरी पर इनका रोपण करना चाहिए, साथ ही बीज दर क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब।
1: किसान भाइयों, अगेती में मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पौधशाला में बीज डालकर पौध तैयार करके 30 दिन बाद मुख्य खेत में 45 सेंटीमीटर × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौध की रोपाई करनी चाहिए। मध्यम फसल में अगस्त के मध्य में पौधशाला में बीज डालकर पौध तैयार करके 30 दिन बाद मुख्य खेत में 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए। पचेती फसल में मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक पौधशाला में बीज डालकर पौध तैयार कर लेना चाहिए और 30 दिन बाद मुख्य खेत में 60 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 450 ग्राम से 500 ग्राम बीज की बुआई करनी नर्सरी में करनी चाहिए।
0: जी, अगर फूलगोभी की बात हुई तो सूक्ष्म तत्वों का क्या महत्व है इसमें और साथ ही ये ब्लांचिंग क्या होता है इसके बारे में बताएं।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, पड़ती है सूक्ष्म तत्वों की कमी से कई बार क्या होता है इनमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसे आप लोग समझते हैं कोई रोग हो गया, बल्कि ये कोई रोग नहीं होता है, ये मतलब सूक्ष्म तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाला एक तरह का डिसऑर्डर है। किसान भाइयों, फूल गोभी में सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसमें बोरोन और मोलिब्डेनम प्रमुख हैं। बोरोन की कमी को दूर करने के लिए 10 से 50 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। मोलिब्डेनम की कमी अम्लीय भूमि में हो जाती है, अर्थात मोलिब्डेनम अनुपलब्ध रूप में हो जाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता पौधों को, जिससे पौधे इस तत्व का अवशोषण नहीं कर पाते हैं और विप टेल के लक्षण दिखाई देते हैं। विप टेल भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है गोभी में। अतः अम्लीयता कम करने के उद्देश्य से 50 से 75 क्विंटल बूझा चूना प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही पौध रोपण के पहले 2.5 से 5 किलो सोडियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर भूमि में मिला देना चाहिए अथवा खड़ी फसल में 0.05% घोल का पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। फूलों का रंग आकर्षक सफ़ेद बनाने के लिए पौधों की चारों ओर फैली हुई पत्तियों को फूल के ऊपर समेट कर बांध देने को ही ब्लांचिंग कहते हैं। अच्छा। ब्लांचिंग का मतलब होता है कि जो जब डायरेक्ट सूर्य की धूप में मतलब फूल गोभी के जब जो है फल आते हैं या तो उस समय क्या होता है उनका रंग जो है सफ़ेद से पीला पड़ जाता है जिससे उनके क्वालिटी में जो है कमी आ जाती है। इसलिए उसके चारों ओर फैली हुई जो पत्तियां हैं उनको फूल के ऊपर जो है समेट कर बांध देना चाहिए और इस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं। धूप से फूल का रंग पीला जाता है, ये क्रिया फूल तैयार हो जाने के 8 से 10 दिन पहले ही कर देनी चाहिए।
0: जी, फूल गोभी की बात हो गई डॉक्टर साहब, अब बंद गोभी की बात करें तो बंद गोभी की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियाँ हैं ये भी बता दें।
1: किसान भाइयों, बंद गोभी की अगेती किस्में हैं प्राइड ऑफ इंडिया, मीनाक्षी, गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड और पिछेती किस्में लेट ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड, अर्ली सॉलिड ड्रम हेड, लॉर्ड माउंटेन हेड, कैबेज लेट, सेलेक्टेड डब्लू, डायमंड सेलेक्शन 8 और पूसा मुक्ता।
0: जी डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जो कोई भी फसल हम लगाते हैं तो कीटों के प्रकोप से हमारी फसल को हानि पहुंचती है, तो गोभी वर्गीय फसलों में जो कीट लगते हैं उनसे कैसे रोकथाम करें?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि कीटों से बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान होता है। तो इसमें हम लोग जो है किसान भाइयों, कीट पिछेती फसल में लगते हैं जैसे एफिड्स हैं, कैटरपिलर हैं।
0: जी,
1: तो इसमें यदि एफिड्स का प्रकोप हो तो इमिडाक्लोपीड एक दवाई आती है, इमिडाक्लोपीड का 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। बीमारी में अधिकतर पत्तियों पर धब्बे हो जाते हैं जो काले भूरे रंग के बन जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदी नाशक डाइथेनम 45 का 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव करें। कैटरपिलर का प्रकोप होने पर एक दवाई है साइपरमेथ्रिन, उसका 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करें, इसमें छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार हम अगर इनकी रोकथाम करेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी और हमारी उपज भी ज़्यादा होगी।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, और किसान भाइयों आशा करते हैं आज पूरी जानकारी आपको मिली है गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में, और आशा करते हैं कि आप अगर खेती कर रहे हैं तो आज के इस वार्ता को सुनकर आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक अलग विषय के साथ, याद रखें इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो
7: पाँच साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
4: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
10: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
0: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज हम ऐसे सितारे के बारे में बात करने वाले हैं जो एक सितारा होने से पहले अपने ही माता पिता के द्वारा ठुकरा दी गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि आपके कल में क्या लिखा है ये आप अपने आज को देखकर नहीं पता लगा सकते। अपने माता पिता के द्वारा ठुकरा दी गई बच्ची पहले तो अपने माता पिता के घर पहुंची, उसके बाद देश भर में अपना नाम बनाया और फिर पूरे विश्व भर में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर लिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि पाने वाली सितारा देवी के बारे में। लेकिन सितारा देवी सितारा होने से पहले धन्नु थी और उनका ये नाम एक दाई ने रखा था। दाई ने ना सिर्फ नाम रखा बल्कि 8 साल तक दाई ने धन्नु को पाला, क्योंकि 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में जन्मी एक बच्ची का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा था। हालांकि वो दिन तो बहुत शुभ था, दिन था धनतेरस का, लेकिन घर पर अशांति छा गई। नवजात बच्ची जिसे माता पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे दाई को सौंप दिया। अपनों के द्वारा ठुकराई गई बच्ची को दाई ने दिल से अपनाया और धनतेरस के दिन जन्मी बच्ची को नाम दिया धन्नु। धन्नु की दाई ने खूब सेवा की, दिन रात मालिश कर उसका मुंह कुछ सीधा कर दिया। जब धन्नु के माता पिता तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने धन्नु को अपनाने का फैसला किया। वो धन्नु को अपने पास ले गए और धन्नु अब धनलक्ष्मी हो गई। धन्नु के पिता ने धन्नु को दिल से अपना लिया था और उस समय में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाया करती थी। धन्नु भी 8 साल की हो चुकी थी तो उसकी शादी तय कर दी गई। धन्नु की शादी हो गई और नई नई दुल्हन से जो आम तौर पर उम्मीद की जाती है, धन्नु से भी वही उम्मीद की गई। घर के काम काज सीखे और घर की चार दीवारी की होकर रह जाए। पर धन्नु तो कुछ और चाहती थी, उसे स्कूल जाना था, उसे पढ़ाई करनी थी। तो धन्नु ने जिद पकड़ ली और घर के काम काज में उसे बिल्कुल भी रुचि नहीं आती थी। इसमें धन्नु की कोई गलती नहीं थी, हर किसी की अपनी अपनी रुचि होती है। बस फिर क्या था, घर के काम काज में रुचि न लेकर स्कूल जाने की जिद पकड़ लेने वाली बहू को कोई कैसे अपना सकता था। वो शादी टूट गई और धन्नु वापस अपने पिता के घर आ गई। तब तक धन्नु के पिता सुखदेव महाराज ये समझ गए थे कि धन्नु कोई आम लड़की नहीं है, उसमें उस जमाने में भी कुछ कर गुजरने की क्षमता है, कुछ कर गुजरने की ललक है। वो लग गए अपनी बेटी को कामयाब बनाने में। धन्नु के पापा सुखदेव महाराज वाराणसी के रहने वाले थे और मूल रूप से वो एक कथक कलाकार थे, तो बच्ची के रगों में भी अपने पिता का खून आया था और वो भी कथक में रुचि लेने लग गई थी। उसके पापा ने अब धनलक्ष्मी का नाम सितारा रख दिया। सितारा ने शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। 10 साल की उम्र होने तक वो एकल नृत्य का प्रदर्शन करने लगी थी। एकल नृत्य यानी कि वो खुद अकेली नृत्य का प्रदर्शन किया करती थी। और ये वो वक्त हुआ करता था जब लड़कियों का स्टेज पर नृत्य करना, लड़कियों का स्टेज पर डांस करना अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। तब के समय में सितारा अधिकतर सिनेमा हॉल में फिल्मों के बीच जो 15 मिनट का समय होता है यानी कि मध्यांतर के दौरान अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया करती थी। अब सितारा 11 साल की हो गई थी। फिल्मों के बीच 15 मिनट के इंटरवल में प्रदर्शन करने वाली सितारा अब पहली बार फिल्मों की दुनिया में कदम रखने वाली थी। कहते हैं कि कथक से अगर किसी ने बॉलीवुड का परिचय कराया है तो वो है सितारा देवी। कथक ने बॉलीवुड को एक नई दिशा दी थी और ये दिशा दिखाने वाली थी सितारा देवी। उन्होंने शहर का जादू, स्वामी, रोटी और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन मदर इंडिया के बाद सितारा देवी ने अपना मन बदल लिया। उन्होंने तय किया कि अब वो फिल्मों में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीय नृत्य पर ध्यान देंगी। उन्होंने फिल्म में काम करना बंद कर दिया। सितारा देवी से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है। किस्सा ये कि सितारा जब 16 साल की थी तो उन्होंने एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी और वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर मौजूद थे। वो सितारा देवी के नृत्य से इतनी प्रभावित हुए कि उन्होंने सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञी का उपनाम दे दिया। साथ ही उन्होंने सराहना के तौर पर एक शॉल और 50 रुपए का उपहार भी दिया सितारा को। गुरुदेव ने सितारा के नृत्य को देखकर ऐसे ही नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि नहीं दे दी थी बल्कि आगे चलकर सितारा देवी ने इसे सही साबित किया। अपने नृत्य से उन्होंने पूरी दुनिया का मन मोहा
और कथक को एक नया आयाम दिया। उन्होंने पूरे विश्व को कथक से परिचित करवाया। देश के हर कोने के साथ विदेशों में भी उन्होंने शो किया, जिसमें इंग्लैंड के रॉयल अल्बर्ट हॉल और न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में उनका फुल हाउस कार्यक्रम ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनके इन दोनों कार्यक्रम को आज भी याद किया जाता है। बाद में सितारा देवी को उनके योगदान के लिए पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान सहित ढेरों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सितारा देवी ने पुरस्कार तो कमाया, साथ ही उन्होंने जीता अपने लोगों का दिल। और अपनी नृत्य की यात्रा को छोड़ते हुए, वो हम सबको छोड़ते हुए 25 नवंबर 2014 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं। लेकिन आज भी अगर कथक की बात होगी तो सितारा देवी का नाम जरूर लिया जाएगा। उनके निधन के बाद कथक की दुनिया में ही नहीं बल्कि जो भी नृत्य प्रेमी थे उनमें शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी यहाँ हमेशा रहने नहीं आया है, और जब तक उसे रहना है तब तक वो ऐसे काम अगर कर ले जिससे उसके जाने के बाद भी दुनिया उसे याद करे तो फिर क्या ही कहने। जैसे सितारा देवी ने जन्म के साथ ही एक छोटी सी नवजात बच्ची को उसके माँ पिता ने खुद ठुकरा दिया। लेकिन तब कहाँ किसी ने सोचा था कि धनतेरस के दिन जन्मी धन्नो पूरे विश्व में अपना नाम कमाएगी। तो ये थी धन्नो धन लक्ष्मी सितारा देवी नृत्य सम्राज्ञी की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ और ढेरों जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं। फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है, इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, यानी कि मीठे मक्के के बारे में। मीठा मक्का क्या है और कब इसकी बुआई की जाती है, क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमारी रश्मि। आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार। मैं आज आपको मीठी मक्का की वैज्ञानिक खेती की विधि के बारे में बताऊंगी।
0: तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि स्वीट कॉर्न क्या है? मक्का तो हम जानते हैं, पर स्वीट कॉर्न क्या है?
1: मीठी मक्का मीठी और स्वादिष्ट एक विशेष प्रकार की मक्का है जिसका दाना अधिक मीठा होता है। इसे सब्जी और अनेक तरह के पकवान जैसे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। और हरा भुट्टा तोड़ने के तुरंत बाद हरे पौधे को काटकर हरे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए हम स्वीट कॉर्न को गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर आदि के साथ इसका रबी में और मौसम में अंतर्वर्ती फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी जलवायु के बारे में मैं बताना चाहूँगी। स्वीट कॉर्न की बुआई के समय मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और भूमि के चयन को लेकर हम बात करें तो आमतौर पर इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल में इसका उपयुक्त खेती नहीं हो सकता है। खेत में जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। स्वीट कॉर्न की बुआई जिस खेत में करनी होती है उसमें 400 मीटर तक अन्य किसी दूसरी वैरायटी की किस्म नहीं लगानी चाहिए। और जब हम बात करें कि 400 मीटर की दूरी के अंतर्गत मक्का किसी और किस्म का नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी ने लगा दिया है 400 मीटर के सर्कल में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप अपनी बुआई करें, ताकि नर मंजर आने में 15 दिन का इंटरवल होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात हम करें तो

60 से 75 सेंटीमीटर कतारों से कतारों के बीच तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों से पौधों के बीच की दूरी रखनी चाहिए। पौधों की संख्या, उपयुक्त पौधों की संख्या 66 से 67,000 प्रति हेक्टेयर मेंटेन करनी चाहिए और बीज उपचारित करके इसे लगाना चाहिए। जहाँ तक बीज उपचार की बात है, बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को थिरम 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।

0: हम बीच की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी बता दीजिए।
1: उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं बताऊंगी। स्वीट कॉर्न की खेती के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र की प्रचलित जो भी वैरायटीज हैं इनका चुनाव करें। जैसे भारत में स्वीट कॉर्न की कुछ प्रचलित किस्में हैं, इनमें माधुरी प्रिया, अल्मोरा स्वीट कॉर्न, विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न और सिंजेंटा की शुगर 75 है, इसे आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी उपज देने वाली किस्में मैंने आपको बताई हैं और इनकी मिठास भी 15-20% मतलब सामान्य मक्के से ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए स्वीट कॉर्न को लोग खाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कहाँ लगाई जाती हैं, अनुमोदित क्षेत्र के बारे में मैं बताऊँगी। खरीफ में संपूर्ण भारत में तथा रबी में प्रायद्वीपीय भारत में इसे उगाया जा सकता है।
0: और मैम कटाई का क्या समय होता है, क्योंकि जब हम स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो कटाई का समय बेहद विशेष हो जाता है।
1: खरीफ में इसे 70-75 दिन में हम ये तैयार हो जाता है, इसकी हम कटाई कर सकते हैं। और रबी में 80-85 दिन में ये तैयार हो जाता है, आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो 110-130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे भुट्टे को हम तुड़ाई कर सकते हैं और 250-400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका चारा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये हमारे अगर आपके पास पशु है तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं स्वीट कॉर्न की खेती करके। और उर्वरक प्रबंधन की बात हम करें तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150-170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60-80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60-80 किलोग्राम पोटाश डालनी चाहिए। खेत में अगर जिंक की कमी हो तो 25 kg प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डालना चाहिए। फास्फोरस पोटाश जिंक सल्फेट की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डालें तथा नाइट्रोजन को 5 भागों में बांटकर विभिन्न अवस्थाओं में डालें। और 10% नाइट्रोजन बुआई के समय, 20% नाइट्रोजन 4-5 पत्तों की अवस्था पर डालें, 30% नाइट्रोजन 8 पत्तों की अवस्था पर एवं 30% नाइट्रोजन पुष्पन की अवस्था पर डालें जब उसमें नरमंजरी मादा मंजरी आने लगती है, और 10% नाइट्रोजन भुट्टे की दूधिया अवस्था में जिस समय दूध बनता है उस अवस्था में डालें। उर्वरक को बीज के 7-8 cm के करीब डालना चाहिए।
0: और मैम खरपतवार का कैसे प्रबंध करना चाहिए, उसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
1: जी, खरपतवार प्रबंधन के लिए चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और अन्य खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एट्राजीन 1-1.5 kg को 500-600 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में बुआई के तुरंत बाद लेकिन अंकुरण के पहले छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है, हल्की मिट्टी में 7-8 सिंचाई एवं भारी मिट्टी में 4-5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
0: किस तरीके से फसल कटाई करनी चाहिए और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
1: सिंचाई में हमें ये भी ध्यान रखना है कि पौधे के में जब पुष्पन और दाना भराव का समय होता है उस समय हमें नमी बरकरार रखनी है खेत में, और सर्दी में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जमीन में नमी बरकरार रखें। एवं कीट प्रबंधन की मैं चर्चा कर लूँ, कीट प्रबंधन के लिए आप तनाछेदक कीट है इसे नियंत्रित करने के लिए पौधा जमने के 10 दिन बाद 85% वेजिटेबल पाउडर वाला कार्बोलिल को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गोब में छिड़काव करें। और अंतर्वर्ती फसलें भी इसमें ली जाती हैं विभिन्न प्रकार की, ये खासियत है। तो इसमें आप सर्दी में स्वीट कॉर्न के साथ गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर, गोभी, पालक, धनिया इत्यादि सफलतापूर्वक आप उगा सकते हैं। और स्वीट कॉर्न को मेड़ के दक्षिणी भाग में एवं अंतर्वर्ती फसल को मेड़ के उत्तरी भाग में लगाना चाहिए। स्वीट कॉर्न के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी अंतर्वर्ती फसल की लगाने की स्थिति में 75 cm रखनी चाहिए। अंतर्वर्ती फसलों की खेती शहर के आसपास के क्षेत्रों में

बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और

0: हरे भुट्टे के तोड़ने के बाद बचे हुए हरे पौधे के चारे को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। भुट्टे की तोड़ाई सुबह या शाम में करें ताकि जो नमी है वो बरकरार रहे और ये ज़्यादा मॉइस्चर लॉस ना हो, ताकि मिठास बनी रहे। कटाई उपरांत प्रबंधन की बात करें तो भुट्टे की तोड़ाई के बाद इसे तुरंत मंडी में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे लकड़ी के डब्बे या कार्टून आदि में रखना चाहिए। कमरे के तापमान पर 24 घंटे के अंदर स्वीट कॉर्न के भुट्टे का 50% शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रो कूलिंग एवं पैकेजिंग कर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का ही प्रयोग करें। और ये सारी खासियत है स्वीट कॉर्न में। स्वीट कॉर्न की खेती से किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। इसे काफ़ी चाव से खाया जाता है, इसके विभिन्न व्यंजन बनते हैं तो, और इसका सीड भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, तो किसान भाई इसका बीज को बेच सकते हैं, बीज बनाकर या इसकी खेती करें और इसे काफ़ी लाभान्वित हुए।
1: यानी कि स्वीट कॉर्न उगाने के बाद तो फायदे होते ही हैं और साथ में बीज भी बेचकर किसान भाई बहन बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि जो भी मक्के की खेती करने की सोच रहे होंगे वो स्वीट कॉर्न के बारे में भी सोचेंगे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी।
0: धन्यवाद।
1: आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।

0: मेरे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा,
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
10: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
9: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120

किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुवाई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुवाई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाध बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक एक, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहाँ वो काम करने जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है, क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है, या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है, या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी, या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं और आप इससे संबंधित विभाग तक पहुँचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था, और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है, या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं, या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in, यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए, और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा, और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा, और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा, और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले, तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो, पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों, आखिर शी बॉक्स ज़रूरी

0: क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगे, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों, लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है, तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं, तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज के लिए, तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उससे आपको असहज महसूस हो रहा है, तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है, तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दे, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है, वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है, तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है, तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है, तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है। क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है, ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना, वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है, तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी। उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है। उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं, जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज उठाना ही पड़ेगा। आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
4: So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: हरियाली से खुशहाली तक।
10: उन्नत कृषि।
0: किसान
9: किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आरजे अनु और आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन, जो है आपका पसंदीदा एफएम स्टेशन। और फिलहाल यहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके हर सवाल के जवाब, यानी कि भाई आज का जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित सारे जवाब। तो भाई आप प्याज की बात कर लेते हैं आज, और प्याज जानते हैं ना कि इतना महंगा हो रहा है। फिलहाल अभी थोड़ा सा थमा है इसका ये दाम। और आपको बता दें, प्याज की खेती के लिए हर संभव तरीके अपनाते हैं हमारे किसान भाई, लेकिन अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कौन सा प्रभेद लगाना है, कब सिंचाई करना है, कितने दिनों तक सिंचाई करना है, जलवायु क्या होनी चाहिए। तो बहुत तरह के जो सवाल हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे किसान भाइयों के दिमाग में आते हैं। तो आज मैं बता दूँ कि आपके इस सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर उद्यान विभाग सब्जी विभाग से, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्याज की खेती के लिए जलवायु किस तरह की होनी चाहिए और इसके उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं।
11: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वह अधिकांश भाग जो है शाकाहारी है, इसलिए इस स्थिति में सब्जी का खेती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्याज में विटामिन सी, खनिज पदार्थ एवं लौह, फास्फोरस, कैल्शियम बहुत अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग कई तरह से करते हैं, जैसे मसाला के रूप में करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं, सलाद के रूप में करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी खेती बिहार के प्रायः सभी भाग में या तो व्यावसायिक रूप में या किचन गार्डनिंग के रूप में अधिकांश भाग में करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इसका उपयोग जो है भिन्न भिन्न तरह के व्यंजनों में किया जाता है, इसलिए इसका खेती जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी खेती के लिए सबसे पहले हमें इसके जलवायु कैसी चाहिए, उन्नत प्रभेद क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज शरद मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख सब्जी फसल है। पौधे के शुरू अवस्था में यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जिस समय कि उसका शाकीय बढ़ाव होता है, उस समय 13 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए, और जिस समय कंद बनता है उस समय 20 से 25 डिग्री तापक्रम माने सेल्सियस तापक्रम उत्तम होता है। यदि शाकीय बढ़ाव के समय तापक्रम कम हो जाता है तो पौधे में फूल आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि औसत से ज़्यादा तापक्रम यानी 30 से डिग्री से अगर ऊपर तापक्रम हो जाता है तो सल कंद का बढ़ना बहुत धीमा हो जाता है, साइज बहुत छोटा हो जाता है, फसल बहुत जल्द तैयार हो जाता है, जिससे कि उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। अब है कि इसके लगाने के लिए हमें उन्नत प्रभेद का चुनाव करना जरूरी है, तो इसके खेती के लिए अधिक उपज के लिए उन्नत एवं अनुशंसित प्रभेदों का ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ उन्नत प्रभेद का नाम जैसे हम यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कि पूसा रेड है, एग्री फाउंड लाइट रेड है, पूसा माधवी है, अर्का निकेतन है, अर्का कल्याण है, N53 इत्यादि प्रमुख हैं। बीज की प्राप्ति किसी विश्वसनीय स्रोतों जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, बिहार राज्य बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों या अधिकृत सब्जी बीज विक्रेता से ही प्राप्त कर लगाना चाहिए।
9: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो उन्नत प्रभेद आपने बता दिए, लेकिन जब खेती की बात आती है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है किस तरह की मिट्टी में हम इसकी बुआई रोपाई और बीज की कितनी मात्रा है, उसकी आवश्यकता कितनी है। तो हम आपसे सम्मिलित तौर पर जानना चाहेंगे कि इसकी खेती के लिए यानी प्याज की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और बुआई रोपाई और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
11: ऐसे तो प्याज की खेती सभी प्रकार के मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु हल्की बलुई दोमट मिट्टी विशेष उपयुक्त है। अधिक पैदावार के लिए मिट्टी में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। अब है इसके बुआई का समय, तो रबी प्याज की बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक करना चाहिए। अभी प्याज की नर्सरी में बुआई करने का समय चल रहा है, अतः यथासंभव कोशिश करें कि 15 नवंबर तक इसकी बुआई नर्सरी में अवश्य कर दें। अब है नर्सरी, जब हम बीज नर्सरी में जब इसकी बुआई करते हैं तो वह जो है लगभग 7 से 8 सप्ताह के बीच में वह पौधा मुख्य खेत में लगाने लायक हो जाता है। तो इसकी रोपाई का समय जो है 15 दिसंबर से 15 जनवरी है। और ऐसे बहुत सारे किसान भाई 15 जनवरी के बाद भी लगाते हैं, तो अगर जिनका खेत खाली नहीं है, लेट लगा रहे हैं, तो हर हालत में कोशिश करें कि 15 फरवरी से आगे इसकी रोपाई नहीं करें। अगर 15 फरवरी के बाद अगर रोपाई करते हैं तो इसके उपज में भारी कमी आएगी। इसलिए यथासंभव कोशिश करें कि हम इसकी रोपाई जो है 15 जनवरी तक कर दें। अब इसके बुआई के लिए 1 हेक्टेयर खेत में अगर प्याज लगाना है तो उसके लिए आपको 8 से 10 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी, अगर उच्च क्वालिटी का बीज है तो।
9: अच्छा, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने जाना कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और फिलहाल हम जानते हैं डॉक्टर साहब कि जब प्याज की खेती होती है तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि नर्सरी में बीज बोने के बाद बिचड़ा तैयार करना। तो बिचड़ा तैयार करने के बारे में कुछ बताएं।
11: ऐसे तो लोग कुछ जगहों पर लोग प्याज की खेती छिटवा विधि से भी करते हैं, लेकिन वह कोई उत्तम तरीका नहीं है। इसका सबसे उत्तम तरीका है कि प्याज की खेती के लिए सबसे पहले हम नर्सरी में बीज बोकर उसका बिचड़ा तैयार करते हैं। 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए लगभग 500 से 600 स्क्वायर मीटर नर्सरी की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर हमको 1 हेक्टेयर में प्याज लगानी है तो उसके लिए 500 से 600 स्क्वायर मीटर हमको नर्सरी की आवश्यकता पड़ेगी
9: जी।
11: नर्सरी तैयार करने हेतु खेत को अच्छी तरह से जोतकर तैयार कर लें, तथा उसमें ईंट होगा, पत्थर का टुकड़ा होगा, पौधे के अवशेष वगैरह होगा, उसको निकालकर बाहर निकाल लें। पाटा चलाकर खेत को समतल बना लें, तथा छोटी छोटी क्यारियां एवं सिंचाई का नाला बना लें। उसके बाद प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 से 3 केजी गोबर की सरी खाद, 25 से 30 ग्राम डीएपी तथा 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति क्यारी में डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। यहाँ जो हम बताए हैं कि 1 वर्ग मीटर के हिसाब से, यानी अगर नर्सरी 1 वर्ग मीटर का है, यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, तो उसमें 2 से 3 केजी गोबर का खाद देना है, 25 से 30 ग्राम डीएपी डालना है, 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालना है। उस हिसाब से जितना बड़ा क्यारी है उस हिसाब से आप अभी बताए गए खाद की मात्रा डाल दें। बुआई के समय ध्यान रखें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी अवश्य हो। बुआई के पूर्व बीज को फफूंदी नाशी दवा से उपचारित जरूर करें। इसके लिए 1 केजी बीज में, अगर प्याज का 1 केजी बीज है तो उसमें 2 से 3 ग्राम फफूंदी नाशी, जैसे थीरम है, कैप्टान है, दवा को अच्छी तरह मिला लें। यानी 1 केजी बीज है प्याज का तो उसमें 2 से 3 ग्राम दवा थीरम या कैप्टान को उसमें मिला लें। कभी कभी शिकायत होता है कि पौधा नर्सरी में ही गलने लगता है, तो अगर इस तरह का उस खेत में शिकायत हो तो उसके लिए, इस बीमारी को आद्र गलन कहते हैं, तो अगर इस तरह का शिकायत हो तो नर्सरी को भी आप उपचारित कर लें। इसके लिए बुआई के पूर्व अभी जो बताए हैं दवा थीरम या कैप्टान 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर झरना से नर्सरी को सिंचाई कर लें। अगर इस तरह से सिंचाई कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमको जो आद्र गलन का जो बीमारी है उसके लगने की संभावना नहीं रहती है। उसके बाद जो है बीज बोने के बाद आधा भाग कंपोस्ट हुआ, आधा भाग मिट्टी हुआ, मिलाकर बीज को अच्छी तरह ढक दें। उसके बाद नर्सरी को पुआल है या सूखा घास वगैरह है उससे ढक दें ताकि नर्सरी में नमी एवं तापक्रम बीज जमाव हेतु बना रहे। यदि बीज बोने के बाद खेत में अगर नज़र आए, अगर लगे कि नहीं इसमें नमी की कमी है, तो पुआल या घास से ढके हुए अवस्था में आप झरना से उसकी सिंचाई करें। अगर अब जब बीज का जमाव हो जाता है तो जमाव के बाद पुआल वगैरह जो भी है उसे हटा दें तथा झरना से हल्की सिंचाई करें। जब बीज जम जाता है तो 5-6 दिन के बाद 2 ग्राम बेभिस्टिन दवा 1 लीटर पानी में घोलकर बिचड़ा पर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार नर्सरी को सिंचाई करते रहें। इस प्रकार से लगभग बुआई के 7-8 सप्ताह बाद बिचड़ा रोपने लग तैयार हो जाएगा।
9: तो किसान भाइयों, आपने डॉक्टर साहब से सुना विस्तार में कि बिचड़े की तैयारी कैसी होनी चाहिए, और जहाँ तक रोपाई की बात है तो वो भी जानेंगे, और साथ में ये भी जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब हम कि खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि बिचड़े की रोपाई कैसे करें हम।
11: बिचड़े की रोपाई है तो खेत को अच्छे तरह तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, जिसको कि मोल्ड बोल प्लाव कहते हैं, उससे पहली जुताई करनी चाहिए। उसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से या देसी हल से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलावें ताकि खेत समतल एवं मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय लगभग 250 क्विंटल गोबर की सरी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी में मिला दें। उसके बाद सुविधा अनुसार छोटी छोटी क्यारियां एवं सिंचाई हेतु नाला बना लें। रोपाई के एक दिन पूर्व 200 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं यूज करते हैं, नहीं प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के जगह 100 केजी यूरिया। उसके बाद आपको 350 केजी सिंगल सुपर फास्फेट तथा 125 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से क्यारी में डालकर मिला दें तथा क्यारियों को समतल बना लें तथा क्यारियों की सिंचाई कर दें। सिंचाई के एक दिन बाद बिचड़े की रुपाई उचित दूरी पर करें। रुपाई है तो कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बिचड़ा रोपने के पूर्व शीर्ष भाग में से लगभग 25% काटकर हटा दें ताकि रोपे गए बिचड़े को स्थापित होने में मदद मिलता है। रोपाई के 5-6 दिन बाद पुनः एक बार हल्की सिंचाई करें।
9: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बारी आती है खाद की, तो खाद की जो मात्रा है हम कैसे दें, कब दें, अगर वो सही समय पर हम अपने फसलों में देते हैं, तो यहाँ पर प्याज की खेती की बात हो रही है तो जो है वो अच्छे तरीके से इनकी फसलों में बढ़वार होती है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम खाद कितना दें और कब दें।
11: प्याज की फसल में उचित समय पर उर्वरक का प्रयोग करना अति आवश्यक है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये सब उर्वरक को हम लोग नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की दूसरी किस्त, पहली किस्त चूँकि हम रुपाई के पूर्व ही खेत में डाल चुके हैं, इसलिए दूसरी किस्त जब नाइट्रोजन के डालेंगे तो बुआई के 30 दिन बाद नाइट्रोजन की दूसरी किस्त डालेंगे। तीसरी किस्त जो है रोपाई के 60 दिन के बाद करेंगे। इसके लिए प्रत्येक बार यानी दूसरी और तीसरी किस्त के लिए 200 केजी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं प्रयोग करते हैं तो 100 केजी यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में समान रूप से छिटक दें। यदि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो खाद डालने के बाद सिंचाई करना आवश्यक है, परंतु यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद करना चाहिए। यानी सिंचाई कर दें तब यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करें, यानी कि उसकी छिड़काव करें, यानी उसे छिटक दें समान रूप से। यूरिया डालने के पहले खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि किसान भाई एक ही खेत में प्रतिवर्ष प्याज लगाते हैं। शुरू में तो उपज अच्छी मिलती है, परंतु कुछ वर्षों के बाद उपज में कमी मिलने लगती है। इसका मुख्य कारण यह है कि लगातार एक ही खेत में प्याज उगाने से खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूरा करना जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक 2-3 वर्षों पर, यानी 2-3 वर्ष प्याज की खेती कर रहे हैं तो एक बार कम से कम उसमें जो है 20-25 kg जिंक सल्फेट, 10-15 kg बोरेक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत के अंतिम जुताई के समय ही खेत में डालकर मिला लें, ताकि पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके।
9: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि खाद के बाद जो है वो सिंचाई करनी चाहिए, तो हम जानना चाहेंगे कि कब और कितने दिनों पर सिंचाई करें हम?
11: प्याज में उचित समय पर सिंचाई करना आवश्यक है। हल्की मिट्टी वाले खेत को, जो जिस खेत की मिट्टी हल्की है, उसे 4-5 दिनों के अंतराल पर, तथा जिस खेत की मिट्टी भारी है, जिसे कि केवाल मिट्टी वगैरह है, उसमें जो है 6-7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। सल्क कंद बनते समय, यानी कि जिस समय प्याज का कंद बनना शुरू हो जाता है, उस समय सिंचाई में कमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सल्क कंद का बढ़वार जो है बहुत कम जाता है, जिससे उपज पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सल्क कंद पूर्ण होने पर सिंचाई बंद कर दें, यानी कि प्याज उखाड़ने के 10-15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। कभी कभी सल्क कंद बनते समय कुछ पौधों में फूल आ जाते हैं, जिसे तोड़ देना चाहिए, अन्यथा प्याज की गुणवत्ता खराब हो जाती है, तथा ऐसे प्याज का बाजार भाव भी बहुत कम मिलता है।
9: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर प्याज में अब बीमारियों की बात कर लेते हैं, और हमारे जितने किसान भाई मेहनत करते हैं तो कई बार कीट के प्रकोप से जो बीमारियाँ हैं वो फैल जाती हैं प्याज के इन पौधों में, तो इनके नियंत्रण के लिए हम क्या करें?
11: इसमें मुख्य रूप से थ्रिप्स नामक कीड़ा का प्रकोप होता है। प्याज का यह बहुत ही प्रमुख कीड़ा है, इससे प्याज का बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है। तो इस कीट से बचाव के लिए कीटनाशी दवा, जैसे मोनोक्रोटोफास है, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में, या इमीडा क्लोरोपीड कीटनाशी दवा है, उसका 1 ml 3 लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिनों के अंतराल पर 2-3 छिड़काव करें। बीमारियों में पर्पल ब्लाउ, जिसे बैंगनी धब्बा कहते हैं, तथा एस्टेमफिलियम झुलसा रोग लगता है, तो इन दोनों रोगों से बचाव के लिए मेनकोज दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। प्याज में छिड़काव करने में ध्यान यही रखना है कि, जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज का पत्ता खड़ा होता है, चिकना होता है, तो कोई भी दवा जब हम स्प्रे करते हैं तो दवा जो है उसके पत्ती पर सही ढंग से टिक नहीं पाता है, जिससे कि हमें वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए घोल में जो है हम कोई भी किसी तरह का चिपकने वाला पदार्थ, जिसको स्टिकर करके बाज़ार में मिलता है, तो स्टिकर जैसे सेंडोविट है, टिपाल है, और इसी तरह से कई तरह का मार्केट में मिलता है, तो उसका 0.5 ml 1 लीटर घोल में डाल कर ही स्प्रे करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो दवा छींटे हैं उसका वांछित लाभ आपको मिल पाएगा।
9: अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे अंत में इतनी मेहनत करने के बाद हमारे किसान भाई का वक्त आता है कि प्याज की खुदाई करें और इसका भंडारण करें और इसका इसे जो है वो जो है मार्केट तक ले जाएं और मुनाफा पाएं। तो हम जानना चाहेंगे कि अंत में कि प्याज की खुदाई और भंडारण कैसे कर सकते हैं।
11: प्याज की फसल रोपाई के बाद यानी जब हम बिचड़ा रोपते हैं तो 100 से 120 दिन में वो तैयार हो जाती है।
9: जी जी,
11: प्याज तैयार मेरा हुआ कि नहीं हुआ उसकी परिपक्वता की पहचान जो है पौधों को पत्तियां देखकर कर सकते हैं।
9: अच्छा,
11: जब पत्तियां का ऊपरी भाग लगभग 60% सूख जाती है तो हम समझते हैं कि अब प्याज उखाड़ने लायक हो गया है। सल्क कंदों को जब जमीन से बाहर निकालने के बाद उसके गर्दन के पास से 2 सेंटीमीटर छोड़कर यानी कि 2 सेंटीमीटर गर्दन छोड़कर शेष सभी पत्तियों को काटकर अलग कर देते हैं। उसके बाद कटे फटे कुछ प्याज जुड़वा होगा, कुछ प्याज का बहुत मोटा गर्दन होगा, तो ये सब को हम अलग कर देते हैं क्योंकि ये भंडारण में खराब हो जाती है। तो इस तरह का प्याज है तो उसको आप जो है यथाशीघ्र जिस दाम में बिकता है उसे बाजार में बेच दें। उसके बाद कंदों को छायादार एवं हवादार जगह में 10-15 दिनों तक सुखाने के बाद ही भंडारण करना चाहिए। भंडारण वैसी जगह में करें जो छायादार हो, हवादार हो एवं सूखी हो। भंडारित प्याज को 20 से 25 दिन के अंतराल पर पलटते रहें। पलटने के समय कुछ प्याज आपको सड़ा हुआ मिलेगा, कुछ अंकुरित होगा, तो ये सब को पलटते समय चुन लेना चाहिए और इसको भंडारण से अलग कर देना चाहिए।
9: अच्छा,
11: तो प्याज के वैज्ञानिक खेती पर मुख्य रूप से ये सब अगर हम करते हैं तो आशा के अनुसार हम उपज प्राप्त कर सकते हैं।
9: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और किसान भाइयों, आपको तो पूरी जानकारी मिल ही चुकी होगी क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से लेकर अंत तक प्याज की वैज्ञानिक खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। तो आशा करती हूँ कि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और जब आप प्याज की खेती करने जाएंगे तो डॉक्टर साहब की बातों को दिमाग में ज़रूर लाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही और अगले दिन अगले विषय के साथ आप सभी से मुलाकातें होंगी। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और करते रहें यूँ ही खेती और स्वस्थ खेती। नमस्कार।

0: नजरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है

0: लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पर गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए।

0: ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए।
3: 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
0: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
0: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
0: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताजा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ पांची के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
2: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
2: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
2: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
0: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
2: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
0: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
2: जी बिल्कुल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
0: विमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है
2: जी।
0: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं
2: जी। यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं, बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
2: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
0: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान, या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
2: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
0: जी जरूर, हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
2: जी तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
0: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
2: जी
0: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
2: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
0: श्रोता, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
2: आपने कहा वाग देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
0: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
2: जी
0: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
2: तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओ, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
2: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
0: जी हाँ बिल्कुल। तो आइए श्रोताओ, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
2: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
2: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
0: सीखो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
3: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
3: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
3: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
3: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो। सीखो
0: जगना और जगाना,
3: जगना और जगाना।
0: लता और पेड़ों से सीखो,
3: लता और पेड़ों से सीखो।
0: सबको गले लगाना,
3: सबको गले लगाना।
0: दीपक से सीखो जितना,
3: दीपक से सीखो जितना।
0: हो सके अंधेरा हरना,
3: हो सके अंधेरा हरना।
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
0: सच्ची सेवा करना,
3: सच्ची सेवा करना।
0: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे।
0: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे।
0: जीवन पथ में बढ़ना,
3: जीवन पथ में बढ़ना।
0: और धुएं से सीखो हरदम,
3: और धुएं से सीखो हरदम।
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही, उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
5: तेजा सिंह, और चाट बना दे यार, सवेर होगी।
2: हैं साहब,

0: विभीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्ष दर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
0: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
4: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
3: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
5: चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
2: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
6: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
2: कुसुमलता,
6: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
6: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: नमस्ते क्लास। टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
9: जी
8: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
9: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
8: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
11: So, see you at the vaccination center soon.
12: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
13: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
14: हर घर सूर्य घर।
15: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
16: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
15: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
17: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
18: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
19: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
18: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
20: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
18: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
21: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
18: उन्नत कृषि। नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं 90.8 MHz पर। मैं हूं अनु और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन। तो आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं मटर की वैज्ञानिक खेती। जी हां, सब्जियों की बात करें खास तौर पर ठंड के मौसम में, और उस समय मटर हमें खाने को मिलता है, तो किसान भाई बहुत ही मेहनत से इसे उपजाते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी को मटर की खेती के बारे में और भी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद कुमार, जो कि आपको बताएंगे कि मटर की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, और साथ ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं।
22: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो मुख्यतः मटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में।
18: तो डॉक्टर साहब, मटर की खेती सब्जी फसल के लिए की जाती है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होंगी उसके बारे में बताइए।
22: सब्जियों में मटर का महत्वपूर्ण स्थान है। मटर की खेती सब्जी फसल के लिए भी की जाती है, मुख्यतः यह सब्जी फसल में ही की जाती है। यह कम समय में अधिक पैदावार देने वाली फसल है, जिसके कारण व्यापारिक दलहनी फसल में इसकी गिनती होती है। मटर में राइजोबियम जीवाणु मौजूद होते हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, इसलिए मटर की खेती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी की जाती है। मटर में अनेक प्रकार के पोषक तत्व, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन और आयरन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, इसलिए मटर का सेवन हर आदमी को करना चाहिए, जिससे मानव शरीर के लिए यह काफ़ी लाभदायक पाई गई है। मटर को विशेषकर सब्जी बनाकर खाने का इस्तेमाल में लाया जाता है। हमारे यहाँ मटर की खेती फलियों को बेचने तथा दानों को पकाकर बेचने के लिए भी की जाती है, जिससे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं।
18: डॉक्टर साहब, अब हमारी श्रोताओं को आप ये बताएं कि अच्छे उत्पादन लेने के लिए मटर में कौन कौन सी प्रमुख शस्त्र क्रियाएं किसान भाइयों को अपनानी चाहिए।
22: मटर की अच्छी उत्पादन लेने के लिए किसान भाई जो शस्त्र क्रियाएं मुख्य अपनानी चाहिए, उसमें है सबसे पहले हम लोग को मिट्टी का जो खेत का चुनाव करने में सावधानी बरतनी चाहिए। मटर की खेती हर तरह के मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन गंगा के मैदानी भागों में गहरी दोमट मिट्टी को इसके लिए सबसे उत्तम पाया गया है। मटर की फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। खेत की तैयारी के समय किसान भाइयों को यह ध्यान देना है कि मटर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय जो होता है वह 15 अक्टूबर से 15 नवंबर सबसे उपयुक्त समय है, इसीलिए इस माह से पहले ही खेत की मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लें। खरीफ की फसल की कटाई के बाद भूमि को अच्छी तरह से जुताई करने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 बार हैरो चलाकर जुताई कर लें। 2-3 बार जुताई करने के बाद पाटा लगाकर भूमि तैयार कर बुवाई करें। मटर की खेती के लिए मिट्टी में नमी होना बेहद जरूरी है। सबसे जो महत्वपूर्ण जो शस्त्र क्रिया है उसमें है बीज दर। किसान भाइयों को ध्यान में रखकर देना चाहिए, जो बीजों के आकार और बुवाई के समय के अनुसार बीज दर हो सकती को अनुशंसित की गई है। समय पर बुवाई ऊंचाई वाली किस्म के लिए 75 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। यदि हम विलंब से और बौनी किस्म के लिए कर रहे हैं तो 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज होना चाहिए। सबसे जैसे हम लोग कृषि में कहते हैं कि हम लोग को जो बीज लगानी चाहिए वो पंक्ति में लगानी चाहिए और देसी हल या सीड ड्रिल या मल्टी सीड ड्रिल से पंक्ति में लगाएं और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करनी चाहिए, जबकि पंक्ति से में पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोनी किस्म के लिए बीज दर मुख्यतः 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त पाई जाती है। और जैसा कि हम लोग दलहनी फसल में बीजोपचार एक महत्वपूर्ण हमारा जो शस्त्रक्रियाएँ हैं वो होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मटर में जो मुख्य जो रोग लगता है वह है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम लोग चूर्णी फफूंद कहते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए बीज उपचार अत्यंत ही जरूरी है। जैसे तो बीज जनित रोगों के बचाव हेतु जो फफूदनाशक दवा थायरम प्लस कार्बेंडाजिम 2 ग्राम थायरम 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और रस चूसक कीटों के लिए बचाव हेतु थायमेथोक्सोन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। और उसके बाद वायुमंडलीय नेत्रजन के स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम, जिसे मटर के लिए अलग मटर फसल के लिए अलग राइजोमियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है लिगमिनोसोरम। और अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तन करने हेतु पीएसबी कल्चर 5-10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। राइजोमियम से बीजों को उपचारित करने के लिए उपयुक्त राइजोमियम कल्चर जैसे मैंने बताया लिगमिनोसोरम का 1 पैकेट 250 ग्राम 10 किलोग्राम बीज की दर के लिए प्राप्त होता है। बीजों को उपचारित करने के लिए 50 ग्राम गुड़ ले लें और 2 ग्राम उसमें गोंद मिला दें और 1 लीटर पानी में घोलकर गर्म करके उसका सबसे पहले किसान भाई मिश्रण तैयार कर लें और सामान्य तापमान पर उसे ठंडा होने दें और ठंडा होने के पश्चात उसमें 1 पैकेट राइजोमियम कल्चर डालें और अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण में बीजों को डालकर अच्छी तरह से मिलाने के बाद बीज के चारों ओर इसका एक इस तरह मिलाना चाहिए कि एक लेप लग जाए और बीजों को छाया में पहले सुखा लें और फिर तत्पश्चात उसके बाद बुआई करें, क्योंकि राइजोमियम फसल विशेष के लिए होता है, इसलिए मटर के लिए संस्तुत राइजोमियम का ही प्रयोग करना चाहिए।
18: मटर के अनुशंसित किस्मों के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
22: मटर की अनुशंसित उन्नत प्रजातियों के बारे में अब हम किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं। हमारे जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के द्वारा जो हम लोग जिस क्षेत्र में पढ़ते हैं, बिहार जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, उस क्षेत्र के लिए अभी 2021 में एक बहुत अच्छी मटर की प्रभेद विकसित की गई है IPFD 13-2, जिसका नाम अनंत है, जो अधिसूचित की गई है। यह प्रभेद 6 से 138 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज बहुत अच्छी 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह जो मटर में चूर्णी फफूंद जो मेन जो रोग लगता है उस रतुआ रोग के प्रति यह प्रतिरोधी है और फली छेदक के प्रति भी मध्यम प्रतिरोधी पाई गई है। और दूसरी सबसे अच्छी किस्म जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो विकसित की गई है वो IPFD 12-8, जिसको आकाश के नाम से अधिसूचित की गई है। इसकी औसत उपज 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह 2020 में विमोचित की गई है। यह चुनी फफूंद के रतुआ रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी किस्म है। इसी तरह दंतीवाड़ा मटर 1 को गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2021 में विकसित की गई है। यह भी बहुत अधिक उपजशील किस्म है। इसकी औसत 17 से 18 क्विंटल पर हेक्टेयर है। यह 120 से 123 दिनों में तैयार होने वाली किस्म है। यह भी चूर्णी फफूंद के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसी तरह हमारा दूसरा जो कृषि में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो वाराणसी में है, उसके द्वारा भी बहुत अच्छी अच्छी मटर की किस्में विकसित की गई है। उसमें काशी समृद्धि, काशी नंदनी और काशी मुक्ति है। काशी नंदनी मटर की अज्ञाती पैदावार देने वाली किस्म है। इस किस्म के पौधे की बीज के रोपाई के लगभग 50 दिनों के बाद पहली तुराई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके फली जो लगती है उसमें दानों 7 से 8 पाई जाती है। इसकी फली का औसत उपज 110 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हरी फली का जो औसत उपज होता है वह 110 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और दूसरे किसान भाई सबसे अच्छा भी काशी समृद्धि जो अभी हाल के वर्षों में इसको भी अधिसूचित और विमोचित की गई है कि हरी फली का इसका औसत उपज 125 क्विंटल पर हेक्टेयर, एक फली में 7 से 8 बीज पाए जाते हैं और चूनी फफूंद के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। इसी तरह तीसरी जो प्रभेद विकसित की गई है वह काशी मुक्ति, ये भी एक अगेती किस्म है। इसमें 50% फूल 35 से 36 दिनों में ही आ जाती है। यह बहुत अच्छी अगात प्रभेद है, जिसे बाजार में जल्दी से किसान भाई इस

0: दे, और भी बहुत से प्रभेद हैं जिसका किसान भाई जैसे बहुत सा प्राइवेट कंपनी भी इसका संकर बीज भी मिलता है और किसान भाई भी इसकी खेती करें तो अच्छी उपज ले सकते हैं।
1: मटर में लगने वाले कीट रोग व्याधि कौन कौन से होते हैं और इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए?
0: मटर में लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं उसमें है चूर्णी फफूंद। इस रोग से फसल को अधिकतम मटर में हानि होती है। इसका जो मुख्य है जो कॉज है वो है कि नम वातावरण में यह रोग बहुत तेजी के साथ फैलता है जिसके कारण तने और पत्तियां पर सफ़ेद चूंड जमा हो जाता है। इसके नियंत्रण हेतु अनुशंसित दवा बुआई के समय सबसे बड़ा जो हम बता चुके हैं बीजोपचार हेतु थायरम एवं कार्बेंडाजिम 2 ग्राम थायरम 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से बीजोपचार कर दें और या मैंको जैविक दवा आती है जिसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर या 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से खरीफ फसल पर रोग के लक्षण पर परिलक्षित होने पर किसान भाइयों को छिड़काव कर देना है। दूसरा जो रोग इसमें लगता है फफूंदनाशक रोग है मृदोरुमिल फफूंद। यह बीमारी पत्तियों के निचली सतह पर लगती है। इसके नियंत्रण हेतु 3 किलोग्राम सल्फर 80% WP या डाइनोकेप 48% इसी 2 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें। मटर में जो प्रमुख कीट लगते हैं उसमें फली छेदक कीट अंदर फली छेदक कीट फली में छेद कर हानि पहुँचाते हैं। यह कीट फलियों के अंदर अंडे देते हैं और फलियां तथा दाने को खा जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु प्रोपेनोफॉस 50 ईसी जो दवा उपलब्ध होती है उसका 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से फसल के प्रकोप होने पर किसान भाई को छिड़काव कर देना चाहिए जिससे इस कीट से फसल को निजात मिल सके। दूसरा जो प्रमुख कीट है उसमें स्टेम फ्लाई और लीफ माइनर प्रमुख कीट हैं जो मटर में लगते हैं। यह कीट तना एवं पत्ती के रस को चूस लेते हैं। लीफ माइनर के कारण पत्तियां पर सफ़ेद रंग की धारियां से दिखाई देती है। इसके नियंत्रण के लिए फोरेट टेंजी कीटनाशक दवा आती है जो खेत की तैयारी के समय ही किसान भाई को मृदा उपचार कर दें। और इसी तरह एक माहू यह कीट पत्ती और फूल और फलियां रस चूसते हैं। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोपीड दवा जो 17.8 SL दवा को 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। मटर की फसल में दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो खरपतवार नियंत्रण की होती है। तो खरपतवार की यदि समस्या किसान भाई को अपने खेत में दिखाई दे तो व्हील या हैंड हो द्वारा निकाई गुड़ाई करें जिससे फसल के जड़ क्षेत्र में वायु का संचार बढ़ सके तथा खरपतवार नियंत्रित होने के साथ साथ पौधों की शाखाएँ और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। रसायनों द्वारा खरपतवार यदि नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन दवा जो 2.5 से 3 लीटर दवा बुआई से 1 से 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर 500-700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। मटर की फसल सामान्यतः 130 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी कटाई हसुआ से करनी चाहिए और 5 से 7 दिन धूप में अच्छी तरह से सुखा लेने के बाद किसान भाइयों को थ्रेसिंग इसकी करनी चाहिए। हम भंडारण के दौरान कीटों से सुरक्षा के लिए अल्मोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग करें जबकि हरी फलियां बुआई से 60 से 70 दिन के किस्म के अनुसार तैयार हो जाती है। मटर की खेती किसान भाई उपयुक्त वैज्ञानिक तरीके से और उत्तम कृषि कार्य प्रबंधन से लगभग पकी हुई अवस्था में 18 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यदि करते हैं तो उसके हिसाब से पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। हरी फलियों में किसान भाई 90 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज किसान भाई आराम से इसमें प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों इस प्रकार आप अगर मटर की खेती करते हैं तो आपको मुनाफा होगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप मटर की खेती कर सकते हैं। अगले दिन एक अलग विषय के साथ एक अलग जानकारी के साथ हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए।

0: चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
6: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
13: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
12: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। है। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे, या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
14: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1-7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा 1.5-2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5-6 विकास की अवस्था के बाद 40-60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3-7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1,500 ppm का 3-5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5-3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1-1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक, उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
8: सामुदायिक रेडियो FM
15: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
16: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में और आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी। मैं भी मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
0: मैम आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
1: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बेसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं, बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, उसी के तरह बैसिलस हो गया या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
0: तो मैम जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
1: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफूंद का जो माइसेलिया होता है या फफूंद की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफूंद की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया, फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कंपटीशन करता है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
0: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बेसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है।
1: जी,
0: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है।
1: जी,
0: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बेसिलस?
1: तो जैसे मैंने बताया पहले से कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से, मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीत ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बेसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बेसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
1: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर एक किलो बीज है तो एक किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इस पे इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है, और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड, या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा, उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो, और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
2: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
1: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया, या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंगिसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है, ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
2: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं, और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
1: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टिगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट, बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कि ये बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए, तो ज़रूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइज़र दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज़ कर सकते हैं और वो सभी जगह पर अवेलेबल भी है।
2: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाज़ार में वो आसानी से मिल।
1: जी बिल्कुल।
2: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
1: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ। था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में। इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में, आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
2: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक विशेष योजना के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे किसान भाई बहनों के लिए मशीनों का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, और अगर उनके पास मशीन है, उपयुक्त किस्म के मशीन है, तो उनके लिए बहुत फायदा होता है, और समय पर वो बुआई कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, और कई तरह की चीजें होती है जो मशीनों की मदद से आसानी से की जा सकती है। इससे उनका लागत भी कम होता है। लेकिन किसान भाई बहनों के लिए परेशानी तब हो जाती है जब मशीनों में उन्हें लागत लगाने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। ऐसे में सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, उनमें से एक है कृषि यांत्रिकीकरण। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं, ये योजना क्या है और इसके लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसेस है, सारी चीजें जानते हैं श्री निशांत कुमार से। सर, आप हैं उपनिदेशक कृषि अभियंत्रण भागलपुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
0: सर, ये योजना क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
9: जी, सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी किसान भाई बहनों, माताओं, सभी लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज ये सौभाग्य है मेरे लिए कि आज मुझे यहाँ बैठ के आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है और आप लोगों को योजना के बारे में बताने का प्रयास कुछ किया जाएगा। तो मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी लोगों से कि काफी ध्यानपूर्वक हमारी बातों को आप सुनेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपका कोई भी सवाल या जवाब नहीं रह जाएगा, और अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, जिसमें फिर आप योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। देखिए, कृषि यांत्रिकरण योजना कोई नई चीज नहीं है किसान भाइयों, आप लोगों को पहले से पता है। आज से करीब 12-13 साल 14 साल हो गए इस योजना को चलते हुए। हाँ, ये है कि योजनाओं में बहुत सारी चीजें बदलाव लाई गई हैं। भागलपुर ऐसे जिले में जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ का मैं उपनिदेशक कृषि अभियंत्रण हूँ, इस जिले में भी अगर देखें तो कृषि की विविधता है। जैसे अगर हम गंगा की उस तरफ जाते हैं नगोचियान मंडल में, तो हम देखते हैं कि जो रबी का सीजन आप लोग कहते हैं, ठंड का जो सीजन है, तो रबी सीजन में जो क्रॉप उधर लगते हैं वो क्रॉप की ज्योमेट्री या फिर उसका जो आपका लगाने की पद्धति है वो अलग है और क्रॉप भी अलग है। ज्यादा करके नगोचियान मंडल में आप लोग मक्का की खेती करते हैं रबी सीजन में। बहरहाल, अगर हम लोग गंगा की इस तरफ आते हैं, जगदीशपुर, पीरपैती, कहलगांव, नाथनगर, बाकी भी जो भी हमारे प्रखंड हैं, इन सभी प्रखंडों में हमने देखा है कि ठंड के मौसम में ज्यादा करके गेहूं की खेती की जाती है। मक्का मतलब कम है इधर, गेहूं है या फिर उसके अलावा और कुछ फसलें हैं। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो अपना डाइवर्सिटी है, जो एग्रीकल्चर में विविधता है, इस विविधता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने योजना को सरकार के स्तर से क्रियान्वित करवाने का प्रयास किया है कि उसको ध्यान में रखते हुए उन तरह के मशीनों को अपने जिले में लक्ष्य रखा जाए जिन मशीनों को किसानों को जरूरत है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी मशीन हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ ऐसी भी चीजें योजना में शामिल की गई हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था और पहली बार ही शामिल किया गया है, जिसमें अगर किसान भाई जुड़ते हैं या उसका लाभ उठाते हैं तो मुझे लगता है कि उनके जीवन स्तर में काफी सुधार होगा, उनके आय की वृद्धि होगी, आय दुगुनी तिगुनी होगी और आगे भी उनका जीवन सफल रहेगा। देखिए, कृषि यांत्रिकरण योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कि सारा चीज जो है ऑनलाइन है। अपने भागलपुर जिले में कुल 68 यानी 68 प्रकार के यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिसका कि कुल भौतिक लक्ष्य है 2300 और वित्तीय लक्ष्य अगर हम बात करें तो 5 करोड़ है। ये योजना के अंतर्गत पहले घटक की मैं बात कर रहा हूँ, कृषि यंत्रों पर अनुदान। जो इंडिविजुअल फार्मर हैं वो अगर यंत्रों पर अनुदान चाहते हैं तो उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो वो 2300 का कुल हमारा टारगेट है भौतिक, और जिसमें कि यंत्र हैं के प्रकार हैं 68 यानी कि 68 प्रकार के यंत्रों पे भागलपुर जिले में अनुदान दिया जा रहा है। जनरली मैं देखा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सभी जिलों का लगभग यही मतलब देखने को मोटा मोटी मिलता है कि आप जुताई के मशीन, थ्रेसिंग के मशीन और पावर स्प्रे, ऐसे मान लीजिए कि आपको अगर स्प्रे करना हुआ फसलों में, उसके मशीन के आवेदन तो आप करते हैं, परंतु वो खेती की पायदान जिसमें मशीनों की नितांत आवश्यकता है उसका आवेदन हमारे पास नहीं आता है। अगर हम खेती की बात करें तो प्रथम चरण में आप लोग क्या करते हैं, खेतों की तैयारी करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, तो जुताई का तो हमारे पास यंत्र के मशीनों का आवेदन चला आता है, परंतु बुआई के लिए मशीन बहुत कम आवेदन प्राप्त होता है। अगर आप लाइन सोइंग करेंगे, लाइन सोइंग करने से खाद कम लगता है, पानी कम लगता है, इन तरह से पद्धति अपनाने से होगा कि आपका बचत होगा पैसे का और आपको निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होगी, तो बुआई के मशीनों में आप लोगों का आवेदन नहीं रहता है। उसी प्रकार से कटाई के मशीनों की जहां तक बात है, तो कटाई के समय देखता हूं कि एक तो बिहार में वैसे ही लेबर कम मिलते हैं, क्योंकि यहां पे जो भी लेबर है सब बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बाहर में ज्यादा पैसा मिलता है तो बाहर चले जाते हैं। जैसे भी दुर्गा पूजा समाप्त होगा उसके बाद धान की कटाई शुरू होगी, आप लेबर ढूंढेंगे आपको लेबर नहीं मिलेगी, तो इसलिए कटाई के मशीनों पर भी सरकार ने खासा ध्यान रखा है और कटाई के मशीनों में टारगेट दिया है, तो कटाई के मशीन में भी आवेदन आप लोग करें। उसके बाद चौथा पायदान हमारा आता है थ्रेसिंग, तो थ्रेसिंग में कमोबेश आवेदन प्राप्त हो जाते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। देखिए कुल 68 प्रकार के मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिस पर अनुदान 40% से 80% है। इसमें क्या है कि आप जैसे कुछ मशीनों का मैं नाम लेना चाहूंगा जो पहले से चल रहे हैं मशीन, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करके फायदा नहीं है। रोटावेटर, कल्टीवेटर, जिसको आप लोग फाड़ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, या फिर तवा कहते हैं डिस्क हैरो को, ये सब चीजें तो आप लोग जान रहे हैं। जो जानकारी नहीं है वो आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। एक किट आया हुआ है, स्मॉल एग्रीकल्चर मैनुअल किट, जिसमें कि आपको दो तरह के काटने वाले जो हसुआ होते हैं, काटने वाला हसुआ मिलेगा, एक उसमें खुरपी मिलेगी, एक आपको निराई गुड़ाई करने वाली खुरपी मिलेगी जिसमें पंजा टाइप का बना होता है, पांच उंगली तरह का। ये कुल मिला के 5-6 उसके अंदर छोटे छोटे टूल्स हैं जो कि एक बैग में पैक है और वो बैग का नाम है किट। और ये बैग जो है, हाँ, एक कुदाल भी है उसमें। और ये बैग जो है, इस बैग का मूल्य है 1000 रुपया, जिसमें किसान को मात्र 300 रुपया देना है, 700 रुपया उसको अनुदान मिल जाएगा। किसान को पूरा पैसा देके, पूरी राशि दे करके तब यंत्र क्रय करना है, उसके बाद जो अनुदान की राशि है उनके खाते में चले जाएगी डीबीटी के माध्यम से। तो एक तो आपका ये हो गया कि जो छोटे किसान हैं, मझले किसान हैं, वो योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से गेहूं की बुआई के लिए एक मशीन है सुपर सीडर। ये सुपर सीडर बहुत अच्छी मशीन है। हम लोग कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में कि एक तीर से दो निशाना होता है, बट ये मशीन ऐसी है, ये मशीन ऐसा है कि एक तीर से तीन निशाना करती है। अब पूछेंगे कैसे, तो सुपर सीडर क्या करती है, पहले तो खेत को ये जोत लेती है, जोतने के बाद क्या है कि ये बुआई कर देती है एक ही टाइम में। मैं अलग अलग टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही टाइम में, एक ही समय में ये खेत को जोतती भी है। जो आपके फसल अवशेष हैं जिनको हम लोग पराली कहते हैं, उसको ये खेत में जोत के मिला देती है। उसी समय में ये गेहूँ को पीछे से लाइन में एकदम बढ़िया से सोइंग करते जाती है, और ठीक उसी समय जो सोइंग किया हुआ जो बीज है आपका, जो लगाया हुआ बीज है खेतों में, उसको ये पीछे से पट्टा मार के ढक भी देती है ताकि कोई चिड़िया उसको चुग ना जाए। तो है ना, मतलब एक टाइम पे ही, एक तीर से ही तीन निशाना इसने कर लिया। सुपर सीडर चलाने के लिए आपको कम से कम 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। अनुदान की अगर बात करें तो 1.5 लाख रुपये से अनुदान है। किसान को अपने जेब से अगर लगाना होगा तो 1 से 1.25 लाख रुपये लगाना होगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि सुपर सीडर जब भी ले तो 7 फीट का लें। 6 फीट में भी अवेलेबल है, 7 फीट में भी अवेलेबल है और 8 फीट में भी अवेलेबल है, परंतु 7 फीट का ज़्यादा चलता है, सक्सेस भी है, तो सुपर सीडर आप ले सकते हैं। जीरो टिलेज की अगर हम बात करें तो जीरो टिलेज मशीन से भी सभी किसान अवगत हैं, नहीं भी अवगत है तो मैं बता देता हूं। इसका नाम है शून्य जुताई मशीन। ये बोने के लिए यूज में आता है, आप इससे गेहूं बो सकते हैं। लेकिन बोने के लिए क्या है कि जो खेत से आप फसल काट चुके हैं उसमें आपको आगे अब जुताई नहीं करनी है, बिना जुताई किए ही आपको उसमें शून्य जुताई किए हुए ही आप मशीन को चलाना है। ट्रैक्टर के साथ इसको पीछे बांध दीजिए देंगे और आप जो है बीज डाल के गेहूं का इससे बुआई कर सकते हैं। इसको चलाने से फायदा ये होता है कि खेत में ये बिल्कुल पतली लकीर सी बनाते हुए बीजों का बुआई अच्छे से कर देते हैं, और ये भी लाइन सोइंग करता है, एक लाइन से सीड आपके लगे रहते हैं। और जो खेत में जो आप मिट्टी को जब नहीं पलटते हैं तो बहुत सारे ऐसे मित्र कीट हैं या बैक्टीरिया हैं जो अच्छे हैं, जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट टच में नहीं आते हैं और वो नष्ट होने से बच जाते हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी के अंदर नमी है वो बरकरार रहती है। इरीगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जिसको आप लोग पटवन कहते हैं, तो पटवन में पानी भी आपका कम लगेगा। तो शून्य जुताई जहां तक मुझे लगता है कि कुछ किसानों को अभी तक फायदा तो पहुंचाया है, परंतु शून्य जुताई को देख के ये साल प्रतीत भी होता है कभी कभी कि बहुत किसानों को अभी तक पूरी इसकी जानकारी नहीं है। मैंने ये भी देखा है कटिहार जिले में कि खेत को पूरा जोतने के बाद जीरो टिलेज मशीन से हम बुआई कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसका नाम ही है जीरो टिलेज, कहने का मतलब आपको टीलेज नहीं करना, जुताई नहीं करनी, सीधा मशीन में गेहूं के बीज डालने हैं और ट्रैक्टर के पीछे बांध करके उसको चला देना है। ये आपके बुआई के लिए, शून्य जुताई के लिए आपका जीरो टिलेज मशीन है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं, जैसा कि एक और मशीन आती है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मतलब सीड ड्रिल एक तरह से कह लीजिए उसको, कि सीड ड्रिल में तो हम लोग जानते हैं आगे हमारा फाड़ लगा होता है, वो खेत को आगे से जोतता जाता है और पीछे से हमारी बुआई होती जाती है, तो वो भी मशीन ठीक है लेकिन वो जुताई करेगी। तो ये बुआई के खास करके ऐसा मशीन है जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावे मक्का के किसानों को ध्यान में रखते हुए भी हमारे पास एक मशीन है जो हाथ से आप चला करके उसको जो है जुताई कर सकते हैं। इन सभी मशीनों में आपको 30,000, 40,000, 50,000 हर प्रकार के अनुदान मिल जाएंगे। अनुदान कहाँ क्या कैसे है उसके लिए अगर आप लोग, और कैसे आवेदन करना है उसके लिए अगर आप लोग, एक वेबसाइट का मैं नाम बता रहा हूँ उसको अगर नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का युग है, हर घर में बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बड़े लोग मोबाइल चला रहे हैं, हर हाथ में इंटरनेट है। एक वेबसाइट है, आप गूगल पर जाइए, कुछ नहीं करना, किसी से नहीं पूछना, आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाने के बाद आप वहां पर टाइप कीजिए ऑफमास, OFMAS, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, गूगल पर जाने के बाद आपको टाइप करना है OFMAS, अंग्रेजी का OFMAS, ऑफमास। इसको टाइप करने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपके सामने एक लिंक आ जाएगा ऑफमास का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ कृषि विभाग बिहार सरकार का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है फार्म मशीनरी के लिए, आप आवेदन करने के लिए। इसमें भी जाकर के आप अगर चाहें तो वहां से भी यंत्रों की सूची, किस यंत्रों पर कितना अनुदान है वहां से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, आपके पंचायत में किसान सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि हाँ हमें आवेदन करना है फलाने मशीन में कैसे आवेदन होगा, और आप वहां से जाकर जानकारी ले सकते हैं। एक विशेष जानकारी आप लोगों को मैं और बता दूं कि इस वित्तीय वर्ष से वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन तो नहीं है खेती करने के लिए, परंतु वो दूसरे की खेती को पट्टा पे लेके, लीज पे लेके खेती कर रहे हैं, तो रियल में अगर देखा जाए तो किसानी का मैक्सिमम बोझ उन्हीं के कंधों पे है जो वास्तविक खेतिहर हैं, जिनकी जमीन नहीं है और वो वास्तविक खेतिहर हैं और दूसरे खेत में खेती का कार्य करते हैं। तो वैसे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार क्या किया है, नीति में थोड़ा परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन किया है, तो वैसे यंत्र जिसपे 20,000 रुपया तक अनुदान है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कृपया, वैसे यंत्र जिसपे 20,000 रुपया तक अनुदान है, 20,000 से कम और 20,000 तक, तो 20,000 तक अगर अनुदान है किसी यंत्र पे, तो वैसे किसान जिसके पास जमीन नहीं है वो भी उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे मैनुअल किट, जो मैंने अभी बताया कि आपको एक किट मिलेगा जिसमें कि आपको खुरपी, हंसुआ और कुदाल रहते हैं, उसके अलावा पावर स्प्रे आप ले सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप मैनुअल स्प्रे ले सकते हैं, कल्टीवेटर का फायदा ले सकते हैं, इसमें रोटावेटर का फायदा आप नहीं ले सकते क्योंकि रोटावेटर में अनुदान 25,000 रुपया है। वैसे जो भी छोटे छोटे मशीन है, हाँ आप छोटा वाला आपका जो आता है राइस मिल उसका लाभ ले सकते हैं, उसके अलावा आपको तेल मिल है उसका लाभ ले सकते हैं, सब छोटे छोटे मशीन है। तो जिन मशीनों में 20,000 तक अनुदान है उन सभी मशीनों पर आप लाभ ले सकते हैं अगर आपके पास जमीन की रसीद LPC नहीं है तो। वैसे किसान जिनको बड़ी मशीन लेनी है या पंप सेट लेना है तो जमीन की अनिवार्यता उसमें रखी गई है, अगर जमीन की अनिवार्यता रखी गई है तो कुछ कारण भी रहा होगा। तो बड़े किसान बड़े मशीनों के लिए, जैसे मान के चलिए कि आपको थ्रेसर लेना हुआ या रीपर कंबाइंडर, एक मशीन आता है जो कि गेहूं के फसलों को काट भी लेता है और उसकी गट्ठर बना के बांध भी लेता है और नीचे गिरा देता है उसे, मतलब एक ही मशीन है जो कि गेहूं की फसल को एक समय में काटती भी है, उसका गट्ठर भी बनाती है, उसमें धागा भी स्वयं बांधती है। वो हमें आदमी की जरूरत नहीं कि हाँ आदमी जाएगा उसमें धागा बांधेगा तो उसका गट्ठर बनेगा, नहीं गट्ठर उठर नहीं बनेगा, वो मशीन खुद गट्ठर बनाती है और उसको काट काट के गट्ठर बना बना के इकट्ठा करती है। उसका नाम है रीपर कम बाइंडर, रीपर कम बाइंडर, रीपर मतलब काटने वाला, कम मतलब के साथ साथ, बाइंडर मतलब बांधने वाला, काटेगी भी बांधेगी भी और गिरा देगी नीचे। आपको कुछ नहीं करना, गेहूं पकने के बाद उसको जाके चुन लेना है, खेतों से उठा लेना है, तो वो रीपर बाइंडर है, वो गेहूं की फसल को बहुत अच्छे से काटती है। उस पर भी अनुदान 1,75,000 रुपये दिया जा रहा है। वो भी 3 प्रकार का आता है, एक ट्रैक्टर चला सकते हैं, एक खुद से चला सकते हैं और एक 4 पहिये वाला खुद से चलाने वाला है। तो जिस तरह का आप लेंगे, अगर ट्रैक्टर वाला आप रीपर बाइंडर लेते हैं तो 1,10,000 अनुदान है, अगर 4 पहिये वाला रीपर बाइंडर जो स्वचलित खुद से चलती है, ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, उसमें इंजन लगा होता है, तो उसमें 1,75,000 रुपये अनुदान है। अगर आप 3 पहिये वाला लेते हैं तो 1,40,000 अनुदान है। इस प्रकार से अलग अलग मशीनों पर अलग अलग अनुदान दिया जा रहा है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि बड़े मशीनों में अगर आपको चाहिए अनुदान जिसपे 20,000 से ऊपर अनुदान है, 20,000 से लेकर जितना भी ऊपर हो अनुदान, तो उसमें आपको जमीन की रसीद की जरूरत पड़ती है या LPC की जरूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि कितना पुराना LPC है, जमीन की रसीद चाहिए, तो अधिकतम 2 से 3 साल पुराना जमीन की रसीद लगा दें आप ऑनलाइन आवेदन करते समय, और LPC या जमीन की दोनों में से किसी एक की कॉपी आप लगा सकते हैं, 2 साल 3 साल पुराना हो। इसी प्रकार से अगर आपको किसी जाति में आवेदन करना है, क्योंकि योजना ही इस तरह से बनी है, सामान्य जाति और पिछड़ा वर्ग को एक जैसा रखा गया है अनुदान की सूची में, परंतु अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये 3 कैटेगरी के जो किसान हैं हमारे, इनको 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है, यानी 10% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई मशीन है जिसपे 100 रुपये अनुदान दे रही है सरकार, तो सामान्य जाति को 100 रुपये मिलेंगे अनुदान और पिछड़ा वर्ग को 100 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन अगर कोई किसान अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है, तो उनको 110 रुपये अनुदान प्राप्त होगा। ये सरकार ने ध्यान रखा है इस चीज का, वो चाहे 20,000 का मशीन हो या 20,000 से ऊपर का अनुदान का मशीन हो, हर एक मशीनों पर यह लागू होगा। परंतु उन किसानों को आवेदन करते समय अपने स्वयं के नाम से जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। आपके गांव में जो CSC सेंटर हैं, उनको भी इसकी जानकारी है, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं कि आवेदन कैसे होता है, या स्वयं अगर मोबाइल में खोल के देखेंगे ऑफ मास पोर्टल को, उस पर जाएंगे और एक एक सब सारी चीजें हिंदी में अवेलेबल हैं, आप उस पर अगर क्लिक करते जाएंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि हम इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुल 68 मशीन है, आप लोग वहाँ ऑफमास वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि इन मशीनों पर क्या अनुदान है, वहां से आप लोग डाउनलोड भी करा सकते हैं PDF फॉर्मेट को। अब ये तो एक घटक की बात हो गई, अगला घटक हमारा है कस्टम हायरिंग सेंटर। देखिए, कस्टम हायरिंग सेंटर जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, कस्टम हायरिंग मतलब कस्टमर ने हायरिंग किया, मंगवाया, तो भाड़े पर यंत्र उपलब्ध कराने के लिए वैसे मझोले और छोटे सीमांत किसान जो निर्धन हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, दिक्कत है, तो उनको यंत्रों का अगर अनुदान का लाभ नहीं मिला कोई बात नहीं, तो अगर वो चाहते हैं कि हमें भी यंत्र का उपयोग करने को मिले, तो वैसे किसानों को ध्यान में रखते हुए एक योजना है कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसको हम लोग कहते हैं CSC। इसमें क्या है कि उसी पोर्टल पे आपको आवेदन होगा, और इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जिन पंचायतों में पूर्व से हमारा कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है, मेरी समझ से अभी तक मात्र 25 पंचायत में ही दिया गया है, जबकि यहाँ 245 पंचायत हैं टोटल, तो उन पंचायतों में हमें कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं देना है। लेकिन जो पंचायत में अभी तक नहीं दिया गया है, वहां से किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना में क्या है, योजना में जमीन की बाध्यता नहीं है, क्योंकि सरकार मानती है ये एक प्रकार का उद्यम है, और उद्यम हम घर बैठे 2 पैसे कमाने के लिए उद्यम एक विकसित कर रहे हैं, तो जमीन है तो अच्छी बात है। वो किसान रजिस्ट्री होना, किसान का रजिस्ट्रेशन DBT पोर्टल पे होना चाहिए, जो कृषि विभाग का DBT पोर्टल है, किसान पंजीकरण वो होना चाहिए DBT पोर्टल पे, और जमीन है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो वो भी किसान आवेदन कर सकते हैं, जमीन की इसमें बाध्यता नहीं है। योजना में क्या है कि किसान को एक ट्रैक्टर लेना होगा, एक जुताई की मशीन जिससे खेत जोतते हैं, एक बुआई की मशीन, एक कटाई की मशीन और एक दौनी यानी कि थ्रेसिंग की मशीन, तो कुल 4 मशीन हो गए और एक ट्रैक्टर हो गया। ये 4 मशीन एक ट्रैक्टर अगर वो लेंगे और उनका कुल कीमत जो है 10 लाख तक आता है, तो उसका 40% अनुदान के रूप में उनके खाते में दिया जाएगा, और अगर मशीन की कीमत जोड़ के टोटल 11 लाख भी आता है तो भी 4 लाख मिलेगा। परंतु खुदा न खास्ते अगर सभी मशीनों का कीमत जोड़ के ट्रैक्टर के साथ, वो बाकी 4 मशीन और ट्रैक्टर को जोड़ ले, और सभी मशीनों का कीमत जो है जोड़ के मान लीजिए कि 9 लाख रुपए आता है, तो फिर 9 लाख का 40% हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 9×36 360,000 उनको अनुदान मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 40% या अधिकतम 4 लाख, अगर आप 20 लाख भी लगाएंगे मशीनों में तो भी आपको 4 लाख ही मिलेगा। तो यह है कस्टम हायरिंग सेंटर। इससे फायदा यह है कि आप अगर इस यंत्रों का लाभ लेते हैं, अगर कस्टम हायरिंग सेंटर अपने पंचायत में अपने घर पर स्थापित करते हैं, तो आप स्वयं भी उन मशीनों का लाभ लीजिए और भाड़े पे भी मशीनों को चलाइए और उससे लाभ कमाइए, ताकि आपके जीवन यापन में स्तर में सुधार हो। ये कुल अपने जिला में टारगेट है सामान्य जाति के 7 और अनुसूचित जाति का 1। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सामान्य जाति में काफी आवेदन प्राप्त हुए हैं, परंतु अनुसूचित जाति से अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर अनुसूचित जाति का कोई किसान भाई हैं या फिर सामान्य जाति के भी हों, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आते हैं योजना के अगले घटक में। इस घटक का नाम है फार्म मशीनरी बैंक। फार्म मशीनरी बैंक क्या है, बस थोड़ा सा कहीं अंतर है, नाम बदला हुआ है। जो अभी हमने चर्चा किया ना कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेंगे और 4 लाख अनुदान मिलेगा अधिकतम, ठीक वही है, उसी का ये बड़ा भाई है। इसमें क्या है कि केवल वो समूह से आवेदन होगा। कस्टम हायरिंग सेंटर में क्या था कि आप अगर स्वयं किसान है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, सिंगल किसान भी। लेकिन फार्म मशीनरी बैंक में जैसे हमारे जीविका के समूह हैं या जीविका दीदी हैं उनका समूह बना होता है, या आत्मा का जो ग्रुप है आत्मा का समूह बना होता है, स्वयं सहायता समूह, या फिर कोई FPO हो, FIG हो, इस प्रकार का जो समूह कम से कम 1 साल पुराने रजिस्ट्रेशन हो जिनका, वो इसका आवेदन कर सकते हैं। स्वयं किसान इसका आवेदन नहीं कर सकते। जब भी आवेदन करेंगे समूह ही करेंगे, समूह के द्वारा आवेदन लिया जाएगा। इसमें भी वही शर्त है कि जिस पंचायत में पूर्व से कस्टमरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक स्थापित है वहां से आवेदन नहीं लिया जाएगा, और अगर समूह आवेदन करते हैं अन्य पंचायतों से तो आवेदन की स्क्रूटनी होगी। आवेदन में किन किन यंत्रों को शामिल करना है, आपको निश्चित रूप से फिर से वही बात होगी कि एक जुताई की मशीन, एक बुआई की, एक कटाई की और एक थ्रेसिंग की, ये 4 मशीन के अलावा एक ट्रैक्टर लेना होगा। परंतु इसमें जो अनुदान का रेशियो है वो ज्यादा है। कस्टमरिंग सेंटर में हम लोग 4 लाख अनुदान दे रहे थे, इसमें आपको अनुदान 8 लाख मिलेगा, यानी 80% अधिकतम 8 लाख। अगर आपका टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो अगर टोटल आपका 10 लाख होता है तो 8 लाख मिलेगा, 9 लाख अगर जोड़ के होता है तो 9 लाख का 80% निकालना पड़ेगा, यानी 9×8=72, 7,20,000 आपको अनुदान मिलेगा। परंतु अगर आपने अच्छे मशीनें ली हैं, क्योंकि बुआई में 0 टिलेज भी ले सकते हैं या फिर बुआई में आप सुपर सीटर भी ले सकते हो, कोई एक मशीन लेना है तो 0 टिलेज का दाम कम है, सुपर सीटर का दाम ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ज़्यादा मतलब दाम लगा के लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हाई जाएगा। तो अगर मान के चले कि किसान बंधु ऐसे हैं जो 4 प्रकार का मशीन लिए और काफ़ी अच्छे अच्छे मशीन लिए हैं, उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया 15 लाख रुपया, तो भी उनको 8 ही लाख मिलेगा, ये अधिकतम इसका अनुदान का रेशियो है। और ये मात्र एक का लक्ष्य है, पूरे जिले में सिर्फ एक का टारगेट है। आवेदन 1 आध प्राप्त हुए हैं और शेष आवेदन भी प्राप्त करना भी बाकी है। पोर्टल अभी खुला हुआ है, आप लोग ऑफमास पोर्टल पर जाके आवेदन कर सकते हैं और दिनांक 10 अक्टूबर को ये पोर्टल पुनः बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना घटक है जो कि नया है, इस साल से ही शुरू किया गया कृषि विभाग के द्वारा, कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत, और ये है आपका किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर। आप लोगों ने अभी तक ड्रोन तो देख ही लिया होगा टीवी में खेतों में उड़ते हुए, आज के जमाने में ड्रोन से हम लोग फसलों पर छिड़काव कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये क्वेरी होगा कि ड्रोन से ही क्यों करें, आपको जानकारी लेते हुए हैरानी होगी कि आज जो आपका राजस्थान है, आपका जो पंजाब है और हरियाणा है, यहाँ पर कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। हर 10 घर में एक घर में कैंसर है, और स्पेशल ट्रेन चलती है। मैं आपको बता दूं, मैं पहले 2010-11 में राजस्थान में ही था, जयपुर में, तो वहां मैं नौकरी कर रहा था, तो मैंने देखा कि वहां पर एक ट्रेन चलती है जो कि आपके यहां से जोधपुर से चलती है, जोधपुर से एक स्पेशल ट्रेन चलती है, उसका नाम ही है कैंसर ट्रेन। और ये कैंसर होने का मेन कारण यही है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर और खास करके कीटनाशी, जिसको हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स कहते हैं, उसके डिब्बे में किसान भाई आप देखते होंगे लिखा रहता है जहर, और आप भी उसको डालते हैं तो डालने के बाद हाथ को साबुन से आप लोग धोते हैं, लेकिन वो डालने के क्रम में क्या होता है कि पावर स्प्रे मशीन से जो बैटरी ऑपरेटेड उससे आप लोग डालते हैं, अगर विंड हवा का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो कहीं ना कहीं हमें भी इन्फेक्टेड करता है। वो जो छोटे छोटे उसके ड्रॉपलेट्स हैं, बूंद हैं, वो नाक के द्वारा, कान के द्वारा, आंख के द्वारा या हमारे बालों पे बैठ जाते हैं, जहां कहीं हम टच किए और हमारे मुंह में अगर वो संपर्क में आया या फिर नाक के द्वारा अंदर चला गया, आंख के द्वारा अंदर चला गया, तो कहीं ना कहीं हमें वो बहुत बीमार कर सकता है। परंतु ड्रोन से अगर हम छिड़काव करते हैं तो हम डायरेक्ट उसके इम्पैक्ट में नहीं आते हैं। दूसरा फायदा ये है ड्रोन से छिड़काव करने से कि ड्रोन का जो छिड़काव होता है वो बहुत प्रिसाइज होता है। कहने का मतलब ये काफी उन्नत तरीके से छिड़काव करता है। अगर आम का बगीचा का बात करें तो एक एक डाल पे चढ़ के तो आप मंजर का छिड़काव नहीं कर सकते आम के बगीचे में ही, लेकिन अगर ड्रोन आपके पास रहेगा तो आम के बगीचे में छिड़काव करना हुआ मंजर आने का समय में, तो उस समय आप चाहेंगे तो इसके रिमोट से इसको आप एज ए पायलट चला सकते हैं, और चला करके आम का जब मंजर है एक एक मंजर पे आप जा करके इसको छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि आसानी से कहीं भी घूम सकता है और घुस सकता है और घुमा सकते हैं आप इसको। पहला फायदा तो ये। दूसरा ये है कि किसान इसको जब इस्तेमाल करते हैं ड्रोन को, ड्रोन छिड़काव करते हैं, तो ये हर एक पत्ते पर छिड़काव करता है, हर एक मंजर पर, हर एक फूल पर छिड़काव करता है, ताकि आपका जो फसल, जो सुरक्षा है, वो काफी हद तक आपका सिक्योर हो सके। इसमें योजना में क्या है कि किसान एक ड्रोन के लिए आवेदन कर सकते हैं उसी पोर्टल पे, और स्वयं किसान भी कर सकते हैं आवेदन और समूह भी कर सकते हैं। कोई अगर समूह है वो आवेदन करना चाह रहा है तो वो भी आवेदन कर सकता है, और स्वयं किसान जो इंडिविजुअल किसान है अकेले, वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन करने में थोड़ी सी सावधानी रखी गई सरकार के द्वारा। वो सावधानी क्या है मैं आपको बताते चलूं। आवेदक का उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 18 साल और 50 साल के बीच का आवेदक होना चाहिए। ये पहली नंबर शर्त है। दूसरा शर्त है कि आवेदक मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास से अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकते, वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तीसरी इसमें अच्छी चीज क्या है कि अगर किसी आवेदक के पास कृषि से संबंधित कोई भी डिग्री हो, कृषि विज्ञान से उनका स्नातक हो, कृषि अभियंत्रण से उनका स्नातक हो, या फिर मत्स्यकी से उनका स्नातक हो, फॉरेस्ट्री से हो, कृषि वानिकी से, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी से, मतलब कृषि विज्ञान के किसी भी संकाय से 4 साल की डिग्री अगर उनके पास है और वो आवेदक हैं, तो उनको 4 लाख के बदले 5 लाख अनुदान दिया जाएगा। और वैसे किसान जो सिर्फ मैट्रिक पास हो या फिर सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हो या इंटर पास हो, उनको 4 लाख अनुदान दिया जाएगा अधिकतम। इसमें पूरे पैसे किसान को पहले स्वयं लगाने होंगे, उसके बाद उनको अनुदान मिलेगा, उनके खाते में जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास डिग्री है एग्रीकल्चर की तो आपको 1 लाख रुपया अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा एक और इसमें शर्त है कि RTPOs एक डिपार्टमेंट होता है जो कि ड्रोन उड़ाने के पहले आपको ट्रेनिंग देता है। अगर किसी किसान बंधु के पास वो सर्टिफिकेट है तब तो ठीक है, वो ऑनलाइन आवेदन करे और उनको परमिट जैसे ही मिलेगा और वो क्रय कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी किसान बंधु के पास वो सर्टिफिकेट RTPOs की ड्रोन पायलट वाली सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग लेनी होगी, उसमें विभाग भी आपकी सहायता करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। पहले आवेदन करिए, आवेदन करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। तो ये आपका किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर है, इसको आप अपने फसलों पे भी इस्तेमाल कीजिए और इसको आप भाड़े पे भी उपलब्ध करा के किसानों से भाड़े पे लाभ कमाइए। अंतिम घटक है कृषि यांत्रिकरण योजना का किसान मेला। जैसा कि कुछ किसान भाइयों को पता भी होगा कि हमारे जिले में भागलपुर में कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत साल में 2 बार मेला लगता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के उन्नत और काफी प्रभावशील जो है यंत्रों को दिखाया जाता है, उनकी प्रदर्शनी होती है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने मेला लगाया था, इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग लगाने जा रहे हैं। जिन किसान भाइयों को मन करता है कि हम मेला से ही सामान खरीदेंगे, ठीक है भाई, आप परमिट अपना वेट कीजिए, परमिट निकलता है, स्वीकृति आपको मिलता है, आप मेला में आइए, आपका स्वागत है, और आकर के आप अपने यंत्रों का क्रय कीजिए, मोल भाव करके क्रय कर सकते हैं। 2 बार मेला लगना है। इस बार पहला मेला जो है प्रस्तावित है अपना नवंबर में, नवंबर के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है, और दूसरा मेला जो है जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। यह मेला 2 दिवसीय होगा, 2 दिवसीय मेला लगाया जाएगा, आपको जानकारी भी दी जाएगी। आप मेला में आकर के केवल यांत्रिकरण ही नहीं, यांत्रिकरण के अलावे उद्यान है, बीज है, पौधा संरक्षण के बहुत सारे चीजें हैं जो कि किसानों को फायदेमंद होते हैं, मित्र कीट कौन है, दुश्मन कीट कौन है, या फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, ये सभी प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी। इसलिए मेरा अनुरोध भी रहेगा जो किसान भाई हमें सुन रहे हैं वो किसान मेला में अवश्य आइए, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक भी आते हैं, उनको ही बुलाया जाता है, बैंक वालों को ही बुलाया जाता है, किसी किसान को अगर लोन की समस्या होती है अपनी बातों को वहां रख सकते हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा समागम होता है किसानों का, हम पदाधिकारियों का, और बैंक के लोगों का, और कृषि के हर संकाय के लोगों का। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे यहाँ के वैज्ञानिक महोदय लोग भी आते हैं, वो भी अपनी जानकारी आपको देते हैं। इसलिए मेला में शिरकत कीजिए, मेला में आना चाहिए। एक कहावत है, या तो खूब पढ़िए, और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो खूब घूमिए। अगर पढ़िएगा खूब तो बुद्धि होगी, जानकारी होगी, ज्ञान बढ़ेगा। नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो घूमिए, घूमने से भी बुद्धि बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है।

0: समस्या है कि यहाँ पर म्यूटेशन जल्दी नहीं होता है, या होता भी है तो काफी समय लग जाता है। तो इसको भी ध्यान में रख करके सरकार ने एक नीति बनाई है कि किसी किसान को यंत्र का फायदा लेना है और उस यंत्र में 20,000 से ज्यादा अनुदान है तो कागज लगेगा ही लगेगा, जमीन का रसीद या LPC जो कह लीजिए, दो में से कोई एक चीज। तो अगर उसके फादर के नाम पे या उसके और भी ऊपर के पूर्वज जो हैं, दादा परदादा के नाम पे जमीन है और म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो वैसे केस में वो किसान अप्लाई कर दें, जो जमीन की रसीद है वही लगा दें, और लगाने के बाद एक वंशावली जरूर लगा दें। वो वंशावली कम से कम पंचायती राज विभाग के द्वारा निर्गत हो, जो पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्गत हो और उनके द्वारा अनुमोदन किया हुआ हो। अगर वो वंशावली भी लगा देते हैं जमीन के कागज के साथ, तो हम मान लेते हैं कि हाँ जमीन उनके नाम से भी है।
1: जी सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज जिन योजनाओं के बारे में आपने जाना और इन योजनाओं से जो भी आपको लाभ मिलते हैं उनका लाभ उठाइए, और जैसे कि सर ने कहा कि अभी बहुत सारे आवेदन आने बाकी हैं, तो आप आवेदन कीजिए और हो सकता है कि आपको उससे लाभ मिले और फायदा आपको ही होगा, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपकी लागत भी कम होगी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
3: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद।
6: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
7: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे, मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
6: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
7: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
6: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
7: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें ताकतना जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
6: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
8: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में।
9: प्यारे बच्चों आदाब, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर चमन अरका, NCERT नई दिल्ली। आज हम आपको आपकी 8वीं जमात की किताब अपनी जबान से का दूसरा सबक, एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। ये मजेदार कहानी को लिखने वाले मिर्जा फरतुल्ला बेग हैं। पहले मैं मिर्जा फरतुल्ला बेग के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि मिर्जा फरतुल्ला बेग 1883 में दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी इन्होंने मदरसे से हासिल की, हिंदू कॉलेज से बीए पास किया। फिर ये हैदराबाद चले गए। उन्होंने कई नौकरियां हासिल की। उसके बाद उन्होंने हर मौजू पर कलम उठाया, अफसाने भी लिखे, समयाने हयात लिखी, तनकीद लिखी, अखलाकी मौजूआत पर भी लिखा। लेकिन इनके मजाहिया मजामीन जो है बेहद मकबूल हैं। इन मजामीन में जो है मजामीन फरहत के नाम से शाया हुए हैं। उनका इंतकाल 1947 में हुआ। उनकी लतीफ़ा पसंद तबीयत जो थी और बयान की रंगीनी की वजह से मजमून के बीच में वो वाकयात इस तरह से लेकर आते हैं कि वो पुरलुत्फ हो जाते हैं। इसके अलावा जो मफहूम को वाजे करने में जो वो के जो ये वाकयात बताते हैं जो लुत्फ से भरपूर होते हैं उसको वाजे करने में वो खासी मदद देते हैं। उनकी तहरीरों में दिल्ली की जबान जो दिल्ली की जबान है और मुहावरों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। उनके उसलूब में रवानी है और इनका जो स्टाइल है इनका लिखने का जो अंदाज है वो रवा दवा है। अल्फाज बड़े खूबसूरत उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और ख्याल का गहरा तालमेल है जो उसकी उनकी तहरीर की खसूसियत है। अब ये नज्म जो है एक मज़ेदार कहानी, ये भी मज़ेदार है, वाकई मज़ेदार कहानी है और इसे एक किस्से के तौर पर उन्होंने बयान किया है जिसे किस्सा बयान करते हैं। तो इससे पहले ये जो कहानी शुरू होती है उससे पहले कि मैं आपको बता दूं क्योंकि हमने इस कहानी को थोड़ा एडिट किया था तो एडिट करने के बाद फिर इस कहानी को यहाँ से शुरू किया था जो इस सबक में है। तो कहानी ये है कि एक औरत है वो उसका शौहर जो है जब वो जवान ही थी उसका बच्चा छोटा था जब ही इंतकाल हो गया था। उसके बाद वो अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से पालती पोसती है, पढ़ाती लिखाती है, फिर बच्चा जो है वो पढ़ लिख कर काम करने लगता है। उसके बाद फिर जब वो जवान हो जाता है फिर वो एक अच्छी बहू लेकर आती है लेकिन बहू का सलूक जो होता है उसके साथ अच्छा नहीं होता, वो अपनी सास को बहुत परेशान करती है। तो इस तरह से एक दिन वो नाराज़ होकर अपने घर से निकल जाती है, बेटे से भी नाराज़ हो जाती है, अपनी बहू से भी नाराज़ हो जाती है। और उसके बाद जब जंगल में पहुँचती है तो उस मंज़र को फरतुल्ला बेग ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया। मैं ये कहानी पढ़ती हूँ, आप इसको सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। और ये मज़ेदार कहानी जो है वो मौसमों से मुतालिक है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं किन किन मौसम का जिक्र है इसके अंदर और किस तरीके से कहानी को शुरू किया गया है। एक बुढ़िया जंगल बयाबान में जहाँ ना आदम ना आदमजात एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आदमजात से पूछे जो इनका जो उधर गुजर हुआ। तो तीनों ने कहा लो भाई वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछे। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, गोरी गोरी रंगत, नकले ऐसे कि जैसे अनार का दाना, सफेद लंबी दाढ़ी, मोटा रुई का दगला पहने, खूब ओढ़े लिपटे आए। उनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई। मियाँ जाड़े ने आकर कहा बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहे, मगर बेटा जरा धूप छोड़ कर खड़े रहो, मुझे तुम्हारे आने से कप कपी लग रही है। खैर मियाँ जाड़े जरा हट कर खड़े हुए और कहा बड़ी बी एक बात पूछूं। बड़ी बी ने कहा हाँ बेटा जरूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी भी जाड़ा कैसा। बड़ी भी ने कहा बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह महावट बरस रही है, दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही हैं, लियाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मजे ले लेकर खा रहे हैं। हलवा सोन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, इधर खाया उधर हजम, खून चुल्लुओं बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं, बेटा जाड़ा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफ सुन सुन कर फूले न समाते थे। जब बड़ी बी चुपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी बी खुदा तुमको जिंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, ये लो 1000 अशरफी की थैली, खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में मुझसे और आकर ले जाना। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई, रोशन आंखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथों में मूलसरी की लड़ियां जिसमें किरण टकी हुई, हरे डोरी की प्याजी उड़नी गरज बड़े ठस्से से आई और आते ही कहा, नानी जान सलाम, मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी। बड़ी बीवी ने कहा, बेटा गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, दिन का वक्त है, खसखानों में पड़े हैं, पंखे झले जा रहे हैं, बर्फ की कुल्फियाँ खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियाँ हैं, शाम को उठे नहाए धोए सफेद कपड़े पहने, खस का इतर लग मला सहन में छिड़काव हो गया, घड़ोचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं, रात हुई कोठों पर पलंग बिछ गए, बेटा
10: सही। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी में। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन

0: दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अफवाहों से बचे। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And And remember, vaccination is safe and it saves

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें, और जिनके खेत में में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों आदाब, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर चमनारा खां NCERT नई दिल्ली। आज हम आपको आपकी 8वीं जमात की किताब अपनी जबान से का दूसरा सबक एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। ये मजेदार कहानी को लिखने वाले मिर्जा फरतुल्ला बेग हैं। पहले मैं मिर्जा फरतुल्ला बेग के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि मिर्जा फरतुल्ला बेग 1883 में दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी इन्होंने मदरसे से हासिल की, हिंदू कॉलेज से बीए पास किया। फिर ये हैदराबाद चले गए, उन्होंने कई नौकरियां हासिल की। उसके बाद उन्होंने हर मौजू पर कलम उठाया, अफसाने भी लिखे, समाने हयात लिखी, तनकीद लिखी, अखलाकी मौजूआत पर भी लिखा। लेकिन इनके मजाहिया मजामीन जो है बेहद मकबूल हैं। इन मजामीन में जो है मजामीन फरद के नाम से शाया हुए हैं। उनका इंतकाल 1947 में हुआ। उनके लतीफा पसंद तबीयत जो थी और बयान की रंगीनी की वजह से मजमून के बीच में वो वाकयात इस तरह से लेकर आते हैं कि वो पुरलुत्फ हो जाते हैं। इसके अलावा जो मफहूम को वाजे करने में जो वो के जो ये वाकयात बताते हैं जो लुत्फ से भरपूर होते हैं उसको वाजे करने में वो खासी मदद देते हैं। उनकी तहरीरों में दिल्ली की जबान जो दिल्ली की जबान है और मुहावरों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उनके उसलूब में रवानी है और इनका जो स्टाइल है, इनका लिखने का जो अंदाज़ है वो रवा दवा है। अल्फाज बड़े खूबसूरत उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और ख्याल का गहरा तालमेल है जो उसकी उनकी तहरीर की खसूसियत है। अब ये नज्म जो है एक मज़ेदार कहानी, ये भी मज़ेदार है, वाकई मज़ेदार कहानी है और इसे एक किस्से के तौर पर उन्होंने बयान किया है, जिसे किस्सा बयान करते हैं। तो इससे पहले ये जो कहानी शुरू होती है उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने इस कहानी को थोड़ा एडिट किया था, तो एडिट करने के बाद फिर इस कहानी को यहाँ से शुरू किया था जो इस सबक में है। तो कहानी ये है कि एक औरत है, वो उसका शौहर जो है जब वो जवान ही थी, उसका बच्चा छोटा था, जब ही इंतकाल हो गया था, उसके बाद वो अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से पालती पोसती है, पढ़ाती लिखाती है, फिर बच्चा जो है वो पढ़ लिख कर काम करने लगता है। उसके बाद फिर जब वो जवान हो जाता है फिर वो एक अच्छी बहू लेकर आती है, लेकिन बहू का सलूक जो होता है उसके साथ अच्छा नहीं होता, वो अपनी सास को बहुत परेशान करती है। तो इस तरह से एक दिन वो नाराज़ होकर अपने घर से निकल जाती है, बेटे से भी नाराज़ हो जाती है, अपनी बहू से भी नाराज़ हो जाती है। और उसके बाद जब जंगल में पहुँचती है तो उस मंज़र को फरतुल्ला बेग ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया। मैं ये कहानी पढ़ती हूँ, आप इसको सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। और ये मज़ेदार कहानी जो है वो मौसमों से मुतालिक है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं किन किन मौसम का जिक्र है इसके अंदर और किस तरीके से कहानी को शुरू किया गया है। एक बुढ़िया जंगल बयाबान में, जहाँ ना आदम ना आदमजात, एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आदमजात से पूछे, जो इनका जो उधर गुजर हुआ। तो तीनों ने कहा लो भाई, वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछे। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, गोरी गोरी रंगत, नकले ऐसे कि जैसे अनार का दाना, सफेद लंबी दाढ़ी, मोटा रुई का दगला पहने, खूब ओढ़े लिपटे आए। उनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई। मियाँ जाड़े ने आकर कहा बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहे, मगर बेटा जरा धूप छोड़कर खड़े रहो, मुझे तुम्हारे आने से कप कपी लग रही है। खैर मियाँ जाड़े जरा हटकर खड़े हुए और कहा बड़ी बी एक बात पूछूं। बड़ी बी ने कहा हाँ बेटा जरूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी भी जाड़ा कैसा। बड़ी भी ने कहा बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है, दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही हैं, लियाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मजे ले लेकर खा रहे हैं। हलवा सोन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, इधर खाया उधर हजम, खून चुल्लुओं बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं। बेटा जाड़ा, जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफ सुन सुन कर फूले न समाते थे। जब बड़ी बी चुपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी खुदा तुमको जिंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, ये लो 1000 अशरफी की थैली, खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में मुझसे और आकर ले जाना। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई, रोशन आंखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथों में मूलसरी की लड़ियां जिसमें किरण टकी हुई, हरे डोरे की प्याजी ओढ़नी, गरज बड़े ठस्से से आई और आते ही कहा, नानी जान सलाम, मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी। बड़ी बी ने कहा, बेटा गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। दिन का वक्त है, खसखानों में पड़े हैं, पंखे झले जा रहे हैं, बर्फ की कुल्फियां खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियां हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफेद कपड़े पहने, खस का इतर लग मला सहन में छिड़काव हो गया, घड़ोचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं। रात हुई, कोठों पर पलंग बिछ गए। बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी गर्मी का यह हाल था कि तारीफें सुनती जाती थी और निहाल होती जाती थी। जब बड़ी बी तारीफ करते करते थक कर चुप हो गई तो बी गर्मी ने चुपके से निकाल कर 1000 अशरफी की थैली उनके हाथ में दी और कहा, अम्मा जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख ली। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आऊँ जो लेना हो तो वे खटके ले लिया कीजिए, भला आप जैसे चाहने वाले मुझे मिलते कहाँ हैं। बी गर्मी जरा हटी तो बी बरसात छम छम करती पहुँची, सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आँखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदे इस तरह टपक रही थी जैसे मोती, हाथों में धानी चूड़ियां, गरज उनके आते ही बरखा रुच छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो, होना हो तुम भी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बी बरसात ने कहा, जी हाँ मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिए ही कैसे, मैं छम छम बरस रहा है, बाहों में खम गड़े हैं, झूले पड़े हैं, औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रची है, सुर्ख सुर्ख जोड़े धानी चूड़ियां पहने झूल रही हैं, कुछ झूल रही हैं, कुछ झुला रही हैं, मल्हार गाए जा रहे हैं, ऊदी ऊदी घटाएं आई हुई हैं। बरसात भाई बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी बरसात ने भी 1000 की थैली बड़ी बी की नजर की और रुखसत हुई। शाम हो चली थी, बड़ी बी थैलियां समेट समाट खुशी खुशी घर आ गई, घर में बाहर आ गई। पड़ोस में एक और बुढ़िया रहती थी, उसने बड़ी बी के घर जो ये चहल पहल देखी तो उससे ना रहा गया, पूछा, ये रुपया तुम कहाँ से लाई। बड़ी बी ने कहा, मुझको ये रुपया जाड़े गर्मियों बरसात ने दिया है। पड़ोसन बुढ़िया आफत की पुड़िया थी, एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। खुदा का करना था कि जाड़ा गर्मी बरसात उसी दिन फिर मिले। एक ने दूसरे से पूछा, कहो भाई बुढ़िया ने क्या तस्फे किया। जाड़े ने कहा, भाई वो बुढ़िया गजब की थी, ये नहीं बताया कि तीनों में कौन अच्छा है। सभी की तारीफ करके मुफ्त में 3000 अशरफियां मार ली। गरज तीनों जले भुने आगे बढ़े, देखा कि एक बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाड़े पहुंचे, उनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थरथर कांपने लगी। जाड़े ने कहा, बड़ी भी सलाम, मिजाज तो अच्छा है। बुढ़िया बोली, चल बुढ़े परे हट, बड़ी भी होगी तेरी माँ, अब जाता है नहीं। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी भी मैं जाड़ा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ। बड़ी भी ने कहा, इस बुढ़ापे में भी आप अपनी तारीफ चाहते हैं, लो अपनी तारीफ सुनो। आप आए, उसको फालिज हुआ, उसको लखवा हुआ, हाथ पांव फटे जा रहा है, नाक सोर सोर बह रही है, दांत है कि कड़कड़ बज रहे हैं, कपड़े इधर पहने उधर मैले हुए, लिहाफ जरा खुला और हवा सर से घुसी, बिछोने बर्फ हो रहे हैं, तौबा तौबा, आग की भी तो गर्मी जाती रहती है। लीजिए अपनी तारीफ सुनिए या कुछ और सुनाऊं। जाड़ा जला हुआ तो पहले ही सता। अब जो बुढ़िया की जली कटी बातें सुनी तो जल कर कोला हो गया। अपनी ठोड़ी पकड़ कर डाड़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। चलते चलते दो तीन ठोकरें रसीद की। जरा फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी। उनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया करा लाओ, हम तो हार गए। पी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा मैं हूँ गर्मी, तुमसे ये पूछने आई हूँ कि गर्मी कैसी। ये सुना था कि बुढ़िया के तो आग ही लग गई। गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह पसीना बह रहा है, कपड़ों से भू आ रही है, सुबह को कपड़े बदले शाम तक चिक्कट हो गए, खाना खाया किसी तरह हजम नहीं होता, सीने पर रखा हुआ है, सुबह हुई और लू चलनी शुरू हुई, उसको लू लगी, उसको हैजा हुआ, मुंह झुलसा जाता है, होंठों पर पपड़ी जमी हुई है, पानी पीते पीते जी बेजार हो जाता है, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है, चल दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुकत सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी। बी गर्मी तो आग बगुला हो गई, कहा, ठहर बुढ़िया, तुझे इस बदज़बानी का मजा चखाती हूँ, मुझे तू क्या समझती है। ये कहकर जो फूंक मारी तो ऐसा मालूम हुआ कि लू लग गई। बुढ़िया तो हाय गर्मी करती रही, बी गर्मी पीठ पर एक दो हत्तर मार कर चलती बनी। जब उनको भी रूखी सूरत बनाए आते देखा तो बी बरसात दिल में बहुत खुश हुई, समझी कि चलो मैंने पाला मार लिया। बड़ी मटकाती बुढ़िया के पास गई और कहा, मैं बरसात हूँ, अच्छा बताओ तो बरसात कैसी। बुढ़िया ने कहा, बरसात से खुदा बचाए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा हिला जाता है, दम दम की आवाजें आ रही हैं, जरा पांव बाहर रखा और छींटे सर से ऊपर हो गए, जरा तेज चले और जूतियां कीचड़ में फंस कर रह गई, रात को मच्छर है कि सताए जा रहे हैं, न रात को नींद न दिन को चैन, और फिर इस पर भी ये सवाल कि नानी जान मैं कैसी हूँ। नानी जान से तारीफ सुन ली, अब तो दिल ठंडा हो गया। ए है ये बेमौसम की गर्मी कैसी, खुदा खैर करे। बुढ़िया ये कह रही थी कि बी बरसात की निगाह बिजली बनकर गिरी और बड़ी बी के पांव को चाटती हुई निकल गई और बी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा कहकर मुंह पर थूक कर रुखसत हुई। बात यह है कि अल्लाह शकर खोरे को शकर ही देता है। जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं और मुए रोनी सूरत तो हमेशा जूतियाँ खाते हैं। तो ये बच्चों कहानी सुनी, मजा आया होगा कहानी में आपको, इसी तरह से इसी लहजे में पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब इसमें कहानी में कुछ मुश्किल लफ्ज आए हैं, पहले हम मुश्किल लफ्जों के माने जो हैं वो जान लेते हैं। बयाबान कहते हैं जंगल को, आदम ना आदमजात जहाँ किसी इंसान या जानदार का नामो निशान ना हो। कहते हैं ना एक बुढ़िया के जहाँ पर जंगल बयाबान में आदम ना आदमजात, तो आदम ना आदमजात जहाँ किसी इंसान या जानदार का नाम निशान ना हो। सलाह मशवरा राय, किले दरख की वो कोपल जो कली की तरह फूटती है, दगला रुईदार लिबादा सर्दी का एक लिबास, सुभान अल्लाह पाक जाते अल्लाह की शुक्र गुजारी के लिए के इजहार के लिए कहा जाता है, महावट जाड़े की बारिश, मलीदा इसको मालीदा भी बोलते हैं बहुत जगहों पर, नमक गुड़ शकर और रोटी को खूब मलकर तैयार की जाने वाली एक गजा, कंठा फूलों का हार, मोटे मोटे मोतियों की माला, खस एक किस्म की घास, घड़ोची घड़े रखने का स्टैंड जो गुलमूम लकड़ी का होता है।

इतना ही 90.8 एफएम ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

जाड़े की पूरी उन्होंने एक बताया है उसकी कि गोरे गोरे रंगत है उसके कल्ले जैसे अनार का दाना, सफेद लंबी लंबी दाढ़ी, रुई का दगला पहने हुए, खूब ओढ़े लिपटे हुए आते हैं। तो ये उसकी उनके लिबास के बारे में बताया कि जाड़ा। तो बड़ी भी जो है जब प्याड़ा आया तो थरथराहट होने लगी। मियाँ जाड़ा ने आके उनको पहले सलाम किया, फिर कहा कि बड़ी भी ने कहा जीते रहिए। तो कहा जरा धूप छोड़ कर खड़े हो जाओ, मुझे बहुत कपकपी लग रही है। तो वो थोड़ा दूर होके खड़े हो गए और फिर उन्होंने कहा कि एक बात आपसे पूछूं। तो बड़ी भी ने कहा हाँ जरूर पूछो। तो उन्होंने कहा कि जाड़ा कैसा। तो बड़ी भी ने फिर जाड़े की जो है ना खूबियाँ बयान करनी शुरू कर दी कि दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियाँ सुलग रही हैं, आप लोगों ने जब जाड़े का मौसम आता है तो ये सब कुछ होता है, लिहाफों में दुबके पड़े रहते हैं, जब बहुत ठंड होती है चाय बन रही है खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं, फिर गर्म गर्म चीज़ें मेवे ये सब खाते हैं, रस की खीर भी खाई जाती है, बाजरे का मलीदा, बाजरा मक्का की रोटी भी जो है वो खाई जाती है और मलीदा भी बनता है। तो मलीदा तो मैंने बताए दिया आपको कि गुड़ चीनी और ये जो है देसी घी मिलाकर बाजरे की रोटी पका कर उसको तोड़ के जो है वो बनाया जाता है। तो वो कहती है कि बाजरे इस दिनों में जो है ना वो खून चुल्लुओं बढ़ जाता है, तो बहुत खून बढ़ जाता है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं, बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो मियाँ जाड़े अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, फूले नहीं समाते। और जब बड़ी भी चुपकी हुई, चुपकी जो है ना चुपकी का मतलब यानी खामोश होती है, चुपकी दिल्ली में बहुत बोला जाता है।

दुकानों में पड़े हैं, पंखे जले जा रहे हैं, बर्फ की कुल्फियाँ खाई जाती हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियाँ हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफ़ेद कपड़े पहने, खसका इतर मला सहन में छिड़काव हो गया, घड़ोचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हुए। उस ज़माने में घड़ोची और ये मटके हुआ करते थे, तो वो उसको भी इन्होंने इसमें लिखा है। रात हुई, कोटों पर पलंग बिछ गए और लोग छतों पर सोया करते थे। बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो इस तरह से गर्मी जो है वो भी बड़ी खुश होती है अपनी तारीफ सुनकर, वो भी उनको 1,000 की अशरफी देकर चली जाती है और कहती है, मैं हर साल आती हूँ, जब लेना चाहे बेखट के ले लिया कीजिए, आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ, चाहने वाले लोग। भी गर्मी इतनी है तो बरसात आ जाती है, बरसात को लिखा है बरसात खानम, छम छम करती हुई आती हैं। तो उनकी भी जो उनका हुलिया बयान किया है फरतुल्ला बेग ने, वो सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती। तो उससे पूरे मंजर से पता चल जाता है कि ये बरसात है। हाथों में धानी चिड़ियां, गरज इनके आती बरखा रुच छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, मजान सलाम। बड़ी भी ने कहा, बेटी खुश रहो। तो वो भी पूछती है कि मैं पूछने आई हूँ, मैं कैसी हूँ। बड़ी भी का बड़ी भी उसको भी कहती है कि भाई बहुत बरसात तो बहुत अच्छी होती है, अगर ना हो तो हम लोग जिए ही कैसे। पानी बरस रहा है छम छम और झूले पड़े हैं, औरतें हाथों में मेहंदी रची है, सुरसुख जोड़े पहनी है, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, झूले झूल रही हैं, तो मल्हार गाए जा रहे हैं, उदी उदी घटाएँ आ रही हैं। बरसात भाई बरसात।

टॉलीवुड आती, उसने तो तारीफ कर करके हजार हजार की अशरफियां तीनों से ले ली थी। तो उसने फिर क्या किया, जो बुढ़िया की जली कटी सुनी तो जलकर कोयला हो गया। अपनी थोड़ी की दाढ़ी दाढ़ी को जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। तेज हवा चला दी, चलते चलते दो तीन ठोकरें और मार दी। फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी, उनसे कहा लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया करा लाओ, हम तो हार गए। अब भी गर्मी आई तो उन्होंने भी कहा कि मैं कैसी हूँ अभी नानी अम्मा, तो सुनना था बुढ़िया के तो आगे लग गई गर्मी, गर्मी का क्या कहना, पसीना बहता है, कपड़ों से बू आ रही है, कपड़े सुबह को पहनो शाम तक चिक्कट हो जाते हैं, कोई खाना हजम नहीं होता, सुबह ही लू चलनी शुरू हो जाती है, इसको लू लगी उसको लू लगी, हैजा हो जाता है लोगों को, मुंह धुलसा जाता है, होठों पर पपड़ी जम जाती है, पानी पीते पीते जी हमारा जो है बेजार हो जाता है। तो कहते जितनी तारीफ की जाए तुम्हारी कम है, चल हो मेरे सामने, चल दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुखत सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी। अब भी गर्मी भी आग बबूला हो जाती है, गुस्से में हो जाती है, कहती है अच्छा मैं भी तुझे मजा चकाती हूँ बदजबानी का, इतनी बदजबान है तू मुझे क्या समझती है। कहकर उसने जब फूंक मारी तो मालूम हुआ कि लू लग गई। बुढ़िया हाय गर्मी करती रही, भी गर्मी पीठ पर दोहे खत्तर मारकर चलती बनी। अब रूखी सूरत बनाए जो है भी बरसात आती है, वो भी बहुत खुश हो, भी बरसात दिल में बहुत खुशी समझी कि चलो मैंने पाला मार लिया। बड़ी मटकती मटकाती जो है बुढ़िया के पास पहुंची और बरसात से कहा कि मैं दादी मैं बरसात हूँ, अच्छा बताओ तो बरसात कैसी। बुढ़िया ने कहा बरसात से खुदा बचाए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा हिला जाता है, बिल्कुल उल्टी बातें कर रही है। जो पहली बुढ़िया थी उसने खूब तारीफ करी थी कि बरसात में ये होता है वो होता है, झूले पर झूले झूलते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं। तो इधर कहते हैं धमधम की आवाज़ है, पाँव बाहर रखा, छींटे सर से ऊपर हो गए, जरा तेज चले और जूतियाँ कीचड़ में फंस कर रह गई। रात को मच्छर हैं कि सरब मच्छर हो जाते हैं इसमें बरसात के मौसम में, तो रात है कि मच्छर सताए जा रहे हैं, ना रात को नींद ना दिन को चैन और मच्छर। और फिर इस पर भी ये सवाल कि नानी जान मैं कैसी हूँ, नानी जान से तारीफ सुन ली अब तो दिल ठंडा हो गया, ए है ये बेमौसम की गर्मी कैसी। अब क्या हुआ कि बे बरसात ने जो है ना निगाह की निगाह जो थी ना बिजली बनकर उनके पर गिरी और उनके पाँव को काटती भी चाटती भी निकल गई। बरसात बुढ़िया को लंगड़ा करके मुंह पर थुक कर रुखसत हो गई। तो इसमें ये कहते हैं कि अल्लाह शकर कोरे को शकर दे ही देता है, मतलब ये कि जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं और जो रोनी सूरत होते हैं वो हमेशा जूते खाते हैं, यानी जो खुश मिजाज लोग हैं जो बद मिजाज लोग हैं उनके बारे में भी और मौसमों के बारे में भी। तो ये नज़्म बड़े अच्छे, ये जो कहानी है बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बहुत ही अच्छी और मज़ेदार कहानी आपको भी लगी होगी। आप इसमें सवाल है जाड़ा गर्मी और बरसात में आपस में झगड़ा क्यों हुआ, वो ये हुआ कि वो कहते हैं कि मैं अच्छी, बरसात कहती है गर्मी कहती है मैं अच्छी, जाड़ा कहता है मैं अच्छा, तो अपने आप को ये अच्छा साबित करने के लिए झगड़ा हुआ। झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो किसी आदमजात से किसी इंसान से हम तस्फिया करा लें, फैसला करा लें कि हमें से कौन अच्छा। जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया वो उसके अंदर है कि आप आए तो कौन सी बड़ी बी, पहली वाली बड़ी बी ने जो बयान किया, तो वो ज़्यादातर सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ बयान की, उसकी बुराई ने बयान की। गर्मी के बारे में भी बड़ी बी का जो ख्याल था वो भी यही था कि भे गर्मी में खस के कुल्फियाँ खा रहे हैं और आंगन छतों पे सो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने मुसन्निफ़ है। बरसात का क्या हुलिया बताया कि सांवली रंगत है, पानी भूरे रंग के बाल हैं, उनमें से बूंदें गिर रही हैं, ये सब चीज़ें उनका हुलिया उसने बताया। बड़ी बी को नज़र में थैलियाँ क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने तारीफ़ की थी और हर मौसम ने, जाड़े ने उसको 1000 थैली दी, गर्मी ने भी और बरसात ने, सब ने 3000 अशरफियाँ उसके पास हो जाती हैं। तो पड़ोसन ने जब बड़ी बी के घर में चहल पहल देखी तो क्या असर हुआ, उसके दिल में भी ख्याल पैदा हुआ पूछूं, और एक जो है ना तजस्सुस पैदा हुआ उसमें भी कि इनके घर में इतना जो है चहल पहल इतनी कैसे हो गई, पैसा आ गया इनके घर में, बस जबान बुढ़िया झाड़े के साथ किस तरह पेश आई। उसने भी उसने झाड़े को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि इधर आए तो इधर लकवा हो गया, ये हो गया, बुढ़िया की कौन सी बातों, बरसात की कौन सी बातों को बुढ़िया ने नापसंद किया, कि उसने फिर यही बताया बुढ़िया को। तो ये आप कहानी जब पढ़ेंगे तो उसमें से इसके जवाब लिखिएगा, और फिर बरसात ने बुढ़िया के साथ क्या सलूक किया इसको भी लिखिए। फिर खाली जगह है तो उन्हीं दोनों जाड़ा गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ, बाजरे का मलिदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, ये खाली जगह है। मियाँ जाड़े अपनी तारीफ सुन सुनकर फूले ना समाते थे, नानी जान खुदा तुम्हारा भला क्या, तुमने मेरी लाज रख ली। नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए जिसमें सलाह

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि नमस्कार साथियों, आप सुन रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका रेडियो स्टेशन जी हाँ एफएम ग्रीन। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इस फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम मृदा कार्ड के महत्व के बारे में जानेंगे। मृदा कार्ड क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे काम करता है, किसान भाइयों के लिए कैसे लाभप्रद है, ये सारी जानकारी आज देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में है डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि मृदा वैज्ञानिक है, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो मैडम, ये मृदा कार्ड क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं।
2: नमस्कार श्रोतागण, मेरे किसान बहनों भाइयों, मैं सोनल, और आज का हमारा टॉपिक है मृदा कार्ड का क्या महत्व है हमारा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं किसान के परिप्रेक्ष्य में। तो पहले हम जानते हैं ये मृदा कार्ड है क्या। ये जो आपको मृदा कार्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं, एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी। इस कार्ड का उद्देश्य ही था जिससे किसानों को उनकी मिट्टी की, जो उनकर भूमि है, भूमि की मिट्टी का गुणवत्ता का और उसके पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त हो सके। और ये जो कार्ड है ना, मिट्टी के विभिन्न गुणों पे काम करता है, स्पेशली जो हमारा पूर्णतः मतलब 12 गुण पे ये आपको उसका विश्लेषण करके, जांच करके उस कार्ड पर इसका विवरण दिया रहता है। और ये कार्ड जो आया था, इसको भारत सरकार चलाया था, भारत सरकार की शुरुआत थी ये जो पहल थी भारत सरकार की थी, ये जो मृदा कार्ड हमारा है कि हर किसान के पास अपनी भूमि का, उनकी मिट्टी का एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो। और इस भारत सरकार ने इस योजना का शुरुआत अगर बोला जाए तो कब स्टार्ट किया था, तो ये जो योजना है ना 19 फरवरी 2015 को आपको शुरू की गई थी। राजस्थान का एक सूरतगढ़ जगह है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को। और इस कार्ड का मैंने पहले बताया कि इस कार्ड का क्यों आखिर किया गया, ये कार्ड की किसी किसान को अपनी मिट्टी, भूमि जो है उनकी मिट्टी है, उसकी मृदा स्वास्थ्य क्यों, मृदा स्वास्थ्य जानना क्यों जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य जानेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना उनकी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें पोषक तत्व तो अगर उपलब्ध है तो कितना उपलब्ध है, और कमी है तो किस लेवल पर कमी है, तभी तो वो अपने कौन सा फसल के लिए लगा सकते हैं, कौन सा फसल लगाना वहाँ सही रहेगा। अगर फसल लगा भी रहे हैं तो उसमें कितना हमें, और जो हम बाहरी जो हम खाद पदार्थ डालते हैं कितना डालना पड़ेगा, तभी तो हम उसका स्वास्थ्य जान पाएंगे, तभी तो उसमें उसका हम निवारण कर पाएंगे ना। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो हिंदी में बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी।
1: इसके बाद इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में भी थोड़ा बता दें।
2: क्यों हुई कैसे हुई, मैंने अभी जस्ट इसके डिटेल में ही बता दिया था क्यों किया गया था, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो मिट्टी है उसका मिट्टी का गुणवत्ता, उसमें पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त कर सकें, उसमें कितने हमारे पोषक तत्व, कितनी पोषक तत्व प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो किस लेवल पर नहीं है, तो कितना हमें बाह्य खाद जो हम ऊपरी लेवल से जो बाहर से डालते हैं खाद पदार्थ कितना हमें डालना पड़ेगा, और डालना पड़े उसके अलावा कौन सा हमें फसल लगाना सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना सही रहेगा, कौन सा मिश्रित खेती के लिए वो हमारा भूमि सही है, ये सब की जानकारी प्राप्त हमें वहीं से होती है, ये इसके लिए जगह हुआ। कब हुआ तो मैंने बताया कि सबसे पहले भारत सरकार का योजना था जो 15 फरवरी 2015 को, सॉरी 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी, कहाँ पर, राजस्थान के सूरतगढ़ में। यही उद्देश्य लेके इनका ऑब्जेक्टिव इस कार्ड का, हेल्थ कार्ड का यही उद्देश्य था, इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत में योजना को लागू किया गया था।
1: जी, मृदा कार्ड कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताएं।
2: अब हम आते हैं मृदा कार्ड का फायदा क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अब इसका फायदा क्या है, कैसे काम करता है, उसके जाने। ये मृदा जो कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का है ना, योजना के अंतर्गत जो सरकार है क्या करती है, मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करती है। अब जो मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करना होता है तो जाहिर सी बात इसको सरकार नहीं करेगी, जो हमारा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होता है, जो हमारा मृदा प्रयोगशाला होता है, उसकी मिट्टी के नमूने को वहाँ पर भेजा जाता है, जहाँ पर मिट्टी की गुणवत्ता और उसके पोषक तत्व में की विश्लेषण किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि मिट्टी में गुणवत्ता कितनी है, पोषक तत्व है, अगर है तो कितनी उसमें कमी है तो उस कमी का रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों को ना मृदा कार्ड दिया जाता है, जिसमें उनको उनकी भूमि की जो मिट्टी है उसके उपयुक्त उर्वरक, अन्य आवश्यकता के विवरण दी रहती है। मतलब आपने आपने ये समझना है उसमें कि अगर हमने अपनी मिट्टी के नमूने भेजा तो उसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी, पोषक तत्व चेक की जाएगी। इसमें बेसिकली मैं बता रही हूँ, बहुत सारे चीज़ें हमें जब हम मिट्टी की गुणवत्ता जांच करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बट इसमें मुख्यतः 12 पैरामीटर्स जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, 12 पैरामीटर्स में ही 12 मतलब स्पेशली हमें जो 12 होते हैं ना, 12 चीज़ों का ही जानकारी प्राप्त की जाती है। वो क्या क्या है? मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच क्या है, मतलब वो आपको अम्लीय है कि क्षारीय है कि वो दोनों के बीच का है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। मिट्टी का जैविक कार्बन की मात्रा कितना है, मिट्टी में नेत्रजन कितना है, मिट्टी में फॉस्फोरस कितना है, मिट्टी में पोटास कितना है। और जो नेत्रजन, फॉस्फोरस और पोटास है, ये तीनों के हमारा जिसको मिट्टी का हम बोलते हैं इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहने का मतलब हुआ प्रथम, जो हमारा प्रथम बोलते हैं प्रथम पोषक तत्व, उसकी जानकारी मिलती है। और द्वितीय जो पोषक तत्व जिसमें होता है उसमें होता है सल्फर की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है। उस सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, वो 5 है। जिंक होता है, आयरन तत्व का है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, बोरोन होता है। और इसके अलावा जो हमारे सॉयल सैलिनिटी, जिसको जो हम क्षारता, हमारी मिट्टी में क्षारता कितनी है, जिसको हम ईसी बोलते हैं अपने एक साइंस के टर्म में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी क्षारता की भी जानकारी दी जाती है। तो टोटल जो पैरामीटर्स में 12 पैरामीटर्स पे काम करता है, और इस 12 पैरामीटर्स का मिट्टी के प्रयोगशाला में जांच की जाती है, उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसके बेसिस पे ही किसानों को उस कौन सा उर्वरक का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कौन सा आपको फसल के लिए सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना है, कौन सा आपको मिश्रित खेती में जाना है, उसका विवरण दिया जाता है और किसान को उसको समझाया जाता है। अब इसके फायदे क्या कर सकते हैं, ये तो फायदे ही मैंने बताया है, क्या क्या हो सकते हैं। फायदे का यही हो सकता है कि आपको सही समझ में, एक अगर आपको ने कार्ड पर्याप्त प्राप्त कर लिया है तो जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि उर्वरक हम सही प्रयोग कैसे करें। किसान अपनी मिट्टी की जांच के बाद अगर उनको पता चल गया कि हमारी ये है तो उर्वरक का प्रयोग कितना करना है, कैसे करना है, जिससे उनका फसल उत्पादन में और उत्पादकता में सुधार ला सके, ये पहला हमारा फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो सकता है लागत की कमी। बहुत सारे किसान हमारे क्या करते हैं, अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, जितना मन करता है, सपोज उन्होंने धान की खेती करा था, जितना मन करता है वो जो हमारा एक बोलते हैं ना साइंटिफिक टर्म्स में, वैज्ञानिक तरीके से खेती में एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हर फसल के लिए अलग अलग होता है, वो दिया जाता है। तो किसान अपने सूझबूझ से जो मन करता है जितना मन करता डाल देते हैं, उनको लगता है कि हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा हमारी उपज आएगी, हमारी उत्पादन या उत्पादकता बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है। किसी को जैसे हम मनुष्य हैं, हम भोजन उतना ही ग्रहण करते हैं जितनी हमारी सक्षम है जितना ग्रहण करने में, वैसे भी पौधे हैं वो भी हमारे सजीव हैं, वो भी उतना ही ग्रहण करें जितनी उनको आ सकता है। तो ज़्यादा डालने से भी क्या हो जाता है, आपको क्या है, आपके ही आपकी जो लागत लग रही है वो आपके बढ़ रहे हैं, मतलब कॉस्ट जो बोलते हैं खेती करने में, खेती बाड़ी करने में। लोग आज क्यों खेती बाड़ी में पीछे आ रहे हैं, अरे लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है, उत्पादन उतना होता नहीं, घाटे का सौदा करना पड़ता है। तो ये नहीं होती है, जानकारी के अभाव में हम वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या, हम ना 21st सेंचुरी में हम डिजिटल भारत में जी रहे हैं, जहाँ हर चीज़ डिजिटाइज होगी, हर चीज़ें लोगों तक पहुँच रही है, तब हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की अति आवश्यक है। तो आपको लागत में कमी आएगी अगर आपने जान गया कि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उसी के अनुसार आप ना उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जितनी जरूरत उतना ही प्रयोग करोगे, ज़्यादा नहीं करोगे तो लागत में कमी आपकी आएगी, लागत आपका बचेगा। देन पर्यावरण संरक्षण होगा, मृदा कार्ड का, आप मृदा कार्ड में सही उर्वरकों का चयन करेंगे तो पर्यावरण पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो पड़ेगी। मिट्टी पानी, हमारा मिट्टी पानी का संरक्षण होगा, मिट्टी पानी में हमें ज़्यादा जितने पौधे को चाहिए उतने ही डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात वहाँ से जो हमारे उर्वरक है वो बहकर पानी में नहीं जाएंगे, तो मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा हमारा, मिट्टी का भी स्वास्थ्य बना रहेगा हमारा, और हमारा पानी भी संरक्षित रहेगा, फसल की उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। जितना मात्रा में हमको उर्वरक डालना है उतना पौधे हमारे जो फसल हैं पोषक तत्व वहाँ से प्रदान किए, अच्छी उपज आ गई, अच्छी हमारी उत्पादकता बढ़ी, तो वृद्धि भी इससे फायदा होगी हमारी, फसल के उत्पादन उत्पादकता भी बढ़ेगी हमारी।
1: मृदा कार्ड किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
2: अब बात आती है मृदा कार्ड जो हमारे है किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अभी जो मैंने बताया कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, कैसे किसान के लिए उपयोगी हो सकता है, तो जो मृदा कार्ड है सभी प्रकार का फसलों के लिए उपयोगी है। पहली बात ये हमें जानना पड़ेगा कि जैसे मृदा कार्ड हम कर रहे हैं, मृदा कार्ड का प्रयोग कैसे करेंगे हमारे जो किसान हैं, इसका तो उपयोग करने के लिए पहले तो क्या करने का, जिनको किसान को अपने नहीं पता है कि उनको अपने मिट्टी का स्वास्थ्य क्या है कैसे नहीं है, तो उनको पहले तो अपने एरिया में उनको पता करना पड़ेगा वहाँ किसी सेवा केंद्र है या है कि नहीं है, या मिट्टी का जांच घर है कि नहीं, उस मिट्टी जांच घर में क्या करेंगे, अपनी मिट्टी का जो उनको भूमि है, भूमि का मिट्टी है, उस नमूने भेजना पड़ेगा। और वहाँ पर जो भी मैंने पैरामीटर्स का पहले ही अपने प्रश्नों में उत्तर में दिया है वो अंकित है, उस चीज़ पर जाँच की जाती है, उस जाँच के सुझाव दिए जाते हैं, सुझाव में लिखे रहते हैं कि आपको क्या क्या आपके भूमि में किसी चीज़ की कमी है, अगर है तो किस मात्रा में अवेलेबल है। जैसे हम कोई चीज हमारा जो पैरामीटर्स हम स्टडी करते हैं ना, हम लैब में जब उसका विश्लेषण करते हैं, हम प्रयोगशाला में उसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, लो, मीडियम और हाई। जैसे मैंने बोला हमारा जो मृदा प्रथम हमारा प्राथमिक हमारा पोषक तत्व है जिसका हम बोलते हैं नेत्रजन बोलते हैं, फॉस्फोरस बोलते हैं, पोटास होते हैं, इस सब का एक हमारे साइंटिफिक टर्म से एक लेवल दिया रहता है जिसको बोलते हैं लो है कि मीडियम है कि हाई है। सारे का ऐसे ही रहता है, ऐसे ही सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, ऐसे ही हमारे द्वितीय पोषक तत्व होता है। पीएच है तो पीएच का भी एक लेवल होता है जो 0 से 14 तक होता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमको मिट्टी का हमको सैलिनिटी टेस्ट करना होता है उसका हम टेस्ट के लिए रहता है। सब एक ऑर्गेनिक जो हम जैविक कार्बन बोलते हैं उसका भी एक लेवल होता है, लो मीडियम हाई के रेंज में है। उस सारे वहाँ पर क्या होते हैं मेंशन किए रहते हैं, उस मेंशन करने के आधार पर ही कि आपको किस कैटेगरी में आपका मिट्टी का गुणवत्ता और उसमें पोषक तत्व की जो है प्रेजेंट है उपलब्ध है किस कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है, उसके बेसिस पे आपको किसानों को उनको सलाह दी जाती है कि आपके लिए कौन सा वो फसल वहाँ का चयन करना सही रहेगा। फसल चुन रहे हैं और फसल चक्र में तो कौन सा फसल चक्र को अपनाना सही रहेगा, कौन सा आपको मिश्रित खेती के लिए सही रहेगा,

0: प्रदूषित नहीं हो, हम भी प्रदूषित नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कंज्यूमर कौन है? हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसके ये हमारे फायदे हैं। और बहुत सारे उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से हमें लागत में भी कमी आएगी। सब फायदे मैंने पहले ही लिस्ट आउट किया है, ये सारे हमारे इसके फायदे हो सकते हैं
1: जी। अब आगे बढ़ते हैं, जानना चाहिए कि मृदा कार्ड से जो जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं किसान, तो ये जानकारी प्राप्त करने में किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
0: हाँ देखिए, बहुत सारे हमारे किसान बंधु हैं, बहनें हैं, उनको बहुत चीज़ों से अवगत हो चुके हैं। अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अवगत नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसा जगह भी है ना, जहाँ हमारे जिसको हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोलते हैं, जो हमारे अभी भी जंगल में रहते हैं, अपने हमारे प्राकृतिक चीज़ों पर उपलब्ध है, बहुत चीज़ें उनको जानकारी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, उस पर तो मैं नहीं कहूँगी उनको। अगर जिसको जहाँ जहाँ अभाव है, अगर उन्होंने मृदा कार्ड का पर्याप्त कहीं से प्राप्त उनको प्राप्त हो गया है, मृदा कार्ड उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे दिए है, फिर भी बहुत सारी चीज़ों को उनको समझ नहीं होती है, सूझबूझ नहीं है, चाहे सही से नहीं उनको बातों को बताया पहुँचाया गया है, तो बहुत चीज़ों को दिक्कत आ जाती है। वो जैसे हमारे क्या क्या चुनौतियाँ उनको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कुछ हैं कि जैसे जानकारी की पहुँच है,

0: अरे हमारे जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे बहुत टेक्निकल स्टाफ इस पर काम करें, वो वहाँ तक पहुँचने में असक्षम हैं। वो चाह रहे हैं पूरी अपनी तरह कोशिशें, बट अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को किसान तक नहीं पहुँचा रहे हैं। कि किसान भी इतने रिमोट एरिया पर रह रहे हैं कि जहाँ तक वो अपने जो हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं, टेक्नीशियन काम करते हैं इसके लिए, जो वैज्ञानिक काम करते हैं, वो उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ना उन तक पहुँच पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे एक दूसरे को बोलते हैं ना रीच, कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलते हैं, वो आ जाती है, सबसे बड़ी गैप हो जाती है, जिसमें जानकारी की पहुँच नहीं, हमारी आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। जहाँ लोग अपने जो उनके अंदर जानकारी चाहिए, जो प्रश्न उनको रखना है वो प्रश्न नहीं रख पा रहे हैं, जिनको उत्तर देना है वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको जिसको बोल रहे हैं कम्युनिकेशन गैप आ जा रही है। दूसरी हमारी एक तकनीकी जो समझ का होता है अभाव पड़ जाता है। जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आएगी, जही जो तकनीकी हमें समझ लेनी है, जैसे हमको उर्वरक का प्रयोग करना, अगर धान की खेती हम कर रहे हैं, धान की भी वैरायटी होती है, आपने लो लैंड में करा है, मिड लैंड में किया है, या हाई लैंड में करा है, कौन से धान की वैरायटी प्रयोग करा है, वो आपने कौन से मौसम में किया है, और तो उसी की उर्वरक की बात करें तो उस उर्वरक कितना उर्वरक हमको प्रयोग करना है, कितना नहीं करना है, और प्रयोग कर लिया था कितने हमारे खाद अवशेष मट्टी में ऑलरेडी बचे होंगे, जिस खाद का प्रयोग करके हम दूसरी फसल ले सकते हैं। ये सब चीज़ें तकनीकी चीज़ें होती हैं जिसका अभाव में रहता है, जो हमारे किसान तक नहीं पहुँच सकता है। जैसे कुछ किसान हमें जैसे मृदा कार्ड की उनको दी गई है, तकनीकी जानकारी समझने कठिनाई हो सकती है, क्योंकि उससे उसके पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। जैसे मैंने ये सब चीज़ें, ये दिक्कत आते हैं तकनीकी समझ की। तीसरी आपकी होती है सूचना का अनुपालन हो सकता है। कुछ किसान को मृदा कार्ड की सिफारिश के अनुसार कृषि तकनीकों को अपनाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए होती है। खासकर अगर ये देखा है कि उन्होंने पारंपरिक तरीके से उन्होंने खेती करना को ही उन्होंने मान रखा है कि नहीं मुझे पारंपरिक तरीके से खेती करना है, उन्होंने किसान जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसको भी ले लिया है, बट वो चीज़ें बहुत रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हम ऐसे करते हैं, ऐसे ही करेंगे हम। जैसे जलवायु में इतना हमारा देख रहे हैं परिवर्तन हो रही है, जलवायु में परिवर्तन होता है, हमारी मिट्टी बदल रहा है, हमारा पानी बदल रहा है, हमारे में चेंजिंग आ रहा है, बहुत चीज़ों में चेंजिंग आ रही है, बदलाव हो रही है, जो सारे चीज़ जलवायु पर डिपेंडेंट है। तो हमें भी अब पारंपरिक तरीकों को अपनाते हुए कुछ नए तरीकों को भी अपनाना पड़ेगा। तो जहाँ पर जो लोग रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे ही करेंगे, नहीं, जहाँ आपको जिससे फायदे हो रहे हैं ना, जहाँ आपकी फसल के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, तो आपको नई तकनीकों भी अपनाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये जो हमारे होते हैं सूचना का अनुपालन जरूर करना चाहिए, जो भी हमें जहाँ से जही सही चीज़ें सीखने को मिले उसको हमको सीखना है। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ये चीज़ें का हमें चुनौतियों का सामना करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप जान रहे थे मृदा कार्ड के बारे में, और इसमें पूरी जानकारी आपने प्राप्त की कि किस प्रकार ये आपके लिए उपयोगी है और क्यों महत्वपूर्ण है और किन चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ये सारी जानकारी आपको मिली। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आपके लिए बिल्कुल लाभप्रद होगा। मिलेंगे आपसे अगले दिन इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बता।

0: बताता हूँ बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
9: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
8: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाध बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं गुणवत्तापूर्ण बीजों के महत्व के बारे में। खेती की शुरुआत ही बीज से होती है, और अगर बीज ही गुणवत्ता युक्त ना हो तो फिर कैसे अच्छी फसलें हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम बीजों को परखें, बीजों को समझें और बीजों के बारे में बहुत सी जानकारी हमारे पास हो। आज बीजों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार सर। आप हैं बीज विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि बीज क्या है और इसका कृषि में क्या महत्व है।
1: आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम। कृषि में बीज का महत्व सबसे, जितने भी हमारे इनपुट कृषि इनपुट यूज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनपुट जो है हमारा बीज ही है। बीज जो है का तात्पर्य ये है कि पौधे का वह वैसा भाग जिससे हम एक नया पौधा, स्वस्थ पौधा और हेल्दी पौधा तैयार कर सकते हैं, वो बीज होता है। ये जो परिभाषा हुआ वो हमारा बीज प्रौद्योगिकी के अनुसार हुआ। और वानस्पतिक रूप से बीज जो है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं, या निषेचित भ्रूण रहता है। और बीज जो है चूंकि सूक्ष्म अवस्था में रहता है तो वो एक मिनिएचर प्लांट भी हम उसको बोलते हैं, सूक्ष्म पौधा भी उसको माना जाता है। और जहां तक इसके महत्व की बात है, यदि हम गुणवत्ता युक्त बीज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा उत्पादन जो है ऐसे ही 20-25% कम से कम जो है अधिक होगा। तो इसलिए जब भी किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि जब भी आप जो बीज यूज करते हैं अपने खेती के लिए तो उसमें गुणवत्ता युक्त बीज का ही इस्तेमाल करें।
0: सर, गुणवत्ता युक्त यानी कि बीज की गुणवत्ता, इसका मतलब क्या है?
1: हाँ, किसी भी चीज़ का जब आप बाजार में कुछ खरीदते हैं तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ कुछ गुण के आधार पर खरीदते हैं। तो उसी प्रकार जो है जब भी आप बीज खरीदना चाहते हैं तो बीज में कुछ मूलभूत पैमाना है जिसके आधार पर कि हम बीज की गुणवत्ता को माप सकते हैं। जैसे कि पहला जो पैमाना है वो भौतिक शुद्धता है, जिसको हम फिजिकल प्योरिटी बोलते हैं। दूसरा पैमाना है आनुवांशिक शुद्धता, जिसको जेनेटिक प्योरिटी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारा है अंकुरण क्षमता, जिसको जर्मिनेशन परसेंट बोलते हैं। और इसमें जो भी आप बीज खरीद रहे हैं उसमें खरपतवार का के बीज से मुक्त हो, दूसरा फसल का या प्रभेद का बीज नहीं हो, और मॉइस्चर कंटेंट सीड का जो है, क्योंकि हम पैकेट में वो रहता है, सीड पैकिंग किया हुआ रहता है, तो मॉइस्चर भी एक लिमिट तक हो जो है, इसका एक पैमाना अलग से दिया गया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ उसमें किसी भी तरह का अवांछनीय पदार्थ ना हो, और वो बीज रोग किसी भी तरह से रोग ग्रसित नहीं हो।
0: सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके अलावा भी जब किसान भाई बहन बीज खरीदने जाते हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती है?
1: जरूर मैडम, जब भी किसान भाई बीज खरीदते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वो खरीद कहाँ से रहे हैं। जिस भी शॉप से वो बीज खरीदना चाहते हैं उस शॉप का लाइसेंस है या नहीं है। दूसरा चीज, वो जो बीज आप पैकेट ले रहे हैं जिस कंपनी का सप्लायर है, तो उसमें आप पैकेट पे जरूर ध्यान दें कि वो कंपनी सप्लायर उसका कौन सा है और उसमें कौन सा प्रभेद का नाम मेंशन किया गया है। साथ ही साथ अभी जो हम गुणवत्ता युक्त बीज का पैमाने के बारे में बताएं, भौतिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता और जर्मिनेशन परसेंट, वो टेबल उसके पैकेट पे वो मेंशन किया रहता है कि उसका वो क्या क्या स्टैंडर्ड के तहत वो मेंशन उसमें है या नहीं है, जो कि इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है, जो कि भारत सरकार द्वारा ये दिया गया था कि बाजार में जो भी बीज बिकेगा इसका कम से कम न्यूनतम जो है एक पैमाना होगा, न्यूनतम स्तर होगा उसके गुणवत्ता का, जिसके आधार पर है बीज में वो बीज है वो बाजार में बिक सकता है। यदि वो बीज जो है उस पैमानों को फुलफिल करता है तभी वो मार्केट में आता है। और इसका जो नियंत्रण है सरकार के नियंत्रण के अधीन है, क्योंकि बीज जो है एक हमारा अति आवश्यक वस्तु के रूप में 1983 में ही इसको जो है आवश्यक वस्तु के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसका गुणवत्ता जो है सरकार के नियंत्रण में रहता है, कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो सरकार जो है उनको ध्यान देती है और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम देख लिए, चेक कर लिए पैकेट पर सब कुछ कि किसी भी तरह का वो ब्रोकन नहीं है या किसी भी जो भी उसमें मूलभूत जानकारी है गुणवत्ता को मेंशन किया हुआ है, तब हमें खरीदते समय जो है दुकानदार से जरूर कैश मेमो भी हम रिसीव करें, क्योंकि बिना कैश मेमो के बीज बिक्री जो है वो गैर कानूनी है।
0: सर, बीज के गुणवत्ता को नियंत्रित कैसे किया जाता है?
1: ये जो है एक काफी कई स्टेप्स में ये प्रक्रिया है। पहले तो मैं बता दूं कि बीज जो है वो जिस वैरायटी, जब भी वैरायटी रिलीज होता है, जब विमोचन होता है, उसके बाद उस वैरायटी का नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तब उसका जब हम नाभिकीय बीज बनाते हैं, जो कि विश्वविद्यालय स्तर पर बनता है, कंसर्न वैज्ञानिक जिसने उस प्रभेद को डेवलप किया होता है, उसके नियंत्रण में वो जो है उसका न्यूक्लियोसाइड का उत्पादन या नाभिक के बीज का उत्पादन किया जाता है। फिर उस सीड से जो हम लार्ज स्केल पे जो है काफी बृहद पैमाने पे जो उससे पजनक बीज, जिसको ब्रीडर सीड कहते हैं, वो भी विश्वविद्यालय द्वारा या कोई ICR संस्था जिसने उस प्रभेद को विकसित किया उसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। और उसका पूरा नियंत्रण जो है विश्वविद्यालय की देखरेख में और किया जाता है, जिसमें कि डायरेक्टर सीड एंड फार्म जो है उसे एक निरीक्षण कमेटी के चेयरमैन होते हैं, साथ ही साथ हमारा बीज प्रमाणीकरण संस्था का डायरेक्टर भी उसमें एक मेंबर होते हैं, और इसके अलावा बिहार राज्य बीज निगम के मेंबर भी होते हैं और राष्ट्रीय बीज निगम के रीजनल मैनेजर भी उसके मेंबर होते हैं। तो इन लोगों की देखरेख में उसका जो है पूर्ण मॉनिटरिंग किया जाता है। अब उसके बाद आती है, चूंकि विश्वविद्यालय के पास या ICR संस्थाओं के पास इतना प्रचुर मात्रा में, ये कह सकते हैं कि उतना हमारे पास जमीन अवेलेबल नहीं होने के कारण जो है हमको, चूंकि हमारा टारगेट ही किसान बहुत बृहद पैमाने पे उस बीज का डिमांड है, तो हमारे पास लिमिटेड लैंड होने के कारण ऐसा व्यवस्था किया गया है कि बीज की गुणवत्ता भी मेंटेन रहे और उसका क्वांटिटी बहुत अधिक क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस भी कर सकें। इसलिए जो है इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो आगे का बीज है, जो हमारा आधार बीज जिसको फाउंडेशन सीड कहते हैं और आधार बीज से हम प्रमाणित बीज जिसको सर्टिफाइड सीड कहते हैं, इन दोनों तरह के प्रकार के सीड का उत्पादन जो है बीज प्रमाणीकरण संस्था के निगरानी में किया जाता है। तो हर एक राज्य में जो है एक बीज प्रमाणीकरण संस्था बनाया गया है। बिहार में भी जो है बीज प्रमाणीकरण संस्था है, जिसको कि पहले बिहार स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी कहते थे, आज के डेट में उसका रीनेम हो चुका है और जिसको बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी कहते हैं।
0: सर, अब आप हमें बीज के किस्मों के बारे में बताइए। OPB होते हैं और हाइब्रिड होते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है?
1: ये जो है पौधों के मूल रूप से यदि OPB की बात करते हैं, तो वहां पे हम किसी भी तरह का कंट्रोल परागण या पॉलिनेशन उसमें नहीं करते हैं, वो नेचुरल पॉलिनेशन होता है उस क्रॉप में। और इसका मेंटेनेंस में, मतलब यदि पेरेंट की बात करें, तो सिंगल पेरेंट से ही ये ड्रॉ होता है। और इसके गुणवत्ता नियंत्रण के लिए हमें मुख्य रूप से जो है वहाँ पे आइसोलेशन डिस्टेंस अडॉप्ट करते हैं। जबकि यदि हम हाइब्रिड सीड की बात करते हैं, तो वहाँ पे हाइब्रिड सीड या जिसको संकर किस्म बोलते हैं, उसको तैयार करने के लिए दो अलग अलग पेरेंट की जरूरत होती है, एक नर एंड मादा पौधा, जो कि अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, और दोनों के गुणों को वो कंबाइन करते हुए एक जो F1 तैयार करते हैं दोनों को, जिसको कि हम संकर बीज के रूप में कहते हैं। और यहाँ पे अति महत्वपूर्ण ये है मैडम, ये बताना चाहेंगे कि हाइब्रिड का इस्तेमाल हम एक बार ही कर सकते हैं। यदि हम हाइब्रिड से फिर जो भी उसे सीड आता है यदि हम करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशंस आएंगे, प्लांट यूनिफॉर्म नहीं होंगे, यील्ड भी कम होगा, जबकि OPV के केस में हम उसको जो है रीयूज कर सकते हैं।
0: सर, हमारे किसान भाई बहनों के मन में एक सवाल ये भी होता है कि अगर वो बीज खरीदने जाते हैं तो वो किन कंपनियों का ध्यान रखें, तो बीज उत्पादन कंपनी मुख्यतः कौन कौन से हैं?
1: राष्ट्रीय स्तर पे जो बीज कंपनी है सरकार का, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, उसको राष्ट्रीय बीज निगम है। और हर एक राज्य में स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, जैसे बिहार में बिहार BRBN कहते हैं कि बिहार राज्य बीज निगम कंपनी है। और इसके साथ साथ आज के समय में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसके बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी बिहार में मौजूद हैं, जैसे कि बायर्स हो गया, मॉन्सेंटो हो गया, सिंजेंटा हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां। इसके अलावा भी भारत में कई सारे जो है राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां, बट वो अब कंपनियां पहले तो राष्ट्रीय स्तर की थे, अब वो अंतर्राष्ट्रीय रूप वो भी कंपनियां ले ली चुकी हैं। कावेरी हो गया, इंडो हाइब्रिड हो गया, और यदि लोकल में कहें तो हमारे पास पान सीड का हो गया, जिसका कि बिहार में भी अच्छा खासा शेयर है। और इसके अलावा राशि हो गया, तो बहुत सारी धानुका कंपनी हो गई, बहुत सारी कंपनी ऐसे मौजूद हैं जो कि सभी अलग अलग तरह के क्रॉप के बीज ये लोग जो है बेचते हैं। कुछ के जो है मैक्सिमम, जैसे कि हम यदि धान की बात करें, तो बहुत सारी कंपनियां आज के समय में हाइब्रिड सीड सेल हो रहा है। यदि हम मक्के की बात करें, तो मैक्सिमम कंपनियां जो भी हैं वो मक्के में हाइब्रिड का ही मार्केट बना हुआ है। तो हाइब्रिड के सेक्टर में जो है बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं मुख्यतः।
0: सर, अब हमें कुछ कानूनी प्रावधान के बारे में बताइए, तो क्या बीज के क्षेत्र में कुछ मुख्य कानूनी प्रावधान हैं?
1: जैसा कि हमने बताया कि बीज जो है अति महत्वपूर्ण, कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि गुणवत्ता युक्त बीज किसानों को नहीं मिलेगा तो पैदावार पे केवल उस किसान का पैदा, उस खेत का पैदावार कम नहीं होगा, हमें राष्ट्रीय स्तर पे जो है हमें फूड स्कार्सिटी होगा। तो फूड सिक्योरिटी के लिए सीड का अच्छा क्वालिटी के सीड का होना अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने 1966 में ही बीज अधिनियम पारित किया था। और बीज अधिनियम के तहत ये है कि जो भी सीड बाजार में बिकेगा उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड होगा, और वो स्टैंडर्ड जो है उसके पैकेट पे लेबल्ड होगा, लूज में कभी भी सीड सेल नहीं होगा। और उसके नियंत्रण के लिए भी जो है प्रोविजन किया हुआ है उसके सीड एक्ट के सेक्शन 8 में, जो है स्टेट सीड कॉरपोरेशन का प्रोविजन दिया हुआ है। तो मतलब और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, मुख्यतः जो है कि बीज के गुणवत्ता को नियंत्रण करते हैं। सीड टेस्टिंग से रिलेटेड भी प्रोविजंस हैं कि टेस्टिंग रिपोर्ट, जैसे कि एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बताना चाहेंगे, जब हर एक चीज़ का एक जो है वैलिडिटी पीरियड होता है, सीड का भी वैलिडिटी पीरियड है। और सीड का वैलिडिटी पीरियड काफ़ी हमको, जैसे कि मेडिसिन हो गया या और कोई प्रोडक्ट हो गया, उसका एक्सपायरी पीरियड होता है। तो ये कानूनन रूप से ये प्रोविजन है कि सीड का जो एक्सपायरी पीरियड होगा, डेट ऑफ टेस्ट, जिस दिन उसका बीज परीक्षण हुआ है उसके 9th मंथ तक उसका वैलिडिटी होगा, है ना। तो यहाँ पे भी अब जब भी आप बीज खरीदा जाता है तो ये कानूनी प्रावधान को जाने और इसके अनुसार ही एक्सपायरी सीड को आप ना खरीदें, ठीक है। दूसरा जो प्रोविजंस है सीड से रिलेटेड, चूंकि सीड जो है एसेंशियल कमोडिटी, आवश्यक वस्तु के रूप में जो है 1983 में डिक्लेयर किया गया था अंडर सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। तो उस दिन से जैसे कि ये कमोडिटी, जैसे हमारा बहुत कमोडिटी दवा हो गया, मेडिसिन हो गया, आज के टाइम में राशन का शॉप हो गया, जैसे वो रेगुलेटेड होता है, सेम उसी सेम अप्लीकेबल जो है यहाँ पे भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसको 1955 में ये आया था, वो एक्ट जो है सीड पे भी अप्लीकेबल है। तो इसके अनुसार यदि कोई भी एजेंसी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सीड के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसको कंपल्सरी जो है सीड लाइसेंस लेना पड़ेगा, सीड बिजनेस का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और कंसर्न जिला में जिला किसी पदाधिकारी के यहाँ से इसके संबंध में संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और लीगल प्रोविजन है, जैसे कोई कंपनी के स्तर पे हम कह सकते हैं यदि कोई सीड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो उस केस में प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 जो है वो वर्तमान में लागू है। या कोई कंपनी, जैसे सीड भी हमारा जो है कोई एक नया प्रभेद यदि डेवलप करते हैं, एक वो हमारा बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, है ना। तो इसके लिए भी प्रोविजन किया गया है कि वैसे कंपनी जो कि सीट कोई प्रभेद डेवलप कर रहे हैं और उनका उसमें इनोवेशंस है तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसके लिए एक प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001।
0: जी सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो कंपनी बनाती है बीज, उनका उत्पादन करती है, तो उन्हें लाइसेंस की जरूरत होती है, तो क्या अगर कोई किसान भाई बहन चाहे या कोई आम आदमी चाहे कि हमें बीज उत्पादन करना है तो वो भी कर सकते हैं?
1: बिल्कुल कर सकते हैं। एक अभी जैसा मैंने बताया कि ये कंपनियां तो सरकारी कंपनी कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी हैं, प्राइवेट कंपनी भी बहुत सारे, मोस्टली जो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में वो एज रजिस्टर्ड हैं कंपनी एक्ट के तहत। बट इसके अलावा भी जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या सीड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यदि सीड कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल फार्मर्स हैं सीड प्रोडक्शन करना, सीड प्रोडक्शन केवल करने की बात नहीं, यदि वो बिजनेस एस्पेक्ट में यदि सीड प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको भी सीड लाइसेंस लेना पड़ेगा। और साथ साथ यदि वो प्रमाणित बीज का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है उनको मतलब आधार बीज का जो है खरीदना पड़ेगा, या आधार बीज आप चाहते हैं कि जो है हम प्लानिंग हमारा बड़ा है, हम काफी ज्यादा क्वांटिटी में सीड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपको पजनक बीज जो है विश्वविद्यालय से मिलेगा। विश्वविद्यालय से जब आप पजनक बीज खरीदिएगा तो पजनक सीड के साथ में आपको उसमें पैकेट पे एक टैग लगा रहेगा, कैश में रहेगा, इसके बेसिस पे जो है आपको सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये दोनों कागजात उनके साथ इंक्लोज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये डिटेल अपना जो भी प्रोड्यूसर्स हैं जो भी फार्मर्स हैं उनका अपना पता, नाम पता डिटेल देना पड़ेगा, उनका फील्ड का लोकेशन क्या है खाता खेसरा नंबर के साथ में, और किस फसल का कौन सा प्रभेद का किस सीजन में बीज उत्पादन करना चाह रहे हैं, तो वो सब डिटेल के साथ परफॉर्म भर के उनको अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फी जमा करते हुए जो है जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तब सर्टिफिकेशन एजेंसी के इंस्पेक्टर आपके क्रॉप को जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए, फील्ड इंस्पेक्शन के लिए वो आएंगे बीच बीच में, कि मतलब किसी भी तरह से क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में जो भी नॉर्म्स है उससे कोई किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो रहा हो, है ना। तो मुख्य मकसद ये है कि जो है हमारा गुणवत्ता युक्त फील्ड में किसी भी तरह का फैक्टर्स, जैसे कि जो आइसोलेशन डिस्टेंस हुआ, या क्रॉप जो हमारा लगा हुआ लाइन सोइंग लगा है कि नहीं, ऑफ टाइप प्लांट है तो वैसे प्लांट को रिमूव करेंगे, वीट प्लांट है तो इन्फेस्टेड है तो वो रिमूव करेंगे, तो जो चीज़ हम कर सकते हैं वो करेंगे। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इरिवर्सिबल है, जैसे क्रॉस पॉलिनेटेड के पर परागणित फसलों में यदि हम फ्लावरिंग के समय में ऑफ टाइप प्लांट नहीं रिमूव कर पाए तो वैसे केस में वो फील्ड रिजेक्शन का भी चांस बनता है। क्योंकि हम बताए ना कि जब बीज की गुणवत्ता की बात आती है तो अनुवांशिक शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और तो अनुवांशिक शुद्धता में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, ताकि गुणवत्ता युक्त किसानों को हाई जेनेटिक प्योरिटी वाले सीड जो है किसानों को मिल सके। जब ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो जाती है, इंस्पेक्शन की प्रक्रिया हो जाती है, और सभी चीज़ जो है जब सीड इंस्पेक्टर्स जब आते हैं तो वो अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में यदि सेटिस्फैक्ट्री रहता है तब जाके वो सीड जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट पे जाता है प्रोसेसिंग के लिए, और वो भी वैसे प्रोसेसिंग प्लांट जो कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से वो रजिस्टर्ड हो, वैसे प्रोसेसिंग प्लांट पे वहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के बाद सीड का जो है सैम्पलिंग किया जाता है, सैम्पलिंग करने के बाद उसको लैब में भेजा जाता है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में, वहाँ पे उनका परीक्षण के दौरान यदि वो जो बीज का पैमाना हमने बताया वो यदि जो है उस पर्टिकुलर फसल के लिए वो है सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है, तो उसके बाद जो है उसका सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उस सर्टिफिकेट के आधार पे जो है उस पर्टिकुलर क्लास का टैग इशू कर दिया जाता है। जैसा कि अभी इसमें हम एक बताना चाहेंगे, यदि वो प्रमाणित बीज है तो प्रमाणित बीज में ब्लू कलर का टैग होता है, और यदि कोई कंपनी हाइब्रिड उत्पादन हाइब्रिड सीड का सेल कर रहा है तो वहाँ पे वो ग्रीन कलर का, नॉर्मली वो लोग सत्यापित बीज के रूप में बेचते हैं, वो सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में नहीं जाते हैं, वो एक अलग तरीका है जिसमें कि वो उनको सीड सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं कराना होता है, एक तरह का सेल्फ सर्टिफिकेशन है, और उसमें टेस्टिंग भी कंपनी खुद करती है, और डिक्लेरेशन यदि किसी भी तरह का उसमें गड़बड़ी होता है तो कंपनी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। जबकि प्रमाणित बीज में, चूंकि ये यहाँ पे एक थर्ड संस्था इन्वॉल्व है हमारा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो इस केस में चूंकि वो यदि हमें सर्टिफिकेट देगा, यदि सर्टिफिकेट पास हुआ है, हमारा लॉट पास हुआ टेस्ट में परीक्षण, बीज परीक्षण में, तभी वो जो है बीज बिक्री में जा सकता है।
0: जी सर। सर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जरूर मैडम। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप बीज लगाएं तो उपचार, बीज को उपचारित करके ही लगाएं, और बिना बीज उपचारण का आपका कई बार जो है बीचा हमारा फेल्योर होने का भी चांस रहता है, तो ये सावधानी आवश्यक रूप से जो है इन चीजों को फॉलो करें।
0: तो किसान भाई बहनों, जो बातें सर ने बताई, आप जब बीज खरीदने जाते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर बीज गुणवत्ता युक्त होंगे और बीजोपचार भी आप कर लेंगे तो न केवल फसल अच्छे होंगे बल्कि लागत भी काफी हद तक कम हो जाती है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: आज के इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा आज का ये कार्यक्रम आपके लिए काफी उपयोगी होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

होता है तो किसी किसी में हरा ही रहता है, थोड़ा लाइट ग्रीन रहता है, थोड़ा सा किसी में अधिक पीला होता है, तो ये डिपेंड करता है कौन सी वेराइटी है। अब उपज की बात करें तो नींबू वर्गीय फल वृक्ष से 5 से 8 वर्ष में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाता है। तो फलों का उत्पादन जाति, उसके जाति, किस्म, बाग की देखरेख और जलवायु पर निर्भर करती है। एक अच्छे माल्टे से, माल्टे के पौधे से 500 करीब फल प्राप्त होता है, प्रति पेड़ 500 फल मिलता है। संतरे, संतरा की बात करें तो

0: your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर,
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और ये महत्वपूर्ण विषय है FPO। जी हाँ, FPO का महत्व क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। सर हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, सर हैं चेयरमैन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद
6: सर। आपसे सबसे पहला सवाल कि किसान उत्पादक कंपनी यानी कि FPO का क्या महत्व है और इसकी आवश्यकता क्यों है?
8: बिल्कुल, तो पहले मैं थोड़ा FPO को समझाना चाहूँगा। आजकल ये टर्म बहुत यूज़ होता है FPO, कभी कभी FPC वर्ड भी यूज़ होता है। तो FPO और FPC में क्या अंतर है, ये भी मैं बताना चाहूँगा। पहले FPO क्या है कि आप जानते होंगे कि हमारे भारत देश में जो 80-85% जो किसान हैं वो छोटी जोत वाले किसान हैं, जो जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो ऐसे किसान को बहुत मुश्किल होता है कि वो कम लागत में अपना लागत कम कर सकें, या फिर अपना जो भी उसका फसल है उसको अच्छे दाम पे बेच सकें। तो ऐसे यही सबको हेल्प करने के लिए, यही सबको को मदद करने के लिए FPO का कंसेप्ट आया है, FPO का कंसेप्ट। तो FPO ये बोलता है कि एक संगठन है, ये कृषक का संगठन है जिससे कि कृषि किसान जुड़ सकते हैं उसमें, और किसान को अनेक तरह के फ़ायदा हो सकता है किसान को, जैसे कि उनकी लागत कम हो सकती है, क्योंकि सारा जो FPO होता है वो सारे किसान के लिए अपने से वो इनपुट खरीदता है, तो उसमें उसको कम दाम में ज़्यादा अच्छा बार्गेनिंग पावर मिलता है, कम दाम में वो मुहैया करवाता है, एक छोटे से किसान को कम दाम में वो मुहैया करवा सकता है। इसके अलावा वो जो मान लीजिए उसका कुछ भी सामान है, मान लीजिए आम का ही FPO है, तो आम को वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। एक छोटा किसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको एक्सपोर्ट कर पाए, दूसरे देश में भेज पाए, लेकिन FPO के माध्यम से वो उसको अच्छा दाम मिल सकता है उसका, क्योंकि वो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो FPO का फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और FPC का फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। बस इसमें, इस दोनों में ये अंतर है कि दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग होता है। FPO का रजिस्ट्रेशन जो है वो जनरली हम कंपनीज एक्ट के थ्रू करते हैं, और FPC का जो है वो हम कंपनीज एक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर कोऑपरेटिव के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यही दोनों बस टर्म में अंतर है, बाकी एक ही चीज़ है।
6: यस सर, तो अब बात करते हैं कि FPO कैसे बनाया जाता है और इसमें कितने किसानों की ज़रूरत होती है।
8: बिल्कुल, तो FPO बनाने के लिए अगर आप वो समतल जमीन वाला क्षेत्र ले लें, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें आपको एक FPO बनाने के लिए कम से कम 300 किसान का मेंबरशिप चाहिए, और अगर कोई हिली एरियाज है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे 100 किसान आपको मेंबर में चाहिए। तो ये जो 300 किसान हैं, ये आपको हर आदमी जो है इसमें किसान होना चाहिए। इसके पहले FPO बनाने के पहले आपको कम से कम 15 आदमी का एक संगठन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अलग अलग जिम्मेदारी उनको देनी होती है। तो 15 आदमी का पहले संगठन बनाइए, उसके बाद आप कम से कम 300 किसान को जोड़िए अपने साथ, और अगर आप जोड़ लेंगे ये 300 किसान को, तो आप FPO को रजिस्टर कर सकते हैं, उसको पंजीकरण कर सकते हैं।
6: तो क्या सरकार भी कोई आर्थिक सहायता देती है FPO बनाने के लिए?
8: बिल्कुल, तो सरकार का अभी बहुत अच्छा योजना चल रहा था 2020 साल से, जो 2025 में ख़त्म हुआ। इसमें सरकार कर रही थी कि हम 10,000 FPO बनाने के लिए प्रोत्साहन कर रही थी सरकार, 10,000 FPO बनाने के लिए। तो जो 10,000वां FPO था वो पिछले साल ही फरवरी के महीने में हमारे ही बिहार के खगड़िया जिले में

0: वो एफपीओ खुला, जिससे प्रधानमंत्री जब आए थे भागलपुर तो उन्होंने ये हमें संदेश दिया था कि वो आज ही वो एफपीओ खुल रहा है। तो सरकार इसके लिए बहुत सारा प्रोत्साहन दे रही थी, जैसे कि सरकार उसको ऋण दे रही थी, 2 करोड़ तक का ऋण जो है उसको मिल सकता था एफपीओ को। इसके अलावा सरकार इसको इसको चलाने के लिए करीब इसको चलाने के लिए पहला 3 साल का खर्च जो है ये वहन करती है सरकार। तो ये सब योजना चल रही थी, लेकिन अभी भी जो अगर नाबार्ड है और एफएसएफएसी है उसके माध्यम से अभी भी ये योजना का लाभ ले सकते हैं लोग। तो किसान भाई बहन को आगे बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा लेना चाहिए, नाबार्ड से बात करना चाहिए ताकि वो एफपीओ खोल सकें।
1: सर, जब सरकार इतनी सहायता दे रही है तो ऐसे में सरकार का कोई ना कोई लक्ष्य होगा और उनका एक अपना बजट भी होगा एफपीओ से रिलेटेड, तो क्या योजना है और क्या बजट है सरकार का?
0: बिल्कुल, तो 10,000 एफपीओ को खोलने के लिए सरकार का बजट 6,500 करोड़ रुपया था। तो सरकार एफपीओ के माध्यम से ये दर्शाना चाह रही है और ये दिखाना चाह रही है कि किसान जो हमारे छोटे जोत वाले किसान जो है, इनको बहुत सारी समस्या है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, अच्छा दाम नहीं मिल पाता इनको, और बहुत सारा फसल जो आप देखते हैं जो हमारे साइड होता है वो साउथ में नहीं होता है, जो साउथ में होता है वो हमारे नॉर्थ में नहीं होता है। तो अगर कंपनी के माध्यम से, अगर कोई किसान कंपनी के माध्यम से अपना किसानी करेगा तो उससे अच्छा आमदनी भी उसकी अच्छी होगी, उसका इनकम भी बढ़ेगा, उसका उसका मार्केटिंग ज़्यादा रीच भी बढ़ेगा उसका। इसलिए सरकार का योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ अगर भारत में खुलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से विपणन हो सकेगा, मार्केटिंग हो सकेगा और अच्छे दाम भी मिल पाएंगे। सरकार का मेनली मकसद यही है। 2025 तक सरकार का मकसद था कि 10,000 एफपीओ खुल जाए, जो खुल गया है, लेकिन इसके बाद भी सरकार अभी और भी मदद कर रही है। सरकार को लग रहा है कि एफपीओ तो खुल गया लेकिन उसको कैसे अच्छा संचालन किया जाए, उसका कैसे, उसको क्या उसको दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, तो सरकार इसके तहत भी काम कर रही है अभी।
1: तो सर, एफपीओ से किसानों को क्या क्या लाभ होते हैं?
0: हाँ, तो मैं एक उदाहरण से आपको ये बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए भागलपुर में जो है, यहाँ पे बहुत सारा आपका फसल है जो कि भागलपुर में अच्छा होता है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे मक्का अच्छा होता है, यहाँ पे मशरूम, अभी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मशरूम करते हैं, बहुत सारे किसान भागलपुर और बांका जिला में। इसके अलावा भी यहाँ पे आप देखेंगे केला का हमारे यहाँ अच्छा पैदावार होता है। तो मान लीजिए एक किसान है जो बहुत छोटा सा किसान है और उसके पास सिर्फ 1 बीघा या 2 बीघा ज़मीन में वो करता है, तो वो अपना जो भी केला उसका उत्पादन हुआ वो कहाँ बेच पाएगा? वो नॉर्मल मार्केट में बेच पाएगा या फिर मान लीजिए किसी बिचौलिया को बेच पाएगा जो उससे अच्छा दाम नहीं देगा? अगर मान लीजिए वो किसी केला के एफपीओ के माध्यम से, किसी एफपीओ से जुड़ जाता है, तो फिर वो एफपीओ क्या करेगी, एफपीओ उसको कम लागत में, जो भी मान लीजिए उसको लगता है कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड कुछ भी लगता है, उसको कम दाम में उसको मुहैया करवाएगी। इसके अलावा उसका सारा सामान को वो अच्छे दाम में कहीं एक्सपोर्ट कर सकती है भारत के बाहर। तो जो 12 केला का उसको यहाँ पे 30 रुपया 35 रुपया मिलता था, उसका उसको 200-300 रुपया भी मिल सकता है। इस तरह उसको उसका इनकम जो है बहुत गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। हमारे राज्य में तो उतना एफपीओ अभी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे साउथ के बहुत सारा, साउथ में राज्य है जैसे कि महाराष्ट्र में, बहुत वहाँ पे एफपीओ जो है बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी उसकी विपणन क्षमता होती है, बहुत अच्छा उसका टर्नओवर होता है। तो हमारे किसान भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो है हमारे यहाँ प्रोसेस।
1: यानी कि यहाँ पे प्रोसेस स्लो है लेकिन एफपीओ से जुड़ने के फायदे बहुत सारे होते हैं।
0: बहुत सारे फायदे हैं, बिल्कुल।
1: तो क्या एफपीओ के संचालन में कोई चुनौती भी आती है?
0: हाँ बिल्कुल, चुनौती आती है। जैसे कि मान लीजिए एफपीओ का संचालन करना एक कंपनी का संचालन करने जैसा है। अब एक किसान को उतना पता नहीं रहता है कि हम एक कंपनी को कैसे चलाएं, तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है कि सरकार पहला 3 साल का वो संचालन का पूरा जिम्मा अपने पास लेती है। मान लीजिए आप किसी सीईओ को रख रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसको अगर रख रहे हैं तो उसका भी खर्चा सरकार ही वहन करती थी पहले 3 साल का। सरकार इसके अलावा भी बहुत सारा प्रोत्साहन देती है, जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हर कंट्री का अलग अलग एक्सपोर्ट का स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से भी सरकार बहुत मदद करती है ट्रेनिंग करवाने में। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भी बहुत सारे ट्रेनिंग करवाते हैं जो उनके सदस्य लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस डायरेक्शन में, और सरकार का लक्ष्य है कि किसानी को भी एक कंपनी के माध्यम से किसी तरह देखा जाए ताकि ज़्यादा अच्छा मुनाफा और ज़्यादा अच्छा इनकम हो सके।
1: सर, अब तक के चर्चा से हमने इतना तो समझ लिया है कि एफपीओ किसानों को बहुत लाभ पहुँचाता है, तो अगर हम बात करें किसानों के जीवन में एफपीओ से क्या क्या बदलाव आते हैं, तो क्या क्या बदलाव आते हैं?
0: बिल्कुल, तो किसान के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताना चाहूँगा, ऐसे जैसे कि महाराष्ट्र में एक एफपीओ है जिसका नाम है सहाद्री, तो उसके हर किसान जो भी उससे मेंबर जुड़े हुए हैं, जनरली वो एफपीओ क्या करता है, वो जो अनार फल होता है हमारा पोमीग्रेनेट, और ये जितने भी ये अपने फल हैं उसको एक्सपोर्ट करता है वो गल्फ कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो जितने भी किसान उससे जुड़े हैं उन किसानों का जो इनकम है वो लगभग 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका है। तो इससे उनका जीवन का स्तर तो अच्छा होता ही है, और इसके अलावा उसको एक अच्छा लगता भी है कि किसानी में बहुत सारी फ्यूचर उसका बहुत अच्छा है। आप जानते होंगे बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो किसानी से हटते जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो FPO से जुड़े हैं और कंपनी के ऐसा किसानी को भी एग्रीकल्चर को भी कंपनी के माध्यम से देखें ताकि ज़्यादा अच्छा वो दूसरे का भी हेल्प कर सकें अपना भी हेल्प कर सकें।
1: सर अगर आप अंत में कोई संदेश देना चाहें तो।
0: बिल्कुल, तो हमारे राज्य में भी बहुत सारे FPO हैं। किसान को चाहिए कि वो अकेले में काम ना करें, वो समूह में अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा उनको मुनाफा भी होगा, कम लागत भी लगेगा और अच्छा उनका विपणन क्षमता भी उनकी बढ़ेगी। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि किसान देखें, किसान भाई लोग देखें कि उनके आसपास क्षेत्र में कौन से FPO हैं और वो कैसा काम कर रहा है, उनसे जुड़ने में कोई खर्च नहीं लगता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जुड़ने में, उनसे जुड़ें और वो उसके माध्यम से अपना मार्केटिंग करें, अपना प्रोडक्शन करें, तो फिर उनको मुनाफा भी होगा और उनका आय भी बढ़ेगा।
1: यस सर, जैसे कि सर ने कहा कि FPOs जैसे संगठनों से जुड़ने में आपको कोई खर्च नहीं होता है, आप एक बार जुड़ें और फिर आपको खुद ही समझ आएगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे क्या आपको कोई नुकसान भी हो रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद आपका मुझे इन्वाइट करने के लिए।
1: दोस्तों उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी और काफी उपयोगी भी होगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
7: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
10: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
11: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
10: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद।
10: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
12: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान

0: देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं, वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत

करें ताकतन जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को

0: तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

फसलों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारी मेहनत बर्बाद होती है और हमें जितना आय जितना मुनाफा मिलना चाहिए बाजार में से ले जाकर वो नहीं मिल पाता है। तो आज इसी के प्रबंधन के बारे में हम बात

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन।

सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है, ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बनाकर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर रखता है। और जो हमारे दिमाग का होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज़ का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10-2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियां हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता। इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जाकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50 से 80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30 से 90 मिनट की देरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है। अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, खास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता, बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज़ 1 बजे सोइए, आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आपको ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती, कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2 बजे 3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है, तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे। फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं। फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है। अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की,
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: सुरेश एक निर्धन बालक था। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। अपने घर की दीवारों पर उसने तरह तरह के सुंदर चित्र बना रखे थे। गांव के लोग उन चित्रों को देखते और आश्चर्य करते। वे कहते,
1: शाबाश सुरेश, तुम बहुत सुंदर चित्र बनाते हो। यदि अभ्यास करते रहे तो एक दिन बहुत अच्छे चित्रकार बनोगे।
2: हाँ, एक दिन तुम बहुत अच्छे चित्र बनोगे। तुम कितने बड़े चित्र बनाते हो।
0: सुरेश उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता। वह चित्र बनाने का और अधिक अभ्यास करता, लेकिन उसके पास बुरुश और रंग न थे। वह किसी पेड़ की डाली से बुरुश बनाता और फूल पत्तियों से रंग निकालता। सुरेश कई बार सोचता,
3: मेरे पास एक बुरुश होता तो कितना अच्छा होता।
0: सुरेश के मन की यह इच्छा भी पूरी हो गई। एक दिन वह पाठशाला से घर लौटा तो आंगन में एक बुरुश पड़ा देखा। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ।
3: आहा, अरे वाह।
0: दौड़कर जब उसने बुरुश उठाया तो उसे नीचे एक कागज दिखाई दिया। कागज पर लिखा था,
4: यह जादू का बुरुश है, इसे सोच समझकर काम में लाना।
3: कितना अच्छा बुरुश है, इससे तो मैं बहुत सुंदर चित्र बना सकूंगा।
0: सुरेश ने मन ही मन सोचा। उसके हाथ चित्र बनाने को बेचैन हो रहे थे। उसने तुरंत एक चिड़िया का चित्र बना दिया। चित्र पूरा होते ही वह सचमुच की चिड़िया बन गई। सुरेश आश्चर्यचकित देखता ही रह गया और चिड़िया फुर्र से उड़ गई।
3: अरे अरे वाह।
0: अब उसने खरगोश का एक चित्र बनाना प्रारंभ किया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ उसने देखा कि उसके सामने सचमुच का एक खरगोश है।
3: अरे ये तो सचमुच जादू का बुरुश है।
0: वह खुशी से चिल्ला उठा। सुरेश उस बुरुश से जो भी चित्र बनाता वह सचमुच की चीज बन जाती। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान बालक था। वह खूब सोच समझकर गांव वालों की जरूरत की चीजों के चित्र बनाता। फिर वह उन चीजों को गांव वालों को दे देता। इससे गांव वाले बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी सुरेश का नाम फैल गया। लोग उसके पास सहायता के लिए आने लगे।
5: अरे तो बड़े चित्र बना।
6: अरे भैया, तुमने जो चित्र मेरे लिए बनाया था वह मेरे बहुत काम आया।
5: अरे भैया, मेरे लिए एक झोपड़ी बना देना।
2: अरे भैया भैया, मेरे लिए एक गाय का चित्र बना दो।
5: चित्र बनाता, बहुत अच्छा चित्र बनाता है।
0: कुछ ही दिनों में सुरेश और उसके बुरुश की बात राजा तक भी जा पहुंची। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सुरेश को बुला भेजा। राजा ने सुरेश से तरह तरह की चीजों के चित्र बनाने को कहा। सुरेश जानता था कि राजा को इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसने कोई चित्र नहीं बनाया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सुरेश से बुरुश छीन लिया और बोला,
7: मूर्ख, देख, मैं इससे अभी सोने का पहाड़ बनाता हूँ।
0: राजा ने पहाड़ का चित्र बनाना शुरू किया। परंतु जैसे ही वह चित्र पूरा हुआ, सोने के पहाड़ की जगह उसके सामने पत्थर का एक काला पहाड़ खड़ा था। देखते ही देखते उस पहाड़ के पत्थर इधर उधर गिरने लगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने सोने की छड़ का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, सोने की छड़ की जगह काला सांप बन गया। सांप बड़ी तेजी से राजा पर झपटा। राजा बुरी तरह डर गया। उसने बुरुश एक ओर फेंक दिया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी,
7: इस शैतान को अभी पकड़ लो और जेल में बंद कर दो।
0: सुरेश ने दौड़कर बुरुश उठाया ही था कि सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में बहुत अंधेरा था। वहां सर्दी भी बहुत थी। सुरेश को खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया, पर सुरेश को जिस चीज की आवश्यकता होती वह उसका चित्र बनाता और वह वस्तु उसे मिल जाती।
3: अरे अरे वाह!
0: तीन चार दिन बाद राजा सुरेश को देखने गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि सुरेश की कोठरी में सब प्रकार का प्रबंध है। वह बड़े आराम से कोठरी की दीवारों पर चित्र बना रहा है। यह देखकर राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने सिपाहियों से कहा,
7: इसे पकड़कर मेरे पास लाओ।
0: आज्ञा पाते ही सिपाही कोठरी में घुसे, पर वहां कोई न था।
2: अरे कहां गया? अरे सुरेश कहां गया? अभी कहां चला गया?
0: सिपाहियों ने बाहर देखा कि सुरेश एक घोड़े पर चढ़कर भागा जा रहा है। सिपाही भी अपने अपने घोड़ों पर बैठकर उसका पीछा करने लगे। सुरेश ने जल्दी से अपने और सिपाहियों के बीच समुद्र का चित्र बना दिया। लहराता हुआ समुद्र देखकर सिपाही आगे न बढ़ सके। इस तरह सुरेश राजा की पहुंच से बाहर हो गया। वह जहाँ जहाँ जाता गरीब लोगों की जरूरत की चीजों के चित्र बना बना कर उनकी सहायता करता। लोग उससे बहुत प्रसन्न रहते।
8: कठिन शब्द बुरुष
9: बुरुष
8: शौक
9: शौक
8: चित्रकार
9: चित्रकार
8: अभ्यास
9: अभ्यास
8: क्रोध
9: क्रोध
8: प्रकार
9: प्रकार
8: प्रबंध
9: प्रबंध
8: निर्धन
9: निर्धन
8: आवश्यकता
9: आवश्यकता
8: बेचैन
9: बेचैन
8: आंगन
9: आंगन।
10: अन्य शेष कार्यक्रम अगले कैसेट में सुने कैसेट में सुने कैसेट।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं अधिक फलन के लिए अमरूद के बागों में छत्र प्रबंधन कैसे करें और इसका महत्व क्या है। इस बारे में हमें विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी, आप हैं SMS हॉर्टिकल्चर KVK सबौर से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
10: थैंक यू उमा। नमस्कार किसान भाइयों।
9: मैम आपसे सबसे पहला सवाल कि छत्र प्रबंधन है क्या?
10: अमरूद में मुख्यतः लोग अमरूद को अभी तक हमारे किसान जो अमरूद है बागवानी फसल में घर के पिछवाड़े तक ही रखे थे, लेकिन अभी व्यवसायीकरण का समय है, अमरूद की लोग सघन बागवानी लगाते हैं। जो दूरी अनुशंसित की गई है उस दूरी से कम दूरी पर जब अमरूद को लगाया जाता है तो उसको सघन बागवानी कहते हैं। तो जब सघन बागवानी लगाते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज है प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाना, फलन के उपयोग के लायक बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा कलों को क्रिएट करना। तो जब बाग आम अमरूद के पौधों को लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, शुरू के 2 साल तक उसमें प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, प्लांट की संरचना को बनाया जाता है, और जिसमें प्लांट को हम अपने पौधों को अपने अनुसार काटते छाटते हैं और इस प्रकार बनाते हैं कि उसका जो पेरीमीटर होता है, ऊपरी परिधि जो होती है वो 2 मीटर का हो जाए और जो उसका केंद्र वाला भाग हो वो खुला रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप उसमें जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो। तो जब अमरूद की सघन बागवानी लगाते हैं, कम दूरी पे लगाते हैं, और अगर उसकी कटाई छटाई ना की गई तो अमरूद का बगीचा नहीं जंगल हो जाएगा, और हमेशा उसमें सूट जो होते हैं कल्ले ही आते रहेंगे, फलन कम होगा। तो तो इसके लिए समय समय पर उसकी कटाई छटाई अति आवश्यक।
9: मैम हमने क्षत्र प्रबंधन के बारे में जान तो लिया, लेकिन हमें इस काम को कब करना चाहिए?
10: अमरूद में तीन फलन होता है, मृग बहार जो अभी हमारे यहाँ अमरूद के फलों में लगा हुआ है, मृग बहार इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फलन होता है, और बहुत ज़्यादा फलन होने से जब मृग एक ग्रुप में रहता है तो कभी अकेले नहीं रहता है, बहुत सारा मृग एक साथ रहते हैं, मृग बहार। दूसरा जो फलन होता है वो अक्टूबर में होता है जिसको अम्बे बहार कहा जाता है, और जब तीसरा फलन होता है इसका फरवरी मार्च में होता है जिसे शरद बहार कहते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जो अमरूद रहता है उसमें अमरूद में एक फूल लगता रहता है, हमेशा अमरूद में एक फूल दो फूल आपके पौधों के अनुसार लगा रहेगा, उसमें छोटा छोटा फल लगा रहता है, उसमें धीरे धीरे धीरे फूल आने की प्रक्रिया चलते रहती है और उसमें फल आने की प्रक्रिया चलते रहती है। तो अमरूद में कटाई छटाई जो मुख्यतः किया जाता है वो मई के अंत में पहला होता है, दूसरा होता है अक्टूबर में होता है, अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ तक कर सकते हैं, तीसरा होता है जनवरी के अंत और फरवरी तक आप कर सकते हैं। आप कौन सा फलन लेना चाहते हैं उस पे मुख्यतः निर्भर करता है। अगर आप इसको फल तोड़ाई के बाद, हमारे यहाँ तीन फलन नहीं प्राप्त हो पाता है क्योंकि हम लोग बहुत ठंडे वाले प्रदेश में रहते हैं, जब इसमें नवंबर से लेकर के जनवरी तक काफ़ी ठंड पड़ती है तो उसमें पौधों का जो बढ़वार है वो धीमा हो जाता है और फलन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम लोग को बिहार में कंडीशन में ये एक फलन नहीं तो दो ही फलन हमारे किसान ले पाते हैं। इसके लिए कटाई छटाई फरवरी वाला कटाई छटाई मुख्यतः किया जाता है, और फरवरी के बाद आप अक्टूबर में काटते छाटते हैं। अगर इसको छत्रक बनाने के लिए हमारे किसानों को करना चाहिए तो मई में करना चाहिए और फिर अक्टूबर में करना चाहिए, और अक्टूबर के बाद फिर जनवरी फरवरी में करना चाहिए।
9: और मैम कैसे करना चाहिए कटाई छटाई?
10: कटाई छटाई का एक खास प्रक्रिया है, जैसे आप अमरूद का पौधा लगाते हैं जून के महीने में तो अक्टूबर में इसको पहला कटाई करना है। कटाई करने में पहले नीचे से 50 सेंटीमीटर एकदम तना को साफ सुथरा कर लेना है, कोई उस पर कल्ला नहीं रहेगा। दूसरा करना है कि ऊपर से चार तना को चयनित कर लेना है जो चारों दिशा में हो, या पांच तना को चयनित कर लेना है, और पांच तना को फिर आधे भाग से काट देना है, और कटाई के उपरांत इसको सबसे पहले सारी पत्तियों को हटा देना चाहिए। पत्तियों को हटाने के बाद जो कटा भाग है उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगाना चाहिए, कटे भाग को उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ, तना के नीचे की तरफ ला करके उसको लेप को लगा देना चाहिए ताकि किसी प्रकार का फफूंद का आक्रमण ना हो, और पत्तों को बगीचा में ही रहने देना चाहिए, पत्तों को बगीचा के बाहर नहीं करना चाहिए, और कटाई के उपरांत एक पटवन निश्चित कर देना चाहिए।
9: तो इन तरीकों से कटाई छटाई करनी चाहिए।
10: मुख्यतः कटाई छटाई अमरूद में इतनी क्यों आवश्यक है? क्योंकि अमरूद जो होता है नए कल्लों पर ही फलता है, नया कल्ला उसमें क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल उसमें लगे और फल बन सके।
9: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो बातें बताई उम्मीद है कि उससे हमारे किसान भाई बहन या फिर जिनके भी घर में अमरूद के पेड़ हैं वो प्रबंधन करके अधिक फलन पा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
11: उन्नत कृषि
12: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
13: जी
12: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
13: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
12: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
14: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
15: So, see you at the vaccination center soon.
16: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
17: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
18: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
19: हर घर सूर्य घर।
20: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
21: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं, फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल

नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका माँ बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
1: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे अनु. और एक बार फिर हमारे किसान भाइयों के लिए हम लेकर आए हैं कुछ ज़रूरी बातें. किसान भाइयों, यहाँ पर रोज़ हम आपको कुछ बताते हैं, कुछ अलग अलग बातें. आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन बातों को सुने, समझें और फिर ज़रूर लागू करें. आप जो जिस भी चीज़ की खेती कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की किसानी कर रहे हैं, तो आप उसमें ज़रूर लागू करें. और सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि इसे अप्लाई भी ज़रूर करें, अपने जीवन में इसे ढालें भी. और जो भी बातें यहाँ पर कही गई हैं वो आपके और सिर्फ आपके लिए है किसान भाइयों. तो इसी कड़ी में एक और बहुत ज़रूरी विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम आज लेकर आए हैं, वो है रबी फसलों में बुआई से पूर्व बीज उपचार. जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर रमेश नाथ गुप्ता जी. और मैं आपको बता दूं, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में. तो सर, सबसे पहले जब बीज उपचार की बात आती है, हमारा विषय है रबी फसलों में बुआई से पूर्व बीज उपचार, तो सबसे पहले हमारे जो श्रोतागण हैं, वैसे तो किसान भाइयों को मालूम होगा ही क्या होता है बीज उपचार, तो कहीं ना कहीं हमारा जो श्रोता है, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो पूरे यूँ कहें कि किसान भाई भी हैं और ऐसे जो आम नागरिक हैं वो भी हैं, आम जनता भी हैं. तो ये बताएं कि बीज उपचार क्या है.
1: प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीज उपचार क्या है, ये किसानों में एक आम भाषा है, लेकिन बीज उपचार क्या है, उसका सही तरीका क्या है, इसको जानना जरूरी है. तो इसी सिलसिले में मैं आज बीज उपचार के बारे में जानकारी दूंगा, जिसको सुनकर आप इनको अपने खेतों में इसको लागू करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा. जैसा कि जानते हैं बीज उपचार, बीज उपचार वो विधि है जिससे हम आरंभिक अवस्था में होने वाली जो बीमारियां हैं या जो कीटाणुओं का जो प्रकोप है उससे बचने वाला एक उपचार है. और जिसके फलस्वरूप इस विधि को करने के बाद जो भी आरंभिक अवस्था में जो बीमारियाँ आती है, खासकर एक महीने के अंतराल में, उससे काफ़ी हद तक इससे हम निजात पा सकते हैं. तो ये जो विधि है, इसको सबसे पहले हम जो भी बीज है उसको तीन चीज़ों से हम इसका बीज उपचार करते हैं. खासकर जो बीज है हमारा, उसमें हम फंजीसाइड से करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड से करते हैं, और फिर खासकर दलहनी फसलों में जो है उसमें राइजोबियम से उपचार करते हैं. तो इससे हमको समग्र फायदा मिलता है. फंजीसाइड से जो कवकनाशी है उससे करने से जो भी बीज में मौजूद जो स्रोत हैं, हम फंगस के, कवक के स्रोत हैं, उसको आरंभिक अवस्था में ही नष्ट किया जाता है. इसके साथ साथ बीज में जो कीटों के जो स्रोत हैं, जो कि आगे चल के उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसको हम आरंभिक अवस्था में ही निजात पाते हैं. और तीसरा, जो खासकर दलहनी फसलों में है, उसमें राइजोबियम कल्चर से हम उपचार करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम पौधों में भरपूर मात्रा में राइजोबियम का मल्टीप्लाई करता है, जिसके फलस्वरूप पौधे को अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण पौधे की विकास बढ़ जाती है और जिसके फलस्वरूप हमारा उत्पादन भी काफ़ी बढ़ जाता है. तो इन सारी विधियों को सही ढंग से समावेश करने से हमारा जो है बीज उपचार सही ढंग से फायदे पहुंचाता है. तो इसको तीनों को सबसे पहले क्रमबद्ध रूप में हम कवकनाशी से, उसके बाद हम कीटनाशी से, और फिर दलहनी फसलों में राइजोबियम से उपचार करते हैं. तो इससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है.
0: जी, तो ये आपने जाना कि बीज उपचार क्या है. इसके बाद सर, बीज उपचार आपने बताया कि राइजोबियम से करना चाहिए, तो एक बार हम जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे करें, और अगर विस्तार में आप बता दें तो हमारे किसान भाइयों के लिए और आसानी होगा ये जानने में.
1: सबसे पहले बीज उपचार के करीब में हम सबसे पहले ये बता दें कि बीज उपचार क्यों करते हैं. बीज उपचार इसलिए करते हैं, जो बीज में जो हमारे जो बीमारी के स्रोत हैं या जो कीटाणु के स्रोत हैं जो आगे चल के फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका जो है मतलब सुसुप्ता अवस्था में रहता है, उस समय हमारे जो रोग और कीट के जो वाहक हैं वो काफ़ी कमजोर स्थिति में होते हैं. तो उस समय हम अगर थोड़ी सी दवा मात्रा में, काफ़ी कम मात्रा में, हम उससे निजात पा सकते हैं. क्योंकि जैसे ही हम मिट्टी में डालते हैं तो इस कीटाणु और जो रोग के कारक हैं उसको अनुरूप वातावरण मिल जाता है, वहाँ ये तेजी से ग्रोथ करते हैं, तो बाद में चल के इसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बीज के अंदर जो सुषुप्ता अवस्था में होता है, उस अवस्था में इसको नियंत्रण करना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बीज उपचार करते हैं। ऐसा हम मानते हैं जैसे हम बच्चों को टीकाकरण करते हैं ताकि भविष्य में जो भयानक बीमारियां आने वाली है उससे हम उसको रोक लेते हैं। उसी तरह बीज उपचार वो एक विधि है जो आरंभिक अवस्था में जो बीमारियां लगती है उसको अगर हम सही ढंग से करते हैं तो काफ़ी हद तक हम उसको निदान पा लेंगे। तो एज ए टीकाकरण के तौर पे जो है बीज उपचार किया जाता है। बीज उपचार की कड़ी में सबसे पहले हम कवकनाशी से उसका उपचार करते हैं। कवकनाशी में मुख्यतः पहले हम लोग कार्बेंडाजिम से ही, जो कि वेविस्टिन के नाम से मार्केट में आता था, उसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करते थे। लेकिन अभी इस जो कवकनाशी है इस पे रोग की प्रक्रिया लग रही है, मार्केट में हो सकता है उपलब्ध नहीं हो, तो अभी उसके बदले में हम कार्बोक्जिन, जो कि वीटावैक्स पावर के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसका उपचार करते हैं। अब जब हम बीज इसका उपचार कर लेते हैं, जैसा कि जानते हैं कि बीजों को हम सीड ड्रम से भी उपचार करते हैं या पॉलीथीन के सीट पे बिछा के जो है, जहाँ छायादार जगह हो उस जगह पे करना चाहिए, और बीजों को बिछा के उसमें 2 ग्राम प्रति किलो के बीज हिसाब से उसको मिला लेते हैं, या किसान भाई को अगर घड़े हैं तो घड़े में भी बीज डाल के उतना करके उसको चारों तरफ से मिला लेते हैं, हल्का पानी का छिड़काव करके थोड़ा नमी बना देते हैं ताकि उस पर बीज का बीज पे जो है कवकनाशी सही ढंग से उसको घुल मिल जाए। तो इस तरह से हम उसको छायादार जगह में उसको हम ये करते हैं, और ताकि सीड का जो लेयर है उस पर एक लेयर टाइप का बन जाए, पूरी तरह हर बीज में जो है मतलब कवकनाशी का जो है मतलब कोटिंग हो जाए, उस पर कवर हो जाए। तो इस कड़ी में करने से पहले किसान भाइयों को चाहिए कि हाथों में ग्लव्स का उपयोग करें, ताकि वो कहीं नाक के द्वारा हमारे मुंह में द्वारा आँख में चला जाने से वो हमारा जो है नुकसान भी हो सकता है। तो इस कड़ी में हम बीज उपचार करने से पहले नाकों में गमछा वगैरह लगा लेंगे और हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन लेंगे ताकि हमारा कोई स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल असर ना पड़े। तो अगर हम सबसे पहले बीज उपचार से कर लिए, बीज उपचार करने के हम 12 घंटे के बाद हम कवकनाशी से करते हैं, कीटनाशक से करते हैं। कीटनाशक में हम क्लोरोपाइरीफोस नाम की दवा आती है, जिसका 8 से 10 ml प्रति लीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उस कीटनाशक का मिलाते हैं उसमें 12 घंटे के बाद। फिर हम कीटनाशक से करते हैं, कीटनाशक में हम क्लोरोपाइरीफोस का प्रयोग करते हैं, उसका 8 से 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसका उपचार करते हैं। और इस उपचार करने के बाद फिर हम उसके मतलब 48 से 72 घंटे के बाद ही हम राइजोबियम से उपचार करते हैं। हम ये अंतराल इसलिए रखते हैं ताकि 12 घंटे के अंदर जो कवकनाशी का जो पूरा उसको बीजों पे काम करने का मौका मिले, उसका इफ़ेक्ट का असर हो उस पर, उसके बाद हम कीटनाशक से करते हैं, और कीटनाशक से करने से 48 से 72 घंटे के बाद ही हम उसको राइजोबियम से उपचार करते हैं, ताकि जो कीटनाशक का प्रभावी रूप से उसको हम उपयोग कर सकें। क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि सारे किसान भाइयों फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम एक साथ मिला के कर देते हैं, इसके कारण जो उनका सही ढंग से जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो वैसी स्थिति में हम कीटनाशक से कर लेते हैं, कीटनाशक के बाद हम 48 से 72 घंटे का अंतराल रखते हैं, उसके बाद हम राइजोबियम से उपचार करते हैं। और राइजोबियम के लिए जो है राइजोबियम के पहले घोल तैयार किया जाता है। अब मैं राइजोबियम कैसे तैयार होता है, उसका घोल कैसे बनता है, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। राइजोबियम कल्चर को बनाने के लिए 200 ग्राम का एक पैकेट आता है। सबसे पहले जो है हम आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ जो है उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद उसमें 10 ग्राम गोंद दे देते हैं ताकि वो हमारा लेप सही ढंग से बन सके। तो 50 ग्राम 500 ml वाटर में, यानी आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ लेते हैं और उसको फिर हम गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जब वो पूरी तरह से खौलने लगे उसके बाद फिर हम उसको ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा जब हो जाए उसके बाद हम 200 ग्राम का जो पैकेट है राइजोबियम का उसको हम उसमें डाल के उसको पूरी तरह से मिला लेते हैं। और राइजोबियम को मिलाने के बाद ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जब हमारा घोल ठंडा हो जाए तभी हम उसमें राइजोबियम को मिला लें। और ये जो हम घोल तैयार किए 500 ml में 50 ग्राम जो हमने गुड़ डाला और 10 ग्राम जो है गोंद डाला ताकि बीजों का जो है लेपन सही ढंग से हो, तो ये हमारा 10 किलो बीज के हिसाब के लिए ये पर्याप्त है। तो 200 ग्राम का जो पैकेट है हमारा 10 किलो बीज के लिए उपचारित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम राइजोबियम का घोल बना के उसको प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह से तीन चीज़ का क्रमबद्ध इस्तेमाल करें, पहले जो है फंजीसाइड का प्रयोग करें जिसको कवकनाशी बोलते हैं, उसके बाद कीटनाशक, और उसके बाद हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह से नियमित समय अंतराल पर करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो बीज उपचार कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा।
0: तो इस तरीके से आप बीज उपचार कर सकते हैं। और यहाँ पर अब सर से हम जानेंगे, सर ये तो समझ गए हम कि बीज उपचार कैसे करें और क्या करें क्या ना करें इसमें, लेकिन अब बारी आती है कि बीज उपचार में जो रोग और कीटाणु जो अगर कहीं ना कहीं इससे हमें मुक्ति मिलती है बीज उपचार के जरिए, तो बीज उपचार में रोग कीटाणु से कैसे हम बच सकते हैं बीज उपचार करके, और ये कैसी रक्षा करती है?
1: बीज उपचार मुख्यतः हम जो बीज में चाहे बीज जनित जो बीमारियां होती है और खासकर जो मृदा जनित बीमारियां होती है इससे हम बचते हैं। अब जैसे बीज जनित बीमारियों में खासकर जो है मतलब आपका एक बीमारियां आती है कॉलर रॉट जो कि स्तंभन मूल रोग उसको बोलते हैं, दूसरी बीमारियां है शुष्क जर गलन, तीसरा है उकठा रोग। तो ये सारी बीमारियां जो है बीज जनित भी होती है और मृदा जनित भी होती है, और दोनों जो है अगर हमारा सोर्स सीड में है इस बीमारियों का जो भी स्पोर है या क्लाइमेडोस्पोर है ये हमारे बीज में मौजूद रहते हैं, और ये बीज जैसे मिट्टी में जाते हैं तो हमारे मिट्टी में भी इसके स्पोर्स पहले से मौजूद रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इसके स्पोर्स होते हैं जिससे बीमारियां फैलती है जिसको क्लाइमेडोस्पोर बोलते हैं, ये हमारे सुसुप्ता अवस्था में मिट्टी में अगर कोई फसल नहीं भी लगे तब भी 3 से 5 साल तक हमारे मिट्टी में वो सर्वाइव करते हैं। तो जैसे ही अगर हम बीज उसमें डालते हैं तो उसको उस बीज में इसको अटैक करने का मौका मिल जाता है, और ये बीज में इंटर करके ये धीरे धीरे पौधे में अपना विकास करते हैं और जड़ों से प्रवेश करके इसके फूलों तक चले जाते हैं और ये एक संभावित रोग को पैदा करते हैं। तो यही कारण है कि जो रोग एक तरह से ये सिस्टमेटिक रोग है, ये जड़ों से लेके हमारे पौधे के फूलों तक चले जाते हैं, जो फलियाँ बनती है उसके अंदर भी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं बीज और मिट्टी दोनों जो है इसको संक्रमित करते हैं। तो इस चेन को रोकने के लिए हम बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार करने से बीज के अंदर जो भी हमारा उसके स्पोर्स हैं, जो भी उसके वाहक हैं, चाहे कीटों के हों या हमारे फंगस के हों, तो ये दोनों को प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये बीजों में सुसुप्त अवस्था में रहता है, यहाँ पे इसको नियंत्रण करना आसान है। जैसे ही मिट्टी में जाते हैं तो इनका दायरा बढ़ जाता है और उपयुक्त वातावरण मिल जाता है जिसके फलस्वरूप इसमें जो है तेजी से विकास करने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि हम आरंभिक अवस्था में ही इस रोग को हम इसके अगर मूल कारण को मूल चीज पे अगर हम नियंत्रण करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे पौधे आगे जो बनेंगे वो स्वस्थ हो जाते हैं। और बीजों में जो उसके जो बाहरी वातावरण में जो भी हमारे इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का प्रभाव है उसको हम उसको भी रोक सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो जो भी मिट्टी के संपर्क में आने वाले स्पोर हैं उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी एक और बड़ी बात होती है कि ये जो मृदा जनित बीमारियां हैं इसको बीज उपचार के साथ साथ हम ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियानम से भी उसको हम ट्रीट करते हैं। इसके करने की ये वजह है कि जो हम ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको उपचार करते हैं, अगर हम फैट लेते हैं तो जहाँ पे ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है वैसी अवस्था में हम जो फंजीसाइड बताए कार्बोक्जिन 1 ग्राम और 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा जो विरिडी है ये भी एक तरह से आपका फंगस ही है, एक कवक ही है, लेकिन ये दूसरे फंगस को मारते हैं जो हमारे बीजों के अंदर हैं या जो मिट्टी के अंदर हैं वो उसको मारते हैं। अब जैसे क्या होता है कि जो राइजोबियम आपका जो ट्राइकोडर्मा है, ये बीज उपचार करने से ये मिट्टी में जाते हैं और मिट्टी में अपने अनुकूल जो है ये इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में ये अपना ग्रोथ करते हैं और इनका ग्रोथ दर इतना ज़्यादा होता है कि जो भी हमारे रोगवाहक के जो फंगस हैं, जो कवक हैं, उसको ये चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको सारे जो भी पौधे, जो जीवाणु के जो हमारा जो स्पोर्स हैं, ये फंगस का जो कारक है, उसको चारों तरफ से एक जाल बना देते हैं जिसके कारण उस चीज़ को उसका कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, ना उसको नमी मिल पाती है, ना हवा मिल पाती है, तो उसको ग्रोथ करके एक जाल बना के चेक कर देते हैं और जिसके कारण जो हमारा जो हानिकारक जो हमारा फंगस है जो बीमारी पौधों में करते हैं उसको ये फंगस उसको चारों तरफ से घेर के इसको मार देते हैं। तो ये आरंभिक अवस्था में इसको बीज के अंदर हमारा जो है वो फंजीसाइड काम करता है और मिट्टी के बाहर जो हमारा जो ट्राइकोडर्मा है ये मल्टीप्लाई करके जो भी मिट्टी में मौजूद है उसके आसपास बीजों के पास उस चीज़ को वो मार के पौधे को स्वस्थ बनाते हैं
0: जी। तो इस तरीके से जो पौधे जो हैं रोग और कीटाणु मुक्त हो जाते हैं। सर इसके बाद हम तो अभी तक जान रहे थे, आपने जैसे बताया तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हमने जाना की हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ नुकसान भी होंगे इसके, तो हम आपकी ओर से जानना चाहेंगे कि एक साथ की फ़ायदे और नुकसान क्या हैं बीज उपचार के।
1: देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीज उपचार करना सबसे ज़रूरी है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। नुकसान तभी है जब हम इसका सही ढंग से इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे बीज की मात्रा में फंजीसाइड की मात्रा लिमिट बता दी जाती है, किसान भाई ज़्यादा फायदा के लिए उसको ज़्यादा डाल देते हैं, इसके कारण क्या होता है कि जो जो हमारे रोग के वाहक हैं उसमें रेजिस्टेंसी डेवलप होती है, प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है, तो आगे चल के इसको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो जो मात्रा बताई जाती है उसी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मात्रा ऐसे निर्धारित नहीं की जाती है, बहुत सारे प्रयोगों के बाद ये निर्धारित किया जाता है। किसान भाई 2 ग्राम की जरूरत पर उसमें 4 ग्राम 5 ग्राम डाल देते हैं, इसके कारण वो असर भी नहीं कर पाता है और पौधे में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, फिर बाद में वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इसलिए जो मात्रा उपयुक्त बताई गई है उसी मात्रा का उपयोग करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा मात्रा करते हैं तो फायदा के जगह पे वो नुकसान होने लगता है
0: जी।
1: जिस तरह से देखा जाता है कि बीज दर की जो है एक संतुलित मात्रा डालना चाहिए, अगर किसान भाई उसमें ज़्यादा डाल देते हैं तो उसमें पौधे की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और पौधे संख्या बढ़ने के कारण उपज ज़्यादा ना होके वो बीमारियों के कारक हो जाते हैं, पौधों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उसके कारण बीमारी की संख्या बढ़ जाती है, उत्पादन कम जाती है। उसी प्रकार अगर हम ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं तो ये हमारा लागत मूल्य को तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ जो है ये फायदे की जगह पे नुकसान हो जाती है। दूसरी बात है किसान भाई जो है इसको बहुत ढंग से इसको नहीं कर पाते हैं, लगता है कि सिंपल वे में कर लेते हैं, इसलिए कोई सुरक्षा का कोई उपचार उपाय नहीं करते हैं, हाथ में दस्ताने भी प्रयोग नहीं करते हैं और नाकों को उसको पूरी तरह से ढक नहीं पाते हैं, तो इससे हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर भी पड़े। तो इन सारी चीज़ों को अगर ख्याल किया जाए तो नुकसान कम और फायदे ज़्यादा होते हैं
0: जी। तो श्रोताओं आपने जाना कि बीज उपचार से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और जिन बातों का यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको ध्यान रखना चाहिए, दस्ताने पहनने चाहिए और जो क्वांटिटी जो मात्रा है आप उस हिसाब से अगर देंगे तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अगले विषय के साथ जो आपके लिए होगा बहुत ही खास हम लेकर हाजिर होंगे 90.8 FM ग्रीन पर। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: आप जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
11: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
10: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
12: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
10: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
13: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
10: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
14: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
10: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
15: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
16: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
17: धन्यवाद
16: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
17: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
16: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
17: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
18: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
17: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पर हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहाँ पर ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
18: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
19: अरे यार फिर पिट गया, बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
20: कब से?
19: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
20: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
19: खांसी?
20: हाँ।
19: इसको तो एक आध महीना हो गया,
20: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
19: डॉक्टर, खांसी तो है।
20: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
19: टीबी?
20: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
19: ठीक है।
20: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
18: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
21: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
18: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
21: आपकी सेहत की बातें,
18: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
21: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
18: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
21: वो कहाँ पर?
18: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
21: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
22: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं, फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, यानी कि मीठे मक्के के बारे में। मीठा मक्का क्या है और कब इसकी बुआई की जाती है, क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमारी रश्मि। आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं आज आपको मीठी मक्का की वैज्ञानिक खेती की विधि के बारे में बताऊंगी।
0: तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि स्वीट कॉर्न क्या है? मक्का तो हम जानते हैं, पर स्वीट कॉर्न क्या है?
1: मीठी मक्का मीठी और स्वादिष्ट एक विशेष प्रकार की मक्का है जिसका दाना अधिक मीठा होता है। इसे सब्जी और अनेक तरह के पकवान जैसे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। और हरा भुट्टा तोड़ने के तुरंत बाद हरे पौधे को काटकर हरे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए हम स्वीट कॉर्न को गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर आदि के साथ इसका रबी में और मौसम में अंतर्वर्ती फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी जलवायु के बारे में मैं बताना चाहूँगी। स्वीट कॉर्न की बुआई के समय मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और भूमि के चयन को लेकर हम बात करें तो आमतौर पर इसे

0: बुआई करें ताकि नर मंजर आने में 15 दिन का इंटरवल होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात हम करें तो खेत की जुताई को पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई के 20 दिन पहले लगभग 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिला देना चाहिए। बुआई के समय को हम लेकर बात करें तो उत्तरी भारत में खरीफ में जून से जुलाई और रबी में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई की जानी चाहिए।
1: और बुआई के साथ मैम ये सवाल भी आता है कि बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए।
0: जी, बीज की मात्रा के बारे में मैं बताऊंगी कि सामान्य मिठास वाली, इसे स्टैंडर्ड स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसके लिए बीज की मात्रा है 9 से 10 kg प्रति हेक्टेयर, और अधिक मिठास वाली मक्का जिसे सुपर स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसे 6 से 7 kg प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। जहाँ तक पंक्तियों और पौधों से पौधों की दूरी की बात हम करें, बुआई के समय तो स्वीट कॉर्न की बुआई 60 से 75 सेंटीमीटर कतारों से कतारों के बीच तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों से पौधों के बीच की दूरी रखनी चाहिए। पौधों की संख्या, उपयुक्त पौधों की संख्या 66 से 67 हज़ार प्रति हेक्टेयर मेंटेन करनी चाहिए और बीज उपचारित करके इसे लगाना चाहिए। जहाँ तक बीज उपचार की बात है, बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को थिरम 4 ग्राम प्रति kg बीज की दर से उपचारित करना चाहिए तथा तना छेदक से बचाव के लिए फिप्टोनिल 6 ml प्रति kg बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई का सही तरीका अगर हम बात करें तो बीज कतारों में और मेड़ों पर बोने चाहिए। स्वीट कॉर्न की सभी किस्मों के बीज की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर की जानी चाहिए, परंतु अधिक मिठास वाली सुपर स्वीट वैरायटीज को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं। आरंभ में प्रत्येक स्थानों पर 2 बीज डालें ताकि गर्मी में अंकुरण के 10 दिन एवं सर्दी में 15 से 20 दिन के बाद प्रत्येक स्थानों पर एक ही पौधा रहने दें।
1: और मैम बीज की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी बता दीजिए।
0: उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं बताऊंगी। स्वीट कॉर्न की खेती के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र की प्रचलित जो भी वैरायटीज हैं इनका चुनाव करें। जैसे भारत में स्वीट कॉर्न की कुछ प्रचलित किस्में हैं, इनमें माधुरी प्रिया, अल्मोरा स्वीट कॉर्न, विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न और सिंजेंटा की शुगर 75 है, इसे आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी उपज देने वाली किस्में मैंने आपको बताई हैं और इनकी मिठास भी 15 से 20% मतलब सामान्य मक्के से ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए स्वीट कॉर्न को लोग खाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कहाँ लगाई जाती हैं, अनुमोदित क्षेत्र के बारे में मैं बताऊँगी। खरीफ में संपूर्ण भारत में तथा रबी में प्रायद्वीपीय भारत में इसे उगाया जा सकता है।
1: और मैम कटाई का क्या समय होता है, क्योंकि जब हम स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो कटाई का समय बेहद विशेष हो जाता है।
0: खरीफ में इसे 70 से 75 दिन में हम ये तैयार हो जाता है, इसकी हम कटाई कर सकते हैं, और रबी में 80 से 85 दिन में ये तैयार हो जाता है, आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो 110 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे भुट्टे को हम तुड़ाई कर सकते हैं और 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका चारा हम प्राप्त करते हैं, इसलिए ये हमारे अगर आपके पास पशु है तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं स्वीट कॉर्न की खेती करके। और उर्वरक प्रबंधन की बात हम करें तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 से 170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 से 80 किलोग्राम पोटास डालनी चाहिए। खेत में अगर जिंक की कमी हो तो 25 kg प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डालना चाहिए। फास्फोरस पोटास जिंक सल्फेट की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डालें तथा नाइट्रोजन को 5 भागों में बांटकर विभिन्न अवस्थाओं में डालें, और 10% नाइट्रोजन बुआई के समय, 20% नाइट्रोजन 4 से 5 पत्तों की अवस्था पर डालें, 30% नाइट्रोजन 8 पत्तों की अवस्था पर एवं 30% नाइट्रोजन पुष्पन की अवस्था पर डालें जब उसमें नरमंजरी मादा मंजरी आने लगती है, और 10% नाइट्रोजन भुट्टे की दूधिया अवस्था में जिस समय दूध बनता है उस अवस्था में डालें। उर्वरक को बीज के 7 से 8 सेंटीमीटर के करीब डालना चाहिए।
1: और मैम खरपतवार का कैसे प्रबंध करना चाहिए, उसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
0: जी, खरपतवार प्रबंधन के लिए चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और अन्य खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एट्राजिन 1 से 1.5 kg को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में बुआई के तुरंत बाद, लेकिन अंकुरण के पहले छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है, हल्की मिट्टी में 7 से 8 सिंचाई एवं भारी मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
1: किस तरीके से फसल कटाई करनी चाहिए और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सिंचाई में हमें ये भी ध्यान रखना है कि पौधे के में जब पुष्पण और दाना भराव का समय होता है उस समय हमें नमी बरकरार रखनी है खेत में, और सर्दी में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जमीन में नमी बरकरार रखें एवं कीट प्रबंधन

0: की मैं चर्चा कर लूं। कीट प्रबंधन के लिए आप तनाछेदक कीट है इसे नियंत्रित करने के लिए पौधा जमने के 10 दिन बाद 85% वेजिटेबल पाउडर वाला कार्बोलिल को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गोब में छिड़काव करें। और अंतर्वर्ती फसलें भी इसमें ली जाती हैं विभिन्न प्रकार की, ये खासियत है। तो इसमें आप सर्दी में स्वीट कॉर्न के साथ गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर, गोभी, पालक, धनिया इत्यादि सफलतापूर्वक आप उगा सकते हैं। और स्वीट कॉर्न को मेड़ के दक्षिणी भाग में एवं अंतर्वर्ती फसल को मेड़ के उत्तरी भाग में लगाना चाहिए। स्वीट कॉर्न के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी अंतर्वर्ती फसल की लगाने की स्थिति में 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अंतर्वर्ती फसलों की खेती शहर के आसपास के क्षेत्रों में करने से किसान भाई काफी लाभान्वित हो सकते हैं। और फसल कटाई की बात आपने छेड़ी थी तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूंगी कि बीज के अंकुरण के लगभग 45 दिनों के बाद नर मंजरी आती है एवं इसके 2 से 3 दिनों के बाद मादा मंजरी आती है। और गर्मी के मौसम में परागण के 18 से 22 दिनों के बाद स्वीट कॉर्न के भुट्टे की तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद जब आप इसकी तुड़ाई करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसे रेफ्रिजरेटेड वैन में ही हम ट्रांसपोर्ट करें। और सर्दी के मौसम में परागण के 25 से 30 दिनों के बाद भुट्टे की तुड़ाई की जा सकती है। इस अवस्था में तुड़ाई की अवस्था को पहचानने के लिए हम ये देख सकते हैं कि ऊपरी भाग यानी सिल्क के सूखने से मादा मंजरी के सूखने की अवस्था में इसे हम पहचान सकते हैं कि ये मैच्योर हो गया है। और जब हम छिलका हटाते हैं तो दाने में दूध भरा होता है, इसे दबाने से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, तो इस अवस्था में हम इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। हरे भुट्टे के तोड़ने के बाद बचे हुए हरे पौधे के चारे को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। भुट्टे की तुड़ाई सुबह या शाम में करें ताकि जो नमी है वो बरकरार रहे और ये ज़्यादा मॉइस्चर लॉस ना हो, ताकि मिठास बनी रहे। कटाई उपरांत प्रबंधन की बात करें तो भुट्टे की तुड़ाई के बाद इसे तुरंत मंडी में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे लकड़ी के डब्बे या कार्टून आदि में रखना चाहिए। कमरे के तापमान पर 24 घंटे के अंदर स्वीट कॉर्न के भुट्टे का 50% शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रो कूलिंग एवं पैकेजिंग कर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का ही प्रयोग करें। और ये सारी खासियत है स्वीट कॉर्न में। स्वीट कॉर्न की खेती से किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। इसे काफ़ी चाव से खाया जाता है, इसके विभिन्न व्यंजन बनते हैं तो, और इसका सीड भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, तो किसान भाई इसका बीज को बेच सकते हैं, बीज बनाकर या इसकी खेती करें और इसे काफ़ी लाभान्वित हुए।
1: यानी कि स्वीट कॉर्न उगाने के बाद तो फ़ायदे होते ही हैं और साथ में बीज भी बेचकर किसान भाई बहन बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उम्मीद है कि जो भी मक्के की खेती करने की सोच रहे होंगे वो स्वीट कॉर्न के बारे में भी सोचेंगे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी।
0: धन्यवाद।
1: आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
9: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
11: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
9: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
12: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
9: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
13: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
9: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
14: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
14: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
14: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
14: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
14: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
15: बिहार
5: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
15: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
5: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहां पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीजें आप वहां पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहां पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचें, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उससे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दें, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है और कुछ पल के लिए नहीं बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझ कर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है, उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए अपने घर की औरतों के लिए तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: FM Green हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि।
0: किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आरजी अनु और आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन, जो है आपका पसंदीदा एफएम स्टेशन। और फिलहाल यहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके हर सवाल के जवाब, यानी कि भाई आज का जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित सारे जवाब। तो भाई आप प्याज की बात कर लेते हैं आज, और प्याज जानते हैं ना कि इतना महंगा हो रहा है। फिलहाल अभी थोड़ा सा थमा है इसका ये दाम, और आपको बता दें प्याज की खेती के लिए हर संभव तरीके अपनाते हैं हमारे किसान भाई। लेकिन अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कौन सा प्रभेद लगाना है, कब सिंचाई करना है, कितने दिनों तक सिंचाई करना है, जलवायु क्या होनी चाहिए। तो बहुत तरह के जो सवाल हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे किसान भाइयों के दिमाग में आते हैं। तो आज मैं बता दूं कि आपके इस सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर उद्यान विभाग सब्जी विभाग से, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्याज की खेती के लिए जलवायु किस तरह की होनी चाहिए और इसके उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं।
10: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वह अधिकांश भाग जो है शाकाहारी है, इसलिए इस स्थिति में सब्जी का खेती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्याज में विटामिन सी, खनिज पदार्थ एवं लौह, फास्फोरस, कैल्शियम बहुत अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग कई तरह से करते हैं, जैसे मसाला के रूप में करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं, सलाद के रूप में करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी खेती बिहार के प्रायः सभी भाग में या तो व्यावसायिक रूप में या किचन गार्डनिंग के रूप में अधिकांश भाग में करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इसका उपयोग जो है भिन्न भिन्न तरह के व्यंजनों में किया जाता है, इसलिए इसका खेती जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी खेती के लिए सबसे पहले हमें इसके जलवायु कैसी चाहिए, उन्नत प्रभेद क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज शरद मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख सब्जी फसल है। पौधे के शुरू अवस्था में यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जिस समय कि उसका शाकीय बढ़ाव होता है उस समय 13 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए, और जिस समय कंद बनता है उस समय 20 से 25 डिग्री तापक्रम माने सेल्सियस तापक्रम उत्तम होता है। यदि शाकीय बढ़ाव के समय तापक्रम कम हो जाता है तो पौधे में फूल आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि औसत से ज़्यादा तापक्रम यानी 30 से डिग्री से अगर ऊपर तापक्रम हो जाता है तो सल कंद का बढ़ना बहुत धीमा हो जाता है, साइज बहुत छोटा हो जाता है, फसल बहुत जल्द तैयार हो जाता है, जिससे कि उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। अब है कि इसके लगाने के लिए हमें उन्नत प्रभेद का चुनाव करना जरूरी है, तो इसके खेती के लिए अधिक उपज के लिए उन्नत एवं अनुशंसित प्रभेदों का ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ उन्नत प्रभेद का नाम जैसे हम यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कि पूसा रेड है, एग्री फाउंड लाइट रेड है, पूसा माधवी है, अर्का निकेतन है, अर्का कल्याण है, N53 इत्यादि प्रमुख हैं। बीज की प्राप्ति किसी विश्वसनीय स्रोतों जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, बिहार राज्य बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों या अधिकृत सब्जी बीज विक्रेता से ही प्राप्त कर लगाना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो उन्नत प्रभेद आपने बता दिए, लेकिन जब खेती की बात आती है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है किस तरह की मिट्टी में हम इसकी बुआई रोपाई और बीज की कितनी मात्रा है, उसकी आवश्यकता कितनी है। तो हम आपसे सम्मिलित तौर पर जानना चाहेंगे कि इसकी खेती के लिए यानी प्याज की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और बुआई रोपाई और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
10: ऐसे तो प्याज की खेती सभी प्रकार के मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु हल्की बलुई दोमट मिट्टी विशेष उपयुक्त है। अधिक पैदावार के लिए मिट्टी में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। अब है इसके बुआई का समय, तो रबी प्याज की बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक करना चाहिए। अभी प्याज की नर्सरी में बुआई करने का समय चल रहा है, अतः यथासंभव कोशिश करें कि 15 नवंबर तक इसकी बुआई नर्सरी में अवश्य कर दें। अब है नर्सरी, जब हम बीज नर्सरी में जब इसकी बुआई करते हैं तो वह जो है लगभग 7 से 8 सप्ताह के बीच में वह पौधा मुख्य खेत में लगाने लायक हो जाता है। तो इसकी रोपाई का समय जो है 15 दिसंबर से 15 जनवरी है। और ऐसे बहुत सारे किसान भाई 15 जनवरी के बाद भी लगाते हैं, तो अगर जिनका खेत खाली नहीं है, लेट लगा रहे हैं, तो हर हालत में कोशिश करें कि 15 फरवरी से आगे इसकी रोपाई नहीं करें। अगर 15 फरवरी के बाद अगर रोपाई करते हैं तो इसके उपज में भारी कमी आएगी, इसलिए यथासंभव कोशिश करें कि हम इसकी रोपाई जो है 15 जनवरी तक कर दें। अब इसके बुआई के लिए 1 हेक्टेयर खेत में अगर प्याज लगाना है तो उसके लिए आपको 8 से 10 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी, अगर उच्च क्वालिटी का बीज है तो।
0: अच्छा, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने जाना कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और फिलहाल हम जानते हैं डॉक्टर साहब कि जब प्याज की खेती होती है तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि नर्सरी में बीज बोने के बाद बिचड़ा तैयार करना। तो बिचड़ा तैयार करने के बारे में कुछ बताएं।
10: ऐसे तो लोग कुछ जगहों पर लोग प्याज की खेती छिटवा विधि से भी करते हैं, लेकिन वह कोई उत्तम तरीका नहीं है। इसका सबसे उत्तम तरीका है कि प्याज की खेती के लिए सबसे पहले हम नर्सरी में बीज बोकर उसका बिचड़ा तैयार करते हैं। 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए लगभग 500 से 600 स्क्वायर मीटर नर्सरी की आवश्यकता होगी, यानी कि अगर हमको 1 हेक्टेयर में प्याज लगानी है तो उसके लिए 500 से 600 स्क्वायर मीटर हमको नर्सरी की आवश्यकता पड़ेगी।
0: जी।
10: नर्सरी तैयार करने हेतु खेत को अच्छी तरह से जोत कर तैयार कर लें, तथा उसमें ईंट होगा, पत्थर का टुकड़ा होगा, पौधे के अवशेष वगैरह होगा, उसको निकाल कर बाहर निकाल लें। पाटा चलाकर खेत को समतल बना लें, तथा छोटी छोटी क्यारियां एवं सिंचाई का नाला बना लें। उसके बाद प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 से 3 केजी गोबर की सरी खाद, 25 से 30 ग्राम DAP तथा 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति क्यारी में डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। यहाँ जो हम बताए हैं कि 1 वर्ग मीटर के हिसाब से, यानी अगर नर्सरी 1 वर्ग मीटर का है, यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, तो उसमें 2 से 3 केजी गोबर का खाद देना है, 25 से 30 ग्राम DAP डालना है, 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है। उस हिसाब से जितना बड़ा क्यारी है उस हिसाब से आप अभी बताए गए खाद की मात्रा डाल दें। बुआई के समय ध्यान रखें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी अवश्य हो। बुआई के पूर्व बीज को फफूंदी नाशी दवा से उपचारित जरूर करें। इसके लिए 1 केजी बीज में अगर प्याज का 1 kg बीज है तो उसमें 2 से 3 ग्राम फफूंदी नाशी जैसे थीरम है, कैप्टान है, दवा को अच्छी तरह मिला लें। यानी 1 kg बीज है प्याज का तो उसमें 2 से 3 ग्राम दवा थीरम या कैप्टान को उसमें मिला लें। कभी कभी शिकायत होता है कि पौधा नर्सरी में ही गलने लगता है, तो अगर इस तरह का उस खेत में शिकायत हो तो उसके लिए, इस बीमारी को आर्द्र गलन कहते हैं, तो अगर इस तरह का शिकायत हो तो नर्सरी को भी आप उपचारित कर लें। इसके लिए बुआई के पूर्व अभी जो बताए हैं दवा थीरम या कैप्टान 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर झरना से नर्सरी को सिंचाई कर लें। अगर इस तरह से सिंचाई कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमको जो आर्द्र गलन का जो बीमारी है उसके लगने की संभावना नहीं रहती है। उसके बाद जो है बीज बोने के बाद आधा भाग कंपोस्ट हुआ, आधा भाग मिट्टी हुआ मिलाकर बीज को अच्छी तरह ढक दें। उसके बाद नर्सरी को पुआल है या सूखा घास वगैरह है उससे ढक दें ताकि नर्सरी में नमी एवं तापक्रम बीज जमाव हेतु बना रहे। यदि बीज बोने के बाद खेत में अगर नज़र आए, अगर लगे कि नहीं इसमें नमी की कमी है, तो पुआल या घास से ढके हुए अवस्था में आप झरना से उसकी सिंचाई करें। अगर अब जब बीज का जमाव हो जाता है तो जमाव के बाद पुआल वगैरह जो भी है उसे हटा दें तथा झरना से हल्की सिंचाई करें। जब बीज जम जाता है तो 5-6 दिन के बाद 2 ग्राम बेभिस्टिन दवा 1 लीटर पानी में घोलकर बिचड़ा पर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार नर्सरी को सिंचाई करते रहें। इस प्रकार से लगभग बुआई के 7-8 सप्ताह बाद बिचड़ा रोपने लग तैयार हो जाएगा।
0: तो किसान भाइयों, आपने डॉक्टर साहब से सुना विस्तार में कि बिचड़े की तैयारी कैसी होनी चाहिए, और जहाँ तक रोपाई की बात है तो वो भी जानेंगे, और साथ में ये भी जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब हम कि खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि बिचड़े की रोपाई कैसे करें हम।
10: बिचड़े की रोपाई है तो खेत को अच्छे तरह तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, जिसको कि मोल्ड बोल प्लाव कहते हैं, उससे पहली जुताई करनी चाहिए। उसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से या देसी हल से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलावें ताकि खेत समतल एवं मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय लगभग 250 क्विंटल गोबर की सरी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी में मिला दें। उसके बाद सुविधा अनुसार छोटी छोटी क्यारियां एवं सिंचाई हेतु नाला बना लें। रोपाई के 1 दिन पूर्व 200 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं यूज करते हैं, नहीं प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के जगह 100 केजी यूरिया। उसके बाद आपको 350 केजी सिंगल सुपर फास्फेट तथा 125 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से क्यारी में डालकर मिला दें तथा क्यारियों को समतल बना लें तथा क्यारियों की सिंचाई कर दें। सिंचाई के 1 दिन बाद बिचड़े की रुपाई उचित दूरी पर करें। रुपाई है तो कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बिचड़ा रोपने के पूर्व शीर्ष भाग में से लगभग 25% काटकर हटा दें ताकि रोपे गए बिचड़े को स्थापित होने में मदद मिलता है। रोपाई के 5-6 दिन बाद पुनः एक बार हल्की सिंचाई करें।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बारी आती है खाद की, तो खाद की जो मात्रा है हम कैसे दें, कब दें, अगर वो सही समय पर हम अपने फसलों में देते हैं, तो यहाँ पर प्याज की खेती की बात हो रही है तो जो है वो अच्छे तरीके से इनकी फसलों में बढ़वार होती है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम खाद कितना दें और कब दें।
10: प्याज की फसल में उचित समय पर उर्वरक का प्रयोग करना अति आवश्यक है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये सब उर्वरक को हम लोग नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की दूसरी के पहली किस्त चूँकि हम रुपाई के पूर्वी खेत में डाल चुके हैं, इसलिए दूसरी किस्त जब नाइट्रोजन के डालेंगे तो बुआई के 30 दिन बाद नाइट्रोजन की दूसरी किस्त डालेंगे। तीसरी किस्त जो है रोपाई के 60 दिन के बाद करेंगे। इसके लिए प्रत्येक बार यानी दूसरी और तीसरी किस्त के लिए 200 केजी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं प्रयोग करते हैं तो 100 केजी यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में समान रूप से छिटक दें। यदि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो खाद डालने के बाद सिंचाई करना आवश्यक है, परंतु यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद करना चाहिए, यानी सिंचाई कर दें तब यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करें, यानी कि उसकी छिड़काव करें, यानी उसे छिटक दें समान रूप से। यूरिया डालने के पहले खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि किसान भाई एक ही खेत में प्रति वर्ष प्याज लगाते हैं, शुरू में तो उपज अच्छी मिलती है परंतु कुछ वर्षों के बाद उपज में कमी मिलने लगती है। इसका मुख्य कारण यह है कि लगातार एक ही खेत में प्याज उगाने से खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूरा करना जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक 2-3 वर्षों पर, यानी 2-3 वर्ष प्याज की खेती कर रहे हैं तो एक बार कम से कम उसमें जो है 20 से 25 केजी जिंक सल्फेट, 10 से 15 केजी बोरेक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत के अंतिम जुताई के समय ही खेत में डालकर मिला लें, ताकि पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि खाद के बाद जो है वो सिंचाई करनी चाहिए, तो हम जानना चाहेंगे कि कब और कितने दिनों पर सिंचाई करें हम?
10: प्याज में उचित समय पर सिंचाई करना आवश्यक है। हल्की मिट्टी वाले खेत को, जो जिस खेत की मिट्टी हल्की है उसे 4-5 दिनों के अंतराल पर, तथा जिस खेत की मिट्टी भारी है जैसे कि केवाल मिट्टी वगैरह है उसमें जो है 6-7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। सल्क कंद बनते समय, यानी कि जिस समय प्याज का कंद बनना शुरू हो जाता है उस समय सिंचाई में कमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सल्क कंद का बढ़वार जो है बहुत कम जाता है जिससे उपज पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सल्क कंद पूर्ण होने पर सिंचाई बंद कर दें, यानी कि प्याज उखाड़ने के 10-15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। कभी कभी सल्क कंद बनते समय कुछ पौधों में फूल आ जाते हैं जिसे तोड़ देना चाहिए, अन्यथा प्याज की गुणवत्ता खराब हो जाती है तथा ऐसे प्याज का बाजार भाव भी बहुत कम मिलता है।
0: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर प्याज में अब बीमारियों की बात कर लेते हैं, और हमारे जितने किसान भाई मेहनत करते हैं तो कई बार कीट के प्रकोप से जो बीमारियाँ हैं वो फैल जाती हैं प्याज के इन पौधों में, तो इनके नियंत्रण के लिए हम क्या करें?
10: इसमें मुख्य रूप से थ्रिप्स नामक कीड़ा का प्रकोप होता है। प्याज का यह बहुत ही प्रमुख कीड़ा है, इससे प्याज का बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है। तो इस कीट से बचाव के लिए कीटनाशी दवा जैसे मोनोक्रोटोफास है, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में, या इमीडा क्लोरोपीड कीटनाशी दवा है उसका 1 ml 3 लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिनों के अंतराल पर 2-3 छिड़काव करें। बीमारियों में पर्पल ब्लाउ जिसे बैगनी धब्बा कहते हैं तथा एस्टेमफिलियम झुलसा रोग लगता है, तो इन दोनों रोगों से बचाव के लिए मेनकोज दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। प्याज में छिड़काव करने में ध्यान यही रखना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज का पत्ता खड़ा होता है, चिकना होता है, तो कोई भी दवा जब हम स्प्रे करते हैं तो दवा जो है उसके पत्ती पर सही ढंग से टिक नहीं पाता है, जिससे कि हमें वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए घोल में जो है हम कोई भी किसी तरह का चिपकने वाला पदार्थ, जिसको स्टिकर करके बाजार में मिलता है, तो स्टिकर जैसे सेंडोविट है, टिपाल है, और इसी तरह से कई तरह का मार्केट में मिलता है, तो उसका आधा ml एक लीटर घोल में डाल कर ही स्प्रे करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो दवा छींटे हैं उसका वांछित लाभ आपको मिल पाएगा।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे अंत में इतनी मेहनत करने के बाद हमारे किसान भाई का वक्त आता है कि प्याज की खुदाई करें और इसका भंडारण करें और इसका इसे जो है वो जो है मार्केट तक ले जाएं और मुनाफा पाएं। तो हम जानना चाहेंगे कि अंत में कि प्याज की खुदाई और भंडारण कैसे कर सकते हैं।
10: प्याज की फसल रोपाई के बाद यानी जब हम बिचड़ा रोपते हैं तो 100 से 120 दिन में वो तैयार हो जाती है।
0: जी जी,
10: प्याज तैयार मेरा हुआ कि नहीं हुआ उसकी परिपक्वता की पहचान जो है पौधों को पत्तियां देखकर कर सकते हैं।
0: अच्छा,
10: जब पत्तियां का ऊपरी भाग लगभग 60% सूख जाती है तो हम समझते हैं कि अब प्याज उखाड़ने लायक हो गया है। सल्क कंदों को जब जमीन से बाहर निकालने के बाद उसके गर्दन के पास से 2 सेंटीमीटर छोड़कर, यानी कि 2 सेंटीमीटर गर्दन छोड़कर शेष सभी पत्तियों को काटकर अलग कर देते हैं। उसके बाद कटे फटे कुछ प्याज जुड़वा होगा, कुछ प्याज का बहुत मोटा गर्दन होगा, तो ये सब को हम अलग कर देते हैं क्योंकि ये भंडारण में खराब हो जाती है। तो इस तरह का प्याज है तो उसको आप जो है यथाशीघ्र जिस दाम में बिकता है उसे बाजार में बेच दें। उसके बाद कंदों को छायादार एवं हवादार जगह में 10-15 दिनों तक सुखाने के बाद ही भंडारण करना चाहिए। भंडारण वैसी जगह में करें जो छायादार हो, हवादार हो एवं सूखी हो। भंडारित प्याज को 20 से 25 दिन के अंतराल पर पलटते रहें। पलटने के समय कुछ प्याज आपको सड़ा हुआ मिलेगा, कुछ अंकुरित होगा, तो ये सब को पलटते समय चुन लेना चाहिए और इसको भंडारण से अलग कर देना चाहिए।
0: अच्छा,
10: तो प्याज के वैज्ञानिक खेती पर मुख्य रूप से ये सब अगर हम करते हैं तो आशा के अनुसार हम उपज प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और किसान भाइयों, आपको तो पूरी जानकारी मिल ही चुकी होगी क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से लेकर अंत तक प्याज की वैज्ञानिक खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। तो आशा करती हूँ कि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और जब आप प्याज की खेती करने जाएंगे तो डॉक्टर साहब की बातों को दिमाग में ज़रूर लाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही और अगले दिन अगले विषय के साथ आप सभी से मुलाकातें होंगी। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और करते रहें यूं ही खेती और स्वस्थ खेती। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक

0: सेक्टर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
5: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना है कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे

0: जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, अब हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थाई पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थाई पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आघात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। है, इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे, या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित है। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
3: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताजा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ पांची के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
2: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
3: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
2: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
3: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
2: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
3: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
2: जी बिल्कुल श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
3: विमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है
2: जी।
3: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं
2: जी। यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं, बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
3: जी हाँ बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
2: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
3: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान, या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
2: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
3: जी जरूर, हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
2: जी तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
3: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
2: जी
3: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
2: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
3: श्रोताओं, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
2: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
3: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
2: जी
3: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
2: तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
3: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओ, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
2: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
3: जी हाँ बिल्कुल, तो आइए श्रोताओ, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
2: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
3: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
2: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
3: सीखो, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
4: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: भौरों से नित गाना,
4: भौरों से नित गाना,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
4: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: सीखो शीश झुकाना,
4: सीखो शीश झुकाना,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
4: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: कोमल भाव बहाना,
4: कोमल भाव बहाना,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
4: दूध तथा पानी से सीखो,
3: मिलना और मिलाना,
4: मिलना और मिलाना,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
4: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
4: सूरज की किरणों से सीखो,
5: सीखो
3: जगना और जगाना,
5: जगना और जगाना।
3: लता और पेड़ों से सीखो,
5: लता और पेड़ों से सीखो।
3: सबको गले लगाना,
5: सबको गले लगाना।
3: दीपक से सीखो जितना,
5: दीपक से सीखो जितना।
3: हो सके अंधेरा हरना,
5: हो सके अंधेरा हरना।
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
5: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
5: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
3: सच्ची सेवा करना,
5: सच्ची सेवा करना।
3: जलधारा से सीखो आगे,
5: जलधारा से सीखो आगे।
3: जलधारा से सीखो आगे,
5: जलधारा से सीखो आगे।
3: जीवन पथ में बढ़ना,
5: जीवन पथ में बढ़ना।
3: और धुएं से सीखो हरदम,
5: और धुएं से सीखो हरदम।
3: ऊंचे ही पर चढ़ना,
5: ऊंचे ही पर चढ़ना।
3: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही, उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी।
3: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहार।
5: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962। सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
6: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
2: हां साहब।

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
0: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
4: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
3: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
5: चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
2: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
6: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
2: कुसुमलता,
6: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
6: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: नमस्ते क्लास। टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
9: जी
8: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
9: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
8: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
11: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
12: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
14: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
15: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
14: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
16: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
14: या है
17: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
18: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
17: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
19: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
17: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
20: हरियाली से खुशहाली तक।
21: उन्नत कृषि।
22: नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अनु और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन। तो आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं मटर की वैज्ञानिक खेती। जी हां, सब्जियों की बात करें खास तौर पर ठंड के मौसम में, और उस समय मटर हमें खाने को मिलता है, तो किसान भाई बहुत ही मेहनत से इसे उपजाते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी को मटर की खेती के बारे में और भी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद कुमार, जो कि आपको बताएंगे कि मटर की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, और साथ ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं।
23: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो मुख्यतः मटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में।
22: तो डॉक्टर साहब, मटर की खेती सब्जी फसल के लिए की जाती है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होंगी उसके बारे में बताइए।
23: सब्जियों में मटर का महत्वपूर्ण स्थान है। मटर की खेती सब्जी फसल के लिए भी की जाती है, मुख्यतः यह सब्जी फसल में ही की जाती है। यह कम समय में अधिक पैदावार देने वाली फसल है, जिसके कारण व्यापारिक दलहनी फसल में इसकी गिनती होती है। मटर में राइजोबियम जीवाणु मौजूद होते हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, इसलिए मटर की खेती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी की जाती है। मटर में अनेक प्रकार के पोषक तत्व, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन और आयरन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, इसलिए मटर का सेवन हर आदमी को करना चाहिए, जिससे मानव शरीर के लिए यह काफ़ी लाभदायक पाई गई है। मटर को विशेषकर सब्जी बनाकर खाने का इस्तेमाल में लाया जाता है। हमारे यहाँ मटर की खेती फलियों को बेचने तथा दानों को पकाकर बेचने के लिए भी की जाती है, जिससे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं।
22: डॉक्टर साहब, अब हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि अच्छे उत्पादन लेने के लिए मटर में कौन कौन सी प्रमुख शस्त्र क्रियाएं किसान भाइयों को अपनानी चाहिए।
23: मटर की अच्छी उत्पादन लेने के लिए किसान भाई जो शस्त्र क्रियाएं मुख्य अपनानी चाहिए, उसमें है सबसे पहले हम लोग को मिट्टी का जो खेत का चुनाव करने में सावधानी बरतनी चाहिए। मटर की खेती हर तरह के मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन गंगा के मैदानी भागों में गहरी दोमट मिट्टी को इसके लिए सबसे उत्तम पाया गया है। मटर की फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। खेत की तैयारी के समय किसान भाइयों को यह ध्यान देना है कि मटर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय जो होता है वह 15 अक्टूबर से 15 नवंबर सबसे उपयुक्त समय है, इसीलिए इस माह से पहले ही खेत की मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लें। खरीफ की फसल की कटाई के बाद भूमि को अच्छी तरह से जुताई करने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 2-3 बार हैरो चलाकर जुताई कर लें। 2-3 बार जुताई करने के बाद पाटा लगाकर भूमि तैयार कर बुवाई करें। मटर की खेती के लिए मिट्टी में नमी होना बेहद जरूरी है। सबसे जो महत्वपूर्ण जो शस्त्र क्रियाएं हैं उसमें है बीज दर किसान भाई को ध्यान में रख कर देना चाहिए, जो बीजों के आकार और बुआई के समय के अनुसार बीज दर हो सकती को अनुशंसित की गई है। समय पर बुआई ऊंचाई वाली किस्म के लिए 75 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। यदि हम विलंब से और बौने किस्म के लिए कर रहे हैं तो 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज होना चाहिए। सबसे जैसे हम लोग कृषि में कहते हैं कि हम लोग को जो बीज लगानी चाहिए वो पंक्ति में लगानी चाहिए और देसी हल या सीड ड्रिल या मल्टी सीड ड्रिल से पंक्ति में लगाएं और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करनी चाहिए, जबकि पंक्ति से में पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोनी किस्म के लिए बीज दर मुख्यतः 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त पाई जाती है। और जैसा कि हम लोग दलहनी फसल में बीजोपचार एक महत्वपूर्ण हमारा जो शस्त्रक्रियाएँ हैं वो होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मटर में जो मुख्य जो रोग लगता है वह है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम लोग चूर्णी फफूंद कहते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए बीज उपचार अत्यंत ही जरूरी है। जैसे तो बीज जनित रोगों के बचाव हेतु जो फफूदनाशक दवा थायरम प्लस कार्बेंडाजिम 2 ग्राम थायरम 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और रस चूसक कीटों के लिए बचाव हेतु थायमिथोक्सोम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। और उसके बाद वायुमंडलीय नेत्रजन के स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम, इसे मटर के लिए अलग मटर फसल के लिए अलग राइजोबियम का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है लिगमिनोसोरम, और अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तन करने हेतु पीएसबी कल्चर 5-10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। राइजोबियम से बीजों को उपचारित करने के लिए उपयुक्त राइजोबियम कल्चर जैसे मैंने बताया लिग्नोसोरम का 1 पैकेट 250 ग्राम 10 किलोग्राम बीज की दर के लिए प्राप्त होता है। बीजों को उपचारित करने के लिए 50 ग्राम गुड़ ले लें और 2 ग्राम उसमें गोंद मिला दें और 1 लीटर पानी में घोल कर गर्म करके उसका सबसे पहले किसान भाई मिश्रण तैयार कर लें और सामान्य तापमान पर उसे ठंडा होने दें और ठंडा होने के पश्चात उसमें 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर डालें और अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण में बीजों को डालकर अच्छी तरह से मिलाने के बाद बीज के चारों ओर इसका एक इस तरह मिलाना चाहिए कि एक लेप लग जाए और बीजों को छाया में पहले सुखा लें और फिर तत्पश्चात उसके बाद बुआई करें, क्योंकि राइजोबियम फसल विशेष के लिए होता है इसलिए मटर के लिए संस्तुत राइजोबियम का ही प्रयोग करना चाहिए।
22: मटर के अनुशंसित किस्मों के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
23: मटर की अनुशंसित उन्नत प्रजातियों के बारे में अब हम किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं। हमारे जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के द्वारा जो हम लोग जिस क्षेत्र में पढ़ते हैं बिहार जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है उस क्षेत्र के लिए अभी 2021 में एक बहुत अच्छी मटर की प्रभेद विकसित की गई है IPFD 13-2 जिसका नाम अनंत है जो अधिसूचित की गई है। यह प्रभेद 6 से 138 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज बहुत अच्छी 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह जो मटर में चूर्णी फफूंद जो मेन जो रोग लगता है उस रतुआ रोग के प्रति

0: भी बहुत अधिक उपजशील किस्म है। इसकी औसत उपज 17 से 18 क्विंटल पर हेक्टेयर है। यह 120 से 123 दिनों में तैयार होने वाली किस्म है। यह भी चूर्णी फफूंद के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसी तरह हमारा दूसरा जो कृषि में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो वाराणसी में है, उसके द्वारा भी बहुत अच्छी अच्छी मटर की किस्में विकसित की गई है। उसमें काशी समृद्धि, काशी नंदिनी और काशी मुक्ति है। काशी नंदिनी मटर की अगेती पैदावार देने वाली किस्म है। इस किस्म के पौधे की बीज के रोपाई के लगभग 50 दिनों के बाद पहली तुराई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके फली में फली जो लगती है उसमें दानों 7 से 8 पाई जाती है। इसकी फली का औसत उपज 110 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हरी फली का जो औसत उपज होता है वह 110 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और दूसरे किसान भाई सबसे अच्छा भी काशी समृद्धि जो अभी हाल के वर्षों में इसको भी अधिसूचित विमोचित की गई है कि हरी फली का इसका औसत उपज 125 क्विंटल पर हेक्टेयर। एक फली में 7 से 8 बीज पाए जाते हैं और चूनी फफूंद के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। इसी तरह तीसरी जो प्रभेद विकसित की गई है वह काशी मुक्ति। ये भी एक अगेती किस्म है। इसमें 50% फूल 35 से 36 दिनों में ही आ जाती है। ये बहुत अच्छी आगात प्रभेद है जिसे बाजार में जल्दी से किसान भाई इसका हरी छिमी के रूप में इसको बेच सकते हैं। और इसकी फली की लंबाई 8.5 से 9 सेंटीमीटर होती है। इसमें 8 से 9 बीज पाए जाते हैं। इसी तरह दूसरी और अन्य प्रभेद भी जैसे अर्केल, काशी शक्ति मटर की इस किस्म की पौधों की लंबाई 3 फीट होती है। इस किस्म के पौधों की फलियां की लंबाई 10 सेंटीमीटर पाई जाती है। और इस किस्म में पौधों की हरी फली के रूप में पहली तुराई बीज रोपाई के लगभग 70 से 75 दिनों के बाद की जाती है। इसका हरी फली के रूप में औसत उत्पादन उपज 130 से 150 क्विंटल तक पाई गई है। अन्य जो प्रभेद हैं वो है काशी उदय। और भी बहुत से प्रभेद हैं जिसका किसान भाई जैसे बहुत सा प्राइवेट कंपनी भी इसका संकर बीज भी मिलता है और किसान भाई भी इसकी खेती करें तो अच्छी उपज ले सकते हैं।
1: मटर में लगने वाले कीट, रोग, व्याधि कौन कौन से होते हैं और इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय हमारे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए?
0: मटर में लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं उसमें है चूर्णी फफूंद। इस रोग से फसल को अधिकतम मटर में हानि होती है। इसका जो मुख्य है जो कॉज है वो है कि नम वातावरण में यह रोग बहुत तेजी के साथ फैलता है जिसके कारण तने और पत्तियां पर सफ़ेद चूर्ण जमा हो जाता है। इसके नियंत्रण हेतु अनुशंसित दवा बुआई के समय सबसे बड़ा जो हम बता चुके हैं बीजोपचार हेतु थायरम एवं कार्बेंडाजिम 2 ग्राम थायरम 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से बीजोपचार कर दें। और या मैंकोजेब एक दवा आती है जिसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर या 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से खरीफ फसल पर रोग के लक्षण पर परिलक्षित होने पर किसान भाइयों को छिड़काव कर देना है। दूसरा जो रोग इसमें लगता है फफूंदनाशक रोग है मृदोरुमिल फफूंद। यह बीमारी पत्तियों के निचली सतह पर लगती है। इसके नियंत्रण हेतु 3 किलोग्राम सल्फर 80% WP या डाइनोकेप 48% इसी 2 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें। मटर में जो प्रमुख कीट लगते हैं उसमें है फली छेदक कीट। अंदर फली छेदक कीट फली में छेद कर हानि पहुँचाते हैं। यह कीट फलियों के अंदर अंडे देते हैं और फलियां तथा दाने को खा जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु प्रोपेनोफॉस 50 ईसी जो दवा उपलब्ध होती है उसका 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से फसल के प्रकोप होने पर किसान भाई को छिड़काव कर देना चाहिए जिससे इस कीट से फसल को निजात मिल सके। दूसरा जो प्रमुख कीट है उसमें स्टेम फ्लाई और लीफ माइनर प्रमुख कीट हैं जो मटर में लगते हैं। यह कीट तना एवं पत्ती के रस को चूस लेते हैं। लीफ माइनर के कारण पत्तियां पर सफ़ेद रंग की धारियां से दिखाई देती है। इसके नियंत्रण के लिए फोरेट टेंजी कीटनाशक दवा आती है जो खेत की तैयारी के समय ही किसान भाइयों को मृदा उपचार कर दें। और इसी तरह एक माहू यह कीट पत्ती और फूल और फलियां रस चूसते हैं। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोपीड दवा जो 17.8 SL दवा को 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। मटर की फसल में दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो खरपतवार नियंत्रण की होती है। तो खरपतवार की यदि समस्या किसान भाई को अपने खेत में दिखाई दे तो व्हील या हैंड हो द्वारा निकाई गुड़ाई करें, जिससे फसल के जड़ क्षेत्र में वायु का संचार बढ़ सके तथा खरपतवार नियंत्रित होने के साथ साथ पौधों की शाखाएँ और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। रसायनों द्वारा खरपतवार यदि नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन दवा जो 2.5 से 3 लीटर दवा

0: बुआई से एक से तीन दिन यानी 72 घंटे के अंदर 500-700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। मटर की फसल सामान्यतः 130 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी कटाई हसुआ से करनी चाहिए और 5-7 दिन धूप में अच्छी तरह से सुखा लेने के बाद किसान भाइयों को थ्रेसिंग इसकी करनी चाहिए। और भंडारण के दौरान कीटों से सुरक्षा के लिए अल्मोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग करें, जबकि हरी फलियां बुआई से 60 से 70 दिन के किस्म के अनुसार तैयार हो जाती है। मटर की खेती किसान भाई उपयुक्त वैज्ञानिक तरीके से और उत्तम कृषि कार्य प्रबंधन से लगभग पकी हुई अवस्था में 18 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यदि करते हैं तो उसके हिसाब से पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। हरी फलियों में किसान भाई 90 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज किसान भाई आराम से इसमें प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप अगर मटर की खेती करते हैं तो आपको मुनाफा होगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस छोटी छोटी बातें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप मटर की खेती कर सकते हैं। अगले दिन एक अलग विषय के साथ, एक अलग जानकारी के साथ हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
10: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
9: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75 70% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें धन बाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर
10: या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें, या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर, या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
10: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में और आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा जी। मैं भी मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
0: मैम आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
1: जी तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बेसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है और बेसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है उसी तरह से बेसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बेसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं, बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, उसी के तरह बेसिलस हो गया या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
0: तो मैम जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
1: जी यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बेसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफून की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कॉम्पिटिशन करता है। तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बेसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बेसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
0: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बेसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है,
1: जी
0: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है,
1: जी।
0: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बेसिलस?
1: तो जैसे मैंने बताया पहले से ही कि बेसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीट ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बेसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बेसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
1: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर एक किलो बीज है तो एक किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इस पे इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड, 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा, उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
2: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
1: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स थ्रू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। अब अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंगिसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
2: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
1: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगरजी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगरजी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट, बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए, तो ज़रूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइज़र दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज़ कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
2: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाज़ार में वो आसानी से मिले।
1: जी बिल्कुल।
2: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
1: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में। इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में, आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक विशेष योजना के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे किसान भाई बहनों के लिए मशीनों का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, और अगर उनके पास मशीन है, उपयुक्त किस्म के मशीन है, तो उनके लिए बहुत फायदा होता है और समय पर वो बुआई कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, और कई तरह की चीजें होती है जो मशीनों की मदद से आसानी से की जा सकती है। इससे उनका लागत भी कम होता है। लेकिन किसान भाई बहनों के लिए परेशानी तब हो जाती है जब मशीनों में उन्हें लागत लगाने के लिए उनके पास पर्याप्त तो पैसे नहीं होते। ऐसे में सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, उनमें से एक है कृषि यांत्रिकीकरण। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं, ये योजना क्या है और इसके लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसेस है, सारी चीजें जानते हैं श्री निशांत कुमार से। सर, आप हैं उपनिदेशक कृषि अभियंत्रण भागलपुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद।
2: सर, ये योजना क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
12: जी, सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी किसान भाई बहनों, माताओं, सभी लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज ये सौभाग्य है मेरे लिए कि आज मुझे यहाँ बैठ के आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है और आप लोगों को योजना के बारे में बताने का प्रयास कुछ किया जाएगा। तो मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी लोगों से कि काफी ध्यानपूर्वक हमारी बातों को आप सुनेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपका कोई भी सवाल या जवाब नहीं रह जाएगा, और अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी जिसमें फिर आप योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। देखिए, कृषि यांत्रिकरण योजना कोई नई चीज नहीं है किसान भाइयों, आप लोगों को पहले से पता है। आज से करीब 12-13 साल 14 साल हो गए इस योजना को चलते हुए। हाँ, ये है कि योजनाओं में बहुत सारी चीजें बदलाव लाई गई है। भागलपुर ऐसे जिले में जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ का मैं उपनिदेशक कृषि अभियंत्रण हूँ, इस जिले में भी अगर देखें तो कृषि की विविधता है। जैसे अगर हम गंगा के उस तरफ जाते हैं नगोचियान मंडल में, तो हम देखते हैं कि जो रबी का सीजन आप लोग कहते हैं, ठंड का जो सीजन है, तो रबी सीजन में जो क्रॉप उधर लगते हैं वो क्रॉप की ज्योमेट्री या फिर उसका जो आपका लगाने की पद्धति है वो अलग है और क्रॉप भी अलग है। ज्यादा करके नगोचियान मंडल में आप लोग मक्का की खेती करते हैं रबी सीजन में। बहरहाल, अगर हम लोग गंगा की इस तरफ आते हैं, जगदीशपुर, पीरपैती, कहलगांव, नाथनगर, बाकी भी जो भी हमारे प्रखंड हैं, इन सभी प्रखंडों में हमने देखा है कि ठंड के मौसम में ज्यादा करके गेहूं की खेती की जाती है। मक्का मतलब कम है, इधर गेहूं है या फिर उसके अलावा और कुछ फसलें हैं। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो अपना डाइवर्सिटी है, जो एग्रीकल्चर में विविधता है, इस विविधता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने योजना को सरकार के स्तर से क्रियान्वित करवाने का प्रयास किया है कि उसको ध्यान में रखते हुए उन तरह के मशीनों को अपने जिले में लक्ष्य रखा जाए जिन मशीनों को किसानों को जरूरत है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी मशीन हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ ऐसी भी चीजें योजना में शामिल की गई हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था और पहली बार ही शामिल किया गया है, जिसमें अगर किसान भाई जुड़ते हैं या उसका लाभ उठाते हैं तो मुझे लगता है कि उनके जीवन स्तर में काफी सुधार होगा, उनके आय की वृद्धि होगी, आय दुगुनी तिगुनी होगी और आगे भी उनका जीवन सफल रहेगा। देखिए, कृषि यांत्रिकरण योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कि सारा चीज जो है ऑनलाइन है। अपने भागलपुर जिले में कुल 68 यानी 68 प्रकार के यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिसका कि कुल भौतिक लक्ष्य है 2300 और वित्तीय लक्ष्य अगर हम बात करें तो 5 करोड़ है। ये योजना के अंतर्गत पहले घटक की मैं बात कर रहा हूँ, कृषि यंत्रों पर अनुदान। जो इंडिविजुअल फार्मर हैं वो अगर यंत्रों पर अनुदान चाहते हैं तो उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो वो 2300 का कुल हमारा टारगेट है भौतिक, और जिसमें कि यंत्र हैं के प्रकार हैं 68 यानी कि 68 प्रकार के यंत्रों पे भागलपुर जिले में अनुदान दिया जा रहा है। जनरली मैं देखा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सभी जिलों का लगभग यही मतलब देखने को मोटा मोटी मिलता है कि आप जुताई के मशीन, थ्रेसिंग की मशीन और पावर स्प्रे, ऐसे मान लीजिए कि आपको अगर स्प्रे करना हुआ फसलों में, उसके मशीन के आवेदन तो आप करते हैं, परंतु वो खेती की पायदान जिसमें मशीनों की नितांत आवश्यकता है उसका आवेदन हमारे पास नहीं आता है। अगर हम खेती की बात करें तो प्रथम चरण में आप लोग क्या करते हैं, खेतों की तैयारी करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, तो जुताई का तो हमारे पास यंत्र के मशीनों का आवेदन चला आता है, परंतु बुआई के लिए मशीन बहुत कम आवेदन प्राप्त होता है। अगर आप लाइन सोइंग करेंगे, लाइन सोइंग करने से खाद कम लगता है, पानी कम लगता है, इन तरह से पद्धति अपनाने से होगा कि आपका बचत होगा पैसे का और आपको निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होगी, तो बुआई के मशीनों में आप लोगों का आवेदन नहीं रहता है। उसी प्रकार से कटाई के मशीनों की जहां तक बात है, तो कटाई के समय देखता हूं कि एक तो बिहार में वैसे ही लेबर कम मिलते हैं, क्योंकि यहां पे जो भी लेबर है सब बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बाहर में ज्यादा पैसा मिलता है तो बाहर चले जाते हैं। जैसे भी दुर्गा पूजा समाप्त होगा उसके बाद धान की कटाई शुरू होगी, आप लेबर ढूंढेंगे आपको लेबर नहीं मिलेगी, तो इसलिए कटाई के मशीनों पर भी सरकार ने खासा ध्यान रखा है और कटाई के मशीनों में टारगेट दिया है, तो कटाई के मशीन में भी आवेदन आप लोग करें। उसके बाद चौथा पायदान हमारा आता है थ्रेसिंग, तो थ्रेसिंग में कमोबेश आवेदन प्राप्त हो जाते हैं। एक एक करके बात करते हैं। देखिए कुल 68 प्रकार के मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिस पर अनुदान 40% से 80% है। इसमें क्या है कि आप जैसे कुछ मशीनों का मैं नाम लेना चाहूंगा जो पहले से चल रहे हैं मशीन, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करके फायदा नहीं। रोटावेटर, कल्टीवेटर जिसको आप लोग फाड़ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, या फिर तवा कहते हैं, डिस्क हैरो को, ये सब चीजें तो आप लोग जान रहे हैं। जो जानकारी नहीं है वो आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। एक किट आया हुआ है, स्मॉल एग्रीकल्चर मैनुअल किट, जिसमें कि आपको दो तरह के काटने वाले जो हसुआ होते हैं, काटने वाला हसुआ मिलेगा, एक उसमें खुरपी मिलेगी, एक आपको निराई गुड़ाई करने वाली खुरपी मिलेगी जिसमें पंजा टाइप का बना होता है, पांच उंगली तरह का। ये कुल मिला के 5-6 उसके अंदर छोटे छोटे टूल्स है जो कि एक बैग में पैक है, और वो बैग का नाम है किट। और ये बैग जो है, हाँ, एक कुदाल भी है उसमें, और ये बैग जो है, इस बैग का मूल्य है 1000 रुपया, जिसमें किसान को मात्र 300 रुपया देना है, 700 रुपया उसको अनुदान मिल जाएगा। किसान को पूरा पैसा देके, पूरी राशि दे करके तब यंत्र क्रय करना है, उसके बाद जो अनुदान की राशि है उनके खाते में चली जाएगी डीबीटी के माध्यम से। तो एक तो आपका ये हो गया कि जो छोटे किसान हैं, मझले किसान हैं, वो योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से गेहूं की बुआई के लिए एक मशीन है सुपर सीडर। ये सुपर सीडर बहुत अच्छी मशीन है। हम लोग कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में कि एक तीर से दो निशाना होता है, बट ये मशीन ऐसी है, ये मशीन ऐसा है कि एक तीर से तीन निशाना करती है। अब पूछेंगे कैसे, तो सुपर सीडर क्या करती है, पहले तो खेत को ये जोत लेती है, जोतने के बाद क्या है कि ये बुआई कर देती है एक ही टाइम में। मैं अलग अलग टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही टाइम में, एक ही समय में ये खेत को जोतती भी है। जो आपके फसल अवशेष हैं जिनको हम लोग पराली कहते हैं, उसको ये खेत में जोत के मिला देती है। उसी समय में ये गेहूँ को पीछे से लाइन में एकदम बढ़िया से सोइंग करते जाती है, और ठीक उसी समय जो सोइंग किया हुआ जो बीज है आपका, जो लगाया हुआ बीज है खेतों में, उसको ये पीछे से पट्टा मार के ढक भी देती है ताकि कोई चिड़िया उसको चुग ना जाए। तो है ना, मतलब एक टाइम पे ही, एक तीर से ही तीन निशाना इसने कर लिया। सुपर सीडर चलाने के लिए आपको कम से कम 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। अनुदान की अगर बात करें तो 1.5 लाख रुपये से अनुदान है। किसान को अपने जेब से अगर लगाना होगा तो 1 से 1.25 लाख रुपये लगाना होगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि सुपर सीडर जब भी ले तो 7 फीट का लें। 6 फीट में भी अवेलेबल है, 7 फीट में भी अवेलेबल है, और 8 फीट में भी अवेलेबल है, परंतु 7 फीट का ज़्यादा चलता है, सक्सेस भी है, तो सुपर सीडर आप ले सकते हैं। जीरो टिलेज की अगर हम बात करें तो जीरो टिलेज मशीन से भी सभी किसान अवगत हैं, नहीं भी अवगत है तो मैं बता देता हूं। इसका नाम है शून्य जुताई मशीन। ये बोने के लिए यूज में आता है, आप इससे गेहूं बो सकते हैं। लेकिन बोने के लिए क्या है कि जो खेत से आप फसल काट चुके हैं उसमें आपको आगे अब जुताई नहीं करनी है, बिना जुताई किए ही आपको उसमें शून्य जुताई किए हुए ही आप मशीन को चलाना है। ट्रैक्टर के साथ उसको पीछे बांध दीजिए देंगे और आप जो है बीज डाल के गेहूं का इससे बुआई कर सकते हैं। इसको चलाने से फायदा ये होता है कि खेत में ये बिल्कुल पतली लकीर सी बनाते हुए बीजों का बुआई अच्छे से कर देते हैं, और ये भी लाइन सोइंग करता है, एक लाइन से सीड आपके लगे रहते हैं। और जो खेत में जो आप मिट्टी को जब नहीं पलटते हैं तो बहुत सारे ऐसे मित्र कीट हैं या बैक्टीरिया हैं जो अच्छे हैं, जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट टच में नहीं आते हैं और वो नष्ट होने से बच जाते हैं। साथ ही साथ जो मिट्टी के अंदर नमी है वो बरकरार रहती है। इरीगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जिसको आप लोग पटवन कहते हैं, तो पटवन में पानी भी आपका कम लगेगा। तो शून्य जुताई जहां तक मुझे लगता है कि कुछ किसानों को अभी तक फायदा तो पहुंचाया है, परंतु शून्य जुताई को देख के ये साल प्रतीत भी होता है कभी कभी कि बहुत किसानों को अभी तक पूरी इसकी जानकारी नहीं है। मैंने ये भी देखा है कटिहार जिले में कि खेत को पूरा जोतने के बाद जीरो टिलेज मशीन से हम बुआई कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसका नाम ही है जीरो टिलेज। कहने का मतलब आपको टिलेज नहीं करना, जुताई नहीं करनी, सीधा मशीन में गेहूं के बीज डालने हैं और ट्रैक्टर के पीछे बांध करके उसको चला देना है। ये आपके बुआई के लिए, शून्य जुताई के लिए आपका जीरो टिलेज मशीन है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं, जैसा कि एक और मशीन आती है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मतलब सीड ड्रिल एक तरह से कह लीजिए उसको, कि सीड ड्रिल में तो हम लोग जानते हैं आगे हमारा फाड़ लगा होता है, वो खेत को आगे से जोतता जाता है और पीछे से हमारी बुआई होती जाती है, तो वो भी मशीन ठीक है लेकिन वो जुताई करेगी। तो ये बुआई के खास करके ऐसा मशीन है जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावे मक्का के किसानों को ध्यान में रखते हुए भी हमारे पास एक मशीन है जो हाथ से आप चला करके उसको जो है जुताई कर सकते हैं। इन सभी मशीनों में आपको 30,000, 40,000, 50,000 हर प्रकार के अनुदान मिल जाएंगे। अनुदान कहाँ क्या कैसे है उसके लिए अगर आप लोग, और कैसे आवेदन करना है उसके लिए अगर आप लोग एक वेबसाइट का मैं नाम बता रहा हूँ उसको अगर नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का युग है, हर घर में बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बड़े लोग मोबाइल चला रहे हैं, हर हाथ में इंटरनेट है। एक वेबसाइट है, आप गूगल पर जाइए, कुछ नहीं करना, किसी से नहीं पूछना, आप गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद आप वहां पर टाइप कीजिए ऑफमास, OFMAS, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, गूगल पर जाने के बाद आपको टाइप करना है OFMAS, अंग्रेजी का OFMAS, ऑफमास। इसको टाइप करने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपके सामने एक लिंक आ जाएगा ऑफमास का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ कृषि विभाग बिहार सरकार का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है फार्म मशीनरी के लिए आप आवेदन करने के लिए। इसमें भी जाकर के आप अगर चाहें तो वहां से भी यंत्रों की सूची, किस यंत्रों पे कितना अनुदान है वहां से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावे आपके प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, आपके पंचायत में किसान सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि हाँ हमें आवेदन करना है फलाने मशीन में कैसे आवेदन होगा, और आप वहां से जाकर जानकारी ले सकते हैं। एक विशेष जानकारी आप लोगों को मैं और बता दूं कि इस वित्तीय वर्ष से वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन तो नहीं है खेती करने के लिए, परंतु वो दूसरे की खेती को पट्टा पे लेके, लीज पे लेके खेती कर रहे हैं, तो रियल में अगर देखा जाए तो किसानी का मैक्सिमम बोझ उन्हीं के कंधों पे है जो वास्तविक खेतिहर हैं, जिनकी जमीन नहीं है और वो वास्तविक खेतिहर हैं और दूसरे खेत में खेती का कार्य करते हैं। तो वैसे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार क्या किया है, नीति में थोड़ा परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन किया है, तो वैसे यंत्र जिसपे 20,000 रुपया तक अनुदान है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कृपया, वैसे यंत्र जिसपे 20,000 रुपया तक अनुदान है, 20,000 से कम और 20,000 तक, तो 20,000 तक अगर अनुदान है किसी यंत्र पे, तो वैसे किसान जिसके पास जमीन नहीं है वो भी उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे मैनुअल किट, जो मैंने अभी बताया कि आपको एक किट मिलेगा जिसमें कि आपको खुरपी, हंसुआ और कुदाल रहते हैं, उसके अलावे पावर स्प्रे आप ले सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप मैनुअल स्प्रे ले सकते हैं, कल्टीवेटर का फायदा ले सकते हैं, इसमें रोटावेटर का फायदा आप नहीं ले सकते क्योंकि रोटावेटर में अनुदान 25,000 रुपया है। वैसे जो भी छोटे छोटे मशीन है, हाँ आप छोटा वाला आपका जो आता है राइस मिल उसका लाभ ले सकते हैं, उसके अलावा आपको तेल मिल है उसका लाभ ले सकते हैं, सब छोटे छोटे मशीन है। तो जिन मशीनों में 20,000 तक अनुदान है उन सभी मशीनों पर आप लाभ ले सकते हैं, अगर आपके पास जमीन की रसीद LPC नहीं है तो। वैसे किसान जिनको बड़ी मशीन लेनी है या पंप सेट लेना है तो जमीन का अनिवार्यता उसमें रखी गई है, अगर जमीन का अनिवार्यता रखी गई है तो कुछ कारण भी रहा होगा। तो बड़े किसान बड़े मशीनों के लिए, जैसे मान के चलिए कि आपको थ्रेसर लेना हुआ या रीपर कंबाइंडर, एक मशीन आता है जो कि गेहूं के फसलों को काट भी लेता है और उसकी गट्ठर बना के बांध भी लेता है और नीचे गिरा देता है उसे, मतलब एक ही मशीन है जो कि गेहूं की फसल को एक समय में काटती भी है, उसका गट्ठर भी बनाती है, उसमें धागा भी स्वयं बांधती है। वो हमें आदमी की जरूरत नहीं कि हाँ आदमी जाएगा उसमें धागा बांधेगा तो उसका गट्ठर बनेगा, नहीं गट्ठर उठर नहीं बनेगा, वो मशीन खुद गट्ठर बनाती है और उसको काट काट के गट्ठर बना बना के इकट्ठा करती है, उसका नाम है रीपर कम बाइंडर। रीपर मतलब काटने वाला, कम मतलब के साथ साथ, बाइंडर मतलब बांधने वाला, काटेगी भी बांधेगी भी और गिरा देगी नीचे। आपको कुछ नहीं करना, गेहूं पकने के बाद उसको जाके चुन लेना है, खेतों से उठा लेना है, तो वो रीपर बाइंडर है, वो गेहूं की फसल को बहुत अच्छे से काटती है। उस पर भी अनुदान 1,75,000 रुपये दिया जा रहा है। वो भी 3 प्रकार का आता है, एक ट्रैक्टर चला सकते हैं, एक खुद से चला सकते हैं और एक 4 पहिये वाला खुद से चलाने वाला है। तो जिस तरह का आप लेंगे, अगर ट्रैक्टर वाला आप रीपर बाइंडर लेते हैं तो 1,10,000 अनुदान है, अगर 4 पहिये वाला रीपर बाइंडर जो स्वचलित खुद से चलती है, ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, उसमें इंजन लगा होता है, तो उसमें 1,75,000 रुपये अनुदान है। अगर आप 3 पहिये वाला लेते हैं तो 1,40,000 अनुदान है। इस प्रकार से अलग अलग मशीनों पर अलग अलग अनुदान दिया जा रहा है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि बड़े मशीनों में अगर आपको चाहिए अनुदान जिस पे 20,000 से ऊपर अनुदान है, 20,000 से लेकर जितना भी ऊपर हो अनुदान, तो उसमें आपको जमीन की रसीद की जरूरत पड़ती है या LPC की जरूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि कितना पुराना LPC जमीन की रसीद चाहिए, तो अधिकतम 2 से 3 साल पुराना जमीन की रसीद लगा दें आप ऑनलाइन आवेदन करते समय, और LPC या जमीन की रसीद दोनों में से किसी एक की कॉपी आप लगा सकते हैं, 2 साल 3 साल पुराना हो। इसी प्रकार से अगर आपको किसी जाति में आवेदन करना है, क्योंकि योजना ही इस तरह से बनी है, सामान्य जाति और पिछड़ा वर्ग को एक जैसा रखा गया है अनुदान की सूची में, परंतु अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये 3 कैटेगरी के जो किसान हैं हमारे, इनको 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है, यानी 10% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई मशीन है जिसपे 100 रुपये अनुदान दे रही है सरकार, तो सामान्य जाति को 100 रुपये मिलेंगे अनुदान और पिछड़ा वर्ग को 100 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन अगर कोई किसान अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है, तो उनको 110 रुपये अनुदान प्राप्त होगा। ये सरकार ने ध्यान रखा है इस चीज का, वो चाहे 20,000 का मशीन हो या 20,000 से ऊपर का अनुदान का मशीन हो, हर एक मशीनों पर यह लागू होगा। परंतु उन किसानों को आवेदन करते समय अपने स्वयं के नाम से जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। आपके गांव में जो CSC सेंटर हैं, उनको भी इसकी जानकारी है, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं कि आवेदन कैसे होता है, या स्वयं अगर मोबाइल में खोल के देखेंगे ऑफ मास पोर्टल को, उस पर जाएंगे और एक एक सब सारी चीजें हिंदी में अवेलेबल हैं, आप उस पर अगर क्लिक करते जाएंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि हम इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुल 68 मशीन है, आप लोग वहाँ ऑफ मास वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि इन मशीनों पर क्या अनुदान है, वहां से आप लोग डाउनलोड भी करा सकते हैं PDF फॉर्मेट को। अब ये तो एक घटक की बात हो गई, अगला घटक हमारा है कस्टम हायरिंग सेंटर। देखिए, कस्टम हायरिंग सेंटर जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, कस्टम हायरिंग मतलब कस्टमर ने हायरिंग किया, मंगवाया, तो भाड़े पे यंत्र उपलब्ध कराने के लिए वैसे मझोले और छोटे सीमांत किसान जो निर्धन हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, दिक्कत है, तो उनको यंत्रों का अगर अनुदान का लाभ नहीं मिला कोई बात नहीं, तो अगर वो चाहते हैं कि हमें भी यंत्र का उपयोग करने को मिले, तो वैसे किसानों को ध्यान में रखते हुए एक योजना है कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसको हम लोग कहते हैं CSC। इसमें क्या है कि उसी पोर्टल पे आपको आवेदन होगा, और इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जिन पंचायतों में पूर्व से हमारा कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है, मेरी समझ से अभी तक मात्र 25 पंचायत में ही दिया गया है, जबकि यहाँ 245 पंचायत हैं टोटल, तो उन पंचायतों में हमें कस्टम हायरिंग सेंटर नहीं देना है। लेकिन जो पंचायत में अभी तक नहीं दिया गया है, वहां से किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना में क्या है, योजना में जमीन की बाध्यता नहीं है, क्योंकि सरकार मानती है ये एक प्रकार का उद्यम है, और उद्यम हम घर बैठे 2 पैसे कमाने के लिए उद्यम एक विकसित कर रहे हैं, तो जमीन है तो अच्छी बात है, वो किसान रजिस्ट्री होना, किसान का रजिस्ट्रेशन DBT पोर्टल पे होना चाहिए, जो कृषि विभाग का DBT पोर्टल है, किसान पंजीकरण वो होना चाहिए DBT पोर्टल पे, और जमीन है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो वो भी किसान आवेदन कर सकते हैं, जमीन की इसमें बाध्यता नहीं है। योजना में क्या है कि किसान को एक ट्रैक्टर लेना होगा, एक जुताई की मशीन जिससे खेत जोतते हैं, एक बुआई की मशीन, एक कटाई की मशीन और एक दौनी यानी कि थ्रेसिंग की मशीन, तो कुल 4 मशीन हो गए और एक ट्रैक्टर हो गया। ये 4 मशीन एक ट्रैक्टर अगर वो लेंगे और उनका कुल कीमत जो है 10 लाख तक आता है, तो उसका 40% अनुदान के रूप में उनके खाते में दिया जाएगा, और अगर मशीन की कीमत जोड़ के टोटल 11 लाख भी आता है तो भी 4 लाख मिलेगा। परंतु खुदा न खास्ते अगर सभी मशीनों का कीमत जोड़ के ट्रैक्टर के साथ वो बाकी 4 मशीन और ट्रैक्टर को जोड़ ले और सभी मशीनों का कीमत जो है जोड़ के मान लीजिए कि 9 लाख रुपए आता है, तो फिर 9 लाख का 40% हम कैलकुलेट करेंगे यानी कि 9×36 360,000 उनका अनुदान मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 40% या अधिकतम 4 लाख, अगर आप 20 लाख भी लगाएंगे मशीनों में तो भी आपको 4 लाख ही मिलेगा। तो ये है कस्टम हायरिंग सेंटर। इससे फायदा ये है कि आप अगर इस यंत्रों का लाभ लेते हैं, अगर कस्टम हायरिंग सेंटर अपने पंचायत में अपने घर पे स्थापित करते हैं, तो आप स्वयं भी उन मशीनों का लाभ लीजिए और भाड़े पे भी मशीनों को चलाइए और उससे लाभ कमाइए, ताकि आपके जीवन यापन में स्तर में सुधार हो। ये कुल अपने जिला में टारगेट है सामान्य जाति के 7 और अनुसूचित जाति का 1। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सामान्य जाति में काफी आवेदन प्राप्त हुए हैं, परंतु अनुसूचित जाति से अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर अनुसूचित जाति के कोई किसान भाई हैं या फिर सामान्य जाति के भी हों, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आते हैं योजना के अगले घटक में। इस घटक का नाम है फार्म मशीनरी बैंक। फार्म मशीनरी बैंक क्या है, बस थोड़ा सा कहीं अंतर है, नाम बदला हुआ है। जो अभी हमने चर्चा किया ना कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेंगे और 4 लाख अनुदान मिलेगा अधिकतम, ठीक वही है, उसी का ये बड़ा भाई है। इसमें क्या है कि केवल वो समूह से आवेदन होगा। कस्टम हायरिंग सेंटर में क्या था कि आप अगर स्वयं किसान हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, सिंगल किसान भी, लेकिन फार्म मशीनरी बैंक में जैसे हमारे जीविका के समूह हैं या जीविका दीदी हैं उनका समूह बना होता है, या आत्मा का जो ग्रुप है आत्मा का समूह बना होता है, स्वयं सहायता समूह या फिर कोई FPO हो, FIG हो, इस प्रकार का जो समूह कम से कम एक साल पुराने रजिस्ट्रेशन हो जिनका, वो इसका आवेदन कर सकते हैं। स्वयं किसान इसका आवेदन नहीं कर सकते। जब भी आवेदन करेंगे समूह ही करेंगे, समूह के द्वारा आवेदन लिया जाएगा। इसमें भी वही शर्त है कि जिस पंचायत में पूर्व से कस्टमरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक स्थापित है वहां से आवेदन नहीं लिया जाएगा, और अगर समूह आवेदन करते हैं अन्य पंचायतों से तो आवेदन की स्क्रूटनी होगी। आवेदन में किन किन यंत्रों को शामिल करना है, आपको निश्चित रूप से फिर से वही बात होगी कि एक जुताई की मशीन, एक बुआई की, एक कटाई की और एक थ्रेसिंग की, ये चार मशीन के अलावा एक ट्रैक्टर लेना होगा। परंतु इसमें जो अनुदान का रेशियो है वो ज्यादा है। कस्टमरिंग सेंटर में हम लोग 4 लाख अनुदान दे रहे थे, इसमें आपको अनुदान 8 लाख मिलेगा, यानी 80% अधिकतम 8 लाख। अगर आपका टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो अगर टोटल आपका 10 लाख होता है तो 8 लाख मिलेगा, 9 लाख अगर जोड़ के होता है तो 9 लाख का 80% निकालना पड़ेगा, यानी 9×8=72, 7,20,000 आपको अनुदान मिलेगा। परंतु अगर आपने अच्छे मशीनें ली हैं, क्योंकि बुआई में 0 टिलेज भी ले सकते हैं या फिर बुआई में आप सुपर सीटर भी ले सकते हैं, कोई एक मशीन लेना है तो 0 टिलेज का दाम कम है, सुपर सीटर का दाम ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ज़्यादा मतलब दाम लगा के लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हाई जाएगा। तो अगर मान के चले कि किसान बंधु ऐसे हैं जो 4 प्रकार का मशीन लिए और काफ़ी अच्छे अच्छे मशीन लिए हैं, उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया 15 लाख रुपया, तो भी उनको 8 ही लाख मिलेगा, ये अधिकतम इसका अनुदान का रेशियो है। और ये मात्र एक का लक्ष्य है, पूरे जिले में सिर्फ एक का टारगेट है। आवेदन एक आध प्राप्त हुए हैं और शेष आवेदन भी प्राप्त करना भी बाकी है। पोर्टल अभी खुला हुआ है, आप लोग ऑफ मास पोर्टल पर जाके आवेदन कर सकते हैं, और दिनांक 10 अक्टूबर को यह पोर्टल पुनः बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना घटक है जो कि नया है, इस साल से ही शुरू किया गया कृषि विभाग के द्वारा, कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत, और ये है आपका किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर। आप लोगों ने अभी तक ड्रोन तो देख ही लिया होगा टीवी में खेतों में उड़ते हुए, आज के जमाने में ड्रोन से हम लोग फसलों पर छिड़काव कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये क्वेरी होगा कि ड्रोन से ही क्यों करें, आपको जानकारी लेते हुए हैरानी होगी कि आज जो आपका राजस्थान है, आपका जो पंजाब है और हरियाणा है, यहाँ पर कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। हर 10 घर में एक घर में कैंसर है, और स्पेशल ट्रेन चलती है। मैं आपको बता दूं, मैं पहले 2010-11 में राजस्थान में ही था, जयपुर में, तो वहां मैं नौकरी कर रहा था, तो मैंने देखा कि वहां पर एक ट्रेन चलती है जो कि आपके यहाँ से जोधपुर से चलती है, जोधपुर से एक स्पेशल ट्रेन चलती है, उसका नाम ही है कैंसर ट्रेन। और ये कैंसर होने का मेन कारण यही है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर और खास करके कीटनाशी, जिसको हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स कहते हैं, उसके डिब्बे में किसान भाई आप देखते होंगे लिखा रहता है जहर, और आप भी उसको डालते हैं तो डालने के बाद हाथ को साबुन से आप लोग धोते हैं, लेकिन वो डालने के क्रम में क्या होता है कि पावर स्प्रे मशीन से जो बैटरी ऑपरेटेड उससे आप लोग डालते हैं, अगर विंड हवा का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो कहीं ना कहीं हमें भी इन्फेक्टेड करता है। वो जो छोटे छोटे उसके ड्रॉपलेट्स हैं, बूंद हैं, वो नाक के द्वारा, कान के द्वारा, आंख के द्वारा या हमारे बालों पे बैठ जाते हैं, जहां कहीं हम टच किए और हमारे मुंह में अगर वो संपर्क में आया या फिर नाक के द्वारा अंदर चला गया, आंख के द्वारा अंदर चला गया, तो कहीं ना कहीं हमें वो बहुत बीमार कर सकता है। परंतु ड्रोन से अगर हम छिड़काव करते हैं तो हम डायरेक्ट उसके इम्पैक्ट में नहीं आते हैं। दूसरा फायदा ये है ड्रोन से छिड़काव करने से कि ड्रोन का जो छिड़काव होता है वो बहुत प्रिसाइज होता है। कहने का मतलब ये काफी उन्नत तरीके से छिड़काव करता है। अगर आम का बगीचा का बात करें तो एक एक डाल पे चढ़ के तो आप मंजर का छिड़काव नहीं कर सकते आम के बगीचे में ही, लेकिन अगर ड्रोन आपके पास रहेगा तो आम के बगीचे में छिड़काव करना हुआ मंजर आने का समय में, तो उस समय आप चाहेंगे तो इसके रिमोट से इसको आप एज ए पायलट चला सकते हैं, और चला करके आम का जब मंजर है एक एक मंजर पे आप जा करके इसको छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि आसानी से कहीं भी घूम सकता है और घुस सकता है और घुमा सकते हैं आप इसको। पहला फायदा तो ये। दूसरा ये है कि किसान इसको जब इस्तेमाल करते हैं ड्रोन को, ड्रोन छिड़काव करते हैं, तो ये हर एक पत्ते पर छिड़काव करता है, हर एक मंजर पर, हर एक फूल पर छिड़काव करता है, ताकि आपका जो फसल, जो सुरक्षा है, वो काफी हद तक आपका सिक्योर हो सके। इसमें योजना में क्या है कि किसान एक ड्रोन के लिए आवेदन कर सकते हैं उसी पोर्टल पे, और स्वयं किसान भी कर सकते हैं आवेदन और समूह भी कर सकते हैं। कोई अगर समूह है वो आवेदन करना चाह रहा है तो वो भी आवेदन कर सकता है, और स्वयं किसान जो इंडिविजुअल किसान है अकेले वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन करने में थोड़ी सी सावधानी रखी गई सरकार के द्वारा। वो सावधानी क्या है मैं आपको बताते चलूं। आवेदक का उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 18 साल और 50 साल के बीच का आवेदक होना चाहिए, ये पहली नंबर शर्त है। दूसरा शर्त है कि आवेदक मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास से अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकते, वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तीसरी इसमें अच्छी चीज क्या है कि अगर किसी आवेदक के पास कृषि से संबंधित कोई भी डिग्री हो, कृषि विज्ञान से उनका स्नातक हो, कृषि अभियंत्रण से उनका स्नातक हो, या फिर मत्स्यिकी से उनका स्नातक हो, फॉरेस्ट्री से हो, कृषि वानिकी से, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी से, मतलब कृषि विज्ञान के किसी भी संकाय से 4 साल की डिग्री अगर उनके पास है और वो आवेदक हैं, तो उनको 4 लाख के बदले 5 लाख अनुदान दिया जाएगा। और वैसे किसान जो सिर्फ मैट्रिक पास हो या फिर सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हों या इंटर पास हो, उनको 4 लाख अनुदान दिया जाएगा अधिकतम। इसमें पूरे पैसे किसान को पहले स्वयं लगाने होंगे, उसके बाद उनको अनुदान मिलेगा, उनके खाते में जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास डिग्री है एग्रीकल्चर की तो आपको 1 लाख रुपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा एक और इसमें शर्त है कि आरटीपीओज एक डिपार्टमेंट होता है जो कि ड्रोन उड़ाने के पहले आपको ट्रेनिंग देता है। अगर किसी किसान बंधु के पास वो सर्टिफिकेट है तब तो ठीक है, वो ऑनलाइन आवेदन करे, उनको परमिट जैसे ही मिलेगा और वो क्रय कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी किसान बंधु के पास वो सर्टिफिकेट आरटीपीओज की ड्रोन पायलट वाली सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग लेनी होगी, उसमें विभाग भी आपकी सहायता करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। पहले आवेदन करिए, आवेदन करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। तो ये आपका किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर है, इसको आप

0: आप मेला में आइए, आपका स्वागत है, और आकर के आप अपने यंत्रों का क्रय कीजिए, मोल भाव करके क्रय कर सकते हैं। दो बार मेला लगना है। इस बार पहला मेला जो है प्रस्तावित है अपना नवंबर में, नवंबर के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है, और दूसरा मेला जो है जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। यह मेला दो दिवसीय होगा, दो दिवसीय मेला लगाया जाएगा, आपको जानकारी भी दी जाएगी। आप मेला में आकर के केवल यांत्रिकरण ही नहीं, यांत्रिकरण के अलावे उद्यान है, बीज है, पौधा संरक्षण के बहुत सारे चीजें हैं जो कि किसानों को फायदेमंद होते हैं। मित्र कीट कौन है, दुश्मन कीट कौन है, या फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, ये सभी प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी। इसलिए मेरा अनुरोध भी रहेगा, जो किसान भाई हमें सुन रहे हैं वो किसान मेला में अवश्य आइए, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक भी आते हैं, उनको ही बुलाया जाता है, बैंक वालों को ही बुलाया जाता है, किसी किसान को अगर लोन की समस्या होती है अपनी बातों को वहां रख सकते हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा समागम होता है किसानों का, हम पदाधिकारियों का, और बैंक के लोगों का, और कृषि के हर संकाय के लोगों का। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे यहाँ के वैज्ञानिक महोदय लोग भी आते हैं, वो भी अपनी जानकारी आपको देते हैं। इसलिए मेला में शिरकत कीजिए, मेला में आना चाहिए। एक कहावत है, या तो खूब पढ़िए, और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो खूब घूमिए। अगर पढ़िएगा खूब तो बुद्धि होगी, जानकारी होगी, ज्ञान बढ़ेगा। नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो घूमिए, घूमने से भी बुद्धि बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, जानकारी होती है कि किस देश में गए थे, किस प्रदेश में गए थे, वहां कैसा देखा था, यहां कैसा देखा, फिर आपका दिमाग खुलता है, तुलनात्मक गतिविधियां चलने लगती है दिमाग में। इसलिए मेला में आइए, मेला में घूमिए, देखिए कि क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, तो उसका आपको फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये हम लोगों ने आज यांत्रिकरण का जो छोटा सा था इंट्रोडक्शन, वो मैंने दिया है। प्रयास करता हूँ कि सभी किसान जो है इसका लाभ उठाएंगे।
1: सर, एक सवाल ये है कि अगर किन्हीं के पिता के नाम पर जमीन है
0: जी,
1: तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं?
0: हाँ, ये एक्चुअली बताना रह भी गया था। अगर कोई किसान ऐसे हैं, जैसे बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर म्यूटेशन जल्दी नहीं होता है, या होता भी है तो काफी समय लग जाता है, तो इसको भी ध्यान में रख करके सरकार ने एक नीति बनाई है कि किसी किसान को यंत्र का फायदा लेना है और उस यंत्र में 20,000 से ज्यादा अनुदान है, तब तो कागज लगेगा ही लगेगा, जमीन का रसीद या LPC जो कह लीजिए, दो में से कोई एक चीज। तो अगर उसके फादर के नाम पे या उसके और भी ऊपर के पूर्वज जो हैं, दादा परदादा के नाम पे जमीन है और म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो वैसे केस में वो किसान अप्लाई कर दें, जो जमीन की रसीद है वही लगा दें, और लगाने के बाद एक वंशावली जरूर लगा दें। वो वंशावली कम से कम पंचायती राज विभाग के द्वारा निर्गत हो, जो पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्गत हो और उनके द्वारा अनुमोदन किया हुआ हो। अगर वो वंशावली भी लगा देते हैं जमीन के कागज के साथ, तो हम मान लेते हैं कि हाँ, जमीन उनके नाम से भी है।
1: जी सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, आज जिन योजनाओं के बारे में आपने जाना और इन योजनाओं से जो भी आपको लाभ मिलते हैं उनका लाभ उठाइए, और जैसे कि सर ने कहा कि अभी बहुत सारे आवेदन आने बाकी हैं, तो आप आवेदन कीजिए और हो सकता है कि आपको उससे लाभ मिले और फायदा आपको ही होगा, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपकी लागत भी कम होगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।

0: ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद।
6: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
7: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
6: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
7: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
6: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
7: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
6: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हाँ, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
8: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
9: जी
8: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
9: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
11: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
9: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान

10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखे कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दे टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों आदाब, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर चमनारा खां NCERT नई दिल्ली। आज हम आपको आपकी 8वीं जमात की किताब अपनी जबान से का दूसरा सबक एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। ये मजेदार कहानी को लिखने वाले मिर्जा फरतुल्ला बेग हैं। पहले मैं मिर्जा फरतुल्ला बेग के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि मिर्जा फरतुल्ला बेग 1883 में दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी इन्होंने मदरसे से हासिल की, हिंदू कॉलेज से बीए पास किया। फिर ये हैदराबाद चले गए, उन्होंने कई नौकरियां हासिल की। उसके बाद उन्होंने हर मौजू पर कलम उठाया, अफसाने भी लिखे, समान हयात लिखी, तनकीद लिखी, अखलाकी मौजूआत पर भी लिखा। लेकिन इनके मजाहिया मजामीन जो है बेहद मकबूल हैं। इन मजामीन में जो है मजामीन फरद के नाम से शाया हुए हैं। उनका इंतकाल 1947 में हुआ। उनकी लतीफ़ा पसंद तबीयत जो थी और बयान की रंगीनी की वजह से मजमून के बीच में वो वाक़यात इस तरह से लेकर आते हैं कि वो पुरलुत्फ हो जाते हैं। इसके अलावा जो मफहूम को वाजे करने में जो वो के जो ये वाक़यात बताते हैं जो लुत्फ से भरपूर होते हैं उसको वाजे करने में वो खासी मदद देते हैं। उनकी तहरीरों में दिल्ली की जबान, जो दिल्ली की जबान है और मुहावरों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उनके उसलूब में रवानी है और इनका जो स्टाइल है, इनका लिखने का जो अंदाज है वो रवा दवा है। अल्फाज बड़े खूबसूरत उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और ख्याल का गहरा तालमेल है जो उसकी उनकी तहरीर की खसूसियत है। अब ये नज्म जो है एक मज़ेदार कहानी, ये भी मज़ेदार है, वाकई मज़ेदार कहानी है और इसे एक किस्से के तौर पर उन्होंने बयान किया है, जिसे किस्सा बयान करते हैं। तो इससे पहले ये जो कहानी शुरू होती है उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने इस कहानी को थोड़ा एडिट किया था, तो एडिट करने के बाद फिर इस कहानी को यहाँ से शुरू किया था जो इस सबक में है। तो कहानी ये है कि एक औरत है, वो उसका शौहर जो है जब वो जवान ही थी, उसका बच्चा छोटा था, जब ही इंतकाल हो गया था, उसके बाद वो अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से पालती पोसती है, पढ़ाती लिखाती है, फिर बच्चा जो है वो पढ़ लिख कर काम करने लगता है। उसके बाद फिर जब वो जवान हो जाता है फिर वो एक अच्छी बहू लेकर आती है, लेकिन बहू का सलूक जो होता है उसके साथ अच्छा नहीं होता, वो अपनी सास को बहुत परेशान करती है। तो इस तरह से एक दिन वो नाराज़ होकर अपने घर से निकल जाती है, बेटे से भी नाराज़ हो जाती है, अपनी बहू से भी नाराज़ हो जाती है। और उसके बाद जब जंगल में पहुँचती है तो उस मंज़र को फरतुल्ला बेग ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया। मैं ये कहानी पढ़ती हूँ, आप इसको सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। और ये मज़ेदार कहानी जो है वो मौसमों से मुतालिक है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं किन किन मौसम का जिक्र है इसके अंदर और किस तरीके से कहानी को शुरू किया गया है। एक बुढ़िया जंगल बयाबान में, जहाँ ना आदम ना आदमजात, एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आदमजात से पूछे, जो इनका जो उधर गुजर हुआ। तो तीनों ने कहा लो भाई, वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछे। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, गोरी गोरी रंगत, नकले ऐसे कि जैसे अनार का दाना, सफेद लंबी दाढ़ी, मोटा रुई का दगला पहने, खूब ओढ़े लिपटे आए। उनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई। मियाँ जाड़े ने आकर कहा बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहे, मगर बेटा जरा धूप छोड़ कर खड़े रहो, मुझे तुम्हारे आने से कप कपी लग रही है। खैर मियाँ जाड़े जरा हट कर खड़े हुए और कहा बड़ी बी एक बात पूछूं। बड़ी बी ने कहा हाँ बेटा जरूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी भी जाड़ा कैसा। बड़ी भी ने कहा बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है, दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही हैं, लियाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मजे ले लेकर खा रहे हैं। हलवा सोन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, इधर खाया उधर हजम, खून चुल्लुओं बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं। बेटा जाड़ा, जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफ सुन सुन कर फूले न समाते थे। जब बड़ी बी चुपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी खुदा तुमको जिंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो 1000 अशरफी की थैली, खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में मुझसे और आकर ले जाना। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई। रोशन आँखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथों में मूलसरी की लड़ियां जिसमें किरण टकी हुई, हरे डोरे की प्याजी ओढ़नी, गरज बड़े ठस्से से आई और आते ही कहा, नानी जान सलाम। मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी। बड़ी बी ने कहा, बेटा गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। दिन का वक्त है, खसखानों में पड़े हैं, पंखे झले जा रहे हैं, बर्फ की कुल्फियां खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियां हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफेद कपड़े पहने, खस का इतर लग मला सहन में छिड़काव हो गया, घड़ोचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं। रात हुई, कोठों पर पलंग बिछ गए। बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी गर्मी का यह हाल था कि तारीफ सुनती जाती थी और निहाल होती जाती थी। जब बड़ी बी तारीफ करते करते थक कर चुप हो गई तो बी गर्मी ने चुपके से निकाल कर 1000 अशरफी की थैली उनके हाथ में दी और कहा, अम्मा जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख ली। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आऊँ जो लेना हो तो बेखटके ले लिया कीजिए, भला आप जैसे चाहने वाले मुझे मिलते कहाँ हैं। बी गर्मी जरा हटी तो बी बरसात छम छम करती पहुँची। सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आँखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदे इस तरह टपक रही थी जैसे मोती, हाथों में धानी चूड़ियां। गरज उनके आते ही बरखा रुच छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो, होना हो तुम भी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बी बरसात ने कहा, जी हाँ मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिए ही कैसे। मैं छम छम बरस रहा है, बाहों में खम गड़े हैं, झूले पड़े हैं, औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रची है, सुर्ख सुर्ख जोड़े धानी चूड़ियां पहने झूल रही हैं, कुछ झूल रही हैं, कुछ झुला रही हैं, मल्हार गाए जा रहे हैं, ऊदी ऊदी घटाएं आई हुई हैं। बरसात भाई बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी बरसात ने भी 1000 की थैली बड़ी बी की नजर की और रुखसत हुई। शाम हो चली थी, बड़ी बी थैलियां समेट समाट खुशी खुशी घर आ गई, घर में बाहर आ गई। पड़ोस में एक और बुढ़िया रहती थी, उसने बड़ी बी के घर जो ये चहल पहल देखी तो उससे ना रहा गया, पूछा, ये रुपया तुम कहाँ से लाई। बड़ी बी ने कहा, मुझको ये रुपया जाड़े गर्मियों बरसात ने दिया है। पड़ोसन बुढ़िया आफत की पुड़िया थी, एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। खुदा का करना था कि जाड़ा गर्मी बरसात उसी दिन फिर मिले। एक ने दूसरे से पूछा, कहो भाई बुढ़िया ने क्या तस्फे किया। जाड़े ने कहा, भाई वो बुढ़िया गजब की थी, ये नहीं बताया कि तीनों में कौन अच्छा है। सभी की तारीफ करके मुफ्त में 3000 अशरफियां मार ली। गरज तीनों जले भुने आगे बढ़े, देखा कि एक बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाड़े पहुंचे, उनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थरथर कांपने लगी। जाड़े ने कहा, बड़ी भी सलाम, मिजाज तो अच्छा है। बुढ़िया बोली, चल बुढ़े परे हट, बड़ी भी होगी तेरी माँ, अब जाता है नहीं। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी भी मैं जाड़ा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ। बड़ी भी ने कहा, इस बुढ़ापे में भी आप अपनी तारीफ चाहते हैं, लो अपनी तारीफ सुनो। आप आए, उसको फालिज हुआ, उसको लखवा हुआ, हाथ पाँव फटे जा रहा है, नाक सोर सोर बह रही है, दांत है कि कड़कड़ बज रहे हैं, कपड़े इधर पहने उधर मैले हुए, लिहाफ जरा खुला और हवा सर से घुसी, बिछोने बर्फ हो रहे हैं, तौबा तौबा, आग की भी तो गर्मी जाती रहती है। लीजिए अपनी तारीफ सुनी या कुछ और सुनाऊं। जाड़ा जला हुआ तो पहले ही सता। अब जो बुढ़िया की जली कटी बातें सुनी तो जल कर कोयला हो गया। अपनी ठोड़ी पकड़ कर डाली की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। चलते चलते दो तीन ठोकरे रसीद की। जरा फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी। उनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया करा लाओ, हम तो हार गए। पी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा मैं हूँ गर्मी, तुमसे ये पूछने आई हूँ कि गर्मी कैसी। ये सुना था कि बुढ़िया के तो आग ही लग गई। गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह पसीना बह रहा है, कपड़ों से बू आ रही है, सुबह को कपड़े बदले शाम तक चिक्कट हो गए, खाना खाया किसी तरह हजम नहीं होता, सीने पर रखा हुआ है, सुबह हुई और लू चलनी शुरू हुई, उसको लू लगी, उसको हैजा हुआ, मुंह झुलसा जाता है, होंठों पर पपड़ी जमी हुई है, पानी पीते पीते जी बेजार हो जाता है, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है, चल दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुकत सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी। बी गर्मी तो आग बगुला हो गई। कहा, ठहर बुढ़िया, तुझे इस बदज़बानी का मजा चखाती हूँ, मुझे तू क्या समझती है। ये कहकर जो फूंक मारी तो ऐसा मालूम हुआ कि लू लग गई। बुढ़िया तो हाय गर्मी करती रही। बी गर्मी पीठ पर एक दो हत्तर मार कर चलती बनी। जब उनको भी रूखी सूरत बनाए आते देखा तो बी बरसात दिल में बहुत खुश हुई, समझी कि चलो मैंने पाला मार लिया। बड़ी मटकाती बुढ़िया के पास गई और कहा, मैं बरसात हूँ, अच्छा बताओ तो बरसात कैसी। बुढ़िया ने कहा, बरसात से खुदा बचाए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा हिला जाता है, दम दम की आवाजें आ रही हैं, जरा पांव बाहर रखा और छींटे सर से ऊपर हो गए, जरा तेज चले और जूतियां कीचड़ में फंस कर रह गई, रात को मच्छर है कि सताए जा रहा है, न रात को नींद न दिन को चैन, और फिर इस पर भी ये सवाल कि नानी जान मैं कैसी हूँ। नानी जान से तारीफ सुन ली, अब तो दिल ठंडा हो गया। ए है ये बेमौसम की गर्मी कैसी, खुदा खैर करे। बुढ़िया ये कह रही थी कि बी बरसात की निगाह बिजली बनकर गिरी और बड़ी बी के पांव को चाटती हुई निकल गई और बी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा कहकर मुंह पर तुक्कर रुखसत हुई। बात यह है कि अल्लाह शकर खोरे को शकर ही देता है। जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं और मुए रोनी सूरत तो हमेशा जूतियाँ खाते हैं। तो ये बच्चों कहानी सुनी, मजा आया होगा कहानी में आपको, इसी तरह से इसी लहजे में पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब इसमें कहानी में कुछ मुश्किल लफ्ज आए हैं, पहले हम मुश्किल लफ्जों के माने जो हैं वो जान लेते हैं। बयाबान कहते हैं जंगल को, आदम ना आदमजात जहाँ किसी इंसान या जानदार का नामो निशान ना हो। कहते हैं ना एक बुढ़िया के जहाँ पर जंगल बयाबान में आदम ना आदमजात, तो आदम ना आदमजात जहाँ किसी इंसान या जानदार का नाम निशान ना हो। सलाह मशवरा राय, किले दरख की वो कोपल जो कली की तरह फूटती है, दगला रुईदार लिबादा सर्दी का एक लिबास, सुभान अल्लाह पाक जात अल्लाह की शुक्र गुजारी के लिए के इजहार के लिए कहा जाता है, महावट जाड़े की बारिश, मलीदा इसको मालीदा भी बोलते हैं बहुत जगहों पर, नमक गुड़ शकर और रोटी को खूब मलकर तैयार की जाने वाली एक गजा, कंठा फूलों का हार, मोटे मोटे मोतियों की माला, खस एक किस्म की घास, घड़ोची घड़े रखने का स्टैंड जो गुलमूम लकड़ी का होता है, निहाल होना ये मुहावरा है, बहुत खुश होना सरशार होना, आफत की पुड़िया बहुत ज्यादा तेज चाला, आग बगुला होना ये भी मुहावरा है, बहुत गुस्से में होना, कलेजा दहलना ये भी मुहावरा है, बहुत ज्यादा खौफ खाना। तो ये लफ्ज के माने आपको समझ में आ गए और कहानी तो जो है वो समझ में आ ही गई होगी कि किस तरह से एक बुढ़िया अपने घर, जैसे मैंने बताया था कि वो जंगल बयाबान में चली गई थी, वहाँ पे ना कोई आदमी, ना कोई आदम, ना आदम, ना कोई इंसान, ना कोई जानदार था, और उसके बाद वो वहाँ बैठी रो रही थी। तो इतने में जाड़ा गर्मी और बरसात जो है वो उनमें आपस में जो है ये चल रहा था कि कौन अच्छा, तो वो कहते हैं कि हम इसका तस्फिया करवा लेते हैं। तो चला आज में झगड़ा हो रहा था इनमें, जाड़ा गर्मी और बरसात में। जाड़ा कहता था कि मैं अच्छी गर्मी कहती थी, मैं अच्छी बरसात, हर मौसम अपने आप को अच्छा कह रहा था। तो सलाह हुई चलो किसी आदमजात से पूछ लेते हैं, यानी किसी इंसान से, आदमजात का मतलब होता है इंसान। तो तीनों ने कहा लो भी बुढ़िया बैठी है, इसे पूछ लेते हैं। तो पहले पहुंचता है जाड़े की पूरी, उन्होंने एक बताया है उसकी कि गोरे गोरे रंगत है उसके, कल्ले जैसे अनार का दाना, सफेद लंबी लंबी दाढ़ी, रुई का दगला पहने हुए, खूब ओढ़े लिपटे हुए आते हैं। तो ये उसकी उनके लिबास के बारे में बताया कि जाड़ा। तो बड़ी भी जो है, वो जब प्याड़ा आया तो थरथराहट होने लगी। मियाँ जाड़ा ने आके उनको पहले सलाम किया, फिर कहा कि बड़ी भी ने कहा जीते रहिए। तो कहा जरा धूप छोड़कर खड़े हो जाओ, मुझे बहुत कपकपी लग रही है। तो वो थोड़ा दूर होके खड़े हो गए और फिर उन्होंने कहा कि एक बात आपसे पूछूं। तो बड़ी भी ने कहा हाँ जरूर पूछो। कहा कि जाड़ा कैसा। तो बड़ी भी ने फिर जाड़े की जो है ना खूबियाँ बयान करनी शुरू कर दी कि दालानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियाँ सुलग रही हैं, आप लोगों ने जब जाड़े का मौसम आता है तो ये सब कुछ होता है, लिहाफों में दुबके पड़े रहते हैं, जब बहुत ठंड होती है चाय बन रही है खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं, फिर गर्म गर्म चीज़ें मेवे ये सब खाते हैं, रस की खीर भी खाई जाती है, बाजरे का मलीदा, बाजरा मक्का की रोटी भी जो है वो खाई जाती है और मलीदा भी बनता है। तो मलीदा तो मैंने बताए थे आपको कि गुड़ चीनी और ये जो है देसी घी मिलाकर बाजरे की रोटी पका कर उसको तोड़ के जो है वो बनाया जाता है। तो वो कहती है कि बाजरे इस दिनों में जो है ना वो खून चुल्लुओं बढ़ जाता है, तो बहुत खून बढ़ जाता है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं, बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो मियाँ जाड़े अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, फूले नहीं समाते। और जब बड़ी भी चुपकी हुई, चुपकी जो है ना, चुपकी का मतलब यानी खामोश होती है, चुपकी दिल्ली में बहुत बोला जाता है, दिल्ली वाले बहुत बोलते हैं चुपकी, चुपकी हुई क्योंकि मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग दिल्ली के थे तो उन्होंने ज़्यादातर दिल्ली की ज़बान का जो है इस्तेमाल किया है। बड़ी भी चुपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी भी खुदा तुमको ज़िंदा रखे, मेरा दिल तुमने खुश कर दिया, ये लो 1000 अशरफियाँ उसको की थैली देता है, बढ़िया खर्च हो जाए तो अगले जाड़े में मुझसे और आगे ले जाना। मियाँ जाड़े हटे तो गर्मी आ गई, गर्मी ने कहा कि मैं उनकी गर्मी की जो वो बताया है कि रोशन आँखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथ में मुलसरी की लड़ियाँ, जिसमें किरण किरण टकी हुई, हरे डोरी की प्याजी उड़नी, ये सब चीज गरज बड़े ठस्से से आई और आते ही सलाम किया। ये गर्मी के उन्होंने बताया कि कैसा लिबास पहनी हुई थी और कैसी उसका हुलिया था गर्मी का। नानी जान सलाम आके सलाम करती है, मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी। तो बड़ी भी फिर वो गर्मी की भी बहुत तारीफ़ें करती हैं, कहती हैं खसखानों में पड़े हैं, पंखे जले जा रहे हैं, बर्फ़ की कुल्फियाँ खाई जाती हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियाँ हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं, शाम को उठे नहाए धोए सफ़ेद कपड़े पहने, खसका इतरमला सैन में छिड़काव हो गया, घड़ोचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हुए, उस ज़माने में घड़ोची और ये मटके हुआ करते थे, तो वो उसको भी इन्होंने इसमें लिखा है, रात हुई कोठों पर पलंग भिज गए और लोग छतों पे सोया करते थे, बेटा गर्मी का क्या कहना है, सुभान अल्लाह। तो इस तरह से गर्मी जो है वो भी बड़ी खुश होती है अपनी तारीफ सुनकर, वो भी उनको 1000 की अशरफी देकर चली जाती है और कहती है मैं हर साल आती हूँ, जब लेना चाहे बेखट के ले लिया कीजिए, आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ, चाहने वाले लोग भी। गर्मी इतनी है तो बरसात आ जाती है, बरसात को लिखा है बरसात खानम, छम छम करती हुई आती हैं। तो उनकी भी जो उनका हुलिया बयान किया है फरतुल्ला बेग ने, वो सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती। तो उससे पूरे मंजर से पता चल जाता है कि ये बरसात है। हाथों में धानी चिड़ियाँ, गरज इनके आती बरखा रुच छा गई, उन्होंने बढ़कर कहा मजान सलाम। बड़ी भी ने कहा बेटी खुश रहो। तो वो भी पूछती है कि मैं पूछने आई हूँ मैं कैसी हूँ। बड़ी भी का बड़ी भी उसको भी कहती है कि भाई बहुत बरसात तो बहुत अच्छी होती है, अगर ना हो तो हम लोग जिए ही कैसे, पानी बरस रहा है छम छम और झूले पड़े हैं, और औरतें हाथों में मेहंदी रची है, सुरसुख जोड़े पहनी हैं, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, झूले झूल रही हैं, तो मल्हार गाए जा रहे हैं, उदी उदी घटाएँ आ रही हैं, बरसात भाई बरसात का क्या कहना। तो बरसात भी बड़ी खुश होती है और वो भी खुश होकर 1000 की थैली बड़ी भी को दे देती है। तो इस तरह बड़ी की बात 3000 की तीन थैलियाँ आ जाती हैं पड़ोस में। अब जब वो घर पे वापस आती है, क्योंकि तो रूठ के जाती है अपने घर से, जब घर वापस आती है तो खुशी खुशी घर आती है और घर में उनके बाहर आ जाती है। बाहर क्या मतलब, यानी वो घर वाले बड़े खुश हो जाते हैं, बेटा और बहू। पड़ोस में एक और बुढ़िया रहती थी, बड़ी भी की चहल पहल देखी तो सराहने गया, उसने पूछा ये तुम कहाँ चलाई रुपया। तो बड़ी भी ने कहा मुझको ये रुपया जाड़े गर्मी बरसात ने दिया है। पड़ोसन भी, ये बुढ़िया जो थी ना ये बड़ी बताते हैं बहुत चालाक थी, और एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर वो भी जंगल में जा बैठी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जाड़ा गर्मी बरसात उसी दिन फिर मिले। एक ने दूसरे से पूछा कहो भाई, क्योंकि बुढ़िया ने तस्वीर तो नहीं किया था, तीनों को अच्छा कह दिया, तस्फिया क्या होता है? फैसला होता है, यानी ये फैसला करना क्या सच है क्या झूठ है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो तस्फिया तो उसने किया नहीं है, बल्कि सबकी तारीफें कर दी, और तारीफें जब की तो एक हज़ार की 3 अशरफियाँ मिल गई। तो जाड़ा ने कहा, भाई वो बुढ़िया गजब की थी। जाड़ा कहता है, सभी की तारीफें करके वो इतने सारा जो है वो 3,000 अशरफियाँ उसने मार ली। तो कहते हैं, अब क्या करें, तीनों जलने भूलने लगते हैं कि ये तो बहुत गलत हुआ, हमने तारीफें करी और हमने जो है ना उसको इतने पैसे दे दिए। तो कहते हैं, चलो अब क्या करें। तो देखा है कि बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाड़े पहुँचे, उनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थर थर काँपने लगी। वो वैसे ही बताया था मैंने, बहुत जो इसमें लिखा है ना आफत की पुड़िया लिखा है उसको, बुढ़िया को मतलब उससे वो बुला दिया, बुढ़िया आफत की पुड़िया। इस तरह से इन्होंने एक जबान में एक लताफत पैदा कर दी, बुढ़िया आफत की पुड़िया, यानी बुढ़िया और पुड़िया का वो बना दिया, क्या कहते हैं, खाफिया मिला दिया इसमें। जाड़े ने कहा कि मैं मिजाज तो अच्छा है, बुढ़िया बुढ़ी चल, वो कहते हैं ना बड़ी भी सलाम कहता है वो, तो बुढ़िया जल जाती है और कहती है, बुढ़े बड़ी भी होगी तेरी माँ, अब जाता है नहीं, बड़ी भी जा रहा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ। तो बड़ी भी जो है ना वो उसकी तारीफ में क्या कहती है कि आप आते हैं तो किसी को फालिज होता है, किसी को लकवा होता है, किसी का हाथ पाँव फटे जा रहे हैं, सर्दियों में सब होता ही है, सुड़ नाक बह रही है, दाँत हैं कि सर्दी की वजह से बज रहे हैं, कड़कड़ कपड़े इधर पहने उधर मैले हुए, लिहाफ जरा खुला और एकदम जरा सा, आपने देखा होगा लिहाफ हल्का सा खुलता, बहुत ठंड होती है ना तो एकदम हवा सर से घुसती है, बिछौने बर्फ हो रहा है, तौबा तौबा। और ये भी कहती है, आग तो ऐसा लगती नहीं कि इसके अंदर गर्मी है, इतनी ठंड होती है तो आग की गर्मी भी चली जाती है। और सुनाऊं आपकी तारीफ? तो बजाड़ा तो जला हुआ था पहले जी, क्योंकि जो पहली बुढ़िया थी उसने तो तारीफ कर करके हजार हजार की अशरफियाँ तीनों से ले ली थी। तो उसने फिर क्या किया, जो बुढ़िया की जली कटी सुनी तो जलकर कोयला हो गया, अपनी ठोड़ी की डाढ़ी को जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया, तेज हवा चला दी, चलते चलते 2-3 ठोकरें और मार दी। फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी, उनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्फिया करा लाओ, हम तो हार गए। अब भी गर्मी आई तो उन्होंने भी कहा कि मैं कैसी हूँ अभी नानी अम्मा, तो सुनना था बुढ़िया के तो आगे लग गई गर्मी, गर्मी का क्या कहना, पसीना बहता है, कपड़ों से बू आ रही है, कपड़े सुबह को पहनो शाम तक चिक्कट हो जाते हैं, कोई खाना हजम नहीं होता, सुबह ही लू चलनी शुरू हो जाती है, इसको लू लगी उसको लू लगी, हैजा हो जाता है लोगों को, मुंह धुलसा जाता है, होठों पर पपड़ी जम जाती है, पानी पीते पीते जी हमारा जो है बेजार हो जाता है। तो कहते हैं, जितनी तारीफ की जाए तुम्हारी कम है, चलो मेरे सामने चल, दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुखत सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी। अब भी गर्मी भी आप बबूला हो जाती है, गुस्से में हो जाती है, कहती है, अच्छा मैं भी तुझे मजा चकाती हूँ, बदजबानी का, इतनी बदजबान है तो मुझे क्या समझती है, कहकर उसने जब फूंक मारी तो मालूम हुआ कि लू लग गई। बुढ़िया हाय गर्मी करती रही, भी गर्मी पीठ पर 2-1 खत्तर मारकर चलती बनी। अब रूखी सूरत बनाए जो है भी बरसात आती है, वो भी बहुत खुश होती, भी बरसात दिल में बहुत खुशी समझी कि चलो मैंने पाला मार लिया। बड़ी मटकती मटकाती जो है बुढ़िया के पास पहुंची और बरसात से कहा कि मैं बरसात हूँ, अच्छा बताओ तो बरसात कैसी। बुढ़िया ने कहा, बरसात से खुदा बचाए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा हिला जाता है, बिल्कुल उल्टी बातें करी है। जो पहली बुढ़िया थी उसने खूब तारीफ करी थी कि बरसात में ये होता है वो होता है, झूले पर झूले झूलते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, तो इधर कहते हैं धमधम की आवाज़ है, पाँव बाहर रखा, छींटे सर से ऊपर हो गए, जरा तेज चले और जूतियाँ कीचड़ में फंस कर रह गई, रात को मच्छर है कि मच्छर हो जाते हैं इसमें बरसात के मौसम में, रात है कि मच्छर सताए जा रहे हैं, ना रात को नींद ना दिन को चैन और मच्छर। और फिर इस पर भी ये सवाल कि नानी जान मैं कैसी हूँ, नानी जान से तारीफ सुन ली अब तो दिल ठंडा हो गया, ए है ये बेमौसम की गर्मी कैसी। अब क्या हुआ कि बे बरसात ने जो है ना निगाह की निगाह जो थी ना बिजली बनकर उनके पर गिरी और उनके पाँव को काटती विचाटती हुई निकल गई। बरसात बुढ़िया को लंगड़ा करके मुंह पर थुककर रुखसत हो गई। तो इसमें ये कहते हैं कि अल्लाह शकर कोरे को शकर दे ही देता है, मतलब यही कि जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं और जो रोनी सूरत होते हैं वो हमेशा जूते खाते हैं, यानी जो खुश मिजाज लोग हैं जो बद मिजाज लोग हैं उनके बारे में भी और मौसमों के बारे में भी। तो ये नज़्म बड़े अच्छे, ये जो कहानी है बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बहुत ही अच्छी और मज़ेदार कहानी आपको भी लगी होगी। आप इसमें सवाल है, जाड़ा गर्मी और बरसात में आपस में झगड़ा क्यों हुआ? वो ये हुआ कि वो कहते हैं कि मैं अच्छी, बरसात कहती है गर्मी कहती है मैं अच्छी, जाड़ा कहता है मैं अच्छा, तो अपने आप को ये अच्छा साबित करने के लिए झगड़ा हुआ। झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो किसी आदमजात से, किसी इंसान से हम तस्फिया करा ले, फैसला करा ले कि हम में से कौन अच्छा। जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया, वो उसके अंदर है कि आप आए तो कौन सी बड़ी बी, पहली वाली बड़ी बी ने जो बयान किया, तो वो ज्यादातर सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां बयान की, उसकी बुराई ने बयान की। गर्मी के बारे में भी बड़ी बी का जो ख्याल था वो भी यही था कि भे गर्मी में खसके कुल्फियाँ खा रहे हैं और आंगन छतों पे सो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है इन्होंने मुसन्निफ है। बरसात का क्या हुलिया बताया कि सांवली रंगत है, पानी भूरे रंग के बाल हैं, उनमें से बूंदे गिर रही हैं, ये सब चीज़ें उनका हुलिया उसने बताया। बड़ी बी को नज़र में थैलियाँ क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने तारीफ़ की थी, और हर मौसम ने जाड़े ने उसको 1000 थैली दी, गर्मी ने भी और बरसात ने, सबने 3000 अशरफियाँ उसके पास हो जाती हैं। तो पड़ोसन ने जब बड़ी बी के घर में चहल पहल देखी तो क्या असर हुआ, उसके दिल में भी ख्याल पैदा हुआ पूछूं, और एक जो है ना तजस्सुस पैदा हुआ उसमें भी कि इनके घर में इतना जो है चहल पहल, इतनी कैसे हो गई, पैसा आ गया इनके घर में, बस जबान बुढ़िया झाड़े के साथ किस तरह पेश आई। उसने भी उसने झाड़े को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि इधर आए तो इधर लखवा हो गया, ये हो गया, बुढ़िया की कौन सी बातों, बरसात की कौन सी बातों को बुढ़िया ने नापसंद किया, कि उसने फिर यही बताया बुढ़िया को। तो ये आप कहानी जब पढ़ेंगे तो उसमें से इसके जवाब लिखिएगा, और फिर बरसात ने बुढ़िया के साथ क्या सलूक किया इसको भी लिखिए। फिर खाली जगह है तो उन्हीं दोनों जाड़ा गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। बाजरे का मलीदा बनना है, रस की खीर पक रही है, ये खाली जगह है। मियाँ जाड़े अपनी तारीफ सुन सुनकर फूले ना समाते थे, नानी जान खुदा तुम्हारा भला क्या, तुमने मेरी लाज रख ली। नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, जिसमें सलाह है, तस्फिया है, बयाबान है, आदम ना आदमजाद, मल्हार, तो ये सबकी मीनिंग आपको मालूम है, इसके माने आपको मालूम है, आपको उसको लफ्जों में इस्तेमाल करना है। ऐसे ही इसमें वाहिद जमा और जमा से वाहिद बनाने, बच्चे बच्चों, तारीफ तारीफों, अशरफी अशरफियों, कुल्फी, अब इसमें कुल्फियाँ लिखा तो उसके जो वाहिद होगा कुल्फी, चूड़ी चूड़ियाँ, और इसमें घटाया घटाओं, फासला फासलों, इस तरह से और भी लफ्ज हैं, आप इसमें से तलाश कीजिए और उनको लिखिए अपनी कॉपी में। फिर है मुहावरे, उनके मायने, उनको भी जुमलों में इस्तेमाल करना है, तो थर थर कांपना बहुत ज़्यादा, डरना डर जाना, फूले ना समाना बहुत खुश होना, ये मुहावरे हैं, निहाल होना बहुत खुश होना, सरशार होना, जी बेजार होना, उकता जाना, आग बगुला होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ऐसे ही कलेजा दहलना, ये भी मुहावरा है, बहुत ज्यादा खौफ खाना, पाँव चाटना, चापलूसी करना। फिर है वे आप जो है ना एक अमली काम कर सकते हैं बच्चों, इसमें हिंदुस्तानी जो मौसम है हमारे, जाड़ा गर्मी और बरसात, इन तीनों की खूबियों को आप, खूबियां भी लिखिए और खामियां भी लिखिए दोनों। अब इसमें पढ़िए और समझिए, सूरज निकल रहा है, अकबर अभी नाश्ता कर रहा है, ऊपर के जुमलों में खत कशीदा अल्फाज से पता चलता है काम शुरू तो हुआ लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इसे हाले ना तमाम कहते हैं। चांद निकल आया, वो स्कूल जा चुकी है, ऊपर के जुमलों में जो आया है और जा चुकी है, इन अफाल से यानी इन कामों से पता चलता है काम खत्म हो चुका है, इसे इन्हें हाले तमाम कहते हैं, यानी काम तमाम हो गया, काम खत्म हो गया, अब है गौर करने की बात। तो गौर करने की बात ये है कि मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग जो है इस कहानी के मुसन्निफ है, वो उर्दू के मुमताज नसर निगार थे, अपने मखसूस अंदाज में दिल्ली की बोलचाल की जबान को इस खूबसूरती से लिखते हैं कि पढ़ने वालों को मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई सचमुच हमारे सामने बैठा हुआ मजेदार कहानी सुना रहा हो। उन्होंने इस कहानी में जाड़ा गर्मी और बरसात की अच्छाइयों बुराइयों को अपने मखसूस और दिलचस्प अंदाज में बयान किया। हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है इसमें तीन मौसम होते हैं, गर्मी सर्दी और बरसात, इसके अलावा एक और मौसम भी कई मुल्कों में होता है जिसे मौसम बहार कहते हैं। इन मौसमों की अपनी अपनी खूबियाँ और कमियाँ हैं, हर मौसम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फल फूल और सब्जियाँ इंसान के लिए पैदा की। बरसात के मौसम का ख़ास तौर पर किसान बड़ा इस्तेमाल करते हैं, इस मौसम में कई त्यौहार भी होते हैं, बागों में झूले पड़ते हैं, मल्हार और गीत गाए जाते हैं। अपने लफ्जों में इस कहानी को लिखिए और दूसरे जो जाड़ा गर्मी और बरसात है उनकी खूबियों और खामियों को भी लिखिए। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आपको आजकल ये सबक जो है एक मज़ेदार कहानी ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया।
0: साथियों अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका रेडियो स्टेशन जी हाँ एफएम ग्रीन। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इस फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम मृदा कार्ड के महत्व के बारे में जानेंगे। मृदा कार्ड क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे काम करता है, किसान भाइयों के लिए कैसे लाभप्रद है, ये सारी जानकारी आज देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में है डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि मृदा वैज्ञानिक है, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो मैडम, ये मृदा कार्ड क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं।
2: नमस्कार श्रोतागण, मेरे किसान बहनों भाइयों, मैं सोनल, और आज का हमारा टॉपिक है मृदा कार्ड का क्या महत्व है हमारा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं किसान के परिप्रेक्ष्य में। तो पहले हम जानते हैं ये मृदा कार्ड है क्या। ये जो आपको मृदा कार्ड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं, एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी। इस कार्ड का उद्देश्य ही था जिससे किसानों को उनकी मिट्टी की, जो उनकर भूमि है, भूमि की मिट्टी का गुणवत्ता का और उसके पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त हो सके। और ये जो कार्ड है ना, मिट्टी के विभिन्न गुणों पे काम करता है, स्पेशली जो हमारा पूर्णतः मतलब 12 गुण पे ये आपको उसका विश्लेषण करके, जांच करके उस कार्ड पर इसका विवरण दिया रहता है। और ये कार्ड जो आया था, इसको भारत सरकार चलाया था, भारत सरकार की शुरुआत थी ये जो पहल थी भारत सरकार की थी, ये जो मृदा कार्ड हमारा है कि हर किसान के पास अपनी भूमि का, उनकी मिट्टी का एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो। और इस भारत सरकार ने इस योजना का शुरुआत अगर बोला जाए तो कब स्टार्ट किया था, तो ये जो योजना है ना 19 फरवरी 2015 को आपको शुरू की गई थी। राजस्थान का एक सूरतगढ़ जगह है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को। और इस कार्ड का मैंने पहले बताया कि इस कार्ड का क्यों आखिर किया गया, ये कार्ड की किसी किसान को अपनी मिट्टी, भूमि जो है उनकी मिट्टी है, उसकी मृदा स्वास्थ्य क्यों, मृदा स्वास्थ्य जानना क्यों जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य जानेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना उनकी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें पोषक तत्व अगर उपलब्ध है तो कितना उपलब्ध है, और कमी है तो किस लेवल पर कमी है, तभी तो वो अपने कौन सा फसल के लिए लगा सकते हैं, कौन सा फसल लगाना वहाँ सही रहेगा। अगर फसल लगा भी रहे हैं तो उसमें कितना हमें, और जो हम बाहरी जो हम खाद पदार्थ डालते हैं कितना डालना पड़ेगा, तभी तो हम उसका उसका स्वास्थ्य जान पाएंगे, तभी तो उसमें उसका उसका निवारण कर पाएंगे ना। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो हिंदी में बोलते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी।
1: इसके बाद इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में भी थोड़ा बता दें।
2: क्यों हुई कैसे हुई, मैंने अभी जस्ट इसके डिटेल में ही बता दिया था क्यों किया गया था, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो मिट्टी है उसका उसका मिट्टी का गुणवत्ता, उसमें पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकें, उसमें कितने हमारे पोषक तत्व, कितनी पोषक तत्व प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो किस लेवल पर नहीं है, तो कितना हमें बाह्य खाद जो हम ऊपरी लेवल से जो बाहर से डालते हैं खाद पदार्थ कितना हमें डालना पड़ेगा, और डालना पड़े उसके अलावा कौन सा हमें फसल लगाना सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना सही रहेगा, कौन सा मिश्रित खेती के लिए हमारा भूमि सही है, ये सब की जानकारी प्राप्त हमें वहीं से होती है, ये इसके लिए जगह हुआ। और कब हुआ, तो मैंने बताया कि सबसे पहले भारत सरकार का योजना था जो 15 फरवरी 2015 को, सॉरी 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी, कहाँ पर, राजस्थान के सूरतगढ़ में। यही उद्देश्य लेके इनका ऑब्जेक्टिव इस कार्ड का, हेल्थ कार्ड का यही उद्देश्य था, इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत में योजना को लागू किया गया था
1: जी। मृदा कार्ड कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में बताएं।
2: अब हम आते हैं मृदा कार्ड का फायदा क्या है, ये कैसे काम कर, क्या है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अब इसका फायदा क्या है, कैसे काम करता है, उसके जाने। ये मृदा जो कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का है ना, योजना के अंतर्गत जो सरकार है क्या करती है, मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करती है। अब जो मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करना होता है तो जाहिर सी बात इसको सरकार नहीं करेगी, जो हमारा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होता है, जो हमारा मृदा प्रयोगशाला होता है, उसकी मिट्टी के नमूने को वहाँ पर भेजा जाता है, जहाँ पर मिट्टी की गुणवत्ता और उसके पोषक तत्व में की विश्लेषण किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि मिट्टी में गुणवत्ता कितनी है, पोषक तत्व है, अगर है तो कितनी उसमें कमी है तो उस कमी का रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और इस रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों को ना मृदा कार्ड दिया जाता है, जिसमें उनको उनकी भूमि की जो मिट्टी है उसके उपयुक्त उर्वरक, अन्य आवश्यकता की विवरण दी रहती है, मतलब आपने आपने ये समझना है उसमें कि अगर हमने अपनी मिट्टी का नमूने भेजा तो उसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी, पोषक तत्व चेक की जाएगी। इसमें बेसिकली मैं बता रही हूँ बहुत सारे चीज़ें हमें जब हम मिट्टी की गुणवत्ता जांच करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बट इसमें मुख्यतः 12 पैरामीटर्स जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, 12 पैरामीटर्स में 12 मतलब स्पेशली हमें जो 12 होते हैं ना, 12 चीज़ों का ही जानकारी प्राप्त की जाती है। वो क्या क्या है? मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच क्या है, मतलब वो आपको अम्लीय है कि क्षारीय है कि वो दोनों के बीच का है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। मिट्टी का जैविक कार्बन की मात्रा कितना है, मिट्टी में नेत्रजन कितना है, मिट्टी में फॉस्फोरस कितना है, मिट्टी में पोटास कितना है। और जो नेत्रजन, फॉस्फोरस और पोटास है, ये तीनों क्या हमारा है, जिसको मिट्टी का हम बोलते हैं इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहने का मतलब हुआ प्रथम, जो हमारा प्रथम बोलते हैं प्रथम पोषक तत्व, उसकी जानकारी मिलती है। और द्वितीय जो पोषक तत्व जिसमें होता है उसमें होता है सल्फर की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है। उस सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, वो 5 है। जिंक होता है, आयरन तत्व का है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, बोरोन होता है। और इसके अलावा जो हमारे सॉयल सैलिनिटी, जिसको जो हम क्षारता, हमारी मिट्टी में क्षारता कितनी है, जिसको हम ईसी बोलते हैं अपने एक साइंस के टर्म में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी क्षारता की भी जानकारी दी जाती है। तो टोटल जो पैरामीटर्स में 12 पैरामीटर्स पे काम करता है, और इस 12 पैरामीटर्स का मिट्टी के प्रयोगशाला में जांच की जाती है, उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसके बेसिस पे ही किसानों को उस कौन सा उर्वरक का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कौन सा आपको फसल के लिए सही रहेगा, कौन सा फसल चक्र अपनाना है, कौन सा आपको मिश्रित खेती में जाना है, उसका विवरण दिया जाता है और किसान को उसको समझाया जाता है। अब इसके फायदे क्या कर सकते हैं, ये तो फायदे ही मैंने बताया है, क्या क्या हो सकते हैं। फायदे का यही हो सकता है कि आपको सही समझ में, एक अगर आपको ने कार्ड पर्याप्त प्राप्त कर लिया है तो जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि उर्वरक हम सही प्रयोग कैसे करें। किसान अपनी मिट्टी की जाँच के बाद अगर उनको पता चल गया कि हमारी ये है तो उर्वरक का प्रयोग कितना करना है, कैसे करना है, जिससे उनका फसल उत्पादन में और उत्पादकता में सुधार ला सके, ये पहला हमारा फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो सकता है लागत की कमी। बहुत सारे किसान हमारे क्या करते हैं, अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, और जितना मन करता है, सपोज उन्होंने धान की खेती करा तो जितना मन करता है वो जो हमारा एक बोलते हैं ना साइंटिफिक टर्म्स में, वैज्ञानिक तरीके से खेती में एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हर फसल के लिए अलग अलग होता है, वो दिया जाता है। तो किसान अपने सूझबूझ से जो मन करता है जितना मन करता डाल देते हैं, उनको लगता है कि हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा हमारी उपज आएगी, हमारी उत्पादन या उत्पादकता बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है। किसी को जैसे हम मनुष्य हैं, हम भोजन उतना ही ग्रहण करते हैं जितनी हमारी सक्षम है जितना ग्रहण करने में, वैसे भी पौधे हैं वो भी हमारे सजीव हैं, वो भी उतना ही ग्रहण करेंगे जितनी उनको आ सकता है। तो ज़्यादा डालने से भी क्या हो जाता है, आपको क्या है, आपके ही आपकी जो लागत लग रही है वो आपके बढ़ रहे हैं, मतलब कॉस्ट जो बोलते हैं खेती करने में, खेती बाड़ी करने में। लोग आज क्यों खेती बाड़ी में पीछे आ रहे हैं, अरे लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है, उत्पादन उतना होता नहीं, घाटे का सौदा करना पड़ता है। तो ये नहीं होती है, जानकारी के अभाव में हम वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हम, अब हम ना 21st सेंचुरी में हम डिजिटल भारत में जी रहे हैं जहाँ हर चीज़ डिजिटाइज होगी, हर चीज़ें लोगों तक पहुँच रही है, तब हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की अति आवश्यक है। तो आपको लागत में कमी आएगी अगर आपने जान गया कि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उसी के अनुसार आप ना उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जितनी जरूरत उतना ही प्रयोग करोगे, ज़्यादा नहीं करोगे तो लागत में कमी आपकी आएगी, लागत आपका बचेगा। देन पर्यावरण संरक्षण होगा, मृदा कार्ड का, आपकी मृदा कार्ड में सही उर्वरकों का चयन करेंगे तो पर्यावरण पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो पड़ेगी। मिट्टी पानी का संरक्षण होगा, मिट्टी पानी में हमें ज़्यादा जितने पौधे को चाहिए उतने ही डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात वहाँ से जो हमारे उर्वरक है वो बहकर पानी में नहीं जाएंगे, तो मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा हमारा, मिट्टी का भी स्वास्थ्य बना रहेगा हमारा, और हमारा पानी भी संरक्षित रहेगा। फसल की उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जितना मात्रा में हमको उर्वरक डालना है उतना पौधे हमारे जो फसल हैं पोषक तत्व वहाँ से प्रदान किए, अच्छी उपज आ गई, अच्छी हमारी उत्पादकता बढ़ी, वृद्धि भी इससे फायदा होगी हमारी, फसल के उत्पादन उत्पादकता भी बढ़ेगी हमारी।
1: मृदा कार्ड किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
2: अब बात आती है मृदा कार्ड जो हमारे है किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अभी जो मैंने बताया कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, कैसे किसान के लिए उपयोगी हो सकता है, तो जो मृदा कार्ड है सभी प्रकार का फसलों के लिए उपयोगी है। पहली बात ये हमें जानना पड़ेगा कि जैसे मृदा कार्ड हम कर रहे हैं, मृदा कार्ड का प्रयोग कैसे करेंगे हमारे जो किसान हैं, इसका तो उपयोग करने के लिए पहले तो क्या करने का, अगर जिनको किसान को अपने नहीं पता है कि उनको अपने मिट्टी का स्वास्थ्य क्या है कैसे नहीं है, तो उनको पहले तो अपने एरिया में उनको पता करना पड़ेगा वहाँ किसी सेवा केंद्र है या है कि नहीं है, या मिट्टी का जांच घर है कि नहीं, उस मिट्टी जांच घर में क्या करेंगे, अपनी मिट्टी का जो उनको भूमि है, भूमि का मिट्टी है, उस नमूने भेजना पड़ेगा। और वहाँ पर जो भी मैंने पैरामीटर्स का पहले ही अपने प्रश्नों में उत्तर में दिया है वो अंकित है, उस चीज़ का जांच की जाती है, उस जांच के सुझाव दिए जाते हैं, सुझाव में लिखे रहते हैं कि आपको क्या क्या आपके भूमि में किस चीज़ की कमी है, अगर है तो किस मात्रा में अवेलेबल है। जैसे हम कोई चीज़ हमारा जो पैरामीटर्स हम स्टडी करते हैं ना, हम लैब में जब उसका विश्लेषण करते हैं, हम प्रयोगशाला में, उसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं, लो, मीडियम और हाई। जैसे मैंने बोला हमारा जो मृदा प्रथम हमारा प्राथमिक हमारा पोषक तत्व है, जिसका हम बोलते हैं नेत्रजन बोलते हैं, फॉस्फोरस बोलते हैं, पोटास होते हैं, इस सब का एक हमारे साइंटिफिक टर्म से एक लेवल दिया रहता है, जिसको बोलते हैं लो है कि मीडियम है कि हाई है, सारे का ऐसे ही रहता है। ऐसे ही सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, ऐसे ही हमारे द्वितीय पोषक तत्व होता है, पीएच है तो पीएच का भी एक लेवल होता है जो 0 से 14 तक होता है, कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमको मिट्टी का हमको सैलिनिटी टेस्ट करना होता है उसका हम टेस्ट के लिए रहता है, सबका एक ऑर्गेनिक जो हम जैविक कार्बन बोलते हैं उसका भी एक लेवल होता है, लो मीडियम हाई के रेंज में है, उस सारे वहाँ पर क्या होते हैं मेंशन किए रहते हैं, उस मेंशन करने के आधार पर ही कि आपको किस कैटेगरी में आपका मिट्टी का गुणवत्ता और उसमें पोषक तत्व की जो है प्रेजेंट है उपलब्ध है किस कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है, उसके बेसिस पे आपको किसानों को उनको सलाह दी जाती है कि आपके लिए कौन सा वो फसल वहाँ का चयन करना सही रहेगा, फसल चुन रहे हैं और फसल चक्र में तो कौन सा फसल चक्र को अपनाना सही रहेगा, कौन सा आपको मिश्रित खेती के लिए सही रहेगा, या इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो कौन सा इस सब चीज़ के लिए जानकारी सब चीज़ दी जाती है, और किसानों को सलाह दिया जाता है कि आप टाइम टू टाइम आके जो भी आपका जहाँ से आपने कार्ड को प्राप्त किया है वहाँ आप उससे उसके टच में रहें, जो भी आपको सेवा केंद्र दिख रहा है वहाँ पर, अब स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं जो मिट्टी का जांच केंद्र होता है जो हमको बोलते हैं, जो हम किसी के वी के बोलते हैं किसी विज्ञान केंद्र जो हमारा है, वहाँ से अपनी मिट्टी के नमूना का जांच कराइए, वहाँ से अपने देखिए क्या क्या है और टाइम टू टाइम से उनसे सलाह लेते रहिए, अब वैज्ञानिक तरीके से खेत कीजिए और अपने जो भी फसल को जितना चाहिए उतना ही उर्वरक का प्रयोग कीजिए, जिससे कोई चीज़ बह गई पानी वानी में ना जाए, जितने आपको पौधे को जरूरत उतनी पौधा वहाँ से प्रयोग करें, पोषक तत्व उपज अपनी उपज को उत्पादन को उत्पादकता को बढ़ाइए और पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित नहीं हो, हम भी प्रदूषित नहीं होंगे क्योंकि अल्टीमेटली उसका कंज्यूमर कौन है, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसके ये हमारे फायदे हैं। और बहुत सारे उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से हमें लागत में भी कमी आएगी, सब फायदे मैंने पहले ही लिस्ट आउट किया है, ये सारे हमारे इसके फायदे हो सकते हैं
1: जी। अब आगे बढ़ते हैं, जानना चाहिए कि मृदा कार्ड से जो जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं किसान, तो ये जानकारी प्राप्त करने में किसानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
2: हाँ देखिए, बहुत सारे हमारे किसान बंधु हैं, बहनें हैं, उनको बहुत चीज़ों से अवगत हो चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अवगत नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसा जगह भी है ना जहाँ हमारे जिसको हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोलते हैं, जो हमारे अभी भी जंगल में रहते हैं, अपने हमारे प्राकृतिक चीज़ों पर उपलब्ध है, बहुत चीज़ें उनको जानकारी वहाँ पर नहीं पहुँचाई नहीं जा रही है, उस पर तो मैं नहीं कहूँगी उनको, अगर जिसको जहाँ जहाँ अभाव है, अगर उन्होंने मृदा कार्ड का पर्याप्त कहीं से प्राप्त उनको प्राप्त हो गया है, मृदा कार्ड उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे दिए है, फिर भी बहुत सारी चीज़ों को उनको समझ नहीं होती, सूझबूझ नहीं है, चाहे सही से नहीं उनको बातों को बताया पहुँचाया गया है, तो बहुत चीज़ों को दिक्कत आ जाती है, वो जैसे हमारे क्या क्या चुनौतियाँ उनको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कुछ हैं कि जैसे जानकारी की पहुँच है, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं ना जो हमारे किसान हैं उनका मृदा कार्ड की जानकारी प्राप्त करने की बहुत कठिनाई आती है, वो जैसे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि सेवा की पहुँच बहुत सीमित है, जहाँ हमारे कृषि सेवा है, जहाँ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वो बेचारे हमारे जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे बहुत टेक्निकल स्टाफ से इस पर काम करें, वो वहाँ तक पहुँचने में असक्षम है, वो चाह रहे हैं पूरी अपनी तरह कोशिश है बट अपनी बातों को अपनी चीज़ों को किसान तक नहीं पहुँचा रहे हैं, किसान भी इतने रिमोट एरिया पर रह रहे हैं कि जहाँ तक वो अपने जो हमारे टेक्निकल स्टाफ्स हैं टेक्नीशियन काम करते हैं इसके लिए, जो वैज्ञानिक काम करते हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना उन तक पहुंच पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे एक दूसरे को बोलते हैं ना रीच कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलते हैं, वो आ जाती है, सबसे बड़ी गैप हो जाती है जिसमें जानकारी की पहुँच नहीं हमारी आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, जहाँ लोग अपने जो उनके अंदर जानकारी चाहिए जो प्रश्न उनको रखना है वो प्रश्न नहीं रख पा रहे हैं, जिनको उत्तर देना है वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको जिसको बोल रहे हैं कम्युनिकेशन गैप आ जा रही है। दूसरी हमारी एक तकनीकी जो समझ का होता है अभाव पड़ जाता है, जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आएगी जही से जो तकनीकी हमें समझ लेनी है, जैसे हमको उर्वरक का प्रयोग करना, अगर धान की खेती हम कर रहे हैं, धान की भी वैरायटी होती है, आपने लो लैंड में करा है, मिड लैंड में किया है या हाई लैंड में करा है, कौन से धान की वैरायटी प्रयोग करा है, वो आपने कौन से मौसम में किया है, और तो उसी की उर्वरक की बात करें तो उस उर्वरक कितना उर्वरक हमको प्रयोग करना है, कितना नहीं करना है, और प्रयोग कर लिया था कितने हमारे खाद अवशेष मिट्टी में ऑलरेडी बचे होंगे, जिस खाद का प्रयोग करके हम दूसरी फसल ले सकते हैं, ये सब चीज़ें तकनीकी चीज़ें होती हैं जिसका अभाव में रहता है, जो हमारे किसान तक नहीं पहुँच सकता है। जैसे कुछ किसान हमें जैसे मृदा कार्ड की उनको दी गई है, तकनीकी जानकारी समझने कठिनाई हो सकती है क्योंकि उससे उसके पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे, जैसे मैंने ये सब चीज़ें ये दिक्कत आते हैं तकनीकी समझ की। तीसरी आपकी होती है सूचना का अनुपालन हो सकता है। कुछ किसान को मृदा कार्ड की सिफारिश के अनुसार कृषि तकनीकों को अपने अपनाने में दिक्कत हो सकती, इसलिए होती है। खासकर अगर ये देखा है कि उन्हें पारंपरिक तरीके से उन्होंने खेती करना को ही उन्होंने मान रखा है कि नहीं मुझे पारंपरिक तरीके से खेती करना है, उन्होंने किसान जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसको भी ले लिया है, बट वो चीज़ें बहुत रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हम ऐसे करते हैं ऐसे ही करेंगे हम। जैसे जलवायु में इतना हमारा देख रहे हैं परिवर्तन हो रही है, जलवायु में परिवर्तन होता हमारी मिट्टी बदल रहा है, हमारा पानी बदल रहा है, हमारे में चेंजिंग आ रहे हैं, बहुत चीज़ों में चेंजिंग आ रही है, बदलाव हो रही है, जो सारे चीज़ जलवायु पर डिपेंडेंट है। तो हमें भी अब पारंपरिक तरीके को अपनाते हुए कुछ नए तरीकों को भी अपनाना पड़ेगा। तो जहाँ पर जो लोग रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हम ऐसे ही करते हैं हम ऐसे ही करेंगे, नहीं, जहाँ आपको जिससे फायदे हो रहे हैं ना, जहाँ आपकी फसल के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, तो आपको नई तकनीकों भी अपनाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये जो हमारे बताते हैं सूचना का अनुपालन जरूर करना चाहिए, जो भी हमें जहाँ से सही चीज़ें सीखने को मिले उसको हमको सीखना है। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ये चीज़ें का हमें चुनौतियों का सामना करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप जान रहे थे मृदा कार्ड के बारे में और इसमें पूरी जानकारी आपने प्राप्त की कि किस प्रकार ये आपके लिए उपयोगी है और क्यों महत्वपूर्ण है और किन चुनौतियों का सामना

0: टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
12: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
11: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं

उन्हें बता दे, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुस कर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे, या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखे की छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दे, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित है। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: prší. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं गुणवत्तापूर्ण बीजों के महत्व के बारे में। खेती की शुरुआत ही बीज से होती है, और अगर बीज ही गुणवत्ता युक्त ना हो तो फिर कैसे अच्छी फसलें हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम बीजों को परखें, बीजों को समझें और बीजों के बारे में बहुत सी जानकारी हमारे पास हो। आज बीजों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार सर। आप हैं बीज विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि बीज क्या है और इसका कृषि में क्या महत्व है।
1: आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम। कृषि में बीज का महत्व सबसे, जितने भी हमारे इनपुट किसी इनपुट यूज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनपुट जो है हमारा बीज ही है। बीज जो है का तात्पर्य ये है कि पौधे का वह वैसा भाग जिससे हम एक नया पौधा, स्वस्थ पौधा और हेल्दी पौधा तैयार कर सकते हैं, वो बीज होता है। ये जो परिभाषा हुआ वो हमारा बीज प्रौद्योगिकी के अनुसार हुआ। और वानस्पतिक रूप से बीज जो है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं, या निषेचित भ्रूण रहता है। और बीज जो है चूंकि सूक्ष्म अवस्था में रहता है तो वो एक मिनिएचर प्लांट भी हम उसको बोलते हैं, सूक्ष्म पौधा भी उसको माना जाता है। और जहां तक इसके महत्व की बात है, यदि हम गुणवत्ता युक्त बीज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा उत्पादन जो है ऐसे ही 20-25% कम से कम जो है अधिक होगा। तो इसलिए जब भी किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि जब भी आप जो बीज यूज करते हैं अपने खेती के लिए तो उसमें गुणवत्ता युक्त बीज का ही इस्तेमाल करें।
0: सर, गुणवत्ता युक्त यानी कि बीज की गुणवत्ता, इसका मतलब क्या है?
1: हाँ, किसी भी चीज का जब आप बाजार में कुछ खरीदते हैं तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ कुछ गुण के आधार पर खरीदते हैं। तो उसी प्रकार जो है जब भी आप बीज खरीदना चाहते हैं तो बीज में कुछ मूलभूत पैमाना है जिसके आधार पर कि हम बीज की गुणवत्ता को माप सकते हैं। जैसे कि पहला जो पैमाना है वो भौतिक शुद्धता है, जिसको हम फिजिकल प्योरिटी बोलते हैं। दूसरा पैमाना है आनुवांशिक शुद्धता, जिसको जेनेटिक प्योरिटी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा है अंकुरण क्षमता, जिसको जर्मिनेशन परसेंट बोलते हैं। और इसमें जो भी आप बीज खरीद रहे हैं उसमें खरपतवार का के बीज से मुक्त हो, दूसरा फसल का या प्रभेद का बीज नहीं हो, और मॉइस्चर कंटेंट सीड का जो है, क्योंकि हम पैकेट में वो रहता है, सीड पैकिंग किया हुआ रहता है, तो मॉइस्चर भी एक लिमिट तक हो जो है, इसका एक पैमाना अलग से दिया गया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ उसमें किसी भी तरह का अवांछनीय पदार्थ ना हो और वो बीज किसी भी तरह से रोग ग्रसित नहीं हो।
0: सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके अलावा भी जब किसान भाई बहन बीज खरीदने जाते हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती है?
1: जरूर मैडम, जब भी किसान भाई बीज खरीदते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वो खरीद कहाँ से रहे हैं। जिस भी शॉप से वो बीज खरीदना चाहते हैं उस शॉप का लाइसेंस है या नहीं है। दूसरा चीज, वो जो बीज आप पैकेट ले रहे हैं जिस कंपनी का सप्लायर है, तो उसमें आप पैकेट पे जरूर ध्यान दें कि वो कंपनी सप्लायर उसका कौन सा है और उसमें कौन सा प्रभेद का नाम मेंशन किया गया है। साथ ही साथ अभी जो हम गुणवत्ता युक्त बीज का पैमाने के बारे में बताएं, भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता और जर्मिनेशन परसेंट, वो टेबल उसके पैकेट पे वो मेंशन किया रहता है कि उसका वो क्या क्या स्टैंडर्ड के तहत वो मेंशन उसमें है या नहीं है, जो कि इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है, जो कि भारत सरकार द्वारा ये दिया गया था कि बाजार में जो भी बीज बिकेगा इसका कम से कम न्यूनतम जो है एक पैमाना होगा, न्यूनतम स्तर होगा उसके गुणवत्ता का, जिसके आधार पर है बीज में वो बीज है वो बाजार में बिक सकता है। यदि वो बीज जो है उस पैमानों को फुलफिल करता है तभी वो मार्केट में आता है। और इसका जो नियंत्रण है सरकार के नियंत्रण के अधीन है, क्योंकि बीज जो है एक हमारा अति आवश्यक वस्तु के रूप में 1983 में ही इसको जो है आवश्यक वस्तु के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसका गुणवत्ता जो है सरकार के नियंत्रण में रहता है, कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो सरकार जो है उनको ध्यान देती है और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम देख लिए, चेक कर लिए पैकेट पर सब कुछ कि किसी भी तरह का वो ब्रोकन नहीं है या किसी भी जो भी उसमें मूलभूत जानकारी है गुणवत्ता को मेंशन किया हुआ है, तब हमें खरीदते समय जो है दुकानदार से जरूर कैश मेमो भी हम रिसीव करें, क्योंकि बिना कैश मेमो के बीज बिक्री जो है वो गैर कानूनी है।
0: सर, बीज के गुणवत्ता को नियंत्रित कैसे किया जाता है?
1: ये जो है एक काफी कई स्टेप्स में ये प्रक्रिया है। पहले तो मैं बता दूं कि बीज जो है वो जिस वैरायटी, जब भी वैरायटी रिलीज होता है या विमोचन होता है, उसके बाद उस वैरायटी का नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तब उसका जब हम नाभिकीय बीज बनाते हैं जो कि विश्वविद्यालय स्तर पर बनता है, कंसर्न वैज्ञानिक जिसने उस प्रभेद को डेवलप किया होता है उसके नियंत्रण में वो जो है उसका न्यूक्लियोसाइड का उत्पादन या नाभिक के बीज का उत्पादन किया जाता है। फिर उस सीड से जो हम लार्ज स्केल पे जो है काफी बृहद पैमाने पे जो उससे पजनक बीज जिसको बीडर सीड कहते हैं, वो भी विश्वविद्यालय द्वारा या कोई ICAR संस्था जिसने उस प्रभेद को विकसित किया उसके द्वारा उत्पादन किया जाता है और उसका पूरा नियंत्रण जो है विश्वविद्यालय की देखरेख में और किया जाता है, जिसमें कि डायरेक्टर सीड एंड फार्म जो है उसे एक निरीक्षण कमेटी के चेयरमैन होते हैं, साथ ही साथ हमारा बीज प्रमाणीकरण संस्था का डायरेक्टर भी उसमें एक मेंबर होते हैं और इसके अलावा बिहार राज्य बीज निगम के मेंबर भी होते हैं और राष्ट्रीय बीज निगम के रीजनल मैनेजर भी उसके मेंबर होते हैं। तो इन लोगों की देखरेख में उसका जो है पूर्ण मॉनिटरिंग किया जाता है। अब उसके बाद आती है, चूंकि विश्वविद्यालय के पास या ICAR संस्थाओं के पास इतना प्रचुर मात्रा में ये कह सकते हैं कि उतना हमारे पास जमीन अवेलेबल नहीं होने के कारण जो है हमको, चूंकि हमारा टारगेट ही किसान बहुत बृहद पैमाने पे उस बीज का डिमांड है, तो हमारे पास लिमिटेड लैंड होने के कारण ऐसा व्यवस्था किया गया है कि बीज की गुणवत्ता भी मेंटेन रहे और उसका क्वांटिटी बहुत अधिक क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस भी कर सकें। इसलिए जो है इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो आगे का बीज है, जो हमारा आधार बीज जिसको फाउंडेशन सीड कहते हैं और आधार बीज से हम प्रमाणित बीज जिसको सर्टिफाइड सीड कहते हैं, इन दोनों तरह के प्रकार के सीड का उत्पादन जो है बीज प्रमाणीकरण संस्था के निगरानी में किया जाता है। तो हर एक राज्य में जो है एक बीज प्रमाणीकरण संस्था बनाया गया है। बिहार में भी जो है बीज प्रमाणीकरण संस्था है, जिसको कि पहले बिहार स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी कहते थे, आज के डेट में उसका रीनेम हो चुका है और जिसको बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी कहते हैं।
0: सर, अब आप हमें बीज के किस्मों के बारे में बताइए। OPB होते हैं और हाइब्रिड होते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है?
1: ये जो है पौधों के मूल रूप से यदि OPV की बात करते हैं तो वहां पे हम किसी भी तरह का कंट्रोल परागण या पॉलिनेशन उसमें नहीं करते हैं, वो नेचुरल पॉलिनेशन होता है उस क्रॉप में। और इसका मेंटेनेंस में मतलब यदि पेरेंट की बात करें तो सिंगल पेरेंट से ही ये ड्रॉ होता है और इसके गुणवत्ता नियंत्रण के लिए हमें मुख्य रूप से जो है वहाँ पे आइसोलेशन डिस्टेंस अडॉप्ट करते हैं। जबकि यदि हम हाइब्रिड सीड की बात करते हैं तो वहाँ पे हाइब्रिड सीड या जिसको संकर किस्म बोलते हैं उसको तैयार करने के लिए दो अलग अलग पेरेंट की जरूरत होती है, एक नर एंड मादा पौधा जो कि अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं और दोनों के गुणों को वो कंबाइन करते हुए एक जो F1 तैयार करते हैं दोनों का, जिसको कि हम संकर बीज के रूप में कहते हैं। और यहाँ पे अति महत्वपूर्ण ये है मैडम, ये बताना चाहेंगे कि हाइब्रिड का इस्तेमाल हम एक बार ही कर सकते हैं। यदि हम हाइब्रिड से फिर जो भी उसे सीड आता है यदि हम करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशंस आएंगे, प्लांट यूनिफॉर्म नहीं होंगे, यील्ड भी कम होगा, जबकि OPV के केस में हम उसको जो है रीयूज कर सकते हैं।
0: सर, हमारे किसान भाई बहनों के मन में एक सवाल ये भी होता है कि अगर वो बीज खरीदने जाते हैं तो वो किन कंपनियों का ध्यान रखें, तो बीज उत्पादन कंपनी मुख्यतः कौन कौन से हैं?
1: राष्ट्रीय स्तर पे जो बीज कंपनी है सरकार का जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है उसको राष्ट्रीय बीज निगम है और हर एक राज्य में स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, जैसे बिहार में बिहार BRBN कहते हैं कि बिहार राज्य बीज निगम कंपनी है। और इसके साथ साथ आज के समय में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी बिहार में मौजूद हैं, जैसे कि बायर्स हो गया, मॉन्सेंटो हो गया, सिंजेंटा हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा भी भारत में कई सारे जो है राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां, बट वो अब कंपनियां पहले तो राष्ट्रीय स्तर की थे, अब वो अंतर्राष्ट्रीय रूप वो भी कंपनियां ले ली चुकी हैं। कावेरी हो गया, इंडो हाइब्रिड हो गया और यदि लोकल में कहें तो हमारे पास पान सीड का हो गया जिसका कि बिहार में भी अच्छा खासा शेयर है और इसके अलावा राशि हो गया, तो बहुत सारी धानुका कंपनी होगी, बहुत सारी कंपनी ऐसे मौजूद हैं जो कि सभी अलग अलग तरह के क्रॉप के बीज ये लोग जो है बेचते हैं। कुछ के जो है मैक्सिमम, जैसे कि हम यदि धान की बात करें तो बहुत सारी कंपनी आज के समय में हाइब्रिड सीड सेल हो रहा है, यदि हम मक्के की बात करें तो मैक्सिमम कंपनियां जो भी हैं वो मक्के में हाइब्रिड का ही मार्केट बना हुआ है। तो हाइब्रिड के सेक्टर में जो है बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं मुख्यतः।
0: सर अब हमें कुछ कानूनी प्रावधान के बारे में बताइए, तो क्या बीज के क्षेत्र में कुछ मुख्य कानूनी प्रावधान हैं?
1: जैसा कि हमने बताया कि बीज जो है अति महत्वपूर्ण, कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि गुणवत्ता युक्त बीज किसानों को नहीं मिलेगा तो पैदावार पे केवल उस किसान का पैदा, उस खेत का पैदावार कम नहीं होगा, मैं राष्ट्रीय स्तर पे जो है हमें फूड स्कार्सिटी होगा। तो फूड सिक्योरिटी के लिए सीड का अच्छा क्वालिटी के सीड का होना अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने 1966 में ही बीज अधिनियम पारित किया था। और बीज अधिनियम के तहत ये है कि जो भी सीड बाजार में बिकेगा उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड होगा, और वो स्टैंडर्ड जो है उसके पैकेट पे लेबल्ड होगा, लूज में कभी भी सीड सेल नहीं होगा। और उसके नियंत्रण के लिए भी जो है प्रोविजन किया हुआ है उसके सीड एक्ट के सेक्शन 8 में जो है स्टेट सीड कॉरपोरेशन का प्रोविजन दिया हुआ है। तो मतलब और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, मुख्यतः जो है कि बीज के गुणवत्ता को नियंत्रण करते हैं। सीड टेस्टिंग से रिलेटेड भी प्रोविजंस हैं कि टेस्टिंग रिपोर्ट, जैसे कि एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बताना चाहेंगे, जब हर एक चीज़ का एक जो है वैलिडिटी पीरियड होता है, सीड का भी वैलिडिटी पीरियड है। और सीड का वैलिडिटी पीरियड काफ़ी अमपुर, जैसे कि मेडिसिन हो गया या और कोई प्रोडक्ट हो गया, उसका एक्सपायरी पीरियड होता है। तो ये कानूनन रूप से ये प्रोविजन है कि सीड का जो एक्सपायरी पीरियड होगा, डेट ऑफ टेस्ट, जिस दिन उसका बीज परीक्षण हुआ है उसके 9th मंथ तक उसका वैलिडिटी होगा, है ना। तो यहाँ पे भी अब जब भी आप बीज खरीदा जाता है तो ये कानूनी प्रावधान को जाने और इसके अनुसार ही एक्सपायरी सीड को आप ना खरीदें, ठीक है। दूसरा जो प्रोविजंस है सीड से रिलेटेड, चूंकि सीड जो है एसेंशियल कमोडिटी, आवश्यक वस्तु के रूप में जो है 1983 में डिक्लेयर किया गया था अंडर सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। तो उस दिन से जैसे कि ये कमोडिटी, जैसे हमारा बहुत कमोडिटी दवा हो गया, मेडिसिन हो गया, आज के टाइम में राशन का शॉप हो गया, जैसे वो रेगुलेटेड होता है, सेम उसी सेम अप्लीकेबल जो है यहाँ पे भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसको 1955 में ये आया था, वो एक्ट जो है सीड पे भी अप्लीकेबल है। तो इसके अनुसार यदि कोई भी एजेंसी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सीड के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसको कंपल्सरी जो है सीड लाइसेंस लेना पड़ेगा, सीड बिजनेस का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और कंसर्न जिला में जिला किसी पदाधिकारी के यहाँ से इसके संबंध में संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और लीगल प्रोविजन है, जैसे कोई कंपनी के स्तर पे हम कह सकते हैं यदि कोई सीड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो उस केस में प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 जो है वो वर्तमान में लागू है। या कोई कंपनी जैसे सीड भी हमारा जो है कोई एक नया प्रभेद यदि डेवलप करते हैं, वो हमारा बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, है ना। तो इसके लिए भी प्रोविजन किया गया है कि वैसे कंपनी जो कि सीट कोई परवेट डेवलप कर रहे हैं और उनका उसमें इनोवेशंस है तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसके लिए एक प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001।
0: जी सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो कंपनी बनाती है बीज, उनका उत्पादन करती है, तो उन्हें लाइसेंस की जरूरत होती है। तो क्या अगर कोई किसान भाई बहन चाहे या कोई आम आदमी चाहे कि हमें बीज उत्पादन करना है तो वो भी कर सकते हैं?
1: बिल्कुल कर सकते हैं। एक अभी जैसा मैंने बताया कि ये कंपनियां तो सरकारी कंपनी कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी हैं, प्राइवेट कंपनी भी बहुत सारे, मोस्टली जो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में वो एज रजिस्टर्ड हैं कंपनी एक्ट के तहत। बट इसके अलावा भी जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या सीड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यदि सीड कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल फार्मर्स हैं सीड प्रोडक्शन करना, सीड प्रोडक्शन केवल करने की बात नहीं, यदि वो बिजनेस आस्पेक्ट में यदि सीड प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको भी सीड लाइसेंस लेना पड़ेगा। और साथ साथ यदि वो प्रमाणित बीज का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है उनको मतलब आधार बीज का जो है खरीदना पड़ेगा, या आधार बीज आप चाहते हैं कि जो है हम प्लानिंग हमारा बड़ा है, हम काफी ज्यादा क्वांटिटी में सीड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपको पजनक बीज जो है विश्वविद्यालय से मिलेगा। और विश्वविद्यालय से जब आप पजनक बीज खरीदिएगा तो पजनक सीड के साथ में आपको उसमें पैकेट पे एक टैग लगा रहा और कैश मेमो रहेगा। इसके बेसिस पे जो है आपको सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये दोनों कागजात उनके साथ इंक्लोज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये डिटेल अपना जो भी प्रोड्यूसर्स हैं जो भी फार्मर्स हैं उनका अपना पता, नाम पता डिटेल देना पड़ेगा, उनका फील्ड का लोकेशन क्या है खाता खेसर नंबर के साथ में, और किस फसल का कौन सा प्रभेद का किस सीजन में बीज उत्पादन करना चाह रहे हैं, तो वो सब डिटेल के साथ परफॉर्म भर के उनको अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फी जमा करते हुए जो है जब वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे तब सर्टिफिकेशन एजेंसी के इंस्पेक्टर आपके क्रॉप को जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए, फील्ड इंस्पेक्शन के लिए वो आएंगे बीच बीच में, कि मतलब किसी भी तरह से क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में जो भी नॉर्म्स है उससे कोई किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो रहा हो, है ना। तो मुख्य मकसद ये है कि जो है हमारा गुणवत्ता युक्त फील्ड में किसी भी तरह का फैक्टर्स, जैसे कि जो आइसोलेशन डिस्टेंस हुआ, या क्रॉप जो हमारा लगा हुआ लाइन सोइंग लगा है कि नहीं, ऑफ टाइप प्लांट है तो वैसे प्लांट को रिमूव करेंगे, वीट प्लांट है तो इन्फेस्टेड है तो वो रिमूव करेंगे, तो जो चीज़ हम कर सकते हैं वो करेंगे। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इरिवर्सिबल है, जैसे क्रॉस पॉलिनेटेड के परागणित फसलों में यदि हम फ्लावरिंग के समय में ऑफ टाइप प्लांट नहीं रिमूव कर पाए तो वैसे केस में वो फील्ड रिजेक्शन का भी चांस बनता है। क्योंकि हम बताएं कि जब बीज की गुणवत्ता की बात आती है तो अनुवांशिक शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और तो अनुवांशिक शुद्धता में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, ताकि गुणवत्ता युक्त किसानों को हाई जेनेटिक प्योरिटी वाले सीड जो है किसानों को मिल सके। जब ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो जाती है, इंस्पेक्शन की प्रक्रिया हो जाती है, और सभी चीज़ जो है जब सीड इंस्पेक्टर्स जब आते हैं तो वो अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में यदि सेटिस्फैक्ट्री रहता है तब जाके वो सीड जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट पे जाता है प्रोसेसिंग के लिए, और वो भी वैसे प्रोसेसिंग प्लांट जो कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी से वो रजिस्टर्ड हो, वैसे प्रोसेसिंग प्लांट पे वहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के बाद सीड का जो है सैंपलिंग किया जाता है, सैंपलिंग करने के बाद उसको लैब में भेजा जाता है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में, वहाँ पे उनका परीक्षण के दौरान यदि वो जो बीज का पैमाना हमने बताया वो यदि जो है उस पर्टिकुलर फसल के लिए वो है सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है, तो उसके बाद जो है उसका सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उस सर्टिफिकेट के आधार पे जो है उस पर्टिकुलर क्लास का टैग इशू कर दिया जाता है। जैसा कि अभी इसमें हम एक बताना चाहेंगे, यदि वो प्रमाणित बीज है तो प्रमाणित बीज में ब्लू कलर का टैग होता है, और यदि कोई कंपनी हाइब्रिड उत्पादन हाइब्रिड सीड का सेल कर रहा है तो वहाँ पे वो ग्रीन कलर का, नॉर्मली वो लोग सत्यापित बीज के रूप में बेचते हैं, वो सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में नहीं जाते हैं, वो एक अलग तरीका है जिसमें कि वो उनको सीड सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं कराना होता है, एक तरह का सेल्फ सर्टिफिकेशन है, और उसमें टेस्टिंग भी कंपनी खुद करती है, और डिक्लेरेशन यदि किसी भी तरह का उसमें गड़बड़ी होता है तो कंपनी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। जबकि प्रमाणित बीज में, चूंकि ये यहाँ पे एक थर्ड संस्था इन्वॉल्व है हमारा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो इस केस में चूंकि वो यदि हमें सर्टिफिकेट देगा, यदि सर्टिफिकेट पास हुआ है, हमारा लॉट पास हुआ टेस्ट में परीक्षण, बीज परीक्षण में, तभी वो जो है बीज बिक्री में जा सकता है।
0: जी सर। सर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जरूर मैडम। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप बीज लगाएं तो उपचार, बीज को उपचारित करके ही लगाएं, और बिना बीज उपचारण का आपका कई बार जो है बिचड़ा हमारा फेल्योर होने का भी चांस रहता है, तो ये सावधानी आवश्यक रूप से जो है इन चीजों को फॉलो करें।
0: तो किसान भाई बहनों, जो बातें सर ने बताई, आप जब बीज खरीदने जाते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर बीज गुणवत्ता युक्त होंगे और बीजोपचार भी आप कर लेंगे तो न केवल फसल अच्छे होंगे बल्कि लागत भी काफी हद तक कम हो जाती है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: आज के इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारा आज का ये कार्यक्रम आपके लिए काफी उपयोगी होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास। टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी।
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
5: So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और ये महत्वपूर्ण विषय है FPO। जी हाँ, FPO का महत्व क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए, विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। सर हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, सर हैं चेयरमैन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद
0: सर। आपसे सबसे पहला सवाल कि किसान उत्पादक कंपनी यानी कि FPO का क्या महत्व है और इसकी आवश्यकता क्यों है?
12: बिल्कुल, तो पहले मैं थोड़ा FPO को समझाना चाहूँगा। आजकल ये टर्म बहुत यूज होता है FPO, कभी कभी FPC वर्ड भी यूज होता है। तो FPO और FPC में क्या अंतर है, ये भी मैं बताना चाहूँगा। पहले FPO क्या है कि आप जानते होंगे कि हमारे भारत देश में जो 80-85% जो किसान है वो छोटी जोत वाले किसान हैं, जो जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो ऐसे किसान को बहुत मुश्किल होता है कि वो कम लागत में अपना लागत कम कर सकें, या फिर अपना जो भी उसका फसल है उसको अच्छे दाम पे बेच सकें। तो ऐसे यही सबको हेल्प करने के लिए, यही सबको को मदद करने के लिए FPO का कंसेप्ट आया है। FPO का कंसेप्ट, तो FPO ये बोलता है कि एक संगठन है, ये कृषक का संगठन है जिससे कि कृषि किसान जुड़ सकते हैं उसमें, और किसान को अनेक तरह के फ़ायदा हो सकता है किसान को, जैसे कि उनकी लागत कम हो सकती है, क्योंकि सारा जो FPO होता है वो सारे किसान के लिए अपने से वो इनपुट खरीदता है, तो उसमें उसको कम दाम में ज़्यादा अच्छा बार्गेनिंग पावर मिलता है, कम दाम में वो मुहैया करवाता है, एक छोटे से किसान को कम दाम में वो मुहैया करवा सकता है। इसके अलावा वो जो मान लीजिए उसका कुछ भी सामान है, मान लीजिए आम का ही FPO है, तो आम को वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। एक छोटा किसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको एक्सपोर्ट कर पाए, दूसरे देश में भेज पाए, लेकिन FPO के माध्यम से वो उसको अच्छा दाम मिल सकता है उसका, क्योंकि वो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो FPO का फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और FPC का फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। बस इसमें, इस दोनों में ये अंतर है कि दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग होता है। FPO का रजिस्ट्रेशन जो है वो जनरली हम कंपनीज एक्ट के थ्रू करते हैं, और FPC का जो है वो हम कंपनीज एक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर कोऑपरेटिव के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यही दोनों बस टर्म में अंतर है, बाकी एक ही चीज़ है।
0: यस सर, तो अब बात करते हैं कि FPO कैसे बनाया जाता है और उसमें कितने किसानों की ज़रूरत होती है।
12: बिल्कुल, तो FPO बनाने के लिए अगर आप वो समतल जमीन वाला क्षेत्र ले लें, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें आपको एक FPO बनाने के लिए कम से कम 300 किसान का मेंबरशिप चाहिए, और अगर कोई हिली एरियाज है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे 100 किसान आपको मेंबर में चाहिए। तो ये जो 300 किसान हैं, ये आपको हर आदमी जो है इसमें किसान होना चाहिए। इसके पहले FPO बनाने के पहले आपको कम से कम 15 आदमी का एक संगठन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अलग अलग जिम्मेदारी उनको देनी होती है। तो 15 आदमी का पहले संगठन बनाइए, उसके बाद आप कम से कम 300 किसान को जोड़िए अपने साथ। अगर आप जोड़ लेंगे ये 300 किसान को, तो आप FPO को उसको रजिस्टर कर सकते हैं, उसको पंजीकरण कर सकते हैं।
0: तो क्या सरकार भी कोई आर्थिक सहायता देती है एफपीओ बनाने के लिए?
12: बिल्कुल, तो सरकार का अभी बहुत अच्छा योजना चल रहा था 2020 साल से, जो 2025 में ख़त्म हुआ। इसमें सरकार कर रही थी कि हम 10,000 एफपीओ बनाने के लिए प्रोत्साहन कर रही थी सरकार, 10,000 एफपीओ बनाने के लिए। तो जो 10,000वां एफपीओ था वो पिछले साल ही फरवरी के महीने में हमारे ही बिहार के खगड़िया जिले में वो एफपीओ खुला, जिसे प्रधानमंत्री जब आए थे भागलपुर तो उन्होंने ये हमें संदेश दिया था कि वो आज ही वो एफपीओ खुल रहा है। तो सरकार इसके लिए बहुत सारा प्रोत्साहन दे रही थी, जैसे कि सरकार उसको ऋण दे रही थी, 2 करोड़ तक का ऋण जो है उसको मिल सकता था एफपीओ को। इसके अलावा सरकार इसको इसको चलाने के लिए करीब इसको चलाने के लिए पहला 3 साल का खर्च जो है ये वहन करती है सरकार। तो ये सब योजना चल रही थी, लेकिन अभी भी जो अगर नाबार्ड है और एफएसएफएसी है उसके माध्यम से अभी भी ये योजना का लाभ ले सकते हैं लोग। तो किसान भाई बहन को आगे बढ़ के बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा लेना चाहिए, नाबार्ड से बात करना चाहिए ताकि वो एफपीओ खोल सकें।
0: सर, जब सरकार इतनी सहायता दे रही है तो ऐसे में सरकार का कोई ना कोई लक्ष्य होगा और उनका एक अपना बजट भी होगा एफपीओ से रिलेटेड, तो क्या योजना है और क्या बजट है सरकार का?
12: बिल्कुल, तो 10,000 एफपीओ को खोलने के लिए सरकार का बजट 6,500 करोड़ रुपया था। तो सरकार एफपीओ के माध्यम से ये दर्शाना चाह रही है और ये दिखाना चाह रही है कि किसान जो हमारे छोटे जोत वाले किसान जो है, इनको बहुत सारी समस्या है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, अच्छा दाम नहीं मिल पाता इनको, और बहुत सारा फसल जो आप देखते हैं जो हमारे साइड होता है वो साउथ में नहीं होता है, जो साउथ में होता है वो हमारे नॉर्थ में नहीं होता है। तो अगर कंपनी के माध्यम से, अगर कोई किसान कंपनी के माध्यम से अपना किसानी करेगा तो उससे अच्छा आमदनी भी उसकी अच्छी होगी, उसका इनकम भी बढ़ेगा, उसका उसका मार्केटिंग ज़्यादा रीच भी बढ़ेगा उसका। इसलिए सरकार का योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ अगर भारत में खुलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से विपणन हो सकेगा, मार्केटिंग हो सकेगा और अच्छे दाम भी मिल पाएंगे। तो सरकार का मेनली मकसद यही है। 2025 तक सरकार का मकसद था कि 10,000 एफपीओ खुल जाए, जो खुल गया है, लेकिन इसके बाद भी सरकार अभी और भी मदद कर रही है। सरकार को लग रहा है कि एफपीओ तो खुल गया लेकिन उसको कैसे अच्छा संचालन किया जाए, उसका कैसे, उसको क्या, उसको दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, तो सरकार इसके तहत भी काम कर रही है अभी।
0: तो सर, एफपीओ से किसानों को क्या क्या लाभ होते हैं?
12: हाँ, तो मैं एक उदाहरण से आपको ये बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए भागलपुर में जो है, यहाँ पे बहुत सारा आपका फसल है जो कि भागलपुर में अच्छा होता है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे मक्का अच्छा होता है, यहाँ पे मशरूम, अभी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मशरूम करते हैं, बहुत सारे किसान भागलपुर और बांका जिला में। इसके अलावा भी यहाँ पे आप देखेंगे केला का हमारे यहाँ अच्छा पैदावार होता है। तो मान लीजिए एक किसान है जो बहुत छोटा सा किसान है और उसके पास सिर्फ 1 बीघा या 2 बीघा ज़मीन में वो करता है, तो वो अपना जो भी केला उसका उत्पादन हुआ वो कहाँ बेच पाएगा, वो नॉर्मल मार्केट में बेच पाएगा या फिर मान लीजिए किसी बिचौलिया को बेच पाएगा जो उससे अच्छा दाम नहीं देगा। अगर मान लीजिए वो किसी केला के एफपीओ के माध्यम से, किसी एफपीओ से जुड़ जाता है, तो फिर वो एफपीओ क्या करेगी, एफपीओ उसको कम लागत में, जो भी मान लीजिए उसको लगता है कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड कुछ भी लगता है, उसको कम दाम में उसको मुहैया करवाएगी। इसके अलावा उसका सारा सामान को वो अच्छे दाम में कहीं एक्सपोर्ट कर सकती है भारत के बाहर। तो जो 12 केला का उसको यहाँ पे 30-35 रुपये मिलता था, उसका उसको 200-300 रुपये भी मिल सकता है। इस तरह उसको उसका इनकम जो है बहुत गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। हमारे राज्य में तो उतना एफपीओ अभी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे साउथ के बहुत सारा, साउथ में राज्य है जैसे कि महाराष्ट्र में, बहुत वहाँ पे एफपीओ जो है बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी उसकी विपणन क्षमता होती है, बहुत अच्छा उसका टर्नओवर होता है। तो हमारे किसान भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो है हमारे यहाँ प्रोसेस।
0: यानी कि यहाँ पे प्रोसेस स्लो है लेकिन एफपीओ से जुड़ने के फायदे बहुत सारे होते हैं।
12: बहुत सारे फायदे हैं, बिल्कुल।
0: तो क्या एफपीओ के संचालन में कोई चुनौती भी आती है?
12: हाँ बिल्कुल, चुनौती आती है। जैसे कि मान लीजिए एफपीओ का संचालन करना एक कंपनी का संचालन करने जैसा है। अब एक किसान को उतना पता नहीं रहता है कि हम एक कंपनी को कैसे चलाएं, तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है कि सरकार पहला 3 साल का वो संचालन का पूरा जिम्मा अपने पास लेती है। मान लीजिए आप किसी सीईओ को रख रहे हैं कंपनी को चलाने के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसको अगर रख रहे हैं तो उसका भी खर्चा सरकार ही वहन करती थी पहले 3 साल का। सरकार इसके अलावा भी बहुत सारा प्रोत्साहन देती है, जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हर कंट्री का अलग अलग एक्सपोर्ट का स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से भी सरकार बहुत मदद करती है ट्रेनिंग करवाने में। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भी बहुत सारे ट्रेनिंग करवाते हैं जो उनके सदस्य लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस डायरेक्शन में, और सरकार का लक्ष्य है कि किसानी को भी एक कंपनी के माध्यम से किस तरह देखा जाए ताकि ज़्यादा अच्छा मुनाफा और ज़्यादा अच्छा इनकम हो सके।
0: सर, अब तक के चर्चा से हमने इतना तो समझ लिया है कि एफपीओ किसानों को बहुत लाभ पहुंचाता है, तो अगर हम बात करें किसानों के जीवन में एफपीओ से क्या क्या बदलाव आते हैं, तो क्या क्या बदलाव आते हैं?
12: बिल्कुल, तो किसान के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताना चाहूँगा, ऐसे जैसे कि महाराष्ट्र में एक एफपीओ है जिसका नाम है सहाद्री, तो उसके हर किसान जो भी उसके उससे मेंबर जुड़े हुए हैं, जनरली वो एफपीओ क्या करता है, वो जो अनार फल होता है हमारा पोमीग्रेनेट, और ये जितने भी ये अपने फल हैं उसको एक्सपोर्ट करता है वो गल्फ कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो जितने भी किसान उससे जुड़े हैं उन किसानों का जो इनकम है वो लगभग 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका है। तो इससे उनका जीवन का स्तर तो अच्छा होता ही है, और इसके अलावा उसको एक अच्छा लगता भी है कि किसानी में बहुत सारी फ्यूचर उसका बहुत अच्छा है। आप जानते होंगे बहुत सारे यंग लोग जो हैं वो किसानी से हटते जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एफपीओ से जुड़े हैं और कंपनी के ऐसा किसानी को भी एग्रीकल्चर को भी कंपनी के माध्यम से देखें, ताकि ज़्यादा अच्छा वो दूसरे का भी हेल्प कर सकें, अपना भी हेल्प कर सकें।
0: सर, अगर आप अंत में कोई संदेश देना चाहें तो?
12: बिल्कुल, तो हमारे राज्य में भी बहुत सारे एफपीओ हैं। किसान को चाहिए कि वो अकेले में काम ना करें, वो समूह में अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा उनको मुनाफा भी होगा, कम लागत भी लगेगा और अच्छा उनका विपणन क्षमता भी उनकी बढ़ेगी। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि किसान देखें, किसान भाई लोग देखें कि उनके आसपास क्षेत्र में कौन से एफपीओ हैं और वो कैसा काम कर रहा है, उनसे जुड़ने में कोई खर्च नहीं लगता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जुड़ने में, उनसे जुड़ें और वो उनके माध्यम से अपना मार्केटिंग करें, अपना प्रोडक्शन करें, तो फिर उनको मुनाफा भी होगा और उनका आय भी बढ़ेगा।
0: यस सर, जैसे कि सर ने कहा कि एफपीओज जैसे संगठनों से जुड़ने में आपको कोई खर्च नहीं होता है, आप एक बार जुड़े और फिर आपको खुद ही समझ आएगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे क्या आपको कोई नुकसान भी हो रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
12: धन्यवाद आपका मुझे इन्वाइट करने के लिए।
0: दोस्तों, उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी और काफी उपयोगी भी होगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
11: उन्नत कृषि,

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
10: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद
11: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
12: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
9: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
12: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
13: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
12: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर वो नहीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों, आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें, इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद।
13: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
2: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दें, यानी कि उन्हें नष्ट

कर दे और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दें टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है, ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बनाकर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर रखता है। और जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफी अच्छा होता है। अच्छा आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10 से 2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियां हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जाकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50 से 80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30 से 90 मिनट की देरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है। अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, खास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता, बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज़ 1 बजे सोइए, आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आपको ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहां से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2 बजे 3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है, तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे, फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं। फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है, अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
4: So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: सुरेश एक निर्धन बालक था। वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। अपने घर की दीवारों पर उसने तरह तरह के सुंदर चित्र बना रखे थे। गांव के लोग उन चित्रों को देखते और आश्चर्य करते। वे कहते,
1: शाबाश सुरेश, तुम बहुत सुंदर चित्र बनाते हो। यदि अभ्यास करते रहे तो एक दिन बहुत अच्छे चित्रकार बनोगे।
2: हाँ, एक दिन तुम बहुत अच्छे चित्र बनाओगे। तुम बड़ी चित्र बनाते
0: हो। सुरेश उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता। वह चित्र बनाने का और अधिक अभ्यास करता, लेकिन उसके पास बुरुश और रंग न थे। वह किसी पेड़ की डाली से बुरुश बनाता और फूल पत्तियों से रंग निकालता। सुरेश कई बार सोचता,
3: मेरे पास एक बुरुश होता तो कितना अच्छा होता।
0: सुरेश के मन की यह इच्छा भी पूरी हो गई। एक दिन वह पाठशाला से घर लौटा तो आंगन में एक बुरुश पड़ा देखा। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ।
3: आहा, अरे वाह।
0: दौड़कर जब उसने बुरुश उठाया तो उसे नीचे एक कागज दिखाई दिया। कागज पर लिखा था,
4: यह जादू का बुरुश है, इसे सोच समझकर काम में लाना।
3: कितना अच्छा बुरुश है, इससे तो मैं बहुत सुंदर चित्र बना सकूंगा।
0: सुरेश ने मन ही मन सोचा। उसके हाथ चित्र बनाने को बेचैन हो रहे थे। उसने तुरंत एक चिड़िया का चित्र बना दिया। चित्र पूरा होते ही वह सचमुच की चिड़िया बन गई। सुरेश आश्चर्यचकित देखता ही रह गया और चिड़िया फुर्र से उड़ गई।
3: अरे अरे वाह।
0: अब उसने खरगोश का एक चित्र बनाना प्रारंभ किया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसने देखा कि उसके सामने सचमुच का एक खरगोश है।
3: अरे, ये तो सचमुच जादू का बुरुश है।
0: वह खुशी से चिल्ला उठा। सुरेश उस बुरुश से जो भी चित्र बनाता, वह सचमुच की चीज बन जाती। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान बालक था। वह खूब सोच समझकर गांव वालों की जरूरत की चीजों के चित्र बनाता। फिर वह उन चीजों को गांव वालों को दे देता। इससे गांव वाले बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी सुरेश का नाम फैल गया। लोग उसके पास सहायता के लिए आने लगे।
5: अरे, तो बड़े अच्छे चित्र बना।
6: अरे भैया, तुमने जो चित्र मेरे लिए बनाया था वह मेरे बहुत काम आया।
5: अरे भैया, मेरे लिए एक झोपड़ी बना देना।
2: अरे भैया भैया, मेरे लिए एक गाय का चित्र बना दो।
5: बनाता बहुत अच्छा चित्र बनाता।
0: कुछ ही दिनों में सुरेश और उसके बुरुश की बात राजा तक भी जा पहुंची। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सुरेश को बुला भेजा। राजा ने सुरेश से तरह तरह की चीजों के चित्र बनाने को कहा। सुरेश जानता था कि राजा को इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसने कोई चित्र नहीं बनाया। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सुरेश से बुरुश छीन लिया और बोला,
7: मूर्ख, देख, मैं इससे अभी सोने का पहाड़ बनाता हूँ।
0: राजा ने पहाड़ का चित्र बनाना शुरू किया। परंतु जैसे ही वह चित्र पूरा हुआ, सोने के पहाड़ की जगह उसके सामने पत्थर का एक काला पहाड़ खड़ा था। देखते ही देखते उस पहाड़ के पत्थर इधर उधर गिरने लगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने सोने की छड़ का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, सोने की छड़ की जगह काला सांप बन गया। सांप बड़ी तेजी से राजा पर झपटा। राजा बुरी तरह डर गया। उसने बुरुश एक ओर फेंक दिया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी,
7: इस शैतान को अभी पकड़ लो और जेल में बंद कर दो।
0: सुरेश ने दौड़कर बुरुश उठाया ही था कि सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया।
8: चला चला अंदर।
3: अरे
0: जेल की कोठरी में बहुत अंधेरा था। वहां सर्दी भी बहुत थी। सुरेश को खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया गया, पर सुरेश को जिस चीज की आवश्यकता होती वह उसका चित्र बनाता और वह वस्तु उसे मिल जाती।
3: अरे अरे वाह।
0: तीन चार दिन बाद राजा सुरेश को देखने गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि सुरेश की कोठरी में सब प्रकार का प्रबंध है। वह बड़े आराम से कोठरी की दीवारों पर चित्र बना रहा है। यह देखकर राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने सिपाहियों से कहा,
7: इसे पकड़कर मेरे पास लाओ।
0: आज्ञा पाते ही सिपाही कोठरी में घुसे, पर वहां कोई न था।
2: अरे कहां गया? अरे सुरेश कहां गया? अभी कहां चला गया?
0: सिपाहियों ने बाहर देखा कि सुरेश एक घोड़े पर चढ़कर भागा जा रहा है। सिपाही भी अपने अपने घोड़ों पर बैठकर उसका पीछा करने लगे। सुरेश ने जल्दी से अपने और सिपाहियों के बीच समुद्र का चित्र बना दिया। लहराता हुआ समुद्र देखकर सिपाही आगे न बढ़ सके। इस तरह सुरेश राजा की पहुंच से बाहर हो गया। वह जहाँ जहाँ जाता गरीब लोगों की जरूरत की चीजों के चित्र बना बना कर उनकी सहायता करता। लोग उससे बहुत प्रसन्न रहते।
9: कठिन शब्द बुरुष
10: बुरुष
9: शौक
10: शौक
9: चित्रकार
10: चित्रकार
9: अभ्यास
10: अभ्यास
9: क्रोध
10: क्रोध
9: प्रकार
10: प्रकार
9: प्रबंध
10: प्रबंध
9: निर्धन
10: निर्धन
9: आवश्यकता
10: आवश्यकता
9: बेचैन
10: बेचैन
9: आंगन
10: आंगन।
11: अन्य शेष कार्यक्रम अगले कैसेट में सुने कैसेट में सुने।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: FM Green हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं अधिक फलन के लिए अमरूद के बागों में छत्र प्रबंधन कैसे करें और इसका महत्व क्या है। इस बारे में हमें विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी। आप हैं SMS हॉर्टिकल्चर KVK सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
11: थैंक यू उमा। नमस्कार किसान भाइयों।
10: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि छत्र प्रबंधन है क्या?
11: अमरूद में मुख्यतः लोग अमरूद को अभी तक हमारे किसान जो अमरूद है बागवानी फसल में घर के पिछवाड़े तक ही रखे थे, लेकिन अभी व्यवसायीकरण का समय है, अमरूद की लोग सघन बागवानी लगाते हैं। जो दूरी अनुशंसित की गई है उस दूरी से कम दूरी पर जब अमरूद को लगाया जाता है तो उसको सघन बागवानी कहते हैं। तो जब सघन बागवानी लगाते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज है प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाना, फलन के उपयोग के लायक बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा कलों को क्रिएट करना। तो जब अमरूद के पौधों को लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, शुरू के 2 साल तक उसमें प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, प्लांट की संरचना को बनाया जाता है, और जिसमें प्लांट को हम अपने पौधों को अपने अनुसार काटते छाटते हैं और इस प्रकार बनाते हैं कि उसका जो पेरीमीटर होता है, ऊपरी परिधि जो होती है, वो 2 मीटर का हो जाए और जो उसका केंद्र वाला भाग हो वो खुला रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप उसमें जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो। तो जब अमरूद की सघन बागवानी लगाते हैं, कम दूरी पे लगाते हैं, और अगर उसकी कटाई छटाई ना की गई तो अमरूद का बगीचा नहीं जंगल हो जाएगा और हमेशा उसमें सूट जो होते हैं कल्ले ही आते रहेंगे, फलन कम होगा। तो इसके लिए समय से मंबर उसकी कटाई छटाई अति आवश्यक।
10: मैम हमने क्षत्रप प्रबंधन के बारे में जान तो लिया, लेकिन हमें इस काम को कब करना चाहिए?
11: अमरूद में तीन फलन होता है, मृग बहार जो अभी हमारे यहाँ अमरूद के फलों में लगा हुआ है, मृग बहार इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फलन होता है, और बहुत ज़्यादा फलन होने से जब मृग एक ग्रुप में रहता है तो कभी अकेले नहीं रहता है, बहुत सारा मृग एक साथ रहते हैं, मृग बहार। दूसरा जो फलन होता है वो अक्टूबर में होता है जिसको अम्बे बहार कहा जाता है, और जब तीसरा फलन होता है इसका फरवरी मार्च में होता है जिसे शरद बहार कहते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जो अमरूद रहता है उसमें अमरूद में एक फूल लगता रहता है, हमेशा अमरूद में एक फूल दो फूल आपके पौधों के अनुसार लगा रहेगा, उसमें छोटा छोटा फल लगा रहता है, उसमें धीरे धीरे धीरे फूल आने की प्रक्रिया चलते रहती है और उसमें फल आने की प्रक्रिया चलते रहती है। तो अमरूद में कटाई छटाई जो मुख्यतः किया जाता है वो मई के अंत में पहला होता है, दूसरा होता है अक्टूबर में होता है, अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ तक कर सकते हैं, तीसरा होता है जनवरी के अंत और फरवरी तक आप कर सकते हैं। आप कौन सा फलन लेना चाहते हैं उस पे मुख्यतः निर्भर करता है। अगर आप इसको फल तोड़ाई के बाद, हमारे यहाँ तीन फलन नहीं प्राप्त हो पाता है क्योंकि हम लोग बहुत ठंडे वाले प्रदेश में रहते हैं, जब इसमें नवंबर से लेकर के जनवरी तक काफ़ी ठंड पड़ती है तो उसमें पौधों का जो बढ़वार है वो धीमा हो जाता है और फलन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम लोग को बिहार में कंडीशन में ये एक फलन नहीं तो दो ही फलन हमारे किसान ले पाते हैं। इसके लिए कटाई छटाई फरवरी वाला कटाई छटाई मुख्यतः किया जाता है, और फरवरी के बाद आप अक्टूबर में काटते छाटते हैं। अगर इसको छत्रक बनाने के लिए हमारे किसानों को करना चाहिए तो मई में करना चाहिए और फिर अक्टूबर में करना चाहिए, और अक्टूबर के बाद फिर जनवरी फरवरी में करना चाहिए।
10: और मैम कैसे करना चाहिए कटाई छटाई?
11: कटाई छटाई का एक खास प्रक्रिया है, जैसे आप अमरूद का पौधा लगाते हैं जून के महीने में तो अक्टूबर में इसको पहला कटाई करना है। कटाई करने में पहले नीचे से 50 सेंटीमीटर एकदम तना को साफ सुथरा कर लेना है, कोई उस पर कल्ला नहीं रहेगा। दूसरा करना है कि ऊपर से चार तना को चयनित कर लेना है जो चारों दिशा में हो, या पांच तना को चयनित कर लेना है और पांच तना को फिर आधे भाग से काट देना है, और कटाई के उपरांत इसको सबसे पहले सारी पत्तियों को हटा देना चाहिए। पत्तियों को हटाने के बाद जो कटा भाग है उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगाना चाहिए, कटे भाग को उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ, तना के नीचे की तरफ ला करके उसको लेप को लगा देना चाहिए ताकि किसी प्रकार का फफूंद का आक्रमण ना हो, और पत्तों को बगीचा में ही रहने देना चाहिए, पत्तों को बगीचा के बाहर नहीं करना चाहिए, और कटाई के उपरांत एक पटवन निश्चित कर देना चाहिए।
10: तो इन तरीकों से कटाई छटाई करनी चाहिए।
11: मुख्यतः कटाई छटाई अमरूद में इतनी क्यों आवश्यक है? क्योंकि अमरूद जो होता है नए कल्लों पर ही फलता है, नया कल्ला उसमें क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल उसमें लगे और फल बन सके।
10: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो बातें बताई उम्मीद है कि उससे हमारे किसान भाई बहन या फिर जिनके भी घर में अमरूद के पेड़ हैं वो प्रबंधन करके अधिक फलन पा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि,
12: नमस्ते क्लास। टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है, और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
13: जी
12: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
13: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
12: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
14: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
15: So, see you at the vaccination center soon.
16: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
17: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
18: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
19: हर घर सूर्य घर।
20: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
21: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं, फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल

तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
1: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है, उन्हें बता दें भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव

करें ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक एक, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे अनु. और एक बार फिर हमारे किसान भाइयों के लिए हम लेकर आए हैं कुछ ज़रूरी बातें. किसान भाइयों, यहाँ पर रोज़ हम आपको कुछ बताते हैं, कुछ अलग अलग बातें. आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन बातों को सुने, समझें और फिर ज़रूर लागू करें. आप जो जिस भी चीज़ की खेती कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की किसानी कर रहे हैं, तो आप उसमें ज़रूर लागू करें. और सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि इसे अप्लाई भी ज़रूर करें, अपने जीवन में इसे ढालें भी. और जो भी बातें यहाँ पर कही गई हैं वो आपके और सिर्फ आपके लिए है किसान भाइयों. तो इसी कड़ी में एक और बहुत ज़रूरी विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम आज लेकर आए हैं, वो है रबी फसलों में बुआई से पूर्व बीज उपचार. जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर रमेश नाथ गुप्ता जी. और मैं आपको बता दूं, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में. तो सर, सबसे पहले जब बीज उपचार की बात आती है, हमारा विषय है रबी फसलों में बुआई से पूर्व बीज उपचार, तो सबसे पहले हमारे जो श्रोतागण हैं, वैसे तो किसान भाइयों को मालूम होगा ही क्या होता है बीज उपचार, तो कहीं ना कहीं हमारा जो श्रोता है, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो पूरे यूँ कहें कि किसान भाई भी हैं और ऐसे जो आम नागरिक हैं वो भी हैं, आम जनता भी हैं. तो ये बताएं कि बीज उपचार क्या है.
1: प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीज उपचार क्या है, ये किसानों में एक आम भाषा है, लेकिन बीज उपचार क्या है, उसका सही तरीका क्या है, इसको जानना जरूरी है. तो इसी सिलसिले में मैं आज बीज उपचार के बारे में एक जानकारी दूंगा, जिसको सुनकर आप इनको अपने खेतों में इसको लागू करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा. जैसा कि जानते हैं बीज उपचार, बीज उपचार वो विधि है जिससे हम आरंभिक अवस्था में होने वाली जो बीमारियां हैं या जो कीटाणुओं का जो प्रकोप है उससे बचने वाला एक उपचार है. और जिसके फलस्वरूप इस विधि को करने के बाद जो भी आरंभिक अवस्था में जो बीमारियाँ आती है, खासकर एक महीने के अंतराल में, उससे काफ़ी हद तक इससे हम निजात पा सकते हैं. तो ये जो विधि है, इसको सबसे पहले हम जो भी बीज है उसको तीन चीज़ों से हम इसका बीज उपचार करते हैं. खासकर जो बीज है हमारा, उसमें हम फंजीसाइड से करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड से करते हैं, और फिर खासकर दलहनी फसलों में जो है उसमें राइजोबियम से उपचार करते हैं. तो इससे हमको समग्र फायदा मिलता है. फंजीसाइड से जो कवकनाशी है उससे करने से जो भी बीज में मौजूद जो स्रोत हैं, फंगस के, कवक के स्रोत हैं, उसको आरंभिक अवस्था में ही नष्ट किया जाता है. इसके साथ साथ बीज में जो कीटों के जो स्रोत हैं, जो कि आगे चल के उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसको हम आरंभिक अवस्था में ही निजात पाते हैं. और तीसरा जो खासकर दलहनी फसलों में है, उसमें राइजोबियम कल्चर से हम उपचार करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम पौधों में भरपूर मात्रा में राइजोबियम का मल्टीप्लाई करता है, जिसके फलस्वरूप पौधे को अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण पौधे की विकास बढ़ जाती है और जिसके फलस्वरूप हमारा उत्पादन भी काफ़ी बढ़ जाता है. तो इन सारी विधियों को सही ढंग से समावेश करने से हमारा जो है बीज उपचार सही ढंग से फायदे पहुंचाता है. तो इसको तीनों को सबसे पहले क्रमबद्ध रूप में हम कवकनाशी से, उसके बाद हम कीटनाशी से, और फिर दलहनी फसलों में राइजोबियम से उपचार करते हैं, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है.
0: जी, तो ये आपने जाना कि बीज उपचार क्या है. इसके बाद सर, बीज उपचार आपने बताया कि राइजोबियम से करना चाहिए, तो एक बार हम जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे करें, और अगर विस्तार में आप बता दें तो हमारे किसान भाइयों के लिए और आसानी होगा ये जानने में.
1: सबसे पहले बीज उपचार के करीब में हम सबसे पहले ये बता दें कि बीज उपचार क्यों करते हैं. बीज उपचार इसलिए करते हैं, जो बीज में जो हमारे जो बीमारी के स्रोत हैं या जो कीटाणु के स्रोत हैं जो आगे चल के फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका जो है मतलब सुसुप्ता अवस्था में रहता है, उस समय हमारे जो रोग और कीट के जो वाहक हैं वो काफ़ी कमजोर स्थिति में होते हैं. तो उस समय हम अगर थोड़ी सी दवा मात्रा में, काफ़ी कम मात्रा में, हम उससे निजात पा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम मिट्टी में डालते हैं तो इस कीटाणु और जो रोग के कारक हैं उसको अनुरूप वातावरण मिल जाता है, वहाँ ये तेजी से ग्रोथ करते हैं, तो बाद में चल के इसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बीज के अंदर जो सुसुप्ता अवस्था में होता है, उस अवस्था में इसको नियंत्रण करना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बीज उपचार करते हैं। ऐसा हम मानते हैं जैसे हम बच्चों को टीकाकरण करते हैं ताकि भविष्य में जो भयानक बीमारियाँ आने वाली है उससे हम उसको रोक लेते हैं। उसी तरह बीज उपचार वो विधि है जो आरंभिक अवस्था में जो बीमारियाँ लगती है उसको अगर हम सही ढंग से करते हैं तो काफ़ी हद तक हम उसको निदान पा लेंगे। तो एज ए टीकाकरण के तौर पे जो है बीज उपचार किया जाता है। बीज उपचार की कड़ी में सबसे पहले हम कवकनाशी से उसका उपचार करते हैं। कवकनाशी में मुख्यतः पहले हम लोग कार्बेंडाजिम से ही, जो कि वेबिस्टिन के नाम से मार्केट में आता था, उसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करते थे। लेकिन अभी इस जो कवकनाशी है इस पे रोग की प्रक्रिया लग रही है, मार्केट में हो सकता है उपलब्ध नहीं हो, तो अभी उसके बदले में हम कार्बोक्जिन, जो कि वीटावैक्स पावर के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसका उपचार करते हैं। अब जब हम बीज इसका उपचार कर लेते हैं, जैसा कि जानते हैं कि बीजों को हम सीड ड्रम से भी उपचार करते हैं या पॉलीथीन के सीट पे बिछा के जो है, जहाँ छायादार जगह हो उस जगह पे करना चाहिए, और बीजों को बिछा के उसमें 2 ग्राम प्रति किलो के बीज हिसाब से उसको मिला लेते हैं, या किसान भाई को अगर घड़े हैं तो घड़े में भी बीज डाल के उतना करके उसको चारों तरफ से मिला लेते हैं, हल्का पानी का छिड़काव करके थोड़ा नमी बना देते हैं ताकि उस पर बीज पे जो है कवकनाशी सही ढंग से उसको घुल मिल जाए। तो इस तरह से हम उसको छायादार जगह में उसको हम ये करते हैं, और ताकि सीज का जो लेयर है उस पर एक लेयर टाइप का बन जाए, पूरी तरह हर बीज में जो है मतलब कवकनाशी का जो है मतलब कोटिंग हो जाए, उस पर कवर हो जाए। तो इस कड़ी में करने से पहले किसान भाइयों को चाहिए कि हाथों में ग्लव्स का उपयोग करें, ताकि वो कहीं नाक के द्वारा हमारे मुंह में द्वारा आँख में चला जाने से वो हमारा जो है नुकसान भी हो सकता है। तो इस कड़ी में हम बीज उपचार करने से पहले नाकों में गमछा वगैरह लगा लेंगे और हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन लेंगे ताकि हमारा कोई स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल असर न पड़े। तो अगर हम सबसे पहले बीज उपचार से कर लिए, बीज उपचार करने के हम 12 घंटे के बाद हम कवकनाशी से करते हैं, कीटनाशक से करते हैं। कीटनाशक में हम क्लोरोपाइरीफोस नाम की दवा आती है, जिसका 8 से 10 ml प्रति लीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उस कीटनाशक का मिलाते हैं उसमें 12 घंटे के बाद। फिर हम कीटनाशक से करते हैं, कीटनाशक में हम क्लोरोपाइरीफोस का प्रयोग करते हैं, उसका 8 से 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसका उपचार करते हैं। और इस उपचार करने के बाद फिर हम उसके मतलब 48 से 72 घंटे के बाद ही हम राइजोबियम से उपचार करते हैं। हम ये अंतराल इसलिए रखते हैं ताकि 12 घंटे के अंदर जो कवकनाशी का जो पूरा उसको बीजों पे काम करने का मौका मिले, उसका इफ़ेक्ट का असर हो उस पर, उसके बाद हम कीटनाशक से करते हैं। और कीटनाशक से करने से 48 से 72 घंटे के बाद ही हम उसको राइजोबियम से उपचार करते हैं, ताकि जो कीटनाशक का प्रभावी रूप से उसको हम उपयोग कर सकें। क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि सारे किसान भाइयों फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम एक साथ मिला के कर देते हैं, इसके कारण जो उनका सही ढंग से जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो वैसी स्थिति में हम कीटनाशक से कर लेते हैं। कीटनाशक के बाद हम 48 से 72 घंटे का अंतराल रखते हैं, उसके बाद हम राइजोबियम से उपचार करते हैं। और राइजोबियम के लिए जो है राइजोबियम के पहले घोल तैयार किया जाता है। अब मैं राइजोबियम कैसे तैयार होता है, उसका घोल कैसे बनता है, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। राइजोबियम कल्चर को बनाने के लिए 200 ग्राम का एक पैकेट आता है। सबसे पहले जो है हम आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ जो है उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद उसमें 10 ग्राम गोंद दे देते हैं ताकि वो हमारा लेप सही ढंग से बन सके। तो 50 ग्राम 500 ml वाटर में यानी आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ लेते हैं और उसको फिर हम गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद जब वो पूरी तरह से खौलने लगे उसके बाद फिर हम उसको ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा जब हो जाए उसके बाद हम 200 ग्राम का जो पैकेट है राइजोबियम का उसको हम उसमें डाल के उसको पूरी तरह से मिला लेते हैं। और राइजोबियम को मिलाने के बाद ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जब हमारा घोल ठंडा हो जाए तभी हम उसमें राइजोबियम को मिला लें। और ये जो हम घोल तैयार किए 500 ml में 50 ग्राम जो हमने गुड़ डाला और 10 ग्राम जो है गोंद डाला ताकि बीजों का जो है लेपन सही ढंग से हो, तो ये हमारा 10 किलो बीज के हिसाब के लिए ये पर्याप्त है। तो 200 ग्राम का जो पैकेट है हमारा 10 किलो बीज के लिए उपचारित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम राइजोबियम का घोल बना के उसको प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह से तीन चीज़ का क्रमबद्ध इस्तेमाल करें, पहले जो है फंजीसाइड का प्रयोग करें जिसको कवकनाशी बोलते हैं, उसके बाद कीटनाशक, और उसके बाद हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह से नियमित समय अंतराल पर करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो बीज उपचार कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा।
0: तो इस तरीके से आप बीज उपचार कर सकते हैं। और यहाँ पर अब सर से हम जानेंगे, सर ये तो समझ गए हम कि बीज उपचार कैसे करें और क्या करें क्या ना करें इसमें, लेकिन अब बारी आती है कि बीज उपचार में जो रोग और कीटाणु जो अगर कहीं ना कहीं इससे हमें मुक्ति मिलती है बीज उपचार के जरिए, तो बीज उपचार में रोग कीटाणु से कैसे हम बच सकते हैं बीज उपचार करके, और ये कैसी रक्षा करती है?
1: बीज उपचार मुख्यतः हम जो बीज में चाहे बीज जनित जो बीमारियां होती है और खासकर जो मृदा जनित बीमारियां होती है इससे हम बचते हैं। अब जैसे बीज जनित बीमारियों में खासकर जो है मतलब आपका एक बीमारियां आती है कॉलर रॉट जो कि स्तंभन मूल रोग उसको बोलते हैं, दूसरी बीमारियां है शुष्क जर गलन, तीसरा है उकठा रोग। तो ये सारी बीमारियां जो है बीज जनित भी होती है और मृदा जनित भी होती है, और दोनों जो है अगर हमारा सोर्स सीड में है इस बीमारियों का जो भी स्पोर है या क्लाइमेडोस्पोर है ये हमारे बीज में मौजूद रहते हैं, और ये बीज जैसे मिट्टी में जाते हैं तो हमारे मिट्टी में भी इसके स्पोर्स पहले से मौजूद रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इसके स्पोर्स होते हैं जिससे बीमारियां फैलती है जिसको क्लाइमेडोस्पोर बोलते हैं, ये हमारे सुसुप्ता अवस्था में मिट्टी में अगर कोई फसल नहीं भी लगे तब भी 3 से 5 साल तक हमारे मिट्टी में वो सर्वाइव करते हैं। तो जैसे ही अगर हम बीज उसमें डालते हैं तो उसको उस बीज में इसको अटैक करने का मौका मिल जाता है, और ये बीज में इंटर करके ये धीरे धीरे पौधे में अपना विकास करते हैं और जड़ों से प्रवेश करके इसके फूलों तक चले जाते हैं और ये एक संभावित रोग को पैदा करते हैं। तो यही कारण है कि जो रोग एक तरह से ये सिस्टेमेटिक रोग है, ये जड़ों से लेके हमारे पौधे के फूलों तक चले जाते हैं, जो फलियां बनती है उसके अंदर भी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं बीज और मिट्टी दोनों जो है इसको संक्रमित करते हैं। तो इस चेन को रोकने के लिए हम बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार करने से बीज के अंदर जो भी हमारा उसके स्पोर्स हैं, जो भी उसके वाहक हैं, चाहे कीटों के हों या हमारे फंगस के हों, तो ये दोनों को प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये बीजों में सुसुप्त अवस्था में रहता है, यहाँ पे इसको नियंत्रण करना आसान है। जैसे ही मिट्टी में जाते हैं तो इनका दायरा बढ़ जाता है और उपयुक्त वातावरण मिल जाता है जिसके फलस्वरूप इसमें जो है तेजी से विकास करने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि हम आरंभिक अवस्था में ही इस रोग को, हम इसके अगर मूल कारण को, मूल चीज पे अगर हम नियंत्रण करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे पौधे आगे जो बनेंगे वो स्वस्थ हो जाते हैं। और बीजों में जो उसके जो बाहरी वातावरण में जो भी हमारे इंसेक्ट है, इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का प्रभाव है, उसको हम उसको भी रोक सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो जो भी मिट्टी के संपर्क में आने वाले स्पोर हैं उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी एक और बड़ी बात होती है कि ये जो मृदा जनित बीमारियां हैं इसको बीज उपचार के साथ साथ हम ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियानम से भी उसको हम ट्रीट करते हैं। इसके करने की ये वजह है कि जो हम ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको उपचार करते हैं, अगर हम फैट लेते हैं तो जहाँ पे ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है वैसी अवस्था में हम जो फंजीसाइड बताए कार्बोक्जिन 1 ग्राम और 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा जो विरिडी है ये भी एक तरह से आपका फंगस ही है, एक कवक ही है, लेकिन ये दूसरे फंगस को मारते हैं जो हमारे बीजों के अंदर हैं या जो मिट्टी के अंदर हैं वो उसको मारते हैं। अब जैसे क्या होता है कि जो राइजोबियम आपका जो ट्राइकोडर्मा है, ये बीज उपचार करने से ये मिट्टी में जाते हैं और मिट्टी में अपने अनुकूल जो है ये इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में ये अपना ग्रोथ करते हैं और इनका ग्रोथ दर इतना ज़्यादा होता है कि जो भी हमारे रोगवाहक के जो फंगस हैं, जो कवक हैं, उसको ये चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको सारे जो भी पौधे, जो जीवाणु के जो हमारा जो स्पोर्स हैं, ये फंगस का जो कारक है, उसको चारों तरफ से एक जाल बना देते हैं, जिसके कारण उस चीज़ को उसका कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, ना उसको

0: नमी मिल पाती है ना हवा मिल पाती है, तो उसको ग्रोथ करके एक जाल बना के चेक कर देते हैं, और जिसके कारण जो हमारा जो हानिकारक जो हमारा फंगस है जो बीमारी पौधों में करते हैं उसको ये फंगस उसको चारों तरफ से घेर के इसको मार देते हैं। तो ये आरंभिक अवस्था में इसको बीज के अंदर हमारा जो है वो फंजीसाइड काम करता है, और मिट्टी के बाहर जो हमारा जो ट्राइकोडर्मा है ये मल्टीप्लाई करके जो भी मिट्टी में मौजूद है उसके आसपास बीजों के पास उस चीज़ को वो मार के पौधे को स्वस्थ बनाते हैं
1: जी। तो इस तरीके से जो पौधे जो हैं रोग और कीटाणु मुक्त हो जाते हैं। सर इसके बाद हम तो अभी तक जान रहे थे, आपने जैसे बताया तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हमने जाना की हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ नुकसान भी होंगे इसके, तो हम आपकी ओर से जानना चाहेंगे कि एक साथ की फ़ायदे और नुकसान क्या हैं बीज उपचार के।
0: देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीज उपचार करना सबसे ज़रूरी है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। नुकसान तभी है जब हम इसका सही ढंग से इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे बीज की मात्रा में फंजीसाइड की मात्रा लिमिट बता दी जाती है, किसान भाई ज़्यादा फायदा के लिए उसको ज़्यादा डाल देते हैं, इसके कारण क्या होता है कि जो जो हमारे रोग के वाहक हैं उसमें रेजिस्टेंसी डेवलप होती है, प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है, तो आगे चल के इसको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो जो मात्रा बताई जाती है उसी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मात्रा ऐसे निर्धारित नहीं की जाती है, बहुत सारे प्रयोगों के बाद ये निर्धारित किया जाता है। किसान भाई 2 ग्राम की जरूरत पर उसमें 4 ग्राम 5 ग्राम डाल देते हैं, इसके कारण वो असर भी नहीं कर पाता है और पौधे में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, फिर बाद में वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इसलिए जो मात्रा उपयुक्त बताई गई है उसी मात्रा का उपयोग करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा मात्रा करते हैं तो फायदा के जगह पे वो नुकसान होने लगता है
1: जी।
0: जिस तरह से देखा जाता है कि बीज दर की जो है एक संतुलित मात्रा डालना चाहिए, अगर किसान भाई उसमें ज़्यादा डाल देते हैं तो उसमें पौधे की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, और पौधे संख्या बढ़ने के कारण उपज ज़्यादा ना हो के वो बीमारियों के कारक हो जाते हैं। पौधों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उसके कारण बीमारी की संख्या बढ़ जाती है, उत्पादन कम जाती है। उसी प्रकार अगर हम ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं तो ये हमारा लागत मूल्य को तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ जो है ये फायदे की जगह पे नुकसान हो जाती है। दूसरी बात है किसान भाई जो है इसको बहुत ढंग से इसको नहीं कर पाते हैं, लगता है कि सिंपल वे में कर लेते हैं, इसलिए कोई सुरक्षा का कोई उपचार उपाय नहीं करते हैं, हाथ में दस्ताने भी प्रयोग नहीं करते हैं और नाकों को उसको पूरी तरह से ढक नहीं पाते हैं, तो इससे हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर भी पड़े। तो इन सारी चीज़ों को अगर ख्याल किया जाए तो नुकसान कम और फायदे ज़्यादा होते हैं
1: जी। तो श्रोताओं आपने जाना कि बीज उपचार से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और जिन बातों का यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको ध्यान रखना चाहिए, दस्ताने पहनने चाहिए, और जो क्वांटिटी जो मात्रा है आप उस हिसाब से अगर देंगे तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अगले विषय के साथ जो आपके लिए होगा बहुत ही खास हम लेकर हाजिर होंगे 90.8 FM ग्रीन पर। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान।

0: होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
6: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद।
11: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
12: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
13: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
12: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थाई पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थाई पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
13: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
12: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
13: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
14: अरे यार फिर पिट गया, बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
15: कब से?
14: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
15: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
14: खांसी?
15: हाँ।
14: इसको तो एक आध महीना हो गया,
15: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
14: डॉक्टर, खांसी तो है।
15: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
14: टीबी?
15: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
14: ठीक है।
15: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। गरीबी हारेगा, देश जीतेगा।
16: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
17: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
16: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
17: आपकी सेहत की बातें,
16: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
17: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
16: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
17: वो कहाँ पर?
16: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
17: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
18: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं। फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है, इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, यानी कि मीठे मक्के के बारे में। मीठा मक्का क्या है और कब इसकी बुआई की जाती है, क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमारी रश्मि। आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं आज आपको मीठी मक्का की वैज्ञानिक खेती की विधि के बारे में बताऊंगी।
0: तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि स्वीट कॉर्न क्या है? मक्का तो हम जानते हैं, पर स्वीट कॉर्न क्या है?
1: मीठी मक्का मीठी और स्वादिष्ट एक विशेष प्रकार की मक्का है जिसका दाना अधिक मीठा होता है। इसे सब्जी और अनेक तरह के पकवान जैसे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। और हरा भुट्टा तोड़ने के तुरंत बाद हरे पौधे को काटकर हरे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए हम स्वीट कॉर्न को गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर आदि के साथ इसका रबी में और मौसम में अंतर्वर्ती फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी जलवायु के बारे में मैं बताना चाहूँगी। स्वीट कॉर्न की बुआई के समय मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और भूमि के चयन को लेकर हम बात करें तो आमतौर पर इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल में इसका उपयुक्त खेती नहीं हो सकता है। खेत में जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। स्वीट कॉर्न की बुआई जिस खेत में करनी होती है उसमें 400 मीटर तक अन्य किसी दूसरी वैरायटी की किस्म नहीं लगानी चाहिए। और जब हम बात करें कि 400 मीटर की दूरी के अंतर्गत मक्का किसी और किस्म का नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी ने लगा दिया है 400 मीटर के सर्कल में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप अपनी बुआई करें, ताकि नरमंजर आने में 15 दिन का इंटरवल होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात हम करें तो खेत की जुताई को पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई के 20 दिन पहले लगभग 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिला देना चाहिए। बुआई के समय को हम लेकर बात करें तो उत्तरी भारत में खरीफ में जून से जुलाई और रबी में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई की जानी चाहिए।
0: और बुआई के साथ मैम ये सवाल भी आता है कि बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
1: जी, बीज की मात्रा के बारे में मैं बताऊंगी कि सामान्य मिठास वाली, इसे स्टैंडर्ड स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसके लिए बीज की मात्रा है 9 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। और अधिक मिठास वाली मक्का, जिसे सुपर स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसे 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। जहाँ तक पंक्तियों और पौधों से पौधों की दूरी की बात हम करें बुआई के समय, तो स्वीट कॉर्न की बुआई 60 से 75 सेंटीमीटर कतारों से कतारों के बीच तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों से पौधों के बीच की दूरी रखनी चाहिए। पौधों की संख्या, उपयुक्त पौधों की संख्या 66 से 67,000 प्रति हेक्टेयर मेंटेन करनी चाहिए और बीज उपचारित करके इसे लगाना चाहिए। जहाँ तक बीज उपचार की बात है, बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को थिरम 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए तथा तना छेदक से बचाव के लिए फिप्रोनिल 6 ml प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई का सही तरीका अगर हम बात करें तो बीज कतारों में और मेड़ों पर बोने चाहिए। स्वीट कॉर्न की सभी किस्मों के बीज की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर की जानी चाहिए, परंतु अधिक मिठास वाली सुपर स्वीट वैरायटीज को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं। आरंभ में प्रत्येक स्थानों पर 2 बीज डालें, ताकि गर्मी में अंकुरण के 10 दिन एवं सर्दी में 15 से 20 दिन के बाद प्रत्येक स्थानों पर एक ही पौधा रहने दें।
0: और मैम, बीज की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी बता दीजिए।
1: उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं बताऊंगी। स्वीट कॉर्न की खेती के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र की प्रचलित जो भी वैरायटीज हैं इनका चुनाव करें। जैसे भारत में स्वीट कॉर्न की कुछ प्रचलित किस्में हैं, इनमें माधुरी, प्रिया, अल्मोरा स्वीट कॉर्न, विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न और सिंजेंटा की सुगर 75 है, इसे आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी उपज देने वाली किस्में मैंने आपको बताई हैं और इनकी मिठास भी 15 से 20 प्रतिशत मतलब सामान्य मक्के से ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए स्वीट कॉर्न को लोग खाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कहाँ लगाई जाती हैं, अनुमोदित क्षेत्र के बारे में मैं बताऊंगी। खरीफ में संपूर्ण भारत में तथा रबी में प्रायद्वीपीय भारत में इसे उगाया जा सकता है।
0: और मैम कटाई का क्या समय होता है, क्योंकि जब हम स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो कटाई का समय बेहद विशेष हो जाता है।
1: खरीफ में इसे 70 से 75 दिन में हम ये तैयार हो जाता है, इसकी हम कटाई कर सकते हैं। और रबी में 80 से 85 दिन में ये तैयार हो जाता है, आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो 110 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे भुट्टे को हम तुड़ाई कर सकते हैं, और 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका चारा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये हमारे, अगर आपके पास पशु है तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं स्वीट कॉर्न की खेती करके। और उर्वरक प्रबंधन की बात हम करें तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक हेक्टेयर खेत में 150 से 170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 से 80 किलोग्राम पोटास डालनी चाहिए। खेत में अगर जिंक की कमी हो तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डालना चाहिए। फास्फोरस पोटास जिंक सल्फेट की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डालें तथा नाइट्रोजन को 5 भागों में बांटकर विभिन्न अवस्थाओं में डालें, और 10% नाइट्रोजन बुआई के समय, 20% नाइट्रोजन 4 से 5 पत्तों की अवस्था पर डालें, 30% नाइट्रोजन 8 पत्तों की अवस्था पर एवं 30% नाइट्रोजन पुष्पन की अवस्था पर डालें जब उसमें नर मंजरी मादा मंजरी आने लगती है, और 10% नाइट्रोजन भुट्टे की दूधिया अवस्था में जिस समय दूध बनता है

0: सिंचाई में हमें ये भी ध्यान रखना है कि पौधे के में जब पुष्पन और दाना भराव का समय होता है उस समय हमें नमी बरकरार रखनी है खेत में, और सर्दी में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जमीन में नमी बरकरार रखें। एवं कीट प्रबंधन की मैं चर्चा कर लूं, कीट प्रबंधन के लिए आप तनाछेदक कीट है इसे नियंत्रित करने के लिए पौधा जमने के 10 दिन बाद 85% वेजिटेबल पाउडर वाला कार्बोलिल को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गोब में छिड़काव करें। और अंतर्वर्ती फसलें भी इसमें ली जाती हैं विभिन्न प्रकार की, ये खासियत है। तो इसमें आप सर्दी में स्वीट कॉर्न के साथ गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर, गोभी, पालक, धनिया इत्यादि सफलतापूर्वक आप उगा सकते हैं। और स्वीट कॉर्न को मेड़ के दक्षिणी भाग में एवं अंतर्वर्ती फसल को मेड़ के उत्तरी भाग में लगाना चाहिए। स्वीट कॉर्न के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी अंतर्वर्ती फसल की लगाने की स्थिति में 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अंतर्वर्ती फसलों की खेती शहर के आसपास के क्षेत्रों में करने से किसान भाई काफी लाभान्वित हो सकते हैं। और फसल कटाई की बात आपने छेड़ी थी, तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूंगी कि बीज के अंकुरण के लगभग 45 दिनों के बाद नर मंजरी आती है एवं इसके 2 से 3 दिनों के बाद मादा मंजरी आती है। और गर्मी के मौसम में परागण के 18 से 22 दिनों के बाद स्वीट कॉर्न के भुट्टे की तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद जब आप इसकी तुड़ाई करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसे रेफ्रिजरेटेड वैन में ही हम ट्रांसपोर्ट करें। और सर्दी के मौसम में परागण के 25 से 30 दिनों के बाद भुट्टे की तुड़ाई की जा सकती है। इस अवस्था में तुड़ाई की अवस्था को पहचानने के लिए हम ये देख सकते हैं कि ऊपरी भाग यानी सिल्क के सूखने से मादा मंजरी के सूखने की अवस्था में इसे हम पहचान सकते हैं कि ये मैच्योर हो गया है। और जब हम छिलका हटाते हैं तो दाने में दूध भरा होता है, इसे दबाने से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, तो इस अवस्था में हम इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। हरे भुट्टे के तोड़ने के बाद बचे हुए हरे पौधे के चारे को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। भुट्टे की तुड़ाई सुबह या शाम में करें ताकि जो नमी है वो बरकरार रहे और ये ज़्यादा मॉइस्चर लॉस ना हो, ताकि मिठास बनी रहे। कटाई उपरांत प्रबंधन की बात करें तो भुट्टे की तुड़ाई के बाद इसे तुरंत मंडी में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे लकड़ी के डब्बे या कार्टून आदि में रखना चाहिए। कमरे के तापमान पर 24 घंटे के अंदर स्वीट कॉर्न के भुट्टे का 50% शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रो कूलिंग एवं पैकेजिंग कर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का ही प्रयोग करें। और ये सारी खासियत है स्वीट कॉर्न में। स्वीट कॉर्न की खेती से किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। इसे काफ़ी चाव से खाया जाता है, इसके विभिन्न व्यंजन बनते हैं, तो और इसका सीड भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो किसान भाई इसका बीज को बेच सकते हैं, बीज बनाकर या इसकी खेती करें और इसे काफ़ी लाभान्वित हुए।
1: यानी कि स्वीट कॉर्न उगाने के बाद तो फायदे होते ही हैं और साथ में बीज भी बेचकर किसान भाई बहन बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि जो भी मक्के की खेती करने की सोच रहे होंगे वो स्वीट कॉर्न के बारे में भी सोचेंगे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी।
0: धन्यवाद।
1: आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: आप जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?

0: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
12: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
11: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75 70% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दे टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे ज़रूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं और आप इससे संबंधित विभाग तक पहुँचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले, तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों, आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों, लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचें, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है, तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं, तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए, तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है, तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है, तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों, जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दें, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहाँ भी महिलाएं काम कर रही है, वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है, तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है, तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोष की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज़्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है, उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: FM Green हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि।
0: किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आरजे अनु और आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, जो है आपका पसंदीदा FM स्टेशन। और फिलहाल यहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके हर सवाल के जवाब, यानी कि भाई आज का जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित सारे जवाब। तो भाई आप प्याज की बात कर लेते हैं आज, और प्याज जानते हैं ना इतना महंगा हो रहा है, फिलहाल अभी थोड़ा सा थमा है इसका ये दाम। और आपको बता दें प्याज की खेती के लिए हर संभव तरीके अपनाते हैं हमारे किसान भाई, लेकिन अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कौन सा प्रभेद लगाना है, कब सिंचाई करना है, कितने दिनों तक सिंचाई करना है, जलवायु क्या होनी चाहिए। तो बहुत तरह के जो सवाल हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे किसान भाइयों के दिमाग में आते हैं। तो आज मैं बता दूं कि आपके इस सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर उद्यान विभाग सब्जी विभाग से, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्याज की खेती के लिए जलवायु किस तरह की होनी चाहिए और इसके उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं।
10: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वह अधिकांश भाग जो है शाकाहारी है, इसलिए इस स्थिति में सब्जी का खेती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्याज में विटामिन सी, खनिज पदार्थ एवं लौह, फास्फोरस, कैल्शियम बहुत अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग कई तरह से करते हैं, जैसे मसाला के रूप में करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं, सलाद के रूप में करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी खेती बिहार के प्रायः सभी भाग में या तो व्यावसायिक रूप में या किचन गार्डनिंग के रूप में अधिकांश भाग में करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इसका उपयोग जो है भिन्न भिन्न तरह के व्यंजनों में किया जाता है, इसलिए इसका खेती जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी खेती के लिए सबसे पहले हमें इसके जलवायु कैसी चाहिए, उन्नत प्रभेद क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज शरद मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख सब्जी फसल है। पौधे के शुरू अवस्था में यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जिस समय कि उसका शाकीय बढ़ाव होता है उस समय 13 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए, और जिस समय कंद बनता है उस समय 20 से 25 डिग्री तापक्रम माने सेल्सियस तापक्रम उत्तम होता है। यदि शाकीय बढ़ाव के समय तापक्रम कम हो जाता है तो पौधे में फूल आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि औसत से ज़्यादा तापक्रम यानी 30 से डिग्री से अगर ऊपर तापक्रम हो जाता है तो सल कंद का बढ़ना बहुत धीमा हो जाता है, साइज बहुत छोटा हो जाता है, फसल बहुत जल्द तैयार हो जाता है, जिससे कि उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। अब है कि इसके लगाने के लिए हमें उन्नत प्रभेद का चुनाव करना जरूरी है, तो इसके खेती के लिए अधिक उपज के लिए उन्नत एवं अनुशंसित प्रभेदों का ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ उन्नत प्रभेद का नाम जैसे हम यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कि पूसा रेड है, एग्री फाउंड लाइट रेड है, पूसा माधवी है, अर्का निकेतन है, अर्का कल्याण है, N53 इत्यादि प्रमुख हैं। बीज की प्राप्ति किसी विश्वसनीय स्रोतों जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, बिहार राज्य बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों या अधिकृत सब्जी बीज विक्रेता से ही प्राप्त कर लगाना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो उन्नत प्रभेद आपने बता दिए, लेकिन जब खेती की बात आती है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है किस तरह की मिट्टी में हम इसकी बुआई रोपाई और बीज की कितनी मात्रा है, उसकी आवश्यकता कितनी है। तो हम आपसे सम्मिलित तौर पर जानना चाहेंगे कि इसकी खेती के लिए, यानी प्याज की खेती के लिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए और बुआई रोपाई और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
10: ऐसे तो प्याज की खेती सभी प्रकार के मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु हल्की बलुई दोमट मिट्टी विशेष उपयुक्त है। अधिक पैदावार के लिए मिट्टी में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। अब है इसके बुआई का समय। तो रबी प्याज की बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक करना चाहिए। अभी प्याज की नर्सरी में बुआई करने का समय चल रहा है, अतः यथासंभव कोशिश करें कि 15 नवंबर तक इसकी बुआई नर्सरी में अवश्य कर दें। अब है नर्सरी, जब हम बीज नर्सरी में जब इसकी बुआई करते हैं तो वह जो है लगभग 7 से 8 सप्ताह के बीच में वह पौधा मुख्य खेत में लगाने लायक हो जाता है। तो इसकी रोपाई का समय जो है 15 दिसंबर से 15 जनवरी है। और ऐसे बहुत सारे किसान भाई 15 जनवरी के बाद भी लगाते हैं, तो अगर जिनका खेत खाली नहीं है, लेट लगा रहे हैं, तो हर हालत में कोशिश करें कि 15 फरवरी से आगे इसकी रोपाई नहीं करें। अगर 15 फरवरी के बाद अगर रोपाई करते हैं तो इसके उपज में भारी कमी आएगी। इसलिए अथासंभव कोशिश करें कि हम इसकी रोपाई जो है 15 जनवरी तक कर दें। अब इसके बुआई के लिए 1 हेक्टेयर खेत में अगर प्याज लगाना है तो उसके लिए आपको 8 से 10 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी, अगर उच्च क्वालिटी का बीज है तो।
0: अच्छा, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने जाना कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और फिलहाल हम जानते हैं डॉक्टर साहब कि जब प्याज की खेती होती है तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि नर्सरी में बीज बोने के बाद बिचड़ा तैयार करना। तो बिचड़ा तैयार करने के बारे में कुछ बताएं।
10: ऐसे तो लोग कुछ जगहों पर लोग प्याज की खेती छिटवा विधि से भी करते हैं, लेकिन वह कोई उत्तम तरीका नहीं है। इसका सबसे उत्तम तरीका है कि प्याज की खेती के लिए सबसे पहले हम नर्सरी में बीज बोकर उसका बिचड़ा तैयार करते हैं। 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए लगभग 500 से 600 स्क्वायर मीटर नर्सरी की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर हमको 1 हेक्टेयर में प्याज लगानी है तो उसके लिए 500 से 600 स्क्वायर मीटर हमको नर्सरी की आवश्यकता पड़ेगी।
0: जी।
10: नर्सरी तैयार करने हेतु खेत को अच्छी तरह से जोत कर तैयार कर लें तथा उसमें ईंट होगा, पत्थर का टुकड़ा होगा, पौधे के अवशेष वगैरह होगा, उसको निकाल कर बाहर निकाल लें। पाटा चलाकर खेत को समतल बना लें तथा छोटी छोटी क्यारियां एवं सिंचाई का नाला बना लें। उसके बाद प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 से 3 केजी गोबर की सरी खाद, 25 से 30 ग्राम DAP तथा 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति क्यारी में डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। यहाँ जो हम बताए हैं कि 1 वर्ग मीटर के हिसाब से, यानी अगर नर्सरी 1 वर्ग मीटर का है, यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, तो उसमें 2 से 3 केजी गोबर का खाद देना है, 25 से 30 ग्राम DAP डालना है, 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालना है। उस हिसाब से जितना बड़ा क्यारी है उस हिसाब से आप अभी बताए गए खाद की मात्रा डाल दें। बुआई के समय ध्यान रखें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी अवश्य हो। बुआई के पूर्व बीज को फफूंदी नाशी दवा से उपचारित जरूर करें। इसके लिए 1 केजी बीज में अगर प्याज का 1 kg बीज है तो उसमें 2 से 3 ग्राम फफूंदी नाशी जैसे थीरम है, कैप्टान है, दवा को अच्छी तरह मिला लें। यानी 1 kg बीज है प्याज का तो उसमें 2 से 3 ग्राम दवा थीरम या कैप्टान को उसमें मिला लें। कभी कभी शिकायत होता है कि पौधा नर्सरी में ही गलने लगता है, तो अगर इस तरह का उस खेत में शिकायत हो तो उसके लिए, इस बीमारी को आद्र गलन कहते हैं, तो अगर इस तरह का शिकायत हो तो नर्सरी को भी आप उपचारित कर लें। इसके लिए बुआई के पूर्व अभी जो बताए हैं दवा थीरम या कैप्टान 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर झरना से नर्सरी को सिंचाई कर लें। अगर इस तरह से सिंचाई कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमको जो आद्र गलन का जो बीमारी है उसके लगने की संभावना नहीं रहती है। उसके बाद जो है बीज बोने के बाद आधा भाग कंपोस्ट हुआ, आधा भाग मिट्टी हुआ मिलाकर बीज को अच्छी तरह ढक दें। उसके बाद नर्सरी को पुआल है या सूखा घास वगैरह है उससे ढक दें ताकि नर्सरी में नमी एवं तापक्रम बीज जमाव हेतु बना रहे। यदि बीज बोने के बाद खेत में अगर नज़र आए, अगर लगे कि नहीं इसमें नमी की कमी है, तो पुआल या घास से ढके हुए अवस्था में आप झरना से उसकी सिंचाई करें। अगर अब जब बीज का जमाव हो जाता है तो जमाव के बाद पुआल वगैरह जो भी है उसे हटा दें तथा झरना से हल्की सिंचाई करें। जब बीज जम जाता है तो 5-6 दिन के बाद 2 ग्राम बेविस्टिन दवा 1 लीटर पानी में घोलकर बिचड़ा पर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार नर्सरी को सिंचाई करते रहें। इस प्रकार से लगभग बुआई के 7-8 सप्ताह बाद बिचड़ा रोपने लग तैयार हो जाएगा।
0: तो किसान भाइयों, आपने डॉक्टर साहब से सुना विस्तार में कि बिचड़े की तैयारी कैसी होनी चाहिए, और जहाँ तक रोपाई की बात है तो वो भी जानेंगे, और साथ में ये भी जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब हम कि खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि बिचड़े की रोपाई कैसे करें हम।
10: बिचड़े की रोपाई है तो खेत को अच्छे तरह तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, जिसको कि मोल बोल पलाव कहते हैं, उससे पहली जुताई करनी चाहिए। उसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से या देसी हल से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलावें ताकि खेत समतल एवं मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय लगभग 250 क्विंटल गोबर की सरी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी में मिला दें। उसके बाद सुविधा अनुसार छोटी छोटी क्यारियां एवं सिंचाई हेतु नाला बना लें। रोपाई के 1 दिन पूर्व 200 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं यूज करते हैं, नहीं प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के जगह 100 केजी यूरिया। उसके बाद आपको 350 केजी सिंगल सुपर फास्फेट तथा 125 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से क्यारी में डालकर मिला दें तथा क्यारियों को समतल बना लें तथा क्यारियों की सिंचाई कर दें। सिंचाई के 1 दिन बाद बिचड़े की रुपाई उचित दूरी पर करें। रुपाई है तो कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बिचड़ा रोपने के पूर्व शीर्ष भाग में से लगभग 25% काटकर हटा दें ताकि रोपे गए बिचड़े को स्थापित होने में मदद मिलता है। रोपाई के 5-6 दिन बाद पुनः एक बार हल्की सिंचाई करें।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बारी आती है खाद की, तो खाद की जो मात्रा है हम कैसे दें, कब दें, अगर वो सही समय पर हम अपने फसलों में देते हैं, तो यहाँ पर प्याज की खेती की बात हो रही है तो जो है वो अच्छे तरीके से इनके फसलों में बढ़वार होती है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम खाद कितना दें और कब दें।
10: प्याज की फसल में उचित समय पर उर्वरक का प्रयोग करना अति आवश्यक है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये सब उर्वरक को हम लोग नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की दूसरी किस्त, पहली किस्त चूँकि हम रुपाई के पूर्व ही खेत में डाल चुके हैं, इसलिए दूसरी किस्त जब नाइट्रोजन के डालेंगे तो बुआई के 30 दिन बाद नाइट्रोजन की दूसरी किस्त डालेंगे। तीसरी किस्त जो है रोपाई के 60 दिन के बाद करेंगे। इसके लिए प्रत्येक बार यानी दूसरी और तीसरी किस्त के लिए 200 केजी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं प्रयोग करते हैं तो 100 केजी यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में समान रूप से छिटक दें। यदि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो खाद डालने के बाद सिंचाई करना आवश्यक है, परंतु यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद करना चाहिए, यानी सिंचाई कर दें तब यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करें, यानी कि उसकी छिड़काव करें, यानी उसे छिटक दें समान रूप से। यूरिया डालने के पहले खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि किसान भाई एक ही खेत में प्रतिवर्ष प्याज लगाते हैं, शुरू में तो उपज अच्छी मिलती है परंतु कुछ वर्षों के बाद उपज में कमी मिलने लगती है। इसका मुख्य कारण यह है कि लगातार एक ही खेत में प्याज उगाने से खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूरा करना जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक 2-3 वर्षों पर, यानी 2-3 वर्ष प्याज की खेती कर रहे हैं तो एक बार कम से कम उसमें जो है 20 से 25 केजी जिंक सल्फेट, 10 से 15 केजी बोरेक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत के अंतिम जुताई के समय ही खेत में डालकर मिला लें, ताकि पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि खाद के बाद जो है वो सिंचाई करनी चाहिए, तो हम जाना चाहेंगे कि कब और कितने दिनों पर सिंचाई करें हम?
10: प्याज में उचित समय पर सिंचाई करना आवश्यक है। हल्की मिट्टी वाले खेत को, जो जिस खेत की मिट्टी हल्की है उसे 4-5 दिनों के अंतराल पर, तथा जिस खेत की मिट्टी भारी है जिसे कि केवाल मिट्टी वगैरह है उसमें जो है 6-7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। सल्क कंद बनते समय, यानी कि जिस समय प्याज का कंद बनना शुरू हो जाता है, उस समय सिंचाई में कमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सल्क कंद का बढ़वार जो है बहुत कम जाता है, जिससे उपज पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सल्क कंद पूर्ण होने पर सिंचाई बंद कर दें, यानी कि प्याज उखाड़ने के 10-15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। कभी कभी सल्क कंद बनते समय कुछ पौधों में फूल आ जाते हैं जिसे तोड़ देना चाहिए, अन्यथा प्याज की गुणवत्ता खराब हो जाती है तथा ऐसे प्याज का बाजार भाव भी बहुत कम मिलता है।
0: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर प्याज में अब बीमारियों की बात कर लेते हैं, और हमारे जितने किसान भाई मेहनत करते हैं तो कई बार कीट के प्रकोप से जो बीमारियाँ हैं वो फैल जाती हैं प्याज के इन पौधों में, तो इनके नियंत्रण के लिए हम क्या करें?
10: इसमें मुख्य रूप से थ्रिप्स नामक कीड़ा का प्रकोप होता है। प्याज का यह बहुत ही प्रमुख कीड़ा है, इससे प्याज का बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है। तो इस कीट से बचाव के लिए कीटनाशी दवा जैसे मोनोक्रोटोफास है, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में, या इमीडा क्लोरोपीड कीटनाशी दवा है उसका 1 ml 3 लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिनों के अंतराल पर 2-3 छिड़काव करें। बीमारियों में पर्पल ब्लाउ जिसे बैंगनी धब्बा कहते हैं, तथा एस्टेमफिलियम झुलसा रोग लगता है, तो इन दोनों रोगों से बचाव के लिए मेनकोज दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। प्याज में छिड़काव करने में ध्यान यही रखना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज का पत्ता खड़ा होता है, चिकना होता है, तो कोई भी दवा जब हम स्प्रे करते हैं तो दवा जो है उसके पत्ती पर सही ढंग से टिक नहीं पाता है, जिससे कि हमें वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए घोल में जो है हम कोई भी किसी तरह का चिपकने वाला पदार्थ, जिसको स्टिकर करके बाजार में मिलता है, तो स्टिकर जैसे सेंडोविट है, टिपाल है, और इसी तरह से कई तरह का मार्केट में मिलता है, तो उसका आधा ml एक लीटर घोल में डाल कर ही स्प्रे करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो दवा छींटे हैं उसका वांछित लाभ आपको मिल पाएगा।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे अंत में इतनी मेहनत करने के बाद हमारे किसान भाई का वक्त आता है कि प्याज की खुदाई करें और इसका भंडारण करें और इसका इसे जो है वो जो है मार्केट तक ले जाएं और मुनाफा पाएं। तो हम जानना चाहेंगे कि अंत में कि प्याज की खुदाई और भंडारण कैसे कर सकते हैं।
10: प्याज की फसल रोपाई के बाद यानी जब हम बिचड़ा रोपते हैं तो 100 से 120 दिन में वो तैयार हो जाती है।
0: जी जी,
10: प्याज तैयार मेरा हुआ कि नहीं हुआ उसकी परिपक्वता की पहचान जो है पौधों को पत्तियां देखकर कर सकते हैं।
0: अच्छा,
10: जब पत्तियां का ऊपरी भाग लगभग 60% सूख जाती है तो हम समझते हैं कि अब प्याज उखाड़ने लायक हो गया है। सल्क कंदों को जब जमीन से बाहर निकालने के बाद उसके गर्दन के पास से 2 सेंटीमीटर छोड़कर, यानी कि 2 सेंटीमीटर गर्दन छोड़कर शेष सभी पत्तियों को काटकर अलग कर देते हैं। उसके बाद कटे फटे कुछ प्याज जुड़वा होगा, कुछ प्याज का बहुत मोटा गर्दन होगा, तो ये सब को हम अलग कर देते हैं क्योंकि ये भंडारण में खराब हो जाती है। तो इस तरह का प्याज है तो उसको आप जो है यथाशीघ्र जिस दाम में बिकता है उसे बाजार में बेच दें। उसके बाद कंदों को छायादार एवं हवादार जगह में 10-15 दिनों तक सुखाने के बाद ही भंडारण करना चाहिए। भंडारण वैसी जगह में करें जो छायादार हो, हवादार हो एवं सूखी हो। भंडारित प्याज को 20 से 25 दिन के अंतराल पर पलटते रहें। पलटने के समय कुछ प्याज आपको सड़ा हुआ मिलेगा, कुछ अंकुरित होगा, तो ये सब को पलटते समय चुन लेना चाहिए और इसको भंडारण से अलग कर देना चाहिए।
0: अच्छा,
10: तो प्याज के वैज्ञानिक खेती पर मुख्य रूप से ये सब अगर हम करते हैं तो आशा के अनुसार हम उपज प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और किसान भाइयों, आपको तो पूरी जानकारी मिल ही चुकी होगी क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से लेकर अंत तक प्याज की वैज्ञानिक खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। तो आशा करती हूँ कि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और जब आप प्याज की खेती करने जाएंगे तो डॉक्टर साहब की बातों को दिमाग में ज़रूर लाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही और अगले दिन अगले विषय के साथ आप सभी से मुलाकातें होंगी। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और करते रहें यूं ही खेती और स्वस्थ खेती। नमस्कार।
9: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
10: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद
10: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
11: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी

0: मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले

0: जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% और दोपहर में 65 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
0: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरतवाना लिखते हैं।
0: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
0: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताजा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ पांची के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
2: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
2: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
2: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
0: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
2: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
0: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
2: जी बिल्कुल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
0: विमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है
2: जी।
0: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं
2: जी। यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं, बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
2: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
0: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान, या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
2: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
0: जी जरूर, हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
2: जी तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
0: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
2: जी
0: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
2: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
0: श्रोता, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
2: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
0: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
2: जी
0: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
2: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओं, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
2: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
0: जी हाँ बिल्कुल, तो आइए श्रोताओं, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
2: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
2: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
0: सीखो, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
3: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
3: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
3: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
3: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो, सीखो
0: जगना और जगाना,
3: जगना और जगाना।
0: लता और पेड़ों से सीखो,
3: लता और पेड़ों से सीखो।
0: सबको गले लगाना,
3: सबको गले लगाना।
0: दीपक से सीखो जितना,
3: दीपक से सीखो जितना।
0: हो सके अंधेरा हरना,
3: हो सके अंधेरा हरना।
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
0: सच्ची सेवा करना,
3: सच्ची सेवा करना।
0: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे।
0: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे।
0: जीवन पथ में बढ़ना,
3: जीवन पथ में बढ़ना।
0: और धुएं से सीखो हरदम,
3: और धुएं से सीखो हरदम।
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: ये क्या? इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे,
3: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
5: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
2: हां साहब।
4: ओ

0: विलक्षण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े।